मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 37 सेकंड्स हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं नमस्ते। लखनऊ के शानदार और खूबसूरत सफर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। मैं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा, आप सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं एक नई सुबह हमारे द्वार पर दस्तक दे चुकी है। रात की खामोशी अब धीरे धीरे चिड़ियों की चहचहाट और जीवन की नई हलचलों में बदल रही है। हर सुबह अपने साथ नई उम्मीदें, नए संकल्प और कुछ नया करने का अवसर साथ लाती है। ऐसे में जरूरी है कि हम भी दिन की शुरुआत सकारात्मकता के साथ करें। तो अपनी सोच और जीवन को दीजिए एक नई दिशा और बने रहिए आकाशवाणी लखनऊ के साथ। घड़ी की सुइयां बढ़ रही हैं सुबह के 6 बजने की ओर और अब समय हो चला है देश और दुनिया की प्रमुख घटनाओं पर एक नजर डाली जाए। तो आइए जान लेते हैं क्या कुछ हुआ देश विदेश में समाचारों के माध्यम से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएम

0: पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। श्रोताओं, प्रातः के 6:05 हुए हैं और समय है कार्यक्रम कृषि चर्चा का। कार्यक्रम में आज सुनिए भेंट वार्ता अगेती अरहर की उन्नत खेती। वार्ताकार हैं डॉक्टर प्रभाकर सिंह, भेंटकर्ता डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: खरीफ में जहां दलहन उत्पादन की आपकी योजना है तो अगेती अरहर की उन्नत खेती कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रभाकर सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां अगेती अरहर की खेती करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या कुछ संभावना है अपने प्रदेश में?
3: अपने प्रदेश में अगेती अरहर की काफ़ी संभावनाएँ हैं। हमारे पास तमाम ऐसे क्षेत्र हैं प्रदेश के अंतर्गत जहाँ पर गेहूं जो है विलंब से भी बोया जाता है। ऐसी स्थितियों में किसान भाई अगेती अरहर की खेती बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं।
2: प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं जो कम समय में अच्छी पैदावार देंगी डॉक्टर साहब?
3: देखिए, प्रजातियाँ बहुत पॉपुलर प्रजाति है जो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है, उपास 120 के नाम से, उपास 120 के नाम से जानी जाती है। और यह प्रजाति जून के प्रथम सप्ताह में बुआई के लिए बहुत अच्छी है और इस प्रजाति की उपज भी लगभग 6-7 क्विंटल प्रति एकड़ आती है। दूसरी प्रजाति है पारस, यह पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बहुत अच्छी प्रजाति है और इसकी भी उपज क्षमता 6-7 क्विंटल प्रति एकड़ की है और 130-140 दिन में तैयार हो जाती है। इसके बाद पूसा 992 जून के प्रथम सप्ताह में बोने के लिए ये भी प्रजाति बहुत अच्छी है और इसकी भी उपज करीब 6 क्विंटल प्रति एकड़ आ जाती है। और इसके बाद टाइप 21 के नाम से भी एक प्रजाति है जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए संस्तुत की गई है।
2: डॉक्टर साहब, अगेती अरहर की बुआई की बात चल रही है तो खेत का चुनाव और खेत की तैयारी महत्वपूर्ण है।
3: इसमें मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो है इसमें कृषक के पास अपना सिंचाई का साधन होना ज़रूरी है। उनको सबसे पहले अपना पलेवा करना चाहिए। पलेवा करने के बाद जब उसमें ओट आ जाए तो प्रथम सप्ताह तक कोशिश करके इसकी बुआई कर देनी चाहिए। अगर प्रथम सप्ताह तक ये बुआई नहीं कर पाते हैं तो फिर उधर विलम्ब होने से गेहूँ की बुआई में विलम्ब होने लगता है। अतः किसान भाइयों से मेरा विशेष रूप से अनुरोध होगा कि वो जो है अभी जैसे समय चल रहा है तो तुरंत जो है पलेवा करें और फसल की बुआई जून के प्रथम सप्ताह तक पूरी कर लें।
2: डॉक्टर साहब, खेत का चुनाव भी तो महत्वपूर्ण है,

0: क्योंकि जल निकास की अच्छी व्यवस्था होगी।
1: हाँ, इसके लिए जो है अच्छे जल निकास वाली जो है जमीन को चुनाव करना चाहिए, क्योंकि अगर पानी लगेगा तो पानी लगने से अरहर की फसल जो है शुरुआत में ही गल जाती है और ख़राब हो जाती है, जिससे बहुत बड़ा नुकसान होने लगता है। तो किसान भाइयों को अच्छे जल निकास की दोमट भूमि अगर मिले तो सबसे बढ़िया होती है, और ख़ास तरह से जो हमारा क्षारी क्षेत्र है, लौड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर अरहर की फसल नहीं लेना है।
0: डॉक्टर साहब, जो भी अगेती अरहर की बुआई करने जा रहे हैं किसान भाई बहन, तो बीज की मात्रा कितनी लगेगी और बुआई के पहले बीज शोधन और भूमि शोधन करना होगा?
1: जी जी, देखिए इसमें ऐसा है कि बीज की मात्रा करीब 6 किलो एकड़ लगती है। ये जो हमारा टाइप 21 है या उपास है, पारस है, फूसा 992 है, इन सब में लगभग 5 किलो से 6 किलो के बीच में किसान भाई प्रति एकड़ की दर से बीज का प्रयोग कर सकते हैं। और अब बीज का प्रयोग करने के पहले बीज उपचार बड़ा आवश्यक है
0: जी।
1: बीज उपचार करने के लिए किसान भाइयों को 1 किलो बीज के लिए 2 ग्राम थिरम और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम का मिश्रण तैयार करके और उसको ठीक से उपचारित करना चाहिए। उपचारित करने का तरीका यह है कि जैसे किसान भाई अगर 5 किलो बीज का प्रयोग कर रहे हैं तो करीब 10 ग्राम जो है उनका थिरम और 5 ग्राम कार्बेंडाजिम को एक साथ मिला करके और फिर उनके ऊपर छिड़क करके हल्के हाथ से उसको रगड़ दें तो ये बीज उपचार हो जाता है। या तो उसको किसी जो है बर्तन में रख करके उसको हिला लें और हिला करके अच्छी तरह से मिला लें तो ये बीज शोधन का कार्य हो जाता है।
0: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे अगेती अरहर की उन्नत खेती के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: 9415183364 9415183364।
0: डॉक्टर प्रभाकर सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और अगेती अरहर की उन्नत खेती कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अगेती अरहर की उन्नत खेती, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रभाकर सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की ये भेंट वार्ता। इसी के साथ अब आज का कृषि चर्चा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुने आज का सुविचार, आत्म परीक्षण।
3: यदि गहराई में उतरकर इस पर विचार करें तो हम पाएंगे कि यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है, स्थिर कुछ भी नहीं। ब्रह्मांड बदल रहा है, दुनिया एक जैसी कभी नहीं रहती, समाज गतिशील है, वृक्ष वनस्पतियां भी समय के साथ साथ पनपते बढ़ते, फलते फूलते और आयु पूरी करके सूख जाते हैं। जीवधारियों की भी ऐसी ही गति है, स्वयं मनुष्य शरीर भी बदलता रहता है। बचपन, यौवन, वृद्धावस्था और मरण, ये अवस्थाएं यहां भी देखी जाती हैं। एक व्यक्तित्व की मूल सत्ता ही अपरिवर्तनशील भला क्यों है? जीवन से मृत्यु तक आखिर मनुष्य का स्वभाव क्यों नहीं बदलता? उसकी चिंतन शैली और क्रियाकलाप स्थिर क्यों बने रहते हैं? उसमें उदात्तता का समावेश क्यों नहीं हो पाता? प्रकृति के साथ ये विरोधाभास कैसा? आज से पूर्व कई क्रांतियां हुई, भगवान महावीर ने इसके लिए अहिंसा का दर्शन दिया, भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन जैसी महाक्रांति की, पर दोनों ही क्रांतियां समाज और संसार के कुछ हिस्से को प्रभावित कर सकीं और सामयिक बनी रहीं। जब तक आदमी की मूल सत्ता में आमूल चूल परिवर्तन नहीं होता, तब तक बदलाव स्थायी नहीं होगा। मनुष्य के समग्र परिवर्तन के लिए मानवीय अंतराल का संपूर्ण बदलाव जरूरी है। चाहे जिस भी काल में ये पूर्ण बदलाव आए, वहां मानवीय अंतःकरण में क्रांति अवश्य घटित होगी। इससे कम में बदलाव एक खिलवाड़ बनकर रह जाएगा। अब प्रश्न ये है कि बदलाव आए कैसे? क्या ये स्वयमेव घटित होगा, कोई पराशक्ति इसे कर गुजरेगी या परमेश्वर की अनुकंपा से संपन्न हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। परिवर्तन जहां कहीं जिस स्तर पर भी होता है, वहां उसके पीछे कोई ना कोई निमित्त कारण अवश्य होता है।

0: इसलिए जब मानवीय अंतराल के परिवर्तन की बात आती है और उत्कर्ष की दिशा में कदम बढ़ाने का सवाल आता है, तो यहाँ भी प्रयास और पुरुषार्थ को सदैव स्मरण रखना होगा। निजी पराक्रम के बिना ये शक्य ना हो सकेगा। जो इसके लिए प्रकृति प्रभाव पर आश्रित रहना चाहते हैं और अपने पूर्णत्व की कल्पना करते हैं, उनकी बात और है। वे कितने जन्मों में और कितने लंबे काल में इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, इस संबंध में सही सही कुछ भी कह पाना मुश्किल है। विवेकवान लोग इतने लंबे काल तक इंतजार नहीं कर सकते और ना ही ये खतरा मोल ले सकते हैं। तो विकल्प यही है कि हम अपने को बदलने के लिए स्वयं संघर्ष करें। आत्म परिष्कार की साधना किसी महाभारत से कम नहीं। उसमें क्षण प्रतिक्षण में मनुभूमि में आने वाली बुराइयों और दुष्प्रवृत्तियों से लोहा लेना और उन्हें परास्त करना पड़ता है। इसके लिए स्वयं को एक सतर्क सैनिक की भूमिका निभानी पड़ती है और कुविचारों के दुर्भावनाओं के आते ही उन्हें धर दबोचना पड़ता है, ताकि उनकी मलिनता मानस पटल पर हावी ना होने पाए। रामकृष्ण परमहंस कहा करते कि लोटे की चमक को बनाए रखने के लिए उसे बार बार मांझना पड़ता है, इससे कम में चमक बनी नहीं रह सकती। हाँ, यदि वे सोने का हो तो बात दूसरी है। मनुष्यों के साथ विडंबना ये है कि स्वर्ण मनोभूमि वाले देव पुरुष करोड़ों में इक्के दुक्के होते हैं। शेष सभी को जागरूक रहकर अंतकरण की धुलाई सफाई करनी पड़ती है, तभी ईश्वरीय आलोक की वास्तविक झांकी व्यक्ति में प्रकट होती है। इससे पूर्व उसकी आभा कल्मशों के कारण दृश्यमान नहीं हो पाती, क्योंकि मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के संस्कार उस पर छाए रहते हैं। मानवीय गरिमा इस दिव्यता को धारण करने में है। मानवीय चेतना का सहज स्वभाव अपनी मूल सत्ता से एकाकार होना है, पर इसके लिए प्रबल पराक्रम करना पड़ेगा और वे सारे उपाय उपचार बनाने पड़ेंगे जिससे हमारा उत्कर्ष की दिशा में कदम बढ़े। आदमी के लिए असंभव कुछ भी नहीं। वे जिस भी कार्य के लिए ठान ले, वहां सफलता अवश्यंभावी है। ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी आप अपनी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। इसीलिए उत्कृष्टता की दिशा में एक कदम बढ़ाएं, परमात्मा हमें अनेक कदम आगे बढ़ने में मदद करेंगे, यह सुनिश्चित है।
1: डॉक्टर शीबा राकेश के स्वर में अभी आपने सुना आज का सुविचार आत्म परीक्षण। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना।

श्रोताओं नमस्कार। आज मंगलवार है, हनुमान जी का प्रिय दिन। आज बड़ा मंगल भी है, तो आप सभी को बड़े मंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं। संकट मोचन अंजनी नंदन पवन पुत्र हनुमान जी को शक्ति, भक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से उनका स्मरण करने पर भय, चिंता और बाधाएं दूर होती हैं। तो आइए प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को समर्पित हम भी ये भक्ति भजन सुनें।

हनुमान जी से यही प्रार्थना है कि वे संकट मोचन है और हम सभी के जीवन में आने वाले संकट वे दूर करें। श्रोताओं, प्रभु श्री राम का नाम इतना पावन और प्रभावशाली माना गया है कि उनके नाम के स्मरण मात्र से ही असंभव भी संभव हो जाता है। आइए सुनते हैं प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान करता ये पावन भजन और सुबह सवेरे खो जाते हैं श्री राम जी की भक्ति में।

जब जीवन की राह कठिन लगे तब राम का नाम संबल बनकर साथ चलता है। प्रभु श्री राम के नाम की महिमा अपरंपार है, जो भक्त के मन में विश्वास और आशा का दीप जला देती है। तो आइए हम भी सुबह सवेरे सुनते हैं श्री राम की भक्ति से ओतप्रोत ये पावन भजन।

जी हाँ श्रोताओं, राम जी के नाम से पत्थर भी तर जाते हैं और हमारी भी उनसे यही प्रार्थना है कि हमारे जीवन की नैया भी भव सागर से पार लगाएं। श्रोताओं, वास्तव में भक्ति का संबंध केवल आराधना से नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण से भी है। भगवान और भक्त का रिश्ता इतना अनमोल होता है कि स्वयं ईश्वर भी अपने सच्चे भक्तों का मान बढ़ाते हैं। इसी भाव को सुंदरता से व्यक्त करता आइए सुने ये पावन भजन।

हृदय से बोलिए जय श्री राम। हम सब इसी मिट्टी से बने हैं और अंततः इसी में विलीन भी हो जाएंगे। आइए सुने एक ऐसा भजन जो जीवन के इसी गूढ़ सत्य को बड़े सरल और प्रभावशाली ढंग से हमें सुनाता है, बताता है, समझाता भी है।

भक्ति और श्रद्धा के इन मधुर स्वरों के साथ ही आराधना कार्यक्रम को अब यही विराम देते हैं। ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी शुभेच्छा के साथ नमस्कार।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। भक्तिमय इस पावन बेला में आइए नमस्ते लखनऊ के सफर में अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनिए भाग 197। आज का प्रसंग है भरत के प्रति निषाद राज का प्रेम और वन में रात्रि विश्राम का वर्णन।

राम सखा निषाद राज को गले लगाकर भरत ने कुशल क्षेम पूछा। निषाद राज ने कहा, हे प्रभु, कुशल का स्रोत तो आपके चरण हैं, जिनके आज मुझे दर्शन हो गए और आपकी कृपा पाकर मेरी करोड़ों पीढ़ियों का कल्याण और मंगल हो गया। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ, किंतु श्री राम ने मुझ जैसे अधम को अपनाकर विश्व का आभूषण बना दिया है। निषाद राज की प्रीति देख और उनके वचन सुनकर छोटे भाई शत्रुघ्न उनसे मिले। अपने कुल और धाम बताते हुए निषाद राज ने सभी रानियों को प्रणाम निवेदित किया। रानियां उन्हें लाख वर्ष की आयु प्राप्त करने का आशीष देती हैं। ये अद्भुत दृश्य देखने वाले अनायास ही कह उठते हैं कि मनुष्य जीवन धारण करने का वास्तविक लाभ तो निषाद राज ने पाया है। निषाद सेवकों ने घरों, वृक्षों के नीचे, बागीचों तथा आसपास के वन उपवन में भरत जी के पूरे दलबल के विश्राम के लिए समुचित प्रबंध कर दिए। श्रृंगवेरपुर को देख भरत का शरीर प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ गया। गंगा के दर्शन कर सभी यही कामना प्रकट करते हैं कि श्री राम के चरणों में उनका प्रेम कभी कम न हो।

श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे अनूप जलोटा और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को हम बता दें, NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: भारः द्विगुणितः भविष्यति। श्रीगोयलवर्यः ह्यः नवदिल्ल्यां फार्मास्यूटिकल क्षेत्रस्य वैश्विकराजदूतसम्मेलनं 26th ग्लोबल ड्रग रेगुलेटर्स कॉन्क्लेव तथा 26th फार्मा एंड हेल्थ केयर इत्यस्य अन्ताराष्ट्रिय प्रदर्शन्याः पूर्वालोकन समारोहं च सम्बोधयन् इदमुक्तवान्। केन्द्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी वर्यः अवदत् यत् नरेन्द्र मोदिनः सर्वकारस्य 12 वर्षेषु भारतस्य अंगार खनन क्षेत्रयोः महतीं परिवर्तनम् अभवत्। महिला क्रिकेट क्रीडायां यूनाइटेड किंगडम देशस्य कार्डिफ नगरे 26th आईसीसी महिला 20x20 विश्व चषक क्रीडायाः प्राक् ह्यः प्रथमायां पूर्वाभ्यास क्रीडायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं 26 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे कार्यक्रम नमस्ते लखनऊ में। श्रोताओं, प्रातः के 7 बजे हैं। हर रोज इस समय हम आपके लिए लेकर आते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। इसी क्रम में आज नीना सोनकर से सुनिए जानकारी, करी पत्ता स्वाद का साथी, सेहत का रक्षक।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं उस पत्ते की जिसकी महक भर से ही दक्षिण भारत की यादें ताजा हो जाती हैं और जो साधारण दिखने के बावजूद हमारी रसोई, हमारी थाली और हमारी सेहत तीनों के लिए अनमोल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कड़ी पत्ते की, या जिसे कुछ स्थानों पर, कुछ जगहों पर मीठी नीम भी कहा जाता है। जब किसी गर्म कढ़ी या सांभर में कड़ी पत्ता तड़कता है तो उसकी सुगंध पूरे घर को सोंधी सी खुशबू से भर देती है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि आपके शरीर के लिए भी एक तरह की प्राकृतिक औषधि है। कड़ी पत्ता हमारे देश की परंपराओं से जुड़ा है। रसोई से लेकर आयुर्वेद तक ये न केवल भोजन में स्वाद और रंगत लाता है बल्कि पाचन, बालों, आँखों और लीवर जैसे कई अंगों के लिए लाभकारी भी होता है। कड़ी पत्ता में विटामिन ए, बी, सी और ई भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा, प्रतिरोधक क्षमता और संतुलन प्रदान करते हैं। ये पत्तियाँ शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती हैं, यानी ये उन हानिकारक तत्वों से लड़ती हैं जो हमारे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये छोटी दिखने वाली पत्तियाँ उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में भी सहायक मानी जाती हैं। पाचन संबंधी समस्याओं में कड़ी पत्ता बहुत लाभदायक होता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि ये पत्ता अग्नि को संतुलित करता है, यानी पाचन क्रिया को सक्रिय करता है और शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। जिन लोगों को बार बार गैस, अपच या कब्ज की समस्या होती है उनके लिए कड़ी पत्ता रामबाण साबित हो सकता है। कुछ लोग तो इसकी पत्तियों को सुखाकर इसका चूर्ण बना लेते हैं और रोजाना एक चुटकी गर्म पानी के साथ लेते हैं। ये पेट को शांत और हल्का रखने में मदद करता है। कड़ी पत्ते का सबसे प्रसिद्ध उपयोग होता है बालों के स्वास्थ्य के लिए। पुराने समय से दादी नानी कड़ी पत्ते को तेल में गर्म करके बालों में लगाने की सलाह देती थी। ये न केवल बालों को झड़ने से रोकता है बल्कि उन्हें घना, चमकदार और मजबूत भी बनाता है। आज भी कई आयुर्वेदिक हेयर ऑयल और शैम्पू में कड़ी पत्ते का अर्क डाला जाता है। इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन और प्रोटीन बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और समय से पहले सफेद होने से भी बचाते हैं। अब हम बात करेंगे मधुमेह यानी डायबिटीज की। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में ये पाया गया है कि कड़ी पत्ता शरीर में ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित करने में मदद करता है। इसके नियमित सेवन से इंसुलिन की संवेदनशीलता में सुधार होता है और शरीर शर्करा को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाता है। इसलिए जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, उनके लिए कड़ी पत्ते का सेवन चाहे तड़के के रूप में हो, चटनी में या फिर खाली पेट कुछ पत्तियां चबाकर फायदेमंद हो सकता है। कड़ी पत्ते का प्रभाव जिगर यानी लीवर पर भी सकारात्मक होता है। ये लीवर की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में सहायक होता है। आयुर्वेद में इसे प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर माना गया है। अगर आपका भोजन अनियमित हो, अधिक तेल युक्त हो या कभी कभी वजन बढ़ने

0: लगे तो ऐसे में कड़ी पत्ते का सेवन धीरे धीरे शरीर को फिर से संतुलन में लाने का काम करता है। इन पत्तियों की उपयोगिता केवल भोजन तक सीमित नहीं है, इसकी चाय भी बनाई जाती है। जी हाँ, कड़ी पत्ते की चाय। कुछ पत्तियाँ पानी में उबालिए, उसमें थोड़ी सी सौंठ या अदरक मिलाइए और सुबह खाली पेट पीजिए। ये शरीर की सफाई करता है, थकान को दूर करता है और मूड को भी बेहतर बनाता है। आज जब हम बाजार में महंगे हेल्थ सप्लीमेंट्स और विदेशी सुपर फूड्स की तरफ भागते हैं, तब कड़ी पत्ता हमें याद दिलाता है कि सेहत का खजाना हमारे अपने आंगन में ही छिपा है। ये एक ऐसा देसी सुपर फूड है जिसे हम रोजाना के भोजन में भी आसानी से शामिल कर सकते हैं, बिना किसी खर्च के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये स्वाद, सेहत और परंपरा तीनों को जोड़ता है। तो श्रोताओं, क्यों ना आज से ही कड़ी पत्ते को सिर्फ एक गार्निशिंग का सामान न माने, बल्कि इसे एक औषधीय पत्ते की तरह अपनाएं, इसे आजमाएं। इसकी पत्तियां हमें सिखाती हैं कि छोटा आकार, साधारण दिखावट और सादगी में भी कितना सामर्थ्य छिपा होता है। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए पौधे, मसाले या आयुर्वेदिक तत्व के साथ जो हमारी रसोई से जुड़ा हो और सेहत को गहराई से छूता हो। तब तक स्वाद के साथ सेहत को भी अपनी थाली में दे जगह। और याद रखें, कड़ी पत्ता सिर्फ तड़के का हिस्सा नहीं, आपकी सेहत का भी साथी है। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: करी पत्ता स्वाद का साथी, सेहत का रक्षक। इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे आज की स्वास्थ्य चर्चा। जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज दिन भर हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, आज रात्रि 11:10 से भारत सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला आप सुनेंगे। आज का विषय होगा आर्थिक विकास। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रातः 9:15 पर जिले की हलचल में आज सुनिएगा हरदोई और ललितपुर जिलों की हलचल। प्रातः 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम के तहत समात फरमाइएगा अफसाना, यतीमों का संगम। अफसाना निगार होंगे मोहम्मद यामीन बराकती। साथ ही कलाम शायर के तहत अब्दुल नईम खान से सुनिएगा उनका कलाम। लोकरंग और लोकमाधुरी कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे दीपाली त्रिपाठी के गाए अवधि लोकगीत। लोकरंग कार्यक्रम सुनिएगा प्रातः 9:50 पर और लोकमाधुरी कार्यक्रम का आनंद आप ले सकेंगे दिन में 2:45 से। प्रातः 7:31 पर कार्यक्रम सुनिएगा आज सुबह। 7:10 पर सुनिएगा विविधा। बहनें सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम अपराजिता दिन में 1:15 से। कार्यक्रम में आज बहनें सुनेंगी काव्य कथा गोष्ठी के अंतर्गत शालिनी राय निगम की कथा मोबाइल पाश। दिन में 2:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता, धान उत्पादन की उन्नत तकनीक। वार्ताकार होंगे डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्र और भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी सायकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5:00 से। युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 से। 5:45 पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा नई उड़ान। शाम 6:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम लोकायतन। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता, ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्त स्वास्थ्य तंत्र। वार्ताकार होंगी पुष्पावती। शाम 6:50 पर कार्यक्रम होगा खेती किसानी। कार्यक्रम में आज यतेंद्र कुमार से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता सुनिएगा। बातचीत का विषय रहेगा खरीफ फसलों में नैनो उर्वरकों का प्रयोग। रात 8:00 हिंदी

कार्यक्रम के अंतर्गत आज डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिपाठी की वार्ता सुनिएगा। विषय होगा राष्ट्रीय अस्मिता और भारतीय भाषाएं। रात्रि 8:10 पर आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे डॉक्टर मिथिलेश तिवारी की गाई गजलें। रात 9:30 पर श्रोता सुनेंगे अपनी पसंद के फिल्मी नगमे कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद में। रात्रि 10:00 आकाशवाणी झांसी की प्रस्तुति में सुनिएगा कार्यक्रम खेल दर्पण। और रात 10:30 से शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में सोमा घोष का ख्याल गायन आप सुन सकेंगे। इसके साथ ही समय समय पर फिल्म संगीत और प्रायोजित कार्यक्रम भी श्रोता सुन पाएंगे। यह थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

श्रोताओं नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम विविधा के आज के सफर में। मैं हूँ आज आपके साथ इस सफर में आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा।

0: दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई युवा जिसकी उम्र मुश्किल से 25 वर्ष हो, इतना बड़ा जननायक कैसे बन सकता है कि उसके जाने के बाद भी पीढ़ियां उसे श्रद्धा से याद करती रहें? क्या कारण है कि जंगलों और पहाड़ों के बीच जन्मा एक साधारण युवक लाखों लोगों के लिए आशा का प्रतीक बन गया? और आखिर क्यों उसे आज भी धरती आबा यानी धरती का पिता कहा जाता है? इन सवालों के जवाब छिपे हैं भारत के एक ऐसे वीर सपूत के जीवन में, जिसने अपने लोगों के सम्मान, अधिकार और अस्मिता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। आज के इस सफर में हम बात करेंगे महान जननायक भगवान बिरसा मुंडा की, जिनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और जन जागरण के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। श्रोताओं, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के उलीहातू गांव में हुआ था। ये वो समय था जब आदिवासी समाज अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा था। बचपन से ही बिरसा प्रकृति के बहुत निकट रहे। जंगल, पहाड़, नदियां और खेत उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। उन्होंने अपने आसपास के लोगों की परेशानियों को बहुत करीब से देखा और यही अनुभव आगे चलकर उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। युवावस्था में ही उन्होंने समझ लिया कि समाज को केवल सहानुभूति नहीं बल्कि जागरूकता और नेतृत्व की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों को संगठित करना शुरू किया। वे आत्मसम्मान, एकता और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का संदेश देते थे। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और लोग उन्हें अपना मार्गदर्शक मानने लगे। बिरसा मुंडा केवल संघर्ष के प्रतीक नहीं थे बल्कि समाज सुधारक भी थे। उन्होंने लोगों को अंधविश्वासों से दूर रहने, स्वच्छता अपनाने और अपनी संस्कृति पर गर्व करने की प्रेरणा दी। उनका मानना था कि किसी भी समाज की उन्नति शिक्षा, जागरूकता और आत्मविश्वास से होती है।
1: शहबीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का।

श्रोताओं, बिरसा मुंडा का सबसे बड़ा योगदान था लोगों में अपने अधिकारों के प्रति चेतना जगाना। उन्होंने कहा कि जल, जंगल और जमीन केवल संसाधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। उनके नेतृत्व में जो आंदोलन चला उसे इतिहास में उल गुलान यानी महान जन क्रांति कहा जाता है। यह आंदोलन केवल किसी शासन के विरोध का नहीं था बल्कि अपने अस्तित्व और सम्मान की रक्षा का आंदोलन था। बिरसा मुंडा की सबसे बड़ी ताकत ही यही थी कि लोग उन पर विश्वास करते थे। वे जहां भी जाते लोग उन्हें सुनने के लिए जमा हो जाते। उनकी वाणी में प्रेरणा थी और उनके व्यक्तित्व में नेतृत्व की शक्ति। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि यदि वे संगठित रहें तो किसी भी अन्याय का सामना कर सकते हैं। आप जानते हैं, अंग्रेजी शासन उनके बढ़ते प्रभाव से चिंतित हो गया। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया लेकिन फिर भी उनके विचारों को रोका नहीं जा सका। उनका नाम जन जन की जुबान पर था और उनका संदेश लोगों के दिलों में बस चुका था। दुर्भाग्य से 9 जून 1900 को रांची जेल में केवल 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इतनी कम उम्र में उनका जाना पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति था। बिरसा मुंडा इसका श्रेष्ठ उदाहरण है कि अपने जीवन, अपने महान व्यक्तित्व और जीवन काल से कहीं अधिक लंबे समय तक आप अपने विचारों के माध्यम से जीवित रहते हैं। आज जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि उनका संघर्ष केवल अपने समय तक सीमित नहीं था। उन्होंने हमें प्रकृति के प्रति संवेदनशील होने, समाज के कमजोर वर्गों का सम्मान करने और अपनी सांस्कृतिक पहचान को संजोकर रखने का संदेश भी दिया। उनकी स्मृति हमें ये प्रेरणा देती है कि हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहें। श्रोताओं, बिरसा मुंडा का जीवन हमें ये विश्वास देता है कि एक जागरूक और साहसी व्यक्ति समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जब भी हम प्रकृति के संरक्षण, सामाजिक न्याय और मानवीय सम्मान की बात करेंगे तब भगवान बिरसा मुंडा का नाम आदर के साथ लिया जाएगा। वे केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं बल्कि साहस, स्वाभिमान और जन सेवा की एक जीवंत प्रेरणा है। महान जननायक भगवान बिरसा मुंडा को विनम्र श्रद्धांजलि और शत शत नमन। इसी के साथ आज के विविधा के सफर से मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात

0: आज सबके लिए बरसती है। उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को किया रेखांकित। कहा, देश में हुए बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा है गरीब कल्याण और वंचित वर्ग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित हुए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र को बताया राज्य के लिए बेहद लाभकारी। प्रदेश के अग्निशमन और आपात सेवा विभाग में गठित किया जा रहा है विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG। मुख्यमंत्री ने विभागीय बैठक में SRG गठन की स्थिति की समीक्षा की। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। आज और कल भी 2 पालियों में आयोजित हो रही हैं परीक्षाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने कल कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
3: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
2: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
4: गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8,00,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन

0: को 33 से 35 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसे लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित होने से प्रदेश को काफी लाभ होगा।
2: मौसम विभाग की जानकारी समय पे हमें मिलने का परिणाम क्या है? हम अन्नदाता किसान को होने वाली क्षति को और उसके कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली क्षति और खाद्यान्न के संकट को काफी हद तक बचाने में सफल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए और आसान हो जाएगा।
1: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले सिर्फ 14 रडार थे, लेकिन अब इनकी संख्या 150 से अधिक हो गई है।
3: जितनी प्रगति गत 12 वर्षों में हुई है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इतनी उससे पहले के शायद 65 वर्षों में ना हो पाई। सन 2014 तक देश भर में केवल और केवल 17 वेदर रडार्स थे, और कई एक ऐसे प्रदेश थे जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, जहां एक भी रडार नहीं था। आज वो 17 रडार बढ़कर के 50 हो गए हैं, और मिशन मौसम के तहत 50 और जुड़ने वाले हैं, यानी अगले 2 साल में हम 100 रडार तक पहुंचेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में अग्निशमन और आपात सेवा विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री के निर्देश पर अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG का गठन किया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश के 10 जनपदों में इसकी स्थापना की तैयारी पूरी कर ली गई है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की 350 तहसीलों में से 296 तहसीलों में 326 अस्थायी अग्निशमन केंद्र संचालित हैं। इसके अलावा 26 नए केंद्र लोकार्पण के लिए तैयार हैं, जबकि 25 केंद्रों का निर्माण कार्य जारी है। 47 अन्य प्रस्तावित केंद्रों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। मंत्री ने शेष तहसीलों में भी जल्द अग्निशमन सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। श्री योगी ने हाईराइज भवनों के लिए आवश्यक उपकरणों और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने अस्पतालों, होटलों, स्कूलों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और बहुमंजिला भवनों में नियमित फायर ऑडिट व सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने फायर NOC प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने पर बल दिया। साथ ही अग्नि मित्र और अग्नि सचेतक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित करने के निर्देश भी दिए। समाचार कक्ष से मैं अरुण।
1: एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग और खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की भी समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा कल सकुशल संपन्न हो गई। यह परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में आज और कल भी आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
5: यूपी पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 परीक्षा दो पालियों में राज्य की 1183 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। केंद्रों पर परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए स्थायी मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते समय किराए में 50% की छूट प्रदान की जा रही है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 10 जून तक गोरखपुर से लखनऊ के बीच 4 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: राज्य में तेज धूप, भीषण गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश

देश में कल से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना व्यक्त की है। पूर्वी हिस्सों में कल भी तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को किया रेखांकित, कहा देश में हुए बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा है गरीब कल्याण और वंचित वर्ग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने लखनऊ के मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित हुए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र को बताया राज्य के लिए बेहद लाभकारी। प्रदेश के अग्निशमन और आपात सेवा विभाग में गठित किया जा रहा है विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG। मुख्यमंत्री ने विभागीय बैठक में SRG गठन की स्थिति की समीक्षा की। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न, आज और कल भी दो पालियों में आयोजित हो रही हैं परीक्षाएं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह। नई सुबह की सुनहरी किरणें आपके जीवन में खुशियों की नई रोशनी लेकर आए। चिड़ियों की चहचहाहट, ठंडी हवाओं का स्पर्श और मुस्कुराती हुई सुबह के साथ आपका स्वागत है कार्यक्रम आज सुबह में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा और आज के सौ खूबसूरत शानदार सफर में मेरे साथ हैं
3: आपकी रेडियो दोस्त श्रद्धा। कीजिए स्वीकार हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। रिंकी, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है ना, तो कहते ना कि हमने ध्यान दिया ना कि सुबह के समय कितना खास होता है।
2: बहुत खास होता है और देखिए आज का तो खूबसूरत समय भी था क्योंकि जब हम लोग सुबह निकले तो आसमान बादलों से ढका हुआ था, ठंडी हवा भी चल रही थी।
3: हाँ, तेज हवा चल रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था।
2: कुछ जगह तो बारिश भी हुई।
3: जी भाई, तो और भी अच्छी बात है
2: भाई, सुकून मिला। जो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी ना, तो आज सुबह का जो मौसम था उससे राहत तो हुई। और देखिए ये जो खूबसूरत सी सुबह थी इसने एक संदेश दिया, पता है क्या?
3: हाँ,
2: इसने संदेश दिया कि चाहे जितनी भी समस्या जीवन में हो, एक नई सुबह जब आती है तो वो सब कुछ बदल कर रख देती है।
3: हाँ, जैसे मन में नए विचार आते हैं।
2: जी हाँ,
3: और यही कारण है कि ना कई बड़े विचार अच्छे जो होते हैं ना उनकी शुरुआत सुबह ही होती है, तो क्यों ना हम भी अपने श्रोताओं को आज का सुविचार बता दें।
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और देखिए आज का जो सफर है इसमें हम ढेर सारी जानकारियां अपने श्रोताओं को देंगे, गीत संगीत भी सुनाएंगे और हम दोनों ढेर सारी बातें भी करेंगे क्योंकि यही तो मौका होता है जब हम अपने श्रोताओं से

0: देखते हैं और उनसे बातें करते हैं और इसी के साथ हम दोनों भी बातें कर लेते हैं,
1: खूब सारी बातें करते हैं।
0: लेकिन जैसे आपने कहा कि सुविचार के साथ शुरुआत की जाए, तो भाई ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही और आपकी कोई भी बात हम कभी नहीं टालते हैं। तो चलिए अपने श्रोताओं को आज का सुविचार बता देते हैं। तो दोस्तों, आज का सुविचार कहता है कि सफल वही होता है जो परिस्थितियों का इंतजार नहीं करता, बल्कि उन्हें अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है।
1: बिल्कुल रिंकी, बहुत ही सुंदर विचार। अक्सर हम सोचते हैं कि सही समय आएगा तब कुछ नया करेंगे,

0: लगता है जो माहौल है उसमें ढालते हुए अपनी तरफ इनका रुख मोड़ते हैं ताकि जो हम चाहते हैं वैसा हो सके।
1: हाँ, तो क्यों ना इस अवसर का स्वागत मुस्कुराकर किया जाए। अगले आधे घंटे तक हम आपके साथ रहेंगे रोचक जानकारियों और प्रेरक विचारों के साथ। लेकिन भाई अब एक गीत भी सुना दिया जाए ना रिकी।
0: बिल्कुल, देखिए ना अभी कहा ना सही समय का इंतजार नहीं करना चाहिए बल्कि समय को अपने हिसाब से बना लेना चाहिए। तो खूबसूरत सा मौसम था आज, खूबसूरत सी बातें भी हो गई, खूबसूरत सा नगमा भी हो जाए, फिर कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, है ना।
1: जी हाँ, और आप भी अपने चाय के कप के साथ तैयार इस गीत के लिए।

0: जी हाँ, दीवाना हुआ बादल, आज आसमान में बादलों को देखकर कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा था। खूबसूरत सा नगमा भी आपने सुना, कश्मीर की कली फिल्म से इसे हमने लिया था और इस गीत में आवाजें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की।
1: भाई रिंकी, गीत तो हमने सुनवा दिया अपने श्रोताओं को, मनोरंजन तो हमने कर ही दिया ना, लेकिन अब कुछ जानकारियां भी दे दी जाए।
0: बिल्कुल,
1: आज का दिन क्यों खास है, क्यों मनाया जाता है, आज कौन कौन से दिवस हम मनाते हैं।
0: जी बिल्कुल, और हमारे श्रोता इंतजार करते हैं कि भाई आज सुबह कार्यक्रम में हमें मनोरंजन तो मिलेगा ही, जानकारियाँ भी मिलेंगी। तो चलिए अब रुख करते हैं इतिहास की ओर और दिवस की ओर कि आज कौन कौन सा दिन है ना।
1: जी हाँ, तो आज मनाया जाता है विश्व प्रत्यापन दिवस। ये दिन उत्पादों और सेवाओं में सुरक्षा और गुणवत्ता को प्रमाणित करने के महत्व पर जोर देता है।
0: जी हाँ दोस्तों, और इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य है उत्पादों, सेवाओं और प्रणालियों में गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले प्रत्यायन के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना।
1: और आज मनाया जाता है कोरल ट्रायंगल दिवस। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, विशेष रूप से मूंगा चट्टानों के संरक्षण के लिए ये दिवस आज मनाया जाता है।
0: और श्रद्धा, अपने श्रोताओं को बता दे, आज अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस भी मनाया जाता है और इसकी शुरुआत साल 2007 में हुई थी। मानव सभ्यता के विकास के साथ आम आदमी की जिंदगी में दस्तावेज यानी कि जो अभिलेख है उनका महत्व बढ़ गया। देखिए हर जगह हमारा पहचान भी कागज एक अभिलेख है वो, है ना। और हर आदमी अपने दैनिक जीवन में अभिलेखों को सहजता और संवारता है। ये अभिलेख हमारे राशन कार्ड हो सकते हैं, बैंक पासबुक या डायरी, कुछ भी हो सकता है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाया जाता है।
1: भाई ये दिवस तो हमने बता दिया, और पता है आज बच्चों का भी पसंदीदा एक दिवस है, आज मनाया जाता है डोनाल्ड डक दिवस।
0: अच्छा
1: जी हाँ, डिज्नी के मशहूर कार्टून चरित्र डोनाल्ड डक के जन्मदिन की याद में।
0: और मैं आपको बताऊं श्रद्धा, डोनाल्ड डक जो ये कार्टून है ना, ये मेरा भी बहुत फेवरेट है।
1: जी हाँ
0: हमेशा से रहा है। और एक और आज देखिए, बिरसा मुंडा स्मृति दिवस भी आज मनाया जाता है। भारत में महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और जननायक बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि आज होती है, यानी 9 जून को मनाई जाती है और इसे बिरसा मुंडा स्मृति दिवस के नाम से जाना जाता है।
1: जी हाँ, और आज मनाया भी जाता है राष्ट्रीय फोर्क लिफ्ट सुरक्षा दिवस। हर साल इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि गोदामों, कारखानों और निर्माण स्थलों में फोर्क लिफ्ट में सुरक्षित संचालन और ऑपरेटरों की ट्रेनिंग के महत्व को बढ़ाना है।
0: जी बहुत खूब, बहुत सारी जानकारियाँ आज श्रद्धा समेट के लाई हैं अपने साथ, है ना।
1: जी हाँ, और रिंकी कहते हैं ना कि आज ही के दिन सन 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था।
0: जी हाँ, बहुत ही खास दिन है भारत के इतिहास में आज का। और 9 जून 1964 का वो दिन था जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने उन्हें इस पद की शपथ दिलाई थी।
1: जी हाँ,
0: तो ये तो थी इतिहास की बातें, है ना। और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को ये जो जानकारियां हैं ये बहुत अच्छी भी लगी होंगी, क्योंकि
1: हाँ।
0: हम खोज कर ढूंढ कर लाते हैं उनके लिए ऐसी जानकारियां जो
1: उनके ज्ञान में भी वृद्धि हो। और कहते हैं ना, चलते फिरते आप जब सुनते हैं ना तो वो चीज़ें दिमाग में बस भी जाती हैं।
0: जी हाँ, और हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हमारे जो उद्देश्य है इन्फोटेनमेंट, उसको आप तक पहुंचाएं, यानी कि जो मनोरंजन है उसके साथ साथ जानकारियां, इन्फॉर्मेशन भी आप तक पहुंचे। तो जानकारियां पहुंच चुकी हैं श्रद्धा।
1: जी हाँ, अब तो बस गीत की बारी है,
0: एंटरटेनमेंट का समय है। तो एक खूबसूरत सा नगमा पहुंच रहा है आपके रेडियो सेट पर, इसे एंजॉय कीजिए सुबह सवेरे चाय की चुस्कियों के साथ और बने रहिए हमारे साथ।
2: हाल

0: रिंकी, इतने से प्यारे से गीत के बाद ना कितना अच्छा लग रहा है ना कि मौसम की बात भी करनी है हमें और मौसम के ऊपर ही हमने गाना भी सुनवा दिया।
1: बिल्कुल, लेकिन अपने श्रोताओं को बता दें, खूबसूरत सा नगमा आप सुन रहे थे फिल्म अनोखी अदा से और इस गीत में आवाज थी किशोर कुमार की। तो देखिए, आज जो भी गाने श्रद्धा ढूंढ के आप लाई है ना, जो सुना रही है ना, इसमें मौसम की बात बहुत शिद्दत से शामिल की गई है कि मौसम सुहाना है ना, बादल और बारिश, इन सब चीज़ों की लग रहा है आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही है कि बारिश का मौसम शुरू हो जाए।
0: भाई, गर्मी की जो तपन है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रही, ऐसा लगता है थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए।
1: अभी अभी मैंने कहा था ना कि जब जीवन में कोई समस्याएं होती है तो हमेशा विश्वास बनाए रखना चाहिए कि सुबह होगी और समय लेगा। तो देखिए, इस तपन से आराम मिलेगा, लेकिन मौसम के बारे में जानकारी तो हमें अपने श्रोताओं को देनी होती है ना।
0: जी हाँ, क्योंकि मौसम की जानकारी के बिना दिन थोड़ा अधूरा सा लगता है जी। तो आइए बात कर लेते हैं हमारे सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद दानिश जी से। नमस्ते सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम आज सुबह में।
1: मौसम कैसा रहेगा?
2: मौसम की बात करें तो मौसम आज साफ रहेगा
1: जी।
2: थोड़ा तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी आने वाले अगले 3-4 दिनों के लिए
1: जी सर,
2: 3 दिनों के लिए। उसके बाद लखनऊ में बात करें तो 12 तारीख को छीटाकसी, थोड़ा बादलों की आवाजाही के साथ थोड़ा बारिश की संभावना बनेगी। बाकी उससे पहले तक थोड़ा सा तापमान 1-2 डिग्री अभी यहाँ से बढ़ेगा,
1: यानी भी गर्मी और परेशान करेगी,
2: थोड़ी गर्मी और परेशान करेगी। तो 3 दिन उसके बाद थोड़ा सा तापमान में गिरावट आएगा, हालांकि उमस थोड़ी बढ़ गई है जिससे उमस वाली गर्मी अभी लगेगी। और बात करें तो प्रदेश में तो 11 तारीख से प्रदेश में जो तराई बेल्ट है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़ा बारिश का सिलसिला शुरू होगा और सदर्न पोर्शन है जो बुंदेलखंड रीजन है, प्रयागराज डिवीजन है, वहां पर कल से लू की चेतावनी अगले 3 दिनों के लिए।
1: यानी कि श्रोताओं को गर्मी से भी बचना है और लू से भी बचना है, अभी थोड़ा

0: करना है कि मौसम में थोड़ी ठंडक आएगी, रुक कर। जी
1: जी
0: सर, सर आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते सर।
1: ओके धन्यवाद।
2: तो भाई रिंकी, मौसम का हाल भी हमारे श्रोताओं को पता चल गया है ना?
3: जी, और देखिए मौसम जो है वो पल पल बदल रहा है। भले ही अभी कुछ और इंतज़ार हमें करना पड़े कि बारिश आने का, लेकिन जो उसकी सुगबुगाहट है बारिश आने की, वो शुरू हो चुकी है। और ऐसे में बहुत ज़रूरत है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खान पान का तो ध्यान रखें ही,
2: बिल्कुल
3: नियमित जो हल्के योग है, व्यायाम है, वो भी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है।
2: हाँ, तो
3: भी
2: करते कुछ नहीं तो हम सुबह शाम टहलने तो ज़रूर जा सकते हैं।
3: जी हाँ, इससे शरीर ऊर्जावान रहता है और दिन भर काम करने की क्षमता भी बढ़ती है। आप फ्रेश फील करते हैं जिस दिन आप जल्दी उठ जाए, काम तो आपके जल्दी खत्म ही हो जाते हैं।
2: जी हाँ, और खुद में भी बहुत अच्छा लगता है।
3: जी हाँ, लेकिन एक और चीज देखिए कहना चाहेंगे कि मौसम चाहे जैसा हो, अगर मन सकारात्मक हो तो हर दिन सुहाना लगता है।
2: बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात की, जो मन अच्छा होता है तो दिन अपने आप अच्छा हो जाता है।
3: और ऐसे में एक और चीज आपसे कहेंगे कि अपने मन में कोई बात मत रखिए। अगर आपके मन में कोई बात है तो उससे सामने वाले को कह दीजिए, उसे बता दीजिए, क्योंकि इससे पता है क्या होता है, आपका मन हल्का हो जाता है और जो सच्चाई होती है उस बात के पीछे की, वो कहीं ना कहीं निकल के सामने आ जाती है ना श्रद्धा?
2: जी हाँ, और इस तरह से मेल मिलाप भी बढ़ता है, मन की बातें कह लेने से मन हल्का भी हो जाता है।
3: तो इसलिए ये नगमा सुनिए, और अगर दिल में किसी के लिए जरा भी कोई बात है तो आज उसे साझा कर लीजिए और देखिए आप अच्छा महसूस करेंगे और
2: तो चीजें सकारात्मक हो जाएंगी। कह दूं तुम्हें? बिल्कुल
4: कह दूं तुम्हें।
5: हाँ,
4: या चुप रहूं
5: ना,
4: दिल में मेरे आज क्या है?

0: पिंकी कह देना चाहिए ना, कितना अच्छा लग रहा नहीं गाना सुनकर भी।
1: बिल्कुल, जो दिल में हो वो बात हमेशा कह देनी चाहिए। मैं तो हमेशा इसी बात का फेवर करती हूँ कि मन में कुछ ना दबा के रखे ना छुपा के रखे, सामने वाले को पता तो चले कि आप क्या सोच रहे हैं। हो सकता है कि आप जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हो और वो आपको सही कर दे और रिश्ते मधुर हो जाए।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि किशोर कुमार और आशा भोसले एक दूसरे से कह रहे थे फिल्म दीवार में।
0: जी बिल्कुल। और पता है रिंकी, मौसम कैसा भी हो अच्छा, और इस समय जो छुट्टियां चल रही है ना, तो उसमें हम सभी लोग कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हैं, और बड़े लोग तो बहुत एंजॉय करते हैं, बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं।
1: लगता है आपने कुछ बड़े लंबे लंबे प्लान बना लिए बाहर
0: जाने के। हाँ, लेकिन पता है क्या होता है कि बच्चे जो है ना बाहर की चीजें बहुत खाते हैं जो उन्हें नुकसान भी कर जाती है। तो जब आप बच्चों को लेकर घूमने जाए तो उनके खाने पीने का ध्यान रखें ताकि बच्चे एंजॉय कर सके और बीमार ना हो।
1: देखो, खाने पीने की बात की तो मैं आपको बता दूं, देखो जून चल रहा है ना, जून की शुरुआत से ही बाजार में आम आ चुके हैं और अब विश्व प्रसिद्ध दशहरी आम भी मार्केट में आ चुका है। मुझे लगता है
0: पानी आ जाता है मुंह में।
1: मेरी तरह हमारे जो श्रोता है उन्हें भी दशहरी आम का इंतजार रहता है। और देखिए, खाने पीने में कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए, अच्छा खाइए, स्वस्थ खाइए, है ना।
0: हाँ, और स्वस्थ रहिए।
1: हाँ, साफ सुथरा खाइए। तो देखिए, मौसम जो है दशहरी आमों का वो आ चुका है और मार्केट में खूब सारे आम है, तो बेहतर है कि आप मौसमी जो फल हैं उनका सेवन करें, उसमें आम खाएं, बच्चों को खिलाएं, बजाय इसके कि जो फास्ट फूड बच्चे खाते हैं और उन्हें नुकसान करता है, उन्हें उन तक ना पहुंचाए, है ना।
0: और पता है कि आम खाने से तो मुंह मीठा होता है, आम देने से भी मुंह मीठा होता है ना, और रिश्ते भी हमारे मधुर होते हैं।
1: बिल्कुल, तो मैं इंतजार कर रही हूँ, फिर आप मुझे एक पेटी
0: बिल्कुल भिजवा रहे हैं
1: जी। तो भाई देखिये, श्रोताओं के सामने कह रही हैं आप, तो मैं इंतजार करूंगी। और इसके साथ ही एक और बात अपने श्रोताओं से कहना चाहेंगे कि आप अपने चेहरे पर मुस्कान ज़रूर बनाए रखें, क्योंकि इससे नई ऊर्जा आती है।
0: जी हाँ, और एक बात और कह रही है ना कि हमें पेड़ पौधे इस मौसम ज़रूर लगाने हैं ताकि जब बारिश का मौसम आए तो वो पेड़ पौधे बड़े हों, हरियाली बढ़े।
1: बिल्कुल सही। और जब आप साथ होती है ना तो हम बस मन गुनगुनाने लगता है और खूबसूरत से नगमे अपने आप ही जबान पर आ जाते हैं, तो एक नगमा चलते चलते अपने श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म गीत का ये खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर के स्वर में।
1: और श्रोताओं, अब इसी गीत के साथ वक्त हो चला है आपसे अनुमति ले लें आज के कार्यक्रम से, और वादा करते हैं फिर होगी किसी रोज आपसे मुलाकात।
0: तब तक के लिए दीजिए अनुमति रिंकी और श्रद्धा को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह। श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के साथ अब नमस्ते लखनऊ से भी अनुमति दीजिए। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटी मारिवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गृह मंत्रालय ने कहा है ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लियरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
5: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
6: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और

0: ₹5 का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की।

0: इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
1: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
2: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है। बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाके ठीक ठाक रह रहा हूँ।
1: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री HD कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में MT मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद

0: 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारती फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, TMC में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट NDA के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक GPS से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में MT मरवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया।

0: By Nation series at Dambulla this morning. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी वजीर दाखला आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट बंदोबस्त के निजाम का आगाज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के वुजराए ज़राअत की 5 रोजा मीटिंग आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हो रही है। मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाए हुरमुज के जनूब में आग लगने के वाक़े के बाद बहरी जहाज MT मेरीवैक्स में सवार सभी 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही जंगबंदी की खिलाफवर्जी की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने की तंबीह भी की है। अमरीका की वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज सुबह दाम्बुला में सह मुल्की सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट निजाम का आगाज करेंगे। इस पहल से स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के तई सरकार के अहद की अक्कासी होती है। इसका मकसद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सरहदी तिजारत और मुसाफिरों की नकलो हरकत के शोबे में सलाहियत, शफाफियत और सिक्योरिटी को बढ़ाना है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम का आगाज जदीद तर्ज के तकनीक पर मबनी सरहदी बंदोबस्त निजाम की सम्त एक तारीखी कदम होगा। उमूर दाखिला की वजारत ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म तिजारत में सहूलत, कनेक्टिविटी, कौमी सिक्योरिटी और 2047 तक विकसित भारत के नजरिए के ऐन मुताबिक है। लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम मुख्तलिफ लैंड पोर्ट्स में कामकाज को एक मुत्तहदा निजाम में मरबूत करने के लिए तैयार किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए महफूज और लॉजिस्टिक्स के बरवक्त तबादले, नीज इंजिबाती जानकारी फराहम करने में सहूलत होगी। इस तरह हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर पहले से काम करने वाले डिजिटल निजाम के साथ लैंड पोर्ट्स को हम आहंग किया जा सकेगा। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: बैनुल अक्वामी ब्रिक्स ज़रई कॉन्फ्रेंस आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हो रही है। इसमें 21 मुल्कों के वुज़राए ज़राअत, आला अहदेदार और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। इनमें ब्राज़ील, चीन, रूस और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। मज़ीद तफसील हमारे नामनिगार से।
3: ये कॉन्फ्रेंस 13 जून तक जारी रहेगी। ज़रई वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के साथ इसका आगाज होगा। अहम मौजूदात में खुराक की यकीनी फराहमी, ज़रई इख्तरा, आबो हवा के लिए साजगार खेती, ज़रई तिजारत और छोटे किसानों को बाख्तियार बनाना शामिल है। 12 जून को ज़राअत के वज़ीरों के माबेन खुसूसी मुज़ाकरात होंगे, जिसमें छोटे किसानों, ख़वातीन और नौजवानों के ज़रिए खुराक की यकीनी फराहमी पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। 13 जून को ब्रिक्स मुल्कों के वज़ीरों की मीटिंग होगी। ज़रई इश्तराक और इख्तरा के बारे में एक मुश्तरका दस्तावेज़ भी तैयार किए जाएंगे। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: स्टील महकमे के मरकजी वजीर HD कुमारस्वामी और शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कल रात विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में उस जगह का दौरा किया जहां हादसा पेश आया था। जनाब कुमारस्वामी ने मरने वाले कारकुनों के कुनबों से ताजियत का इजहार किया है और मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 25-25 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मुतासिरा कुनबों को स्टील प्लांट क्वार्टर्स में ही रहने की इजाज़त होगी। उनके बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी और हर कुनबे के एक फर्द को मुस्तकिल मुलाजमत दी जाएगी। जनाब कुमारस्वामी ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मरने वालों के कुनबों के लिए 2-2 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से ये इमदाद दी जाएगी। हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए स्टील महकमे की मरकजी वजारत ने एक खसूसी कमेटी बनाई है जो दीगर स्टील प्लांट्स के माहरीन पर मुश्तमिल है। कल विशाखापट्टनम स्टील

प्लांट में आग लगने के हादसे में 8 अफराद की मौत हो गई थी जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। इनमें 2 की हालत नाजुक बताई गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग लगने के इस वाकये में लोगों की मौत होने पर रंजोगम का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नजरिया साज क्यादत के तहत सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के उसूलों के तहत गुज़श्ता 12 बरसों में भारत में अहम तब्दीली आई है।

0: रखने की इजाजत मिल जाती है। सदर ट्रंप ने हर H-1B कारकुन के लिए $1,00,000 सालाना की फीस का जो हुक्म दिया था उससे वीजा इस्लाहात और नई जरूरियात के बारे में गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो गई थी। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि आसाम की मशहूर GI टैग वाली तेजपुर लीची बैन अल-अक़वामी मार्केट में पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि ज़रई और डिब्बाबंद गजाई अशिया की बरामद के फरोग से मुतालिक अथॉरिटी APEDA की मदद से तेजपुर लीची की पहली बरामदी खेप दुबई के लिए रवाना हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि इस पहल से खत्ते की लीची को आलमी सतह पर पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर कीमत हासिल होने में सहूलत होगी और शिमाल मशरकी भारत की ज़रई अशिया के लिए नए मौके पैदा होंगे। मर्दों के क्रिकेट में आज श्रीलंका में सहमुल्की ए सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। तिलक वर्मा भारतीय टीम के कप्तान हैं। इंडिया ए का अगला मुकाबला जुमेरात को अफगानिस्तान ए से होगा। इस सीरीज के सभी मैच दाम्बुला में खेले जाएंगे। फाइनल मैच इस महीने की 21 तारीख को होगा। इंडिया ए टीम में भारतीय क्रिकेट के कुछ उभरते हुए खिलाड़ी शामिल हैं जिनमें वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, ऋतुराज गायकवाड़, अनुकूल रॉय, आयुष बदोनी, अरशद खान और अंशुल कंबोज शामिल हैं। खवातीन क्रिकेट में बर्तानिया में कार्डिफ के मकाम पर खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत ने अपने पहले तैयारी मैच में वेस्ट इंडीज को 26 रन से हरा दिया। वेस्ट इंडीज की टीम ने टॉस जीतकर भारत से बल्लेबाजी करने को कहा और हरमनप्रीत कौर की जेर कमान भारतीय खवातीन टीम ने 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की टीम 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। अब भारत अपने अगले तैयारी मैच में कल मेजबान इंग्लैंड का सामना करेगा। T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला इतवार को एजबेस्टन में रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। जनूबी फिलीपींस में 7.8 शिद्दत का जलजिला आने से कम 35 अफराद की मौत हो गई जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हुए। इस जलजिले के तनाजुर में शुरू में फिलीपींस, इंडोनेशिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया में सुनामी वार्निंग जारी की गई। अलबत्ता बाद में इसे या तो मनसूख कर दिया गया या इसकी सतह कम कर दी गई। फिलीपींस के हुक्काम के मुताबिक इस कुदरती आफत की वजह से तकरीबन 10,000 कुनबे बेघर हो गए हैं। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद।
1: शुक्रिया शगुफ्ता। रोजनामा इनकलाब ने मगरबी एशिया में जारी कशीदगी से मुतालिक खबर को नुमाया किया है। अखबार की सुर्खी है, भारत ने अपने शहरियों से ईरान छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी की। रोजनामा प्रताप ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए पैगाम को नुमाया किया है जिसमें वज़ीर आज़म ने लिखा है कि मुल्क ने गुज़िश्ता 12 बरस में बहुत सी मुसबत तब्दीलियाँ देखी हैं जिनकी जड़ें गरीबों के फलाह बहबूद में पैवस्त हैं। वज़ीर आज़म ने DBT, स्वच्छ भारत, PM आवास योजना और आयुष्मान भारत जैसे इकदाम का ख़ास तौर से जिक्र किया। अखबार की एक और सुर्खी है, सरकार कबायली इलाकों की तरक्की पर खास ध्यान दे रही है, मरकजी वजीर किरण रिजिजू का बयान। अखबार की बैन अल-अक़वामी सुर्खियाँ इस तरह हैं, फिलिपाइन में 7.8 शिद्दत का जलजिला, 32 अफराद की मौत, एशिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सुनामी की वार्निंग।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। मरकजी वजीर दाखिला आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट बंदोबस्त के निजाम का आगाज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए ज़राअत की 5 रोज़ा मीटिंग आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में शुरू हो रही है। मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाई हुरमुस के जनूब में आग लगने के वाक़े के बाद बहरी जहाज MT मेरीवैक्स में सवार सभी 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है लेकिन साथ ही जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने की तंबीह भी की है। अमेरिका की वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज सुबह दाम्बुला में सह मुल्की सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आपको बता दें, यदि आपको खाना निगलने में परेशानी होती है या खाद

और पीते समय बार बार खांसी आती है तो ये डिस्फेजिया का संकेत हो सकता है। डिस्फेजिया क्या है, इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में जानने के लिए सुनिए हमारे चैनल यानी आकाशवाणी के FM रेनबो 100.7 MHz पर विशेष फोन इन कार्यक्रम बुधवार दिनांक 10 जून 2026 को प्रातः 11:02 से, जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन देंगे आपकी जिज्ञासाओं के सरल और उपयोगी उत्तर। तो सुनना ना भूलें हमारे चैनल यानी FM रेनबो 100.7 MHz पर नेशनल डिस्फेजिया अवेयरनेस पर विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारा फोन नंबर है 0522-223-8845 या फिर आप डायल कर सकते हैं 0522-223-8852। याद रखिए, सही जानकारी बेहतर स्वास्थ्य आकाशवाणी के साथ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा। कहते हैं कि कभी कोई धुन दिल को सुकून देती है तो कभी किसी गीत के बोल यादों के झरोखे खोल देते हैं। संगीत की यह खूबसूरती है कि ये बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। इन्हीं सुरों, भावनाओं और आपकी प्यारी प्यारी फरमाइशों को लेकर हम हाजिर हैं कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत में। अगले आधे घंटे तक कारवा चलेगा खूबसूरत गीतों का, आपकी चिट्ठियों मेल्स की महक का, और संगीत का तो वो जादू ही ऐसा खास होता है जो हर दिल को छू लेता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले मेल से, जो हमें भेजा है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप ने। श्रोताओं, एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन्निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और बेबी नुसरा खान का भी मेल आया है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। एक मेल हमारे पास मालियान सरधना से पहुंच चुका है। अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम जैन सरधना मेरठ से ही, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन का भी मेल हम तक आ चुका है। और आप में से एक श्रोता की फरमाइश है अनुरोध फिल्म का एक गीत सुनवा दीजिए किशोर कुमार की आवाज़ में। तो चलिए आपकी ही फरमाइश से कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। और जिन श्रोताओं ने हमें अभी ट्यून किया उन्हें हम ये बता दें कि आप भी अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको बस मेल करना है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com पर। हम कर रहे हैं आपके संदेशों का इंतज़ार, आपकी फरमाइश का इंतज़ार। सुनिए खूबसूरत सा नगमा जो पहुँच रहा है आपके रेडियो सेट पर।

जी हाँ दोस्तों, यही कुछ लोग जो याद रह जाते हैं, जिंदगी भर साथ रहते हैं यादों में एक मुस्कुराहट बनकर। दोस्तों, संगीत की यही खासियत है कि कुछ पल के लिए सारी भागदौड़ थम सी जाती है और मन सुरों के साथ बहने लगता है। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगला मेल जो हमें भेजा है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा ने। इन्होंने फरमाइश की है फिल्म दो चोर का एक गीत सुनवा दीजिए किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ में। तो आपकी फरमाइश पूरी करेंगे, लेकिन कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने हम तक अपनी मेल पहुंचाई है और इनके नाम है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। एक मेल हमारे पास आई है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से। इसे भेजा है मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री ने। जामा मस्जिद रोड से मेल आई है हाजी इसहाक

लोला मानी की, मोहम्मद उमर कासमी की और हाजी अय्यूब शेरी की। तो आप सभी को एक खूबसूरत सा नगमा सुनवा देते हैं जो आपने फरमाइश की है, दो चोर फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

जी हाँ श्रोताओं, चाहे दूर रहे चाहे पास रहे, रेडियो के उस पार रहे या रेडियो के इस पार रहे, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और कामना करते हैं कि आप भी हमारे साथ यूं ही बने रहेंगे। वक्त है एक छोटे से अंतराल का, अभी वापस आते हैं।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में। कमाल है।

0: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: स्वागत है एक बार फिर आप सभी का कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत में। दोस्तों, सुरों की इस महफिल में आपका साथ हमारे लिए बहुत अनमोल है। आपकी फरमाइशें ही इस कार्यक्रम को खास बनाती हैं। तो देर मत कीजिए, हम तक पहुंचाइए अपनी फरमाइश आपके पत्र आपके मेल @gmail.com पर। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं अगला मेल जो हमें भेजा है मोनू सेठ जी ने। और इन्होंने लिखा है कि माता पिता को घूम घुमाकर सब कुछ जीत लिया और हम सभी अगर माता पिता की सेवा कर लेते हैं तो भगवान का आशीर्वाद हमें मिल ही जाता है, क्योंकि माता पिता ही भगवान हैं। तो भाई मोनू सेठ जी, बहुत अच्छी बात कही और ये बात हम सब पर लागू होती है बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप पर होती है। और माता पिता से आगे इस धरती पर कुछ भी नहीं है। ये मेल खालिसपुर भेल अमेठी से हमारे पास आई थी। और जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो, विलिस डिकैस्ट्रो का मेल भी हम तक पहुंच चुका है। जनकपुरी सहारनपुर से इन्होंने ये मेल किया है। और एक मेल ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से आया है। इसे भेजा है रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया और इनकी बहू निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, बाबू बेद बाबू कठेरिया और समस्त कठेरिया परिवार ने। लिखते हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा मेल शामिल कर लीजिए। तो देखिए, आपका इंतज़ार होता है ख़त्म, आपका मेल शामिल हो चुका है कार्यक्रम में। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आप आगे भी अपना प्यार बनाए रखेंगे। दतरेंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का भी मेल आया है। आपको बता दें, आप में से ही एक श्रोता की फरमाइश थी लावारिस फिल्म का एक गीत सुनवा दीजिए किशोर कुमार की आवाज़ में। तो लीजिए आपने की फरमाइश और हम करते हैं उसे पूरा। आप तक पहुंच रहा है खूबसूरत सा नगमा किशोर कुमार की आवाज़ में।

दोस्तों, संगीत वो भाषा है जिसे समझने के लिए शब्दों की जरूरत ही नहीं होती, बस एक एहसास चाहिए और एक सुनने वाला दिल। चलिए बढ़ चलते हैं फिर इसी बात से अगले मेल की तरफ, जो हमें भेजा है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जसी, सीता और गीता ने। एक मेल कांकेर संबलपुर से आई है, फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव ने ये मेल किया है। संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे का भी मेल हम तक पहुंच चुका है। ग्राम कुरियारपुर सैंडी हरदोई उत्तर प्रदेश से मुदित राजपूत, विजेंद्र पाल राजपूत, अनवी राजपूत, सुनीता राजपूत, शोभा राजपूत, दीपा राजपूत, रामफेर, कपिल, प्रांजल, रमा, अनन्या राजपूत और कृष्णा राजपूत भी मेल कर रहे हैं। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे का मेल हम तक पहुँच चुका है। वहीं भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी भी मेल कर रहे हैं। तो आप सभी में से एक श्रोता की फरमाइश है एक खूबसूरत सा नगमा मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनवाने का। तो लीजिए, आपकी फरमाइश करते हैं पूरा और आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दो रास्ते का एक खूबसूरत सा नगमा।

खूबसूरत सा नगमा आप सुन रहे थे फिल्म खेल खेल में से। इस गीत में आवाज़ें थी आशा भोसले और किशोर कुमार की। आपको बता दें इस गीत की फरमाइश किन श्रोताओं ने की थी, तो श्रोताओं इस गीत की फरमाइश की थी पंचसरा ग्राम से अनिल, महेंद्र, अंकित, आशु ने, और इसके साथ ही बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव ने। एक मेल अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और गवाया मल्होत्रा का भी हमारे पास आया था इस गीत के लिए। और श्रोताओं इसी खूबसूरत से नगमे के साथ अब समय हो चला है कार्यक्रम को।

0: यहीं विराम देने का। फिर होगी आपसे किसी रोज मुलाकात, तब तक अपना रखिए खूब ख्याल। नमस्कार। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हरदोई और ललितपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हरदोई जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आकाश शुक्ला का।
2: हरदोई पहुंचे मंत्री नितिन अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी होने के सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 10% की बढ़ोतरी की जानकारी हुई है। उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं कि खड़ी देशों में पिछले कुछ समय से युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के कारण जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, जो रिसोर्सेज हम बाहर से लेते हैं, उसमें एक भारी कमी भी देखने को मिल रही है। और इस बीच सिर्फ हमारा देश नहीं बल्कि अन्य सभी देश एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हैं, जो कि एक बड़ा कारण है दामों को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा,
3: मैं उपभोक्ताओं से ही आग्रह करूं कि इस वक्त संकट का समय है, हमें इस संकट की घड़ी में देश के साथ खड़ा होना चाहिए और निश्चित तौर पर जब ये संकट खत्म होगा तो निश्चित तौर पर सरकारें अपना जो निर्णय लेंगी वो आपके सामने होगा।
2: प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत लगभग 1,43,000 शिक्षा मित्रों की मानदेय वृद्धि के उपलक्ष्य में बीते दिनों एक भव्य शिक्षा मित्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह राज्य स्तरीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमा में उपस्थिति में गोरखपुर स्थित योगी राज्य बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र में सम्पन्न हुआ। इस दौरान शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रूपए से बढ़ाकर 18,000 रूपए प्रति माह किए जाने की घोषणा को ऐतिहासिक कदम बताया गया। कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद हरदोई के रसकान प्रेक्षागृह में भी किया गया, जहाँ जिला स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्षा प्रेमावती, विधायक माधवेन प्रताप सिंह रानू, नगर पालिका अध्यक्ष सुख सागर मिश्रा मधुर तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाधिकारी अनुनय झा, अपर जिलाधिकारी प्रियंका सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट संस्कृत त्रिवेदी और वरिष्ठ पत्रकार अभय शंकर गौड़ उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप ज्वलन के साथ हुई। इसके बाद स्कूली बच्चों द्वारा सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अजीत सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए शिक्षा मित्रों को मानदेय वृद्धि पर बधाई दी और विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। हरदोई जिले में धान की सीधी बुआई DSR तकनीक किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। पिछले खरीफ सत्र में 800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में हुई सीधी बुआई से औसतन 65.70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त होने के बाद इस बार 5,000 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विकास खंड 52 कोथावा समेत अन्य क्षेत्रों में अब तक करीब 200 हेक्टेयर में धान की की जा चुकी है। 52 क्षेत्र के कई किसानों ने बड़े पैमाने पर DSR तकनीक अपनाई है, जबकि कोथावा के ग्राम कुर्सी निवासी जयदीप द्विवेदी ने 30 एकड़ में धान की सीधी बुआई की है। उप कृषि निदेशक सतीश पांडे ने ग्राम नया गांव में किसान राहुल कुमार सिंह के खेत का निरीक्षण किया। यहां PR 126 प्रजाति की बुआई लकी सीडर मशीन से की गई। उन्होंने बताया कि सीधी बुआई से बीज, पानी और मजदूरी की बचत होती है, साथ ही फसल जल्दी तैयार होने से रबी की बुआई समय से हो जाती है। इस तकनीक से लागत में करीब 40-50% तक कमी आ रही है। निरीक्षण के दौरान कृषि विभाग की ओर से गन्ने की फसल में अंतः फसल के रूप में दी गई उर्द मिनी किट का भी अवलोकन किया गया। इस मौके पर कृषि विभाग के अधिकारी व किसान मौजूद रहे। मशहूर फिल्म अभिनेता आमिर खान के बड़े भाई और अभिनेता फैजल खान पिछले दिनों हरदोई की शाहबाद तहसील स्थित अपने पैतृक गाँव अख्तियारपुर पहुँचे। उन्होंने तहसीलदार संध्या यादव से भी मुलाकात की और 1 महीने पहले लापता हुई उनकी माँ लल्ली देवी उम्र 71 वर्ष की तलाश में मदद की अपील की। फैजल खान ने यूपी में प्रस्तावित फिल्म सिटी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और फिल्म उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। जनपद पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन दहन के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी DDC की निगरानी में 4,183.104 किलोग्राम अवैध डोडा का विनिष्टीकरण कराया गया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा की अध्यक्षता में की गई। नष्ट किए गए मादक पदार्थों में थाना बिलग्राम दर्ज मुकदमा संख्या 453/21 के तहत बरामद 1683.304 किलोग्राम डोडा और थाना कोतवाली देहात के मुकदमा संख्या 544/19 में बरामद 2499.8 किलोग्राम डोडा शामिल है। कुल 4183.104 किलोग्राम मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब 6,27,46,560 रूपए आंकी गई है। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में गठित कमेटी द्वारा इन मादक पदार्थों को संडीला स्थित AV बायो मेडिकल वेस्ट सर्विस के इंसिनरेटर में नष्ट किया गया।

0: इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी माटन प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी हरपालपुर सत्येंद्र सिंह समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन का कहना है कि मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और अवैध कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: हरदोई जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं ललितपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार श्रीमाली का।
2: प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री एवं प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ललितपुर जिले में किए जा रहे विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं, कानून व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। तालबेट तहसील सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन किया और जिन विभागों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर पाया गया उन्हें एक माह के भीतर सुधार लाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के पारंपरिक और स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाए ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। उन्होंने विशेष रूप से चंदेरी साड़ी और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के प्रचार प्रसार तथा विपणन की व्यवस्था बेहतर करने पर बल दिया गया। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए, उन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाए तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। प्रभारी मंत्री ने जिले में बिजली आपूर्ति बाधित होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए विद्युत विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी विभागीय कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी जन प्रतिनिधियों को समय समय से उपलब्ध कराई जाए ताकि विकास कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित हो सके। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण अभियान की शुरुआत भी की। बैठक के दौरान यह जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में ललितपुर जिले को प्रदेश में 11वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस उपलब्धि पर प्रभारी मंत्री ने जिला प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि जनपद निरंतर प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों तथा आगामी जन जागरूकता अभियानों की जानकारी दी। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून से 21 जून तक जिले भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अभियान की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर की गई, जिसमें सभी विकास खंडों, नगर निकायों और ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया। अमृत सरोवर, तालाब, नदियों, नहरों तथा सड़कों के किनारे पौधे लगाए गए। वहीं 14 जून तक विशेष जनसंपर्क एवं जन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न वर्गों के लोगों से संवाद, स्वच्छता अभियान और जन समस्या समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून के बीच मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे, जिनमें सरकार उपलब्धियों और विकास कार्यों की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जाएगी। 14 से 16 जून तक सभी विकास में जन कल्याण मेले और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। 16 और 17 जून को विकसित भारत संकल्प सम्मेलन होंगे, जबकि 17 से 20 जून तक कलेक्ट्रेट परिसर में विकास प्रदर्शनी आयोजित कर विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों के लिए 18 और 19 जून को विशेष कृषि कार्यशालाएं आयोजित होंगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन सहित सभी ग्राम पंचायतों में योग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रात चौपालों का भी आयोजन होगा, जहां लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनका निस्तारण किया जाएगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 21 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समारोह में राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत सहित अन्य जन प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस दौरान लखनऊ में आयोजित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि हाई स्कूल के 10 तथा इंटरमीडिएट के 11 विद्यार्थियों सहित कुल 21 मेधावियों को 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। ललितपुर में आबकारी विभाग ने विशेष अभियान चलाकर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के निर्देशन और जिला आबकारी अधिकारी की निगरानी में संचालित इस अभियान के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान लगभग 70 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

0: कार्रवाई की गई। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि अवैध शराब के निर्माण बिक्री और परिवहन के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल में आज आपने सुनी हरदोई और ललितपुर जिलों की खबरें। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को हम बता दें, यदि आपको खाना निगलने में परेशानी होती है या खाते और पीते समय बार बार खांसी आती है तो ये डिस्फेजिया का संकेत हो सकता है। डिस्फेजिया क्या है, इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में जानने के लिए सुनिए हमारे चैनल यानी आकाशवाणी के FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेष फोन इन कार्यक्रम बुधवार दिनांक 10 जून 2026 को प्रातः 11:02 से। इसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन देंगे आपकी जिज्ञासाओं के सरल और उपयोगी उत्तर। सुनना ना भूले हमारे चैनल यानी FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर नेशनल डिस्फेजिया अवेयरनेस विरोध विशेष कार्यक्रम। हमारा फोन नंबर है 0522-223-8845 या फिर आप डायल कर सकते हैं 0522-223-8852। याद रखिए, सही जानकारी बेहतर स्वास्थ्य। आकाशवाणी के साथ आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है देश गान।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। पेश है उर्दू कार्यक्रम।
1: समिन, आज के उर्दू प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आकाशवाणी के रामपुर मरकज से आपकी मेजबानी प्रोग्राम आयशा राहत आपकी खिदमत में हाजिर है। आदाब। समिन बज़्म हर अहद, हर जमाने और हर दौर में अदब के ऐसे चाहने वाले हुए हैं कि जिन्होंने अदब से अपना ताल्लुक हमेशा कायम रखा। उन्होंने अदब की किसी ना किसी सिंफ से अपना जुड़ाव रखा और इससे हमेशा जुड़े रहे। समिन, कहा जाता है कि कहानी की उम्र उतनी ही है जितनी हजरत इंसान की, तो बेशक इसमें कोई दोराय नहीं, क्योंकि किस्से कहानियां हमेशा से ही लोग पसंद करते आए हैं और आज भी सुनना पसंद करते हैं। समीन, आज सिर्फ फर्क इतना आया है कि कहानियां अदब की मुख्तलिफ असनाफ के जरिए हमारे सामने आती हैं, चाहे वो ड्रामा हो, नावल निगारी हो या फिर अफसाना निगारी ही क्यों ना हो। आज इस सिंफ को बेहद पसंद किया जाता है और देखा जाता है कि अफसाने को लोग बहुत शौक से सुनते हैं के इस प्रोग्राम में। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बेहद खूबसूरत अफसाना, जिसका उन्वान है यतीमों का संगम, और अफसाना निगार हैं जनाब मोहम्मद यामीन बरकाती। तो आइए समात करते हैं उनका ये अफसाना।
2: बाबूजी, हम इतने रुपए नहीं लेंगे, साहिल मना नहीं करता, हम नहीं लेंगे, आखिर क्यों? बाबूजी भीख में एक या दो रुपया देते हैं, बहुत सखी हुआ तो 10-5 रुपए देते हैं, 100 रुपए कोई नहीं देता। जब हम 100 रुपए लेकर घर जाएंगे तो अम्मी जान समझेंगी कि हमने चोरी की है, इसलिए वो हमें मारेंगी। देखिए, हम 2 घंटे से मांग रहे हैं, मुश्किल से 20-25 रुपए होंगे, इसमें 1 रुपया 2 रुपए के ही सिक्के हैं, 5 या 10 रुपए का एक भी सिक्का या नोट नहीं है। अगर आपको ये रुपये देने ही हैं तो मेरे साथ घर चलिए और अम्मी के सामने दीजिए, तो हम अम्मी की पिटाई से बच जाएंगे। बेटा, तुम इतने समझदार हो, अच्छे माँ बाप की औलाद मालूम होती हो, फिर भी क्यों मांग रही हो? बाबूजी, हम सच कहते हैं, हमारे अब्बू अम्मी बहुत अच्छे हैं और हम भिखारी भी नहीं हैं, मगर हम बहुत मजबूर और परेशान हैं। सुनिया है हमारे अब्बू का इंतकाल हो गया, मुसीबत का पहाड़ हम पर टूट पड़ा। दादा दादी ने हमें और हमारी अम्मी को घर से खाली हाथ धक्के देकर निकाल दिया। हमारी अम्मी माँ बाप की इकलौती थी, नाना नानी का भी इंतकाल हो गया था। अम्मी बताती हैं कि ख़ानदान वालों ने नाना नानी के मरने पर घर पर कब्ज़ा कर लिया और हमारे पास अब रहने की कोई जगह ना थी। अम्मी और हम सड़क के किनारे बैठे रो रहे थे कि अल्लाह ने मदद की, अब्बू के एक दोस्त उधर से गुजरे, उनकी निगाह हम पर पड़ी, उन्होंने हमें पहचान लिया। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम लोग यहाँ क्यों हो और फिर क्यों रो रही हो? अम्मी जान ने उन्हें सब कुछ बता दिया। वो हमें अपने साथ घर ले गए, 1-2 दिन रखा, उन्होंने किराए पर ये घर ले दिया। अम्मी जान ने अपने कानों के कुंडल और पैरों के पाजेब उतार कर दी और कहा, इस सब को बेचकर 1 महीने का किराया दे देना, गैस का छोटा सिलेंडर और ज़रूरी सामान जैसे लोटा बाल्टी वगैरह है ये खरीद कर, और कुछ राशन वगैरह का इंतज़ाम कर दें। उन्होंने सारा सामान खरीद दिया और कुछ पैसे जो बचे थे वो अम्मी को दे दिए। 1 महीना कट गया, सामान भी ख़त्म हो गया, पैसा भी ख़त्म। 2 दिन हम दोनों भूखे प्यासे पड़े रहे, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं था। हमने अम्मी से कहा, हम सड़क पर जाकर कुछ मांग लाएं, अम्मी ने मना कर दिया। दोपहर में अम्मी की जब आँख लग गई तो हम चुपके से बाहर निकल आए, पास में मस्जिद थी, जोहर की नमाज़ हो रही थी, हम मस्जिद के दरवाज़े पर बैठ गए। हमसे मांगना तो आता नहीं था, नमाजियों के आगे हाथ फैला दिया, सब ने कुछ ना कुछ दिया। पहले दिन की भीख में हमें 40 रुपए मिले, खाना खरीद कर घर ले आए। अम्मी जान दरवाजे पर परेशान खड़ी थी, हमें देखते ही बरस पड़ी। हम उनको लेकर अंदर आए, उन्हें सब कुछ बता दिया और किसी न किसी तरह उनको खाना खिला दिया। इस तरह हमने भीख मांगनी शुरू की। आप घर चलिए बेटा, आज हमें काम है, हम फिर किसी दिन चलेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम निशात मरियम है। आप घर चलिए वरना अपना नोट ले लीजिए। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, अम्मी की पिटाई से डर रही हो तो हम इसके बदले छोटे नोट दे देंगे। मुझे घर का पता बता दो, मैं कल खुद ही तुम्हारे

0: अम्मी से इजाज़त लेकर बाहर आओ। इस आवाज़ ने अम्मी की बात को काट दिया। अम्मी ने उसे इजाज़त दे दी। निषाद बाहर आई। दोनों लोग सुर्ख हो रहे थे। आंखों से गंगा जमुना की धारें बह रही थीं। निषाद को इस हाल में देखकर सलीम की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा हमें माफ़ कर दो, हमारी वजह से तुम्हें मार खानी पड़ी। तुमसे रुख्सत होकर मैं जब चला तो मुझसे नहीं चला गया। हमें एहसास हो गया कि शायद तुम्हारी बात सच हो, मगर यहाँ तक पहुँचने से पहले ही सब कुछ हो गया। मेरी अम्मी बहुत अच्छी हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं। कहती हैं मैं अपनी निषाद को बहुत पढ़ाऊँगी, कामयाब डॉक्टर या बड़ा अफसर बनाऊँगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने आप को बेचना पड़े। अल्लाह तुम्हारी अम्मी के ख्वाब को पूरा करे, आमीन। आप अंदर आ जाइए। शुक्रिया। निषाद सलीम को लेकर अंदर आई। एक बोसजदा सी चटाई के अलावा घर में कुछ नहीं था। एक तरफ निषाद की अम्मी का हुस्न, शाइस्तगी, सलीका और अंदाज गुफ्तगू, मालूम होता था हुस्न का शाहकार लखनवी तहजीब की गंगा में नहाया हुआ और गुर्बत में यहाँ नमूदार हुआ है। इसने साबित कर दिया कि कमल कीचड़ में ही खिलते हैं। आप हमें माफ़ कर दें, आपने कौन सी खता की है? हमने गुस्से में आपको न जाने क्या क्या कह दिया। आपने माँ का फ़र्ज़ अदा किया है। हमें यकीन हो गया कि आपकी तरबियत में रहकर निषाद यकीनन आपके सपने को पूरा करेगी, मगर क्या इस सपने को पूरा करने के लिए आपको अक्द सानी करना पड़ेगा। मैं एक डायन हूँ, डायन से कौन अक्द करेगा? मैंने अपने सुहाग को निगल लिया, उसकी सजा में भीख के टुकड़े खा रही हूँ। इस जिल्लत की ज़िंदगी को मैं उसी वक्त ख़त्म कर देती मगर जब मेरी सास ने मुझे धक्के देकर घर से निकाला था। मगर मैं निषाद का ख्याल करके खामोश रही। निषाद के लिए मैं ज़िंदा रहूँगी। मैं डायन हूँ, लोगों ने अपने घरों के दरवाज़े भी मेरे लिए बंद कर लिए हैं। मैं कई घरों में बर्तन मांजने के लिए गई मगर उन्होंने साफ कह दिया हमारे घर न आना। सर्विस के लिए अपनी असमत और अफवत को रिश्वत की बलिवेदी पर चढ़ाना मैंने पसंद ना किया, इसलिए सर्विस को भी ठोकर मार दी। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि गम की सारी सिया रात ख़त्म हो जाए और खुशियों की सुबह यकीनन नमूदार होगी। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के अख्तियार में है। हमारे दुनिया में आने से पहले ही उसने हमारी मौत का वक्त और जगह और मौत किस तरह होगी सब कुछ लिख दिया है। इसे कोई ना काट सकता है ना बदल सकता है। फिर आप डायन कैसे हो गई? आप सब्र करें और निकाह के बारे में संजीदगी से सोचें, अपनी नशात के मुस्तकबिल के बारे में भी सोचें। निकाह अपने आप नहीं होता, फिर एक बेवा का निकाह। मेरा अपना कोई भी नहीं है जो भाग दौड़ करे। मैं खुद किसी के घर में तो नहीं घुस सकती। अगर किसी ने अपने किसी फ़ायदे की खातिर मुझ जैसी अभागन से निकाह कर भी लिया तो इसकी क्या ज़मानत कि वो निषाद को अपना लेगा, इसे बेटी जैसा प्यार दे सकेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी निषाद वक्त से पहले ही मर जाएगी और मैं कदम कदम पर मरूंगी। इससे बेहतर यह है कि मैं ऐसे ही ठीक हूं। अगर हो सके तो छोटी मोटी नौकरी दिला दें, नौकरी के चक्कर में ना पड़ें, अल्लाह पर भरोसा रखें और निकट कर डालिए। आप ही निषाद को अपना लीजिए, मुझसे निकाह कर लीजिए। आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। मैं आवारा हूँ या चीटर हूँ, जुआरी या शराबी हूँ, चोर या कातिल हूँ, फिर भी आपने इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया। जो शख्स एक यतीम बच्ची को उसकी माँ की मार से बचाने के लिए उसके घर तक पहुँच जाए, उस यतीम बच्ची की आँख में आंसू देकर तड़प उठे, वो कभी बदकिरदार नहीं हो सकता। आपको पता नहीं कि निषाद तो यह फ़ैसला पहले ही कर चुकी थी। उसने कहा था कि अगर मैं बड़ी होती तो मैं बाबूजी को भाई बना लेती, मैं छोटी हूँ इसलिए बाबूजी को मैं अपना अब्बू बनाऊँगी। वक्त का फ़ैसला मेरा नहीं है, निषाद का है। हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हुस्न जमाल का पैकार, ईसार खलूस की देवी, ममता का मुजस्मा, उसके अलावा दुनिया की ठोकरों और दिल जिगर को पाश पाश करने वाले तानों को सहन करने वाली, भूख और प्यास में अपनी असमत और आफत को बचाने वाली एक मजबूत चट्टान हमें इतनी आसानी से मिल जाएगी। नेज़ उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतु कुबरा की सुन्नत पर अमल करने वाली एक मोमिना से हमें अक्त करने की सआदत हासिल होगी। हम अपनी निषाद के मरहून मिन्नत हैं कि उसने हमें यह अजीम तोहफ़ा दिया। आज से 10 दिन बाद हमारा अक्त होगा। आप हमारे साथ चलें, अपनी पसंद के कपड़े और जेवरात ले लें, हम फिर दूसरे इंतजाम में लग जाएंगे। हमें सारा इंतज़ाम खुद ही करना है, मेरा भी कोई नहीं है। मैं भी दुर्र यतीम हूँ और ये यतीमों का संगम है। अल्लाह परवान चढ़ाए, आमीन। चलिए आप खुद ही खरीद लीजिएगा। नहीं आप चलें, हर आदमी की पसंद अलग अलग होती है। वह हाथ धोकर तीनों बाजार के लिए रवाना हो गए।
1: यतीमों का संगम अभी आप समाप्त फरमा रहे।

0: कलामी शायर के तहत अभी आप समाअत फरमा रहे थे अब्दुल नईम खां से उनका कलाम। सामिन, इसी के साथ अब आकाशवाणी के रामपुर मरकज से अपनी मेजबान आयशा राहत को दीजिए इजाजत।
1: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रामपुर की पेशकश था और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से नश्र किया जा रहा था। हम अपने श्रोताओं को बता दें, एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, प्रस्तुत है लोकगीतों का हमारा कार्यक्रम लोक रंग। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं दीपाली त्रिपाठी के गाए अवधी लोकगीत। आरंभ कर रहे हैं

लोकरंग कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं दीपाली त्रिपाठी के गाए अवधि लोकगीत। अभी आपने सुना इनके स्वर में ये देवी गीत, और लीजिए अब सुनिए निर्गुण।

0: लोक रंग कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे दीपाली त्रिपाठी के गाए अवधी लोकगीत। अभी आपने सुना इनके स्वर में ये निर्गुण, और अब इसी के साथ आज का लोक रंग कार्यक्रम यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 10:01 हुए हैं और अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त।

आरती शर्मा और लेकर आई हूँ फिल्मों की दुनिया के सुरीले मीठे और खूबसूरत से नगमे। तो तैयार हो जाइए संगीत की इस खूबसूरत सी यात्रा पर मेरे साथ चलने के लिए। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण के गाए एक खूबसूरत से गीत से। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

चलते चलते। इस फिल्म में आप सुन रहे थे अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक का गाया ये खूबसूरत नगमा। और श्रोताओ, इसी के साथ अब आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। इसी तरह जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन विश्व दर्पण हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारिवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया।

0: और दाम्बुला में तीन देशों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में श्रीलंका ए के साथ पहले मैच में भारत ए ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
2: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है। अधिक ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता।
3: गृह मंत्रालय ने कहा है, ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में MT मेरिवैक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार जताया। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली थी और हादसे की जाँच जारी है। अमेरिका की संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के जरिए अमेरिकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना ने ईरान पर हमले रोक दिए हैं, लेकिन अगर ईरान दोबारा हमला करता है तो इजराइल कड़ी कार्रवाई करेगा। ईरान के सशस्त्र बलों ने कहा कि उन्होंने इसराइल पर जवाबी कार्रवाई के बाद अपने हमले रोक दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ट्रेड्रोस अधनोम घेब्रेसस युगांडा के दौरे पर हैं। वे कांगो में जारी इबोला प्रकोप से निपटने की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने युगांडा में संयुक्त राष्ट्र टीम के साथ बैठक कर समन्वय और आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करने पर चर्चा की।

0: साथ ही युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी से भी मुलाकात की। दुबई में एक सड़क हादसे में कई भारतीय कामगारों की मौत हो गई है। दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने बताया कि स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। वाणिज्य दूतावास ने इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मैक्सिको की खाड़ी में सोमवार देर रात 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र क्यूबा के पश्चिमी तट के पास था। भूकंप के झटके क्यूबा, मैक्सिको और अमेरिका में फ्लोरिडा के कई इलाकों में महसूस किए गए। फिलीपींस के दक्षिण मिंडानाओ द्वीप के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में करीब 35 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों ने बताया कि इस आपदा से लगभग 10,000 परिवार विस्थापित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस के मिंडानाओ में आए भूकंप से हुए जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। उन्होंने कहा कि भारत का फिलीपींस के लोगों और सरकार के साथ पूरा समर्थन है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जया भारती।
1: डांबोला में तीन देशों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में श्रीलंका ए के साथ पहले मैच में भारत ए टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रहा है। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी हिस्सा ले रही है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इस बीच आईसीसी महिला क्रिकेट टी20 विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 26 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। उधर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने इंग्लैंड और वेल्स में होने वाले आगामी महिला टी20 विश्व कप के लिए कमेंटेटर्स की सूची जारी कर दी है। इस बार कमेंट्री टीम में कई दिग्गज महिला खिलाड़ियों के नाम भी शामिल हैं, जिनमें भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज, अंजुम चोपड़ा और वेदा कृष्णमूर्ति के नाम प्रमुख हैं। इनके साथ दिनेश कार्तिक और जतिन सप्रू भी कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे। उधर ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन आज से सिडनी में खेला जा रहा है। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु 24 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई कर रही हैं। महिला सिंगल्स में युवा मालविका बंसोड़, अनमोल खरब, तन्वी शर्मा, ईशा रानी बरुआ, आकर्षी कश्यप और तान्या हेमनाथ भारत की चुनौती पेश करेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी, एचएस प्रणॉय और किरण जॉर्ज से भारत को उम्मीदें होंगी। तीरंदाजी विश्व कप का तीसरा चरण भी आज से तुर्की के आंताल्या में शुरू होने जा रहा है। इस चरण में भारत के उन सभी 12 तीरंदाजों पर नजर रहेंगी जो 2026 एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और खेल जगत से एक और खबर कि भारत ने उलान बटोर ओपन सीनियर रैंकिंग सीरीज कुश्ती प्रतियोगिता में अपने अभियान का शानदार अंत किया। भारत ने फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला कुश्ती में कुल मिलाकर 17 पदक जीते और टीम तालिका में शीर्ष 3 में शामिल रहा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य में एमटी मारीवैक्स जहाज में लगी आग के बाद सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और डांबोला में तीन देशों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में श्रीलंका ए के साथ पहले मैच में भारतीय ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही का

0: आणि सुनाएगा डिजिटल.
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
2: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में. क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स. तो सुनना न भूलें
3: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर.
4: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं. प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट से. श्रोताओं, आइए आपको लिए चलते हैं नए तरानों की ओर. कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म भेड़िया से. गीत में आवाजें हैं अरिजीत सिंह और सचिन जिगर की, संगीत भी सचिन जिगर का और बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने.

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इस फिल्म में सुनिए अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, शादा फरीदी और अल्तमश फरीदी को। संगीत प्रीतम का और बोल अमिताभ भट्टाचार्य के।

वोरा महापात्रा की मीठी आवाज, राम संपत का संगीत और मुन्ना धियामन के बोल, फिल्म का नाम अंबरसरिया। खूबसूरत संगीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

0: उदित नारायण और श्रेया घोषाल को सुन रहे थे आप। फिल्म थी सुपर 30। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, रुकते हैं एक विराम के लिए।
1: घर आंगन माँ है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें, यदि आपको खाना निगलने में परेशानी होती है या खाते और पीते समय बार बार खांसी आती है तो ये डिस्फेजिया का संकेत हो सकता है। डिस्फेजिया क्या है, इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में जानने के लिए सुनिए हमारे चैनल यानी आकाशवाणी के FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर विशेष फोन इन कार्यक्रम बुधवार दिनांक 10 जून 2026 को प्रातः 11:02 से, जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन देंगे आपकी जिज्ञासाओं के सरल और उपयोगी उत्तर। तो सुनना ना भूले हमारे चैनल यानी FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर नेशनल डिस्फेजिया अवेयरनेस विशेष कार्यक्रम। हमारा फोन नंबर है 0522-22-38-84-5 या फिर आप डायल कर सकते हैं

0905-22-22-38-852। याद रखिए, सही जानकारी बेहतर स्वास्थ्य। आकाशवाणी के साथ आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं नए फिल्मी तरानों का। कार्यक्रम का अगला नगमा आपको सुनवा रहे हैं फिल्म राज 2 से। गीत में आवाज तोशी शाबरी की, संगीत भी शारिब तोशी का और बोल लिखे हैं सईद कादरी ने।

शोर इन सिटी, इस फिल्म में आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और तोशी रैना का गाया ये खूबसूरत गीत। श्रोताओं, इस समय आनंद ले रहे हैं आप, नए फिल्मी तरानों का कार्यक्रम चल रहा है चित्रपट से। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मुझसे दोस्ती करोगी से। गीत में आवाजें हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की।

चित्रपट से कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म दस्तक से। गीत में आवाज है उदित नारायण की, संगीत राजेश रोशन का और बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

0: श्रोता मित्रों नमस्कार। मीडियम वेव 401.61 मीटर था 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं धड़कन देश की आकाशवाणी लखनऊ। पूर्वाह्न के 11 बजे हैं और अब आप सुनेंगे अपना कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। जी हाँ, ये कार्यक्रम आपका है तो करिए हमें फोन, हमसे करिए बातें और सुनिए अपनी पसंद के गाने। हमारा फ़ोन नंबर है 0522-223-8825। कार्यक्रम में आज आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त शिखा दुबे। जी हाँ दोस्तों, इधर हमने अपना फ़ोन नंबर बताया और उधर कॉल आनी भी शुरू हो गई और आइए जानते हैं हमारे पहले कॉलर कौन हैं। हेलो।
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: जी नमस्ते, नाम बताएं अपना।
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी भगवान सिंह परमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और बताइए क्या हाल है आपके।
1: अच्छे हैं दीदी, अभी गर्मी से हमें आराम।

0: मिल गया है दीदी, हमारे इधर बारिश हो गई थी 2-3 दिन, तो अब काफी कम मतलब टेम्परेचर कम हो गया है दीदी।
1: अच्छा, 2-3 दिन से बारिश हो रही है।
0: हाँ दीदी, अभी कल से नहीं हुई है, पहले हुई है, तो दीदी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही, गर्मी से राहत पूरी तरह से मिल चुकी है।
1: अरे वाह, तो थोड़े से बादल लखनऊ की तरफ भी भेज दीजिए
0: जी दीदी, बिल्कुल भेज दीजिए,
1: हम लोग को भी राहत मिल जाए, बहुत तेज गर्मी हो रही है लखनऊ में। हाँ, तो आपकी हवा की आवाज भी आ रही है हमें, हवा चल रही है ना?
0: काफी हवा चल रही है।
1: तो बताइए, इतने खूबसूरत मौसम में आपको कौन सा गाना सुनवा दें?
0: दीदी फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी, गाने के बोले हजूरे वाला जो हो इजाजत, ये वाला गीत सुनना है दीदी।
1: अच्छा, तो सुनवा दें।
0: तो दीदी दोस्तों को याद कर सकते हैं
1: कर लीजिए याद,
0: विनीत कुमार जी हैं, राहुल कुमार जी हैं, रमेश प्रजापति हैं, प्रेम सिंह सिसोदिया, केसर सिंह राजपूत, रामबाबू शर्मा, भरत सिंह अरवाल, मांगीलाल चंदेल जी हैं, गंगाधर जी हैं, सावनकर, पूरन वर्मा जी, राकेश जी, पूनम दीदी हैं कानपुर से, बहन संगीता देवना जी, अतुल देवना जी, अविनाश तेली जी और कुंजन तिवारी जी अयोध्या से।
1: तो मेरी तरफ से तो अभी
0: हम कुछ कहना चाहते हैं दीदी
1: जी, बताएं।
0: दीदी आपके यहाँ से मैं 31 आरजे से बात कर चुका हूँ लखनऊ पर, दीदी एक आरजे आपके यहाँ से दीदी आउट वाला कार्यक्रम चला रहे हैं और मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता दीदी।
1: देखिए ये बताएं, शिकायत वाला कार्यक्रम नहीं है, आप हमसे बातें करिए, अच्छी अच्छी बातें करिए।
0: नहीं दीदी, हम 3 साल से लगा रहे हैं आपके आकाशवाणी पर कॉल दीदी, हमें जब रिसीव कॉल हो जाता है ना दीदी तो मालूम पड़ जाता है, वो जब रिसीव नहीं होता तो अलग दो तरह का बताता दीदी, हम 3 साल से प्रयास कर रहे हैं इस कार्यक्रम में दीदी, इसलिए हमें थोड़ा शक जा रहा है एक आरजे पर।
1: अरे कोई कोई शक मत करिए, हमारे लिए सब जितने हमारे लिसनर्स हैं सब हमें बहुत प्रिय हैं, कोई ऐसी बात नहीं है हमारे यहाँ से, ठीक है? तो आपको हम गाना सुनवा दे रहे, इतना अच्छा गाना है और आनंद लीजिए इसका अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? ओके,
0: धन्यवाद,
1: शुक्रिया।

0: कार्यक्रम शुरू हो चुका है, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और अब हमारे साथ जुड़े हैं किशोर कुमार जी। जी हाँ, किशोर कुमार जी जो जुड़े हैं हमारे साथ, तो उनका नाम सुन के मुझे एकदम जैसे तुरंत स्ट्राइक करता है कि हमारे जो गायक रहे किशोर कुमार जी, उनकी याद आ जाती है। तो आइए इन किशोर कुमार जी से हम बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते किशोर कुमार जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ठीक हो
0: जी? हम अच्छे हैं, आप कहाँ से बोल रहे हैं ये बता दीजिए।
1: जी मैं सीतापुर से, चढ़वा चिलौला लखीमपुर रोड पे पड़ता है।
0: अच्छा अच्छा, और तो रेडियो सुना जा रहा था कि उसके साथ कोई और काम भी कर रहे थे?
1: रेडियो सुनते हैं, रेडियो हमारा नया रेडियो लिया हमने, रेडियो खराब हो जाए तो बनाने वाला कोई नहीं मिलता, तो रेडियो नया लेना पड़ता है।
0: अच्छा अच्छा, तो इस समय नया रेडियो आपके पास है?
1: जी जी।
0: अच्छा, तो आप भी किशोर कुमार आपका नाम है, तो आप गाने वाने के शौकीन हैं?
1: गाते तो नहीं है, लेकिन यह है कि गाना सुन लेते हैं,
0: सुनने के शौकीन है,
1: गाना सुनते हैं।
0: जी जी,
1: साइकिल की दुकान हमारी यहाँ पर है, करते हैं।
0: तो चलिए गाना जो आप बता रहे हैं वो हम सुनवा देंगे, और उसको सुनते सुनते आप गुनगुना भी लीजिएगा।
1: शिकायत एक है मैम हमारी,
0: आज आप लोग
1: रोज रोज फोन लगाते, वही लोग लगाते हैं ज्यादा, हम भी लोगों को मौका दे दिएगा कि हम भी लोग लगा लेंगे फोन।
0: चलिए, आपने ये बात कह दी, और जो बाकी सुनने वाले हैं जो लगातार रोज फोन लगाते हैं, उनको ये बात पता चल गई होगी, है ना? तो वो इस बात पे ध्यान जरूर देंगे।
1: जी, ओमकार भैया सीतापुर के एक हैं, वो भी सुनते रहते हैं हमारे कार्यक्रम, हम भी उनको सुनवाते हैं, नाम देते हैं उनका है। ओमकार को भैया को सुनवाते हैं, चाहते हूँ।
0: तो चलिए सबको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत है। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: और अब हमारे साथ लाइन पर हैं रमेश प्रजापति जी, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: हेलो, हाँ नमस्कार
0: जी। रमेश जी नमस्कार, क्या हाल हैं आपके?
1: मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, गर्मी के आनंद ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, इससे मैं थोड़ा सा पानी गिर गया तो तेज गर्मी लग रही है अब।
0: अच्छा अभी हमारे पहले कॉलर ने हमें
1: एक रोज तो ठंडक रहा, इसके बाद मतलब बहुत गर्मी पड़ने लगी है।
0: जब पानी दरअसल थोड़ा गिरता है उसके बाद जब धूप निकल आती है तो उमस वाली गर्मी हो जाती है ना।
1: जी जी,
0: और वो उमस वाली गर्मी तो भाई बहुत गजब की होती है
1: जी।
0: तो रमेश जी बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है खूबसूरत, मेरा एक सपना है देखूं तुझे सपने में।
0: अच्छा तो सुनवा दें आपको।
1: और जी
0: आप दोस्तों को आप भी याद करेंगे?
1: दो चार कर लूं आपकी इच्छा हो तो।
0: चलिए दो चार करिए आप लोग की लिस्ट।
1: पूरन वर्मा जी, गजराज लोधी, कृष्ण सिंह राजपूत है, मांगीलाल चंदेल, प्रेम सिंह सिसोदिया, और पूनम जी है कानपुर से, रविनाथ जी और आशुतोष जी संगीत जी।
0: रमेश जी कुछ नए नाम लिया करिए, अभी जो इससे पहले कॉलर थे उन्होंने भी ये सब नाम लिए थे है ना।
1: जी जी, जी आपके बार से दूसरे नाम लूंगा।
0: नए नए नाम लीजिए, ठीक है?
1: चलिए आपके बार नया नाम,
0: नए नाम लीजिएगा। चलिए फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: जी जी धन्यवाद।

0: हमारे सारे श्रोता हमारे अपने हैं और ऐसे ही हमारे एक श्रोता हैं शिवा, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो
1: जी मैम, जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल, क्या हाल हैं आपके?
1: जी मैम, मैं शिवा लोहट MP विदिशा से आपसे बात कर रहा हूँ मैम।
0: शिवा जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में।
1: देश का नंबर वन चैनल लखनऊ आकाशवाणी और मेरी प्यारी प्यारी दीदी से बातचीत हो रही है, बहुत खुशी हो रही है।
0: हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है शिवा जी। तो सुबह से रेडियो सुन रहे हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: अच्छा, तो बहुत सारे कार्यक्रमों से आपको जानकारी भी हो जाती होगी, नहीं?
1: जी बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे लगते हैं सारे कार्यक्रम और समय समय पे हमें जानकारियां भी मिलती रहती हैं मैम। और हमारा जैसे कि 30 वर्ष पूरे होने वाले हैं आकाशवाणी को, तो आपको और आपकी टीम को पूरे को ढेर सारी शुभकामनाएं मैम।
0: हाँ, आपकी आवाज़ हमें थोड़ी सी, बहुत शोर आ रहा है, हमें साफ नहीं मिल पा रही है। शिवा जी, अपनी पसंद का गाना बता दीजिए, बहुत शोर आ रहा है।
1: मूवी का नाम रहेगा बलमा और गाने के बोल रहेंगे बांसुरिया अब यही पुकारे। और मैम आपके माध्यम से एक अपील करना चाहूंगा कि वर्षा ऋतु आ चुकी है, सभी लोगों को वृक्ष लगाना चाहिए।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वृक्ष लगाना चाहिए। और
1: मैम कुछ दोस्तों को याद करना चाह रहे
0: थे। शिवा जी, आपकी तरफ से बहुत शोर हमें मिलता है बीच बीच में।
1: मैम बिल्कुल अलग थलग आ गया हूँ मैम।
0: अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बताइए, क्या कह रहे थे?
1: मैम हमारे मित्र रहेंगे राकेश जी शिमला से, पूरन जी राजस्थान से और सीहोर मध्य प्रदेश से रहेंगे हमारे भगवान सिंह परमार जी, रमेश प्रजापति जी, अविनाश जी और तमाम सुनने वाले और स्पेशलिया।
0: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपकी पसंद का गाना हम सुनवा दे रहे हैं, है ना? ठीक है, ओके।

0: और अब हमारे साथ जुड़े हैं अनूप जी। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत
1: Hello?
0: है जी। आवाज नहीं मिल रही है।
1: गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग।
1: हेलो।
0: वेरी गुड मॉर्निंग अनूप जी। हेलो
1: जी, मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। मेरा गांव का नाम है रामकृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट है श्री भूमि, असम से तालुकात है, है ना?
0: जी जी बिल्कुल। और बहुत हम स्वागत करते हैं, काफी दूर से आप हमें फोन करते हैं। हाँ
1: बोलिए, आप कैसे हो?
0: जी हम बहुत अच्छे हैं, आप अपना हाल बताएं।
1: जी मैं भी मसाला बहुत अच्छा हूँ। लोग जिंदा आदमी से बात नहीं करते, और मरने के बाद उसे हिलाकर पूछते हैं, तू कुछ बोलना क्यों नहीं, है ना?
0: बहुत गहरी बात आपने कह दी अनूप जी।
1: तो चलिए, आज बहुत ट्राई किया, सुकून मिल गया, क्योंकि आकाशवाणी लखनऊ में फोन करना और फोन लगाना क्या होता है, एक के मतलब बाकी एक सेंसेशनल होता है, और मन में पूरा के पूरा एकदम सेंसेशन और सुकून भर जाते हैं जब फोन मिलते हैं। और आप जैसे अनाउंसर, आप जैसे दोस्त से जब बातचीत हो जाते हैं, क्या होता है मतलब हम हिमालय के एवरेस्ट सिंह में हम उतर मूड गए, ऐसे लगता है, है ना?
0: जी हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे श्रोता हमसे बात करते हैं।
1: कार्यक्रम में मेरा मेरा गाना है, इनका नाम है लापरवाह, और गाने का बोल ऐसे, कोई भी दिल में ना आया था, नजरों से सबकी बचाया था। किशोर जी के और साथ में आशा जी है,
0: चंद्रानी मुखर्जी हैं।
1: कुछ दोस्तों को मैं याद करता हूँ, पहले है बसंतीलाल सूर्यवंशी जी, सतीश भाई, और प्रेमजी चक्रवर्ती जी है, अविनाश जी है, और पुरुषोत्तम कुमार जी है कश्मीर से, और अनुवार बिहारी भाई, ओम प्रकाश नेमा, श्रीकांत जोशी जी, और विजय सिंह लखेला जी, अमर सिंह साहू जी, और सतीश भाई के लिए, और ढेर सारे श्रोता अभी सुन रहे हैं, सबके लिए, और खास करके आपके लिए।
0: थैंक यू। तो चलिए हम भी ये सुनते हैं गाना। अनूप जी फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। कार्यक्रम में आज आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त शिखा दुबे। और एक बार फिर से हम अपना फ़ोन नंबर बता दे रहे हैं, हमारा फ़ोन नंबर है 0522238825। तो अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो ज़रूर करिए हमें फ़ोन। हो सकता है आपको फ़ोन मिलाने में दिक्कत आए, जल्दी कॉल ना लग पाए, लेकिन कोशिश करते रहिए। और ऐसी ही कोशिश हमारे एक श्रोता ने करी, और आइए करते हैं उनसे बात। उनका नाम है विनीत कुमार। हेलो।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग, सादर प्रणाम आपको सभी सुनने वालों को।
0: जी गुड मॉर्निंग, और बताइए विनीत कुमार जी कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी विनीत कुमार, ग्राम अर्थापुर, पोस्ट रामगढ़, चीनी मिल, जिला सीतापुर से।
0: जी सीतापुर से बोल रहे
1: बहुत
0: हैं।
1: बहुत प्रयास किया है आज कई, मतलब बहुत इससे वो क्या कहते हैं लोहे के चना जमाना वही काम होता है, इसलिए लगता ही नहीं।
0: हाँ। जी लाइन बिजी रहती है, इसलिए हम बीच बीच में नंबर भी बताते रहते हैं कि और भी श्रोता जो हैं अगर करना चाहते हैं तो वो लोग भी अपनी कोशिश में लगे रहें, हो सकता है उनकी कॉल लग जाए, है ना?
1: हाँ।
0: तो विनीत जी बताइए कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: 20 साल बाद फिल्म का है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे और कुछ लोगों को भी याद करेंगे हम।
0: तो कुछ लोगों की लिस्ट आप लोगों की बहुत लंबी हो जाती है विनीत जी।
1: लंबी नहीं, हम दो ही तीन नाम लेंगे।
0: चलिए ले लीजिए
1: जी। भगवान सिंह तुम्हारे हैं और हमारे ओमकार सीतापुर से हैं, पूनम है कानपुर से, संतोष कुमार मोर है दोई से, और जितने सुन रहे हैं सभी के लिए।
0: सभी के लिए। तो चलिए विनीत कुमार जी, फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: और आइए अब देखते हैं हमारे कौन से श्रोता ने हमको याद किया है। हेलो
1: हेलो दीदी को राधे राधे।
0: राधे राधे।
1: नाम केसरी सिंह राजपूत बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ
0: जी। केसी सिंह जी बहुत स्वागत करते हैं आपका। और आपकी तरफ भी कुछ पानी वगैरह गिरा?
1: हाँ दीदी, मध्य प्रदेश में तो लगभग एक जैसा ही मौसम है, कहीं बारिश हो जाती है हल्की फुल्की और फिर मस्त की गर्मी से गर्मी का सामना करना पड़ता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। अब तो दीदी एक दो हफ्ते में मानसून आ जाएंगे, पूरी गर्मियाँ निकल गई।
0: जी जी,
1: तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
0: नहीं, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है और हर मौसम का आनंद हम लोग ले लेते हैं ना।
1: हाँ लेना भी चाहिए दीदी, गर्मियाँ मुश्किल से मिलती है
0: ना। गर्मियाँ
1: भी मुश्किल से मिलती है, बरसात भी मुश्किल से और सर्दी।
0: नहीं, गर्मियाँ तो खूब मिलती हैं। हाँ ये बात अलग है कि बरसात और सर्दी जो है अब धीरे धीरे जो है वो उसको कम होता चला जा रहा है।
1: हमको तो गर्मियों में अच्छा लगता है, बस बारिश जब ज्यादा होती है तो फिर घर ही बैठे रहते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता थोड़ा।
0: अच्छा हाँ, बारिश में तो ये है कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: तो केसी सिंह जी बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: गाना सुनवा दीजिए आप पति पत्नी और तवायफ मूवी से, तुम कहना ना ये किसी से। और कुछ श्रोता बोल रहे थे दीदी कि उनको मौका मिलना चाहिए, फोन नहीं लगते हैं, क्या क्या होता है।
0: जी जी।
1: तो उनसे कहना चाहूंगा दीदी कि फोन तो लगते हैं, बस प्रयास करें, अपनी कमजोरी का बखान ना करें। हम तो 2 महीने में लगाते हैं, 1 महीने में, लेकिन कभी ये नहीं बोलते कि मौका मिलना चाहिए।
0: मतलब कोशिश आप रोज
1: आप प्रयास कीजिए, प्रयासरत रहिए, ना कि फोन मौके की तलाश ना करें, मतलब मौके की इच्छा ही नहीं रखें मेरे हिसाब से। तो
0: नहीं तो आप रोज लगाते हैं फोन की मतलब महीने में एक बार?
1: मैं तो दीदी मुझे जब टाइम मिलता है हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 4 हफ्ते में तो मैं कॉल लगा लेता हूँ और लग जाता है, और नहीं तो नहीं भी लगता, कोई जरूरी भी नहीं रहता दीदी लगी जाए। बाकी अपन प्रयास करते हैं तो एक या दो तीन दिन में तो कॉल एक बार तो कनेक्ट हो जाती है।
0: अच्छा तो चलिए, ये बाकी जो हमारे श्रोता हैं, जो आपके दोस्त हैं सुनने वाले, उन सबको ये बात पता चल गई है कि कोशिश करते रहें वो, है ना?
1: कोशिश करते रहें बिल्कुल, और ये इच्छा मतलब बिल्कुल भी ना रखें कि कोई मौका देगा, मौका कोई नहीं देता दीदी आज के जमाने में।
0: ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मौका नहीं देते, लेकिन थोड़ा मौका दूसरे
1: नहीं
0: को...
1: मौके की तलाश करेंगे तो आप बैठे ही रहोगे, कुछ करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। श्रोताओं को तो दीदी बस यही है कि अपना नाम सुन लें, कोई नाम ले दे या अपना नाम चला जाए आकाशवाणी पर, और उनको क्या लालच है दीदी, बस जानकारियां तो अब आप जानते ही, रेडियो पर या और भी अन्य चीजों पर भी मिल जाती है।
0: चलिए आपने बहुत बातें बाकी श्रोताओं को बता दी केशव सिंह जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए दो तीन श्रोताओं को याद करना चाहूंगा, मांगीलाल चंदेल जी, रामबाबू शर्मा जी, और भगवान सिंह जी का तो लग ही चुका है, वो सभी के लिए रहेगा दीदी।
0: चलिए फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सुनिए अपनी पसंद का गाना।
1: और दीदी आपके लिए भी रहेगा। अच्छा। और रमेश प्रजापति जी।
0: जी जी।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और कार्यक्रम का समय धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। तो जो कॉलर अभी भी हमको फ़ोन नहीं लगाए हैं लेकिन फ़ोन लगाना चाहते हैं, तो उनको एक बार फिर से हम नंबर बता दे रहे हैं। हमारा नंबर है 0522-223-8825। आपकी भी कॉल्स का हमें है इंतज़ार, तो कोशिश करते रहिए। और इस समय हमारे साथ लाइन पर हैं फूलचंद जी, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ फूलचंद जी, क्या हाल हैं आपके?
1: शिखा जी, राधे राधे।
0: राधे राधे, और बताइए कहाँ से बोल रहे हैं?
1: शिखा जी, मैं वीरों की भूमि बुंदेलखंड की धरती से, यानी महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर जिले के मनकारी गांव से, मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ।
0: जय हो फूलचंद जी, और बताइए क्या हाल हैं आपके?
1: हाल तो बेहाल है, गर्मी से बहुत परेशान है।
0: अच्छा, सही बात है, गर्मी सब जगह बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन कहीं कहीं मौसम अच्छा भी हो रहा है, कुछ हमारे श्रोताओं ने बताया।
1: एक बात है शिखा जी, कि जब अच्छी ठंड लगती है ना, जब कपकपी लगती है तो लगता है कि गर्मी साजी है, गर्मी हो तो सही है, ये ठंडी ना हो।
0: ये होता ही है कि जब ज्यादा गर्मी होती है तो हमें सर्दी की याद आती है, जब ज्यादा सर्दी होती है तो गर्मी की याद आती है, है ना?
1: क्या बात है, और अपने भारत देश में यही तो मजा है ना। हाँ, गर्मियों का मजा लो, ठंडियों का मजा लो,
0: हम हर तरह
1: बरसात का मजा लो।
0: हाँ फूलचंद जी, हम हर तरह के मौसम को झेलने के आदी होते हैं ना, तो कहीं भी जाएंगे हमें कोई परेशानी नहीं होगी।
1: जी जी, बिल्कुल सही कहा।
0: तो बताइए कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: बिल्कुल शिखा जी, फिल्म का नाम है दयावान।
0: अच्छा,
1: और गीत के बोले कि आज फिर तुम पे प्यार आया है, और कुछ आपने कहा था कि कुछ नए मित्रों का नाम डेडिकेट किया करें।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: तो आज मैं नया

0: नए डेडिकेट हमारे जो परम आदरणीय राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी हैं और जो है नारद जी हैं, इनको डेडिकेट रहेगी।
1: चलिए बहुत अच्छा है, तो आप सभी आनंद उठाइए इस गीत का। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: और अब हमारे साथ लाइन पर हैं जितेंद्र पाल जी, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जितेंद्र जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैम, हम फतेहपुर जिला से जितेंद्र पाल बात कर रहे हैं। मैम जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और बताइए, रेडियो सुन रहे थे कि उसके साथ कुछ काम भी चल रहा था?
1: जी मैम जी, हमारी किराने की दुकान है और हमारी दुकान भी काम भी हो रहा है और रेडियो भी सुन रहे थे।
0: अरे वाह, तो
1: कॉल भी लगा रहे थे।
0: जी जी, तो ग्राहक खड़े हुए हैं?
1: जी जी, एक हमारी भतीजी आ गई है।
0: अच्छा अच्छा, तो बताइए जितेंद्र जी, कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: मैम जी, मूवी रहेगी किस्मत। और गाने के बोल रहेंगे, तेरे किस्मत में मेरा प्यार लिखा है, ऐसे करके गाने के बोल हैं। मैम जी, कुछ दो चार नाम हैं
0: तो नए नए नाम लीजिएगा आप भी, ये समझ लीजिए।
1: सबसे पहले तो आप हैं।
0: शुक्रिया।
1: दीप्ति मैम है और पूजा।

0: मैम हैं और हमारी बहन गुड़िया देवी हैं, प्रतिमा देवी हैं, प्रिया देवी हैं, और रोहित भाई हैं, बेटस भाई हैं, ओमकार भाई हैं, मलकाई का फूलचंद पाल जी हैं, सुनील भाई हैं, दिनेश पाल जी हैं, मिंटू तिवारी जी हैं, और मैम जी जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी लोगों के लिए गाना डेडिकेट रहेगा।
1: चलिए जितेन जी, आनंद उठाइए इस गीत का। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें के हमारे अंतिम कॉलर हैं अजीत कसाना जी, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: हेलो सिस्टर जी, नमस्कार
0: जी। नमस्ते अजीत जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ग्राम महपुर लदावली जिला मोरावाद से बोल रहा हूँ सिस्टर जी।
0: जी, और बताइए क्या
1: आज
0: कर रहे हैं?
1: आपसे मेरी पहली बार बात हो रही है।
0: अच्छा,
1: और
0: अच्छा।
1: शानदार प्रस्तुति चल रही है, लाजवाब प्रस्तुति।
0: जी, आप लोग की वजह से ही प्रस्तुति शानदार और लाजवाब होती है ना?
1: और सभी लिसनर ने एक से बढ़कर एक गानों की चॉइस की।
0: तो
1: और बेस्ट प्रोग्राम ऑफ द डे, फुल ऑफ एनर्जी।
0: जी, तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप, क्योंकि समय।
1: मूवी का नाम है अंदाज और गाने का बोले, जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना।
0: किसने जाना, सही बात है, जिंदगी का सफर बहुत सुहाना है और कल क्या होगा कोई नहीं जानता, इसलिए जो आज है उसको खूब अच्छे से हम लोग को
1: जी
0: जीना
1: हाँ
0: चाहिए, है ना? तो अजीत जी सुनवा दें आपकी पसंद का गाना।
1: जी हाँ, शुक्रिया,
0: चलिए
1: धन्यवाद।
0: शुक्रिया, ओके।
2: जिंदगी

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें समाप्त करने की अपनी रेडियो दोस्त शिखा दुबे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित कार्यक्रम। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी सुन सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
1: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
1: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना, पक्षियों को दाना खिलाना, डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
1: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी, उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
1: आपने यहीं पर विराम

0: नहीं दिया। आपने आगे लिखा है,
1: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है, वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
0: तो विमलेश जी, अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा?
1: अजीत जी, इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
0: जी।
1: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह, इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है।
0: हुँ?
1: और जापानी भाषा में इसे चानु यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है।
0: जी हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान, शांति, अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
1: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए।
0: हुँ?
1: और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं?
1: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
0: जैसे?
1: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
0: जी, सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
1: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
0: तो क्या क्या नियम है इसके?
1: जापान का चाय समारोह 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह।
0: वाह यानी?
1: यानी हारमोनी या सामंजस्य।
0: और दूसरा शब्द क्या है?
1: दूसरा शब्द है केई।
0: जी,
1: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
0: और श्रोताओ, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
1: श्रोताओ, इन 4 सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा, जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
0: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं, ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है।
1: जी, एक और खास बात ये है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
0: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
1: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
0: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
1: जी
0: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
1: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
0: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
1: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
0: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
1: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
0: और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर।

0: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
1: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहां का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ। पाए लागू बड़ी बहुरिया।
4: आ गए भैया।
3: हाँ।
4: लो ये पीढ़ी सरका लो, कुछ देर बैठ जाओ।
3: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन? बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म हो गया।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: आए देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ।
3: अरे मुदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो।
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।
3: और हाय।
4: हर गोविंद भाई, तुमको एक संवाद ले जाना है, आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
3: कहाँ बड़ी बहुरिया?
4: मेरी माँ के पास।
3: माँ के पास? कहिए क्या संवाद है?
4: माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए? किसके लिए?
3: बड़ी बहुरिया।

0: हर गोबिंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है, अब पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए।

0: ये नोट रखिए।
1: अरे
0: हारे गाढ़े काम आएंगे। अच्छा मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
1: अच्छा मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
0: अच्छा चलता हूँ।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब।
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है।
0: हाँ?

0: थाना बेहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
1: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, कब तक जीऊं?
2: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
0: हरगोबिंद का मन कलपने लगा। गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
3: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
4: पाए लागू माँ जी।
5: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
4: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
5: मेरी बेटी का कोई संवाद?
4: संवाद? जी संवाद तो कोई नहीं। हाँ? बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
5: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
4: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
5: सो तो है।
4: अरे छुट्टी मिलेगी तो कैसे, सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
5: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका, जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं।

0: ही लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी।
0: हाँ सो तो है, चलो अच्छा है। बबुआ अब थोड़ा जलपान कर लो।
1: अच्छा अच्छा माँ जी।
0: अरे हर गोविंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
2: हर गोविंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हर गोविंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया? वो किस लिए आया था? वो झूठ क्यों बोला? ये सोच सोच कर रात भर हर गोविंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
1: माँ जी अब आज्ञा दीजिए।
0: अरे
1: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी अब पैन लागू।
0: जीते रहो बेटा,
1: अब चलता हूँ।
3: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
1: अरे भैया जी आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
3: अच्छा
1: अच्छा राम राम
3: राम राम
1: राम, राम।

0: हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर, लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया,
1: हाँ

0: हरगोबिन भाई लो एक घूट दूध ले लो, मुँह खोलो। हाँ लो, आप पीलो पीलो, शाबाश शाबाश। हाँ शाबाश। अब जी कैसा है?
1: बड़ी बहुरिया मुझे माफ कर दो।
0: कहे?
1: मुझे माफ कर दो,
0: पर
1: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
0: हरगोबिंद भाई,
1: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम सारे गांव की माँ हो। तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
0: हरगोबिंद भाई, तुम
1: मैं अब हमने ठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी।
1: बड़ी माँ,
2: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
3: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered Viksit Bharat.
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम जो हमें लेकर जाएगा मरुभूमि यानी
2: मरुस्थल में या रेगिस्तान में
4: जी,
2: और बताएगा विस्तार से रेगिस्तान के बारे में। तो आइए जानते हैं रेगिस्तान या मरुभूमि के बारे में और सुनते हैं कार्यक्रम द डेजर्ट।
5: दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजन्स कवर्ड विद फॉरेस्ट्स एंड सराउंडेड बाय हिल्स may find it difficult to imagine what a desert is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and, therefore, no vegetation grows. It is dry, hot, waterless and without shelter. But this is not entirely correct. For those who have studied it, the desert can be a beautiful place. It is the home of a variety of people, animals and plants that have learnt to live under very hot and dry conditions. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. But whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. A desert is not always a flat, unchanging wasteland of dry sand. It may have mountains and hills. It may have an oasis, big or small. An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. A desert may be hot like the Thar or cold like Ladakh. But generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. Some deserts are almost totally without water. In such places, strong winds blow, raising heaps of sand and depositing them as mounds.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की 747 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। वो नगमे जो छेड़ जाते हैं दिल के तारों को, जो दिल की बात को ले आते हैं जुबां पर। कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म गोरा और काला के इस गीत से, जिसे गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने, बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

और आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में आंसू बन गए फूल फिल्म का गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश। आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: बदल रहा है भारत, तेज है रफ्तार,
2: जुड़ रहा है हर कोना, हर दिल में पल रहा मंजिलों का ख्वाब।
1: एक ऐसा कार्यक्रम
2: जहां मिलती है सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी,
1: विकास की बातें, संगीत की मिठास
2: और एक नए भारत की आवाज़।
1: जुड़िए हर शाम 5:45 पर,
2: सुनिए बदलते भारत की धड़कन नई उड़ान के साथ आकाशवाणी लखनऊ के विशेष कार्य।

श्रोताओं, हम आपको बता दें, यदि आपको खाना निगलने में परेशानी होती है या खाते या पीते समय बार बार खांसी आती है तो ये डिस्फेजिया का संकेत हो सकता है। डिस्फेजिया क्या है, इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में जानने के लिए सुनिए हमारे चैनल यानी आकाशवाणी के FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर विशेष फोनिंग कार्यक्रम बुधवार दिनांक 10 जून 2026 को प्रातः 11 बजे से, जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन देंगे आपकी जिज्ञासाओं के सरल और उपयोगी उत्तर। सुनना न भूलें हमारे चैनल यानी FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर नेशनल डिस्फेजिया अवेयरनेस विशेष कार्यक्रम। हमारा फोन नंबर है 0522-223-8845 और एक अन्य नंबर भी है 0522-223-8852। सही जानकारी, बेहतर स्वास्थ्य, आकाशवाणी के साथ।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है चुपके चुपके फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की, संगीत एसडी बर्मन का, बोल आनंद बख्शी के।

आप सुन रहे हैं मन मंदिर फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, शब्द रचना है राजेंद्र कृष्ण की।

और आइए अब सुनते हैं दो चोर फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। धुन बनाई है आरडी बर्मन ने, बोल मजरू सुल्तानपुरी के।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है पराया धन फिल्म से। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, संगीत आर डी बर्मन का, बोल आनंद बख्शी के।

इस गीत के साथ ही सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। दिन के 1 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ

0: नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 42वें ओवर में 3 विकेट पर 202 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान तथा विदर्भ में लू की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, हम आपको बता दें, यदि आपको खाना निगलने में परेशानी होती है या खाते या पीते समय बार बार खांसी आती है तो ये डिस्फेजिया का संकेत हो सकता है। डिस्फेजिया क्या है, इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में जानने के लिए सुनिए हमारे चैनल यानी आकाशवाणी के FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर विशेष फोनिंग कार्यक्रम बुधवार दिनांक 10 जून 2026 को प्रातः 11 बजे, जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन देंगे आपकी जिज्ञासाओं के सरल और उपयोगी उत्तर। सुनना न भूलें हमारे चैनल यानी FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर नेशनल डिस्फेजिया अवेयरनेस विशेष कार्यक्रम। हमारा फ़ोन नंबर है 0522-223-8845 और एक और नंबर है 0522-223-8852। सही जानकारी, बेहतर स्वास्थ्य, आकाशवाणी के साथ।

0: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
3: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
5: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
4: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
5: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
4: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
5: 8700001-4242।
6: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 होने को हैं। कुछ ही देर में इलाकाई खबरें नशर की जाएंगी।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का इफ्तिताह किया। इससे देही और आधे शहरी इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी को फरोग मिलेगा। इस मौके पर वजीर आला ने कहा,
1: एक अभिनव पहल है जो प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाता है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करता है। हम सब इस बात को जानते हैं कि ब्रॉडबैंड की सुविधा आज की आवश्यकता बन चुकी है। इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतनी ही डेवलपमेंट की गति भी फास्ट होती हुई दिखाई देगी और लोगों के जीवन में भी उतना ही व्यापक परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में फायर और इमरजेंसी खिदमत डिपार्टमेंट का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रियासत में फायर प्रोटेक्शन सिस्टम को और ज्यादा मजबूत बनाने पर जोर दिया। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री के निर्देश पर अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग में विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप SRG का गठन किया जा रहा है। पहले चरण में प्रदेश के 10 जनपदों में इसकी स्थापना की तैयारी पूरी कर ली गई है। बैठक में बताया गया कि प्रदेश की 350 तहसीलों में से 296 तहसीलों में 326 अस्थायी अग्निशमन केंद्र संचालित हैं। इसके अलावा 26 नए केंद्र लोकार्पण के लिए तैयार हैं, जबकि 25 केंद्रों का निर्माण कार्य जारी है। 47 अन्य प्रस्तावित केंद्रों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
0: एक दीगर मीटिंग में वजीर आला ने हैंडलूम और महकमे कपड़ा, सनत और खादी और ग्रामोद्योग महकमे का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रियासत लिबास और मलबूसात शोबे में सरमायाकारी, प्रोडक्शन और रोजगार के नजरिए से मुल्क की सफे अव्वल रियासतों में अपनी शिनाख्त मजबूत कर रहा है। दरियस्ना वजीर आला ने डिप्टी रजिस्ट्रार दफातर को मरहलावार तरीके से पासपोर्ट खिदमत मराकज की तर्ज पर फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर आला ने कल लखनऊ में स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन महकमे के कामों का भी जायजा लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल डायरेक्ट भर्ती 2025 के तहरीरी इम्तिहान का आज दूसरा दिन है। यह इम्तिहान दो मीटिंगों में आज भी मुनक़िद किया जा रहा है। लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बनारस, मेरठ और आगरा समेत सभी जिला में बनाए गए इम्तिहान मराकज पर CCTV की निगरानी में यह इम्तिहान मुनक़िद हो रहा है। तकरीरी बोर्ड मुनसिफाना और नकल से पाक इम्तिहान कराने के लिए हुकूमत और जिला इंतजामिया के साथ पुलिस ने सख्त बंदोबस्त किए हैं। वाज़ह है कि तकरीरी के अमल के तहत कुल 32,679 ओहदों के 28,86,797 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त की थी। इम्तिहान के लिए पूरी रियासत में 1,183 इम्तिहान मराकज कायम किए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेशी क़यादत में गुज़िश्ता 12 सालों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की बुनियाद पर हिंदुस्तान में काबिले ज़िक्र तरक्की हुई।

0: है। आकाशवाणी समाचार मोदी हुकूमत के 12 सालों के मुख्तलिफ शोबों में की गई कोशिशों पर एक खुसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज की इस रिपोर्ट में हम सेहत खिदमात के शोबे में हुकूमत की कोशिशों की जानकारी दे रहे हैं।
1: 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की। वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की।
0: वजीर बनाए सेहत और कुनबे बहबूद जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में वजीर आजम महफूज जिचगी मुहिम के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्कगीर इजलास का इफ्तिताह करेंगे। इस स्कीम का खसूसी मकसद बेहद जोखिम वाले हमल का जल्द पता लगाना और फौरी इंतजाम करके माँ और बच्चे की शरयामवाद को कम करना है। इस प्रोग्राम ने पूरे मुल्क में जिचगी की सेहत खदमात को मजबूत बनाने में मदद की है। कौमी इम्तिहान एजेंसी NTA ने 21 जून को मुनक़िद होने वाले नीट UG दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहरों की फहरिस्त जारी कर दी है। हमारे नामा निगार ने बताया कि रजिस्टर्ड उम्मीदवार सरकारी वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने इम्तिहान के शहर की जानकारी हासिल कर सकते हैं। और रियासत में तेज धूप, शदीद गर्मी और उमस से अवामी जिंदगी मुतासर है। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने रियासत में कल से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। मशरकी हिस्सों में कल भी तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश के बेशतर हिस्सों में, खसूसी तौर पर लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और पूर्वांचल में मौसम खुश्क रहेगा और शदीद गर्मी और लू का कहर जारी रहेगा। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
2: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अब शहरी महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अपराजिता।

0: सखियो, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम अपराजिता में, जिसको लेकर हाजिर हूँ मैं सीमा अग्रवाल
1: और मैं सोनिका दलेला। सखियो
0: नमस्कार। सच्चाई के पथ पर चलना सीखो,
1: हर मुश्किल से लड़ना भी सीखो,
0: झूठ गर पैर पसार भी ले
1: तो यकीन मानो सत्य अंततः जीत ही जाए।
0: ये तो बिल्कुल सच कहा सोनिका तुमने। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जब लोग डर, संकोच, नाराजगी के तहत सच बोलने से बचते हैं, घबराते हैं। मानती हो ना इस बात को?
1: बिल्कुल, सच बोलना एक साहसिक गुण है, लेकिन जब हम सही बात के लिए आवाज उठाते ना सीमा, तो हमारे अंदर का आत्मविश्वास और भी मजबूत हो जाता है,
0: और इसके साथ साथ दूसरों को भी सत्य का साथ देने की प्रेरणा मिलती है।
1: देखो, बात कर महिलाओं की करें ना, तो महिलाओं के जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आती है ना, जहाँ पे वो अपनी बात कहने में संकोच करती हैं।
0: हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा। अब देखो ना सोनिका, हम महिलाएं परिवार की धुरी हैं, मानती हो ना? और हम सब घर परिवार की देखरेख बहुत अच्छे से करते हैं। किसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, किसकी क्या ज़रूरत है, सारी बातों का बहुत सलीके से ध्यान रखते हैं।
1: लेकिन सीमा, घर कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि महिला परेशान हो या परिवार में कुछ गलत हो रहा हो ना, तो चुप रहने के बजाय परिवार में अपनी बात स्पष्ट रूप से सम्मानपूर्वक कहें।
0: हाँ, और मैं तुमसे और सारी महिलाओं से ये कहूँगी कि अगर हम सब ऐसा करते हैं तो हमारे परिवार के सदस्य भी हमारी परेशानी और हमारे साथ गलत हुए व्यवहार को समझेंगे, और हो सकता है हम सबके साथ मिलकर सुधार करने का हर संभव प्रयास करें, है ना?
1: बिल्कुल करेंगे। इस प्रकार किसी

0: कामकाजी महिला को कार्यस्थल पर उसकी योग्यता के अनुसार कभी कभी अवसर नहीं मिल रहा हो
1: या उसे कम तरह का जाता हो या उसकी सहकर्मी सोनिका उसके साथ अनुचित व्यवहार करते हैं,
0: तो ऐसी समस्याओं में सीमा चुपचाप सहे नहीं बल्कि अपनी आवाज उठाए। ये कोई नई बात नहीं है ना सीमा, इसे विसिल ब्लोइंग भी कहते हैं।
1: हाँ, ये बात तो सही कही। अच्छा, एक बात और मैंने देखी है कि बात अगर हम शिक्षा की करते हैं तो अक्सर ये भी देखा है कि लोग लड़के लड़कियों को खास करके लड़कियों को आगे पढ़ने से रोक देते हैं।
0: सही कहा सीमा, और उनको उनके मन मुताबिक करियर चुनने के अधिकार से भी उनको वंचित कर देते हैं।
1: ऐसे में सोनिका, लड़कियों को चुप रहने के बजाय अपने माता पिता से अपनी बात कहनी चाहिए कि वो करियर में क्या करना चाहती हैं, उन्हें क्या पढ़ने की ज़रूरत है, और जिससे और साथ ही वो ये भी समझा सकती हैं कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं है बल्कि
0: जीवन को बेहतर बनाने का माध्यम भी है। उनके इस प्रयास से उनके माता पिता उनकी बात को समझेंगे और साथ ही साथ, है ना, उनका साथ भी देंगे।
1: और जब साथ मिलता है तो मनोबल बढ़ ही जाता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन सोनिका, ये तो अभी हमने करी परिवार, शिक्षा और कार्यस्थल की बात, लेकिन समाज की रूढ़िवादी सोच, भेदभाव और अन्याय का क्या करें जिससे लगभग हर महिला को दो चार होना पड़ता है।
0: ऐसे में सच बोल करके अपनी आवाज उठाएं सीमा और समाज को जागरूक करने में अपना सहयोग दें।
1: अच्छा, मुझे एक और पक्ष का ध्यान आता है जो हमारा सहयोग करता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कई बार वो अच्छी खबरें फैलाते हैं, अच्छी खबरें दिखाते हैं कि जिसमें महिलाओं के साथ कुछ अनुचित हुआ है लेकिन महिलाओं ने आवाज उठाई है, वो कई बार उसको सही तरीके से प्रस्तुत भी करते हैं, और ऐसे में मतलब हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी बढ़ के आगे आएं।
0: बिल्कुल। किसी महिला ने आवाज उठाई या किसी ने शिक्षा के अधिकार के लिए संघर्ष भी किया, इन सब बातों का जिक्र समाचार पत्रों, मीडिया हमारी कर ही देती है।
1: बिल्कुल।
0: और
1: सही
0: इन बातों से पता है सीमा, ये संदेश मिलता है कि हमें सच बोलने का साहस करना चाहिए और अपनी बात स्पष्ट रूप से समाज में कहनी चाहिए। हो सकता है समाज में इससे बदलाव आए।
1: लेकिन पता है सोनिका, मुझे एक बात का और लगता है कि कई बार महिलाएं कुछ गलत होता है तो बताती नहीं है, चुप रह जाती हैं, और डर उनके अंदर ये होता है कि मान लो कहीं हमने किसी के खिलाफ शिकायत कर दी, है ना, तो कहीं हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हो जाए जो कुछ गलत ना हो जाए या हमारे परिवार वालों पे आंच नहीं आ जाए, इस डर से वो चुप रह जाती हैं।
0: बिल्कुल, है चुप रह जाती हैं। लेकिन और ऐसे में चुप ना रहें, अपनी आवाज उठाएं। देखो सीमा, रास्ता कठिन है पर इसमें आत्मसम्मान है, क्योंकि बहनों सत्य की राह भले ही कठिन हो
1: पर मंजिल बड़ी खूबसूरत होती है। और
0: ऐसे में अपना मनोबल जरूर बढ़ाएं कुछ इस गीत की तरह।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: पुनः स्वागत है कार्यक्रम अपराजिता में। बहनों, अभी हमने आरंभ में अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की बात करी,
3: साथ ही ये भी चर्चा करी कि कैसे हम अपने छोटे छोटे प्रयासों से अपनी बात दूसरों के सामने रख सकते हैं और समाज में बदलाव भी ला सकते हैं।
2: अरे सीमा, बदलाव नहीं क्रांति।
3: हाँ, और पता है क्रांति के भी कई रूप होते हैं।
2: क्या, बताओ तो जरा।
3: जैसे कि क्रांति ना लेखनी के द्वारा भी लाई जा सकती है, यानी कि कलम के द्वारा।
2: हाँ बिल्कुल सही बात। और इसी क्रम में देखो, हमारी दो सखियों ने अपनी लेखनी के द्वारा इसी कार्य को करने का प्रयास भी किया है, और तो और हमने उन्हें अपने स्टूडियो में भी आमंत्रित किया है कथा काव्य गोष्ठी में, और जिसका संचालन कर रही हैं ममता उपाध्याय। तो सीमा चलो सुनते हैं।
3: बिल्कुल सोनिका, और अपनी सखियों को भी सुनवाते हैं कथा काव्य गोष्ठी।
4: सखियों, शब्द शब्द मिलकर रचते हैं हमारी भावनाओं का अनूठा संसार। कुछ शब्द गाते गुनगुनाते थोड़े में ही दिल का हाल सुना देते हैं, तो कुछ शब्द जोड़ते हैं घटनाओं के क्रम, भावनाओं का उतार चढ़ाव, और फिर रचते हैं एक दिलचस्प कथानक। तो चलिए चलते हैं शब्दों और भावनाओं के संसार में काव्य कथा गोष्ठी के माध्यम से। आज हमारे साथ दो सखियां हैं, अपनी कविताओं के साथ पूनम सिंह अद्वितीय, और अपनी कहानी को लेकर उपस्थित हुई हैं शालिनी राय निगम जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
5: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
6: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
4: शालिनी जी और पूनम जी, आप दोनों अपनी अपनी रचनाओं के साथ आज हमारे साथ जुड़ी हैं, और हमारी सखियां इंतजार कर रही होंगी आपकी रचनाओं का। तो गोष्ठी की शुरुआत हम करना चाहेंगे पूनम जी की कुछ कविताओं के साथ। तो पूनम जी, अपनी कविताओं के साथ आप आरंभ कीजिए आज की काव्य गोष्ठी का।
5: मैं पहली कविता आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ, जिसका शीर्षक है कोरे सपने सजाना नहीं आता। मुझे नहीं आता कोरे सपने सजाना, मैं मन की देखी साकार करूँगी। मुझे नहीं आता कोरे सपने सजाना, मन की देखी साकार करूंगी। माना कि हर एक कल्पना सच होती ही कब है, माना कि हर एक कल्पना सच होती ही कब है, पर एक आशा को लेकर सारी रात चलूंगी।
4: बहुत खूब।
5: मैं रही असंभव के सहारे, संभव होने का प्रयास करूंगी। मौसम बदलेगा अपने क्रम से, मौसम बदलेगा अपने क्रम से, पर

0: मैं हर क्षण तेरी यादों से श्रृंगार करूंगी, मैं हर क्षण तेरी यादों से श्रृंगार करूंगी।
1: पूनम जी, आपकी ये पंक्तियां बहुत लाजवाब हैं।
0: मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है वह मेरा नहीं। वह मेरा नहीं, फिर भी उसे खोने का डर सबसे ज्यादा है।
1: बहुत सुंदर।
0: वो खामोशी से उतर रहा मेरी देह में, उसकी चंचल आंखें जब भी ठहरती हैं मेरे समीप, छोड़ जाती हैं बहुत से अनकहे शब्द। उसकी चंचल आंखें जब भी ठहरती हैं मेरे समीप, छोड़ जाती हैं बहुत से अनकहे शब्द। उन शब्दों को मैं समेटती हूँ, क्रम से सजाने का प्रयास करती हूँ। उसकी आंखों की कोर में एक चमकता हुआ तारा है जो मुझे हमेशा से आकर्षित करता है। उसकी अजान बाहु फैली रहती हैं हमेशा से मेरे लिए, ललायत हैं कस लेने को मुझे। देखती हूँ जब मैं उसका विशाल वृक्ष, समाहित होने लगती हूँ बिल्कुल वैसे ही जैसे समाहित होती है नदी सागर में। परिभाषित करती हूँ खुद को तो सिर्फ लिख पाती हूँ उसका नाम जो मेरा नहीं है, पर उसे खोने का डर आज भी सबसे ज्यादा है।
1: वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
2: पूनम जी ने अभी हमें अपनी दो कविताएं सुनाई, एक में कुछ भाव थे कुछ कर दिखाने की, और एक में कुछ भय है प्रेम के प्रति। और अब चलते हैं शालिनी जी की तरफ। शालिनी जी, आपकी कहानी का शीर्षक क्या है?
1: मेरी कहानी का शीर्षक है मोबाइल पाश।
2: शालिनी जी, मोबाइल प्रेम के तो बहुत चर्चे होते हैं, अब कहानी मोबाइल पाश में क्या अनोखी बात आपने लिखी है? आइए सुनते हैं इस कहानी के माध्यम से।
1: ये क्या किया तूने प्रिया? माँ की आवाज पर और अपने फोन पर अचानक हुए आक्रमण पर सिर उठाकर प्रिया ने देखा। चारों तरफ काला धुआं भरा हुआ था। दरअसल अनवी ने आम का अचार डाला था और पड़ोस में रहने वाली रिधिमा की दादी को अचार देने गई थी, और जाते वक्त प्रियंवदा को निर्देश देकर गई थी कि गैस पर दूध चढ़ा है, जब खौल जाए तो गैस बंद करके उस पर जाली ढक देना जिससे अच्छी सी मलाई पड़ जाए। परंतु प्रियंवदा तो मोबाइल पाश में इस तरह से जकड़ी हुई थी कि उसे ना ये ख्याल रहा कि माँ दूध चढ़ाकर गई हैं, और ना ही ये ख्याल रहा कि दूध उबलकर जल चुका है, और यहाँ तक कि दूध का बर्तन भी जलकर एकदम काला हो गया है। और तो और, उसे पूरे घर में धुआं भरने का भी पता ना चला। घर में प्रवेश करते ही माँ के होश उड़ गए। पूरे घर में काला धुआं भरा हुआ था। अन्वी किसी अनहोनी के डर से कांपती हुई रसोई घर तक पहुंची। वहां का दृश्य देखकर उसे ये समझते देर न लगी कि उनकी लाडली को दीन दुनिया की खबर ही नहीं है, वो तो मोबाइल प्रेम में आकंठ डूबी हुई है। रसोई घर से प्रियंवदा के बेडरूम तक अनवी पूरे घर का मुआयना करके भी आ गई, परंतु प्रियंवदा तो पूर्ण रूप से तन और मन से मोबाइल प्रेम में लिप्त थी। ये दृश्य देखकर अनवी के क्रोध की प्रचंड ज्वाला और भी तीव्र हो गई। प्रियंवदा के हाथ से फोन छीनते हुए अनवी ने क्रोध में लगभग चीखते हुए कहा, ये क्या किया तूने प्रिया? किसी दिन तेरा ये मोबाइल प्रेम कोई ना कोई हादसा करवा कर ही रहेगा। मोबाइल हाथ में लेते ही तेरी सुध-बुध कहाँ खो जाती है? ये लगभग हर दिन की कहानी थी। कभी एक हाथ से मोबाइल थामे और दूसरे हाथ से खाने की टेबल लगाने में हाथ से छूटकर बर्तन या खाना जमीन पर गिर जाना, कभी फ्रिज से कुछ निकालते वक्त चीजों का बिखर जाना, कभी कोई जरूरी निर्देश अनसुना करना, तो कभी किसी गलत रूट की मेट्रो में चढ़ जाना। हर बार अनवी का कुछ समय के लिए प्रेमवदा का फोन छीन कर जब्त कर लेना, मगर फोन जब्त होने के कारण, उसके कॉलेज की कई महत्वपूर्ण सूचनाएं समय से ना मिलने के कारण उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता। अंततः हार कर अनवी को उसे फोन वापस देना पड़ता। फोन वापस मिलते ही प्रेमवदा फिर से मोबाइल भक्ति में लीन हो जाती। हर माँ की तरह अनवी भी प्रेमवदा की सुरक्षा और भविष्य के लिए चिंतित रहती थी। जब भी समय मिलता, अनवी उसे नैतिक मूल्यों और संस्कारों की बातें बताती और समझाती, परंतु उसके कानों में तो जूं तक ना रेंगती थी। बल्कि इन सब बातों के उत्तर में प्रेमवदा अनवी को ऐसी ऐसी रील्स भेजती जिसमें बच्चे अपने माँ बाप की इन्हीं आदतों से त्रस्त दिखाई पड़ते। ये सब देख सुनकर अनवी को ये महसूस होता कि प्रियंवदा को मोबाइल दिलवा कर उसने स्वयं ही एक बोतल में बंद जिन को बोतल के बाहर निकाल दिया है, जो अब उसे ही खाने को आतुर है। रात को भी पढ़ाई के नाम पर देर तक जागना और सुबह अपने कॉलेज के वक्त से कुछ देर पहले जाग कर भागते दौड़ते कॉलेज पहुंचना, देर होने पर अटेंडेंस ना मिलने, फिर परीक्षा के वक्त ढेरों परेशानियां। उफ, प्रिया क्या करेगी तू आगे अपनी लाइफ में? मैं तो तंग आ चुकी हूँ तेरी हरकतों से।

0: अन्वी भी टोक टोक कर हताश हो चुकी थी। अन्वी कभी जब अपनी हम उम्र महिलाओं से इसका जिक्र करती तो इस संबंध में हर महिला की फेहरिस्त अन्वी से भी लंबी होती। हर स्त्री को परिवार का दायित्व, बच्चों की चिंता, बुजुर्गों की देखभाल और घर बाहर की सभी व्यवस्थाएं बहुत कुछ करना पड़ता है। तुम्हारा उजला रूप, तुम्हारी मोहक मुस्कान, तुम्हारी मोहिनी अदाएं मुझे दीवाना करती हैं। ये पंक्तियां पढ़कर प्रियंवदा अपने आप को रोक ना सकी और तुरंत प्रत्युष को रिप्लाई किया, क्या बात है मिस्टर शायर, आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हो? प्रियंवदा ने सवाल किया। तब भला प्रत्युष जवाब देने में कैसे पीछे रहता? तुम्हारे चेहरे को पढ़ने के बाद भला अब और क्या पढ़ना है? कुछ माह पूर्व एक शैक्षिक भ्रमण के दौरान प्रत्युष और प्रियंवदा की मुलाकात हुई थी। मुलाकात तो नहीं कह सकते, हाँ दोनों ने एक दूसरे को देखा भर ही था। कुछ दिनों के बाद प्रत्युष ने जब अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तब प्रोफाइल में प्रत्युष को पहचान कर प्रियंवदा ने उसकी मित्रता स्वीकार कर ली। तब से ही दोनों की घंटों चैटिंग चलती रहती। दरअसल दोनों ही स्नातक के अंतिम वर्ष में थे और सेवा परीक्षा की तैयारी से संबंधित बातों से ही ये सिलसिला शुरू हुआ था, जो अब शेरो शायरी, किताबों, फिल्मों, रेस्टोरेंट, मॉल और भ्रमण स्थानों से गुजरता हुआ फैशन, खान पान, रिचार्ज प्लान और नए नए मोबाइल लॉन्च की बातों तक पहुंच गया था। बावजूद इन सबके अन्वी की हिदायतों का कुछ तो प्रभाव प्रियंवदा पर था ही कि वो कभी भी प्रत्युष से मिलने नहीं गई, हालांकि प्रत्युष ने कई बार उससे मिलने का आग्रह किया था। उपहार स्वरूप कई प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें प्रत्युष भेजता रहता था, पर जब किताबों से आगे निकलकर कभी कोई ड्रेस, घड़ी, एयरपॉड और बैग वगैरह भेजना शुरू किया तो अन्वी को ये सब अजीब लगा और उसने प्रियंवदा से पूछा, प्रिया आखिर ये सारे उपहार तुझे कौन भेजता है? प्रियंवदा ने माँ को सब कुछ विस्तार से बता दिया और उसे आश्वस्त किया कि वो कभी भी प्रत्युष से मिलने नहीं गई। अन्वी ने उसे सख्त हिदायत दी कि इंटरनेट की दोस्ती बहुत विश्वसनीय नहीं होती है, इसलिए ये सब तुरंत ही बंद कर दे, नहीं तो पापा को पता चलते ही वो आसमान सिर पर उठा लेंगे। इस बार न जाने कौन सा चमत्कार हुआ कि ये सारी बातें प्रियंवदा को समझ में आ गईं और उसने प्रत्युष से चैटिंग करना बंद कर दिया। कई बार प्रयास करने के बाद भी जब प्रियंवदा ने उसकी बातों और मैसेज का जवाब नहीं दिया तो प्रत्युष ने नए नए नंबरों से संपर्क साधने की कोशिश की। जवाब न मिलने पर उसकी तल्खी बढ़ने लगी। कभी अपशब्द भरे संदेश, कभी धमकी और कभी पापा को बता देने की धमकी भेजकर वो अपना वो रूप दिखा रहा था जिसकी प्रियंवदा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो उसे ये भी धमकी दे रहा था कि उसकी तस्वीरें, जो कभी उसने खिंचवाई ही नहीं थी, वो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित कर देगा। ऐसी दूषित मानसिकता वाले प्रत्युष से अगर प्रियंवदा बात करती तो ये उसे स्वयं के लिए ही लज्जाजनक लगता, और ना करती तो दिनों दिन बढ़ती प्रत्युष की धमकियां उसे तंग कर रही थी। वो ये सब सोच सोच कर तनावग्रस्त हो रही थी। प्रियंवदा की सबसे प्रिय और खास सहेली थी रुचिका, जो उसे बचपन से जानती थी। लंबे समय से वो प्रियंवदा को तनाव में देख रही थी। उसने अवसर निकालकर प्रियंवदा से जानने की कोशिश की, देख प्रिया, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, मैं तुझे इस तरह तनाव में नहीं देख सकती। मुझे बता, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे तेरी समस्या का। तू यकीन मान, कोई समाधान तो निकल ही आएगा। तू बिल्कुल रिलैक्स होकर मुझे सबसे पहले अपनी समस्या तो बता। रुचिका का सामीप्य और अपनत्व प्रियंवदा को पिघला गया। उसने सिलसिलेवार सारी बातें रुचिका को बताई और रो पड़ी। बस इतनी सी बात, तू परेशान मत हो, सबसे पहले तो उसे ब्लॉक कर, उसके बाद हर सोशल साइट पर उसकी रिपोर्ट कर। वैसे तो इतने में ही काम बन जाएगा, अगर नहीं बनता तो साइबर क्राइम सेल में भी उसकी रिपोर्ट कर। और हाँ, आंटी अंकल को अपने विश्वास में लेकर सारी बातें बता, जिससे उन्हें कहीं बाहर से ये बातें पता चलें तो वो लोग उसके जवाब के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। प्रियंवदा ने रुचिका के बताए अनुसार ही सब किया। उसकी तो समस्याएं धीरे धीरे हल हो रही थी, परंतु प्रत्युष की समस्याएं बढ़ रही थीं। कोई रास्ता न दिखने पर प्रत्युष सीधा प्रियंवदा के घर जा पहुंचा और उसके पापा को अपशब्द कहने लगा और तरह तरह की धमकियां भी देने लगा। सौभाग्य से उस वक्त रुचिका भी प्रियंवदा से मिलने आई हुई थी और उसके घर पर ही उपस्थित थी। उसने तुरंत पुलिस को सूचित किया। प्रत्युष को पुलिस को सौंपकर प्रियंवदा सहित सबने चैन की सांस ली। प्रियंवदा ने अपने माता पिता से क्षमा मांगी। उसका मोबाइल पाश भंग हो चुका था।
1: शालिनी जी, आपने जो कहानी सुनाई मोबाइल पाश, वो सचमुच में हम सबको सोचने के लिए मजबूर करती है और

0: हमें संकेत भी करती है कि हम सजग हो जाएं, सतर्क हो जाएं। आप क्या कहना चाहेंगी पूनम जी, शालिनी जी की इस कहानी पर?
1: शालिनी जी की कहानी इस समय जो बहुत विकराल समस्या के रूप में हमारे बीच में है, बच्चे पूरे दिन मोबाइल में लगे रहते हैं जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे उनके मानसिक स्वास्थ्य में भी बहुत सी कमियां आ रही हैं, जिसे हमें डॉक्टर हमेशा सचेत करते हैं कि हमें बच्चों को मोबाइल से बहुत दूर रखना चाहिए। और यह बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर इन्होंने कहानी लिखी, और सभी जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनके विचार

0: हैं जिसे हमें डॉक्टर हमेशा सचेत करते हैं कि हमें बच्चों को मोबाइल से बहुत दूर रखना चाहिए, और यह बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर इन्होंने कहानी लिखी, और सभी जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनके विचारों से जरूर
1: सहमत होंगे,
0: सहमत होंगे
1: और
0: जी।
1: जो साइबर अपराध की दुनिया है उस पर भी बच्चे फंस जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो बच्चे भी सावधान रहें और माता पिता भी। और अब
0: जी
1: हम फिर रुख करते हैं पूनम जी आपकी तरफ और आपकी कविताओं का आनंद लेते हैं।
0: मैं कविता रख रही हूँ पिता के लिए।
1: पिता के लिए तो कोई दिन दिवस होता नहीं है पूनम जी वैसे तो, पर जून माह में हम तीसरे रविवार यानी इस बार हम 21 जून को फादर्स डे मनाने जा रहे हैं, तो आपकी कविता भी उस संदर्भ में हमारी सखियां सुनेंगी।
0: जी बिल्कुल। पिता ऐसी विशाल एक वृक्ष की गहन छाया है जिसके नीचे हम सभी बहुत सुकून से रहते हैं। तो मैं कविता रखना चाहती हूँ, हम सभी अपने पिता को समर्पित करते हैं। पिता, तुम मेरे संबल हो, तुम पुरुषार्थ के सजीव स्वरूप हो जिसके जीवन का प्रत्येक क्षण अथक श्रम को समर्पित है। तुम्हारी संचेतना की पावन छाया में ही मेरा यह संपूर्ण व्यक्तित्व विकसित है। यदि माँ वात्सल्य की बहती सरिता है तो तुम अडिग धैर्य के अटूट शिखर हिमालय हो। तुम इस निष्ठुर संसार के तीव्र झंझावतों में तुम ही मेरे जीवन का एकमात्र संबल हो।
2: बहुत सुंदर।
0: तुम्हारे अंतस का मौन किसी गूढ़ उपनिषद के सत्य जैसा गंभीर है। बाहर से वज्र सदृश कठोर दिखते हो पर भीतर से तुम करुणा के असीम नीर हो। तुम्हारी ललाट की स्वेद रेखाएं मेरे स्वर्णिम भविष्य की गौरवशाली भूमिका है। तुम्हारी उंगली थाम कर आगे बढ़ना जैसे संपूर्ण सृष्टि को जीतना है। संसार की कोई भी लेखनी तुम्हारे इस मूक त्याग का मूल्यांकन नहीं कर सकती।
2: क्या बात कही आपने।
0: समस्त शब्दावली संकुचित रह जाएगी पर तुम्हारी महिमा की सीमा नहीं लिख सकती। यदि मैं मात्र एक लघु स्पंदन हूँ इस नश्वर धारा पर तो पिता तुम मेरे स्वाभिमान और उच्च आदर्शों को रचने वाले कालजयी विधाता हो।
1: पिता पर आपकी ये मर्मस्पर्शी जो पंक्तियाँ थीं उसे सुनकर मुझे लगता है कि हमारी सभी सखियाँ अपने अपने पिता को याद कर रही होंगी। और अब हम आपकी अगली कविता की ओर चलते हैं, वो किस विषय पर है पूनम जी?
0: वो पिता के पिता पर।
1: अच्छा, दादाजी पर आप आ
0: दादा
1: रही हैं
0: जी
1: क्या?
0: पर।
1: अच्छा, और हम 15 जून को इंटरनेशनल अब्यूज अवेयरनेस डे भी मना रहे हैं, तो पूनम जी क्या कहना चाहती हैं आप हमारे बुजुर्गों के लिए?
0: मैं कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से पिता एक घने पेड़ की छाया है उसी प्रकार से जो हमारे दादा हैं या दादी हैं वो हमारे जीवन का वट वृक्ष हैं।
1: जी,
0: तो मैं सभी दादा दादियों को अपनी कविता समर्पित करती हूँ, आशा करती हूँ कि सबको पसंद आएगी।
1: बिल्कुल इरशाद।
0: हर क्षण अर्पित है जीवन को, जीवन अर्पित है अपनों पर, मत ठहरे यहाँ ये नहीं मंजिल, एपथिक अभी चलना होगा। ये जीवन की सांझ नहीं, दिन कर बन

0: होगा।
1: अरे वाह वाह, क्या बात कही आपने।
0: और बनना होगा वट वृक्ष कुटुंब का, छांव सदा रखना होगा, आशीष स्नेह की बयार बन पथ सुरभित करना होगा, आशीष स्नेह की बयार बन पथ सुरभित करना होगा। ये जीवन की सांझ नहीं दिन कर बन कर उगना होगा। और क्या करना होगा
2: बताइए।
0: बंधना होगा बचपन की डोर से, बंधना होगा बचपन की डोर से, फिर बच्चा बनना होगा। ये नौ निहाल हो वे विशाल, तुम्हें अपने सा गढ़ना होगा। ये नौ निहाल हो वे विशाल, तुम्हें अपने सा गढ़ना होगा। मत ठहर यहाँ ये नहीं मंजिल, ऐ पथिक अभी चलना होगा।
1: बहुत बहुत सुंदर।
2: जीवन का आधार हैं हमारे पिता और हमारे बुजुर्ग। इन्हें समर्पित पूनम जी की कविताओं ने सखियों आप सभी के दिल को अवश्य छुआ होगा। सखियों आज की काव्य कथा गोष्ठी में आपने पूनम सिंह अद्वितीय की कविताओं के साथ सुनी शालिनी राय निगम जी की कहानी मोबाइल पाश। इतनी

0: रचनाओं को हमारी सखियों के समक्ष सुनाने के लिए आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य की खुशबू से सुगंधित काव्य कथा गोष्ठी के आज के अंग को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।
1: सखियो, अभी आप सुन रही थी काव्य कथा गोष्ठी, जिसका संचालन कर रही थी ममता उपाध्याय, और भाग लेने वाली महिलाएं थी शालिनी राय निगम और पूनम सिंह। सखियो, उम्मीद करते हैं आपको ये कथा काव्य गोष्ठी बहुत पसंद आई होगी। क्या कहती हो सोनिका? अरे सोनिका, तुम कहाँ खो गई?
2: अरे अरे कुछ नहीं, बस अपने गाँव की याद आने लगी।
1: गाँव की याद अचानक इस समय? भाई क्यों?
2: पता है, इस बार जब मैं गांव गई थी।
1: तुम गांव कब गई थी?
2: अरे अभी पिछले हफ्ते तो गई थी, और 6-7 दिन रह के आई हूँ। पता है, गांव की मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और दोस्तों के साथ बिताए हुए वो पुराने दिनों की यादें जब करती हूँ ना, तो मन सुकून से भर जाता है।
1: हाँ सच में, गांव की खुशबू, अगर कहें जब बारिश आती है उसकी जो मिट्टी की खुशबू आती है ना,
2: सोंधी सोंधी खुशबू।
1: हाँ, तुम अभी बात कर रही हो तो मुझे एकदम से कहते ना, नथनों में वो खुशबू आ गई सोंधी सी मिट्टी की। और तुम्हारी बातें सुन के मुझे भी ये याद आ रहा है अपना बचपन, कि जब मैं छोटी थी और अपने मामा जी के घर जाती थी।
2: अच्छा?
1: तो वहां पे मैंने मिट्टी के घर बनाए, गुड्डे गुड़िया खेले, और बताए शादी तक करी। मेरी एक सहेली थी, वो गुड्डा बनाती थी, मैं गुड़िया बनाती थी, और मेरी गुड़िया उसको बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाना, और उसके माथे में मम्मी की बिंदी, रोली वाली बिंदी लगाती थी, और मतलब फॉल की साड़ी बना के पहनाती थी।
2: और शादी कर ली ना तुमने, तो ये बताओ तुम शादी जब करती थी तो मिठाई उठाई खिलाती थी कि नहीं खिलाती?
1: हाँ, वो मम्मी जो घर में लड्डू और मैदा की मच्छियाँ वगैरह बनाती थी, तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके, कि जैसे दावत हो रही है।
2: अच्छा, लेकिन मीठा और नमकीन साथ साथ रहता था।
1: हाँ, और वो साथ ही उसके साथ ना उनका दहेज का देने के लिए, मतलब दहेज देना सही बात तो नहीं है, लेकिन बचपन में हमें कुछ पता नहीं होता, तो वो लकड़ी के जो खिलौने आते थे ना, लाल पीले नीले वो काले, बेलन चकला, सारा कुछ खेलते थे।
2: बाप रे बाप।
1: हाँ, और इतना अच्छा लगता था। देखो तो बातें करते करते मुझे लग रहा है,
2: इसलिए देती थी ना कि हमारी गुड़िया को कोई सुनाए ना।
1: हाँ सच में, कितने खूबसूरत दिन थे ना वो बचपन वाले।
2: सही बात है, वो मिट्टी के हाथी, घोड़े, लकड़ी के बैल, और पता है जो तुम बताती थी ना, गुड्डा गुड़िया से मैंने भी खेला था, लेकिन जब हम उसके बारे में सोचते ना तो ऐसे लगता है कि अपने बचपन में मैं वापस लौट आई हूँ।
1: हाँ बात तो सही कही। अच्छा देखो, ये जो पारंपरिक तरीके के खिलौने और हमारी जो संस्कृति का हिस्सा है, जैसे गुड्डे गुड़िया खेलना, या मतलब ऐसे छोटे छोटे खेल खेले हमने जो, तो हमारी लोक कला को कितना समृद्ध करते थे, है कि नहीं? और ये मतलब वस्तुएं, खिलौने लकड़ी वाले, सिर्फ खेलने की चीज़ नहीं थी, बल्कि हमारी सोच, हमारी एक तरीका, इस सबको डेवलप करते थे, हमारे मानसिक खुशी को बढ़ाते थे।
2: हाँ हाँ, और इससे हमारी परंपरा, मतलब कहते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, हम भी अपने बच्चों को ये कोशिश करते हैं कि यही सब सिखाएं, है ना।
1: हाँ।
2: देखो ये जो खिलौने होते थे परंपरा को तो बढ़ाते थे, साथ ही ये पर्यावरण के भी अनुकूल होते थे।
1: हाँ।
2: और इससे हमारे बच्चों के मानसिक रचनात्मक विकास में भी ये सहायक होते थे, ऐसा हमारे मम्मी पापा मानते थे और हमारे बड़े मानते थे, है ना।
1: पर पता है, आज भी जब हम बात कर रहे हैं, मैं सोच रही हूँ कि आज हमारे बच्चे आजकल सिर्फ गैजेट्स में फंस गए हैं, है ना, ये सब चीज़ें बिल्कुल खेलते नहीं हैं, उनके पास होते नहीं हैं। जबकि मेरे, मैं अपनी बात फिर से करूं तो जब मेरी बेटी हुई तो मैंने उसको ये मेलों में ले जाके ये खिलौने दिलवाए, जिससे उसे भी पता लगे कि ये सब चीज़ें कितनी अमूल्य हैं हमारे उसके लिए।
2: और जो खिलौने बेचने वाले लोग आते थे ना, तो कितने अच्छे होते थे, है ना।
1: हाँ।
2: कुछ इसी तरह का ये गीत भी कहता है, चलो
1: चलो सुन लेते हैं गीत।

0: सखियो, उम्मीद करते हैं आपको भी लकड़ी के खिलौने वाला गाना सुनकर बचपन याद आ गया होगा। इसी के साथ सखियों को कुछ और कह दें,
1: कुछ गर्मी की बातों से बात कर लेते हैं ना।
0: हाँ।
1: तो जैसे गर्मी में हम ये कर सकते हैं कि खूब पानी पिएं
0: और हल्का और ताज़ा खाना खाएं,
1: ढीले और हल्के कपड़े पहने,
0: धूप से बचें, छाता लगाकर और ठंडी चीज़ें खूब सारी पिए, है ना।
1: देखो ये तो तुमने सीमा बात करी है कि गर्मी में करें, लेकिन हमें ये भी बात ध्यान रखनी है कि गर्मी में हम क्या ना करें।
0: बता
1: देखो
0: दो
1: भाई, खाली पेट घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें
0: और तला भुना खाना बिल्कुल ना खाया जाए, भारीपन ना हो शरीर में जिससे।
1: हाँ, क्योंकि ऐसे तला भुना खाने से अपच जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।
0: और फिर से कहेंगे पानी बहुत ज़्यादा पिए। और इसी बात के साथ हम सखियों विदा लेंगे, क्योंकि सोनिका देख रही हो घड़ी का टाइम टिक टिक टिक टिक कर रहा है।
1: बिल्कुल सही बात है कि समय पे हम समय की बात कर लेते तो कार्यक्रम से मैं आपसे विदा लेते, पुनः किसी कार्यक्रम में आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए मुझे यानी सोनिका दलेला
0: और मुझे यानी सीमा अग्रवाल को दीजिए विदा।
1: नमस्कार, नमस्कार।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी शहरी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम अपराजिता। मीडियम वेव के मीटर पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है और अब फौजी भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम जवानों के लिए।

फौजी भाइयों जय हिंद। पत्र और ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पास ये पहला पत्र आया है राजनगर मधुबनी से। कुशवेश्वर प्रसाद गुप्ता, दादा ठाकुर, शारदा गुप्ता, रंका रानी, मौसम गुप्ता, संगीता गुप्ता, रुद्र गुप्ता और रिद्धि गुप्ता का आप सभी सुनना चाहते हैं हमराज फिल्म का गीत महेंद्र कपूर की आवाज़ में। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

और ये मेल हमारे पास आया है राजनगर गांधी चौक से। मंजीत गुप्ता, सोनाली गुप्ता, सूर्यांशी गुप्ता, कोमल गुप्ता, मेनका गुप्ता, माधवी, साध्वी, तन्मय राज और गुनगुन का। आप सभी सुनना चाहते हैं चांदनी फिल्म का गीत सुरेश वाडेकर और नितिन मुकेश की आवाज़ में। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

और ये मेल हमारे पास आया है सेक्टर मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज का। और आप सभी सुनना चाहते हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की 747 किलो हर्ट्ज पर और कार्यक्रम चल रहा है जवानों के लिए। और ये मेल हमारे पास आया है अलीगंज जिला एटा उत्तर प्रदेश से दीपक शाक्य ज्योति शाक्य सक्षम शाक्य का। आप सभी सुनना चाहते हैं सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

और कार्यक्रम का आखिरी मेल हमारे पास आया है ग्राम पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु पाल का, और आप सुनना चाहते हैं ब्लैकमेल फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

फौजी भाइयों, ब्लैकमेल फिल्म के इस गीत के साथ ही जवानों के लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। फौजी भाइयों, जय हिंद।

मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का

0: इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016

0: 2017 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12 लाख हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गयी। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गयी। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
2: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल

सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बुला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम विज्ञान और किसान। कार्यक्रम में डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्र जानकारी दे रहे हैं धान उत्पादन की उन्नत तकनीक विषय पर। आपसे बात कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां खरीफ के मौसम में धान उत्पादन की योजना बनाए हैं तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं संयुक्त कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्रा साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां किसान भाई बहन खरीफ में धान उत्पादन की योजना बनाए हैं तो क्या सलाह है आपकी?
2: सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। सबसे पहले तो हम किसान भाइयों को सलाह देते हैं कि वह अपने खेत को अच्छी प्रकार से जांच लें, देख लें, मिट्टी की जांच अवश्य करा लें, साथ में देखें कि क्या उनकी स्थानीय परिस्थिति है, जैसे जलवायु, मिट्टी, सिंचाई के साधन, कहीं वहां जल भराव तो नहीं हो रहा है। इस प्रकार की स्थिति देख के ही प्रजातियों का वो चयन करें। जब बीज की बात आती है तो वो निश्चित रूप से प्रमाणित बीज ही अपने पास प्रयोग करें, बीज का शोधन अवश्य करें, मिट्टी की जांच कराने के बाद जो उसमें पोषक तत्व की कमी हो उसका प्रयोग करें।
1: देख सब प्रजातियों की बात कर लें तो अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग चुनाव है, जैसे कहीं संकर धान लगाना चाहते हैं, कहीं सुगंधित धान है, कहीं समस्याग्रस्त भूमि है, कहीं कम दिन की अवधि की, कहीं मध्यम, कहीं अधिक दिन की, तो क्या प्रजातियों के बारे में?
2: देखिए, ऐसा है, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। किसान भाइयों को हम लोग सलाह भी देते हैं कि सबसे पहले देख लें कि यदि उन्हें सीधी बुआई करनी है तो कुछ हमारे पास अच्छी प्रजातियां हैं, जैसे गोविंद है, नरेंद्र 118 है, नरेंद्र 97 है, शुष्क सम्राट है, मालवी धान 2 हैं। इस प्रकार की प्रजातियां हैं जिनकी कि किसान भाई सीधी बुआई कर सकते हैं, और यदि उनको असिंचित दशा में भी यानी पानी के सहारे भी इन प्रजातियों से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो जाता है। यदि सिंचित दशा की बात हम करें तो हमारे पास अच्छी प्रजातियां आ गई हैं, जैसे इसमें आपका MTU 7029 भी है, स्वर्णा सबोन भी है, बासमती का भी आ गया है, अच्छी पूसा बासमती 1 है, 2 है, आपका मालवी सुगंध 105 है, मालवी सुगंध 10-9 है, तो इस प्रकार की प्रजातियां भी हमारे पास आ गई हैं।
1: और संकर प्रजातियों में?
2: संकर प्रजातियों में देखिए बहुत ज्यादा प्रजातियां इसमें मार्केट में चल रही हैं
1: जी।
2: उसमें भी आप देखेंगे तो 64-44 बायर का आ रहा है, 27P73 आ रहा है, और संकर प्रजातियों में हम किसान भाइयों से ये कहते हैं कि जो भी प्रजातियां उनके पास संकर का लें वह यह देख लें कि वह प्रजाति नोटिफाइड जरूर हो
1: जी,
2: क्योंकि तमाम किसान भाई हम लोगों के पास आते हैं, कहते हैं साहब हमने बाजार से प्रजाति ले लिया, रिसर्च की वैरायटी ले लिया और उसको लगा दिया, खास रूप से पूर्वांचल के क्षेत्रों में, वहां पे बाद में हल्दिया रोग लग गया
1: जी।
2: तो हम किसान भाइयों से कहते हैं कि जब भी वो प्रजाति लें, संकर की लें चाहे ओपन पॉलिनेटर वैरायटी की लें, यानी बिना संकर वाली लें,
1: और रसीद पुर्जा जरूर
2: लें और दोनों प्रजातियों को जब भी लें तो वह प्रमाणित बीज हो।
1: डॉक्टर साहब, धान के नर्सरी प्रबंधन के बारे में क्या

0: सलाह देना चाहते हैं, अभी भी नर्सरी डाल सकते हैं?
1: हाँ बिल्कुल, इसमें जो समय चल रहा है किसान भाई नर्सरी डाल सकते हैं। नर्सरी डालने के लिए जैसा आप सब जानते हैं किसान भाई कि जितने क्षेत्र में उनको खेती करनी है, धान की रोपाई
0: रोपाई
1: करनी है,
0: करनी,
1: उसका कम से कम 1/10-12 भाग में वो नर्सरी डालने, अर्थात यदि उनको 50 बिस्वे में लगाना है या 4 बीघे में लगाना है तो 10 बिस्वे में नर्सरी अपना डाल लें। नर्सरी के लिए खेत को अच्छी प्रकार से तैयारी कर लें, जिसमें कि 3-4 जुताई करके खरपतवार निकाल लें, निकालने के बाद उसमें अच्छे से थोड़ी सी सड़ी गोबर की खाद मिला लें, ट्राइकोडर्मा मिला लें
0: जी
1: और उसको अच्छे से मतलब मिट्टी की तैयारी अपनी कर लें। इसके बाद जो हमारे बीज होते हैं, बीज का शोधन जरूर करें। बीज के शोधन के लिए यदि आप प्रमाणित बीज देते हैं तो बीज हमारा शोधित आता है, नहीं तो कम से कम 2 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से किसान भाई शोधित करें। और धान के बीज के लिए तो होता है भाई कि धान के बीज में जो उनको चाहिए, जैसे 4 बीघे की खेती करना हो और मोटा धान लगाना है उनको, तो करीब 25 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता
0: प्रति हेक्टेयर,
1: प्रति हेक्टेयर, 4 बीघे की बात करता
0: यानी
1: हूं तो
0: ढाई
1: प्रति
0: एकड़।
1: 2.5 एकड़ जी। तो वह उस बीज को लेके पहले रात भर भिगो दें, भिगोने के बाद फिर उसको पानी से निकाल लें, फिर कम से कम उसको 70-72 घंटे यदि उसको छाए में सुखा दें,
0: ताकि अखुआ निकल जाए।
1: थोड़ा सा अखुआ निकल जाए, तो उससे क्या होता है कि फिर जो जमाव में दिक्कत उनको नहीं आती है और उनको पता भी चल जाता है कि हमारे धान का जमाव प्रतिशत कितना है।
0: डॉक्टर साहब, आजकल जहां रोपाई की दिक्कत है, मजदूरों की दिक्कत है, श्रमिकों की दिक्कत है, खेती की लागत कम करनी है, तो धान की सीधी बुआई की भी सलाह देते हैं। तो धान की सीधी बुआई जहां करना चाहते हैं किसान भाई बहन, उनके लिए क्या सलाह है?
1: देखिए, सीधी बुआई में निश्चित रूप से श्रम भी बचता है, आपका समय बचता है, तो श्रम और समय दोनों की
0: और
1: बचत होती
0: लागत
1: है,
0: भी।
1: लागत की भी कमी आती है। यदि पूर्वांचल की हम लोग बात करें या अन्य क्षेत्रों में, हमने भी देखा, बाराबंकी में देखा, उन्नाव में देखा, देवरिया में देखा, मऊ में देखा, बनारस में देखा, तो एक हमारी तकनीकी है DSR यानी डायरेक्ट सीडेड राइस, यानी
0: जी
1: धान की सीधी बुआई। तो उसको धान की सीधी बुआई सीड ड्रिल से भी लोग कर रहे हैं, जीरो टिल मशीन से भी कर रहे हैं, मल्टी क्रॉप प्लांटर आ रहा है उससे कर रहे हैं। तो खेत को अच्छी प्रकार से तैयार करके, और जैसा मैंने बताया कि धान को भिगो को निकाल के उसको 72 घंटे सुखा लें,
0: यानी आंखुआ निकल
1: अगुआ
0: जाए,
1: निकल जाए, इसके बाद उसकी सीधी बुआई कर दें।
0: तो इसकी बुआई कब तक कर लें?
1: इसकी बुआई देखिए करने के लिए हम लोग कहते हैं कि यदि आपकी प्रजाति 80 से 90 दिन की, जैसे मैंने कहा कि नरेंद्र 118 प्रजाति है,
0: या
1: तो उस
0: CO51 है?
1: CO51 है, तो ये सब आपका 90 से 100, 110 दिन में पकने वाली होती हैं। तो इनकी आप यदि सीधी बुआई करना चाहते हैं तो ऐसे मानिए कि 20 से 25 जून तक निश्चित रूप से बुआई इसकी आप कर दीजिए।
0: क्या धान की सीधी बुआई मानसून के पहले ही हो जानी चाहिए?
1: बिल्कुल, धान की सीधी बुआई यदि आपके पास खेत में नमी है और आपको लगता है कि मानसून आने वाला है तो आप सीधी बुआई कर सकते हैं, और एक यदि आपके पास पानी का साधन हो तो एक आध पानी भी दीजिए।
0: तो धान की सीधी बुआई जहां करेंगे, वहां खरपतवार प्रबंधन भी
1: हाँ
0: एक
1: आवश्यक हो
0: समस्या है।
1: जाएगा, आवश्यक हो जाएगा, तो उसके लिए पेंडीमेथिलीन का यदि प्रयोग कर देते हैं तो एक खरपतवार निकलने से पहले ही उनको मार देता है। तो खरपतवार का प्रबंधन करने के लिए धान के केस में सीधी बुआई जब आप किसान भाई करें तो पेंडीमेथिलीन का प्रयोग करें। 3 से 3.5 लीटर मात्रा इसकी ले लें,
0: जी
1: 600 से 700 लीटर पानी में मिला के 1 हेक्टेयर में यानी 4 बीघे में इसका प्रयोग किसान भाई कर सकते
0: और
1: हैं।
0: जहां 1 एकड़ धान के खेत में प्रयोग करना है तो 1.25 लीटर मात्रा
1: सवा लीटर
0: पर्याप्त।
1: मात्रा इसकी ले लेंगे।
0: डॉक्टर साहब, जहां लेव लगा करके धान की बुआई या रोपाई करनी है वहां?
1: देखिए, पहले परंपरागत तरीके से इस तरह का चलता है, वहां भी प्रक्रिया है कि पहले खेत को अच्छी तरह से तैयारी कर लें। तमाम किसान आज भी हैं, छोटे छोटे किसान हैं, उनकी छोटी जोत है, तो वहां लेव लगाने के बाद 1 से 2 सेंटीमीटर खड़ा पानी उसमें लगा रहता है। वहां पे दो विधि अपनाते हैं, एक तो कुछ किसान भाइयों को देखते हैं कि औ छिटकवा विधि से धान को वही अंकुरित, जो हल्का सा अंकुरण रहता है 72 घंटे भिगो के सुखोने के बाद, उसका प्रयोग करते हैं, और वहां पे एक ड्रम सीडर से भी सीधी बुआई आप कर सकते
0: हाँ
1: हैं।
0: हाँ
1: तो जब लेव लगा लिए हैं और खेत में 1 से 2 सेंटीमीटर पानी लगा हुआ है
0: जी
1: तो किसान भाई ड्रम सीडर से उसमें सीधी बुआई कर सकते हैं। जिन प्रजातियों की बात हमने कहा, सारी उन्नतशील प्रजातियों के बीज, सभी जो भी हमारे राजकीय कृषि बीज भंडार हैं
0: वहां
1: वहां पे
0: उपलब्ध।
1: उपलब्ध भी है। सभी किसान भाइयों से हमारा आग्रह भी होगा कि अपने नजदीक के राजकीय कृषि बीज भंडार पे आप जाएं, वहां से धान के बीज की अच्छी प्रजातियां लें और उसकी आप अपना बुआई और रोपाई दोनों जैसी स्थिति है करें।
0: डॉक्टर साहब, जहां धान उत्पादन की उन्नत तकनीक की बात चल रही है, तो फसल का पोषण भी महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यदि जैसा हमारा प्रजाति रहेगी तो उसको निश्चित रूप से हमें उर्वरक का प्रयोग भी करना पड़ेगा। जैसा मैंने शुरू में कहा किसान भाइयों से कि अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, उससे पता चल जाता है कि किन पोषक तत्वों की कमी है और कितनी मात्रा में हमें आवश्यकता होगी। यदि किसी कारण से जाँच नहीं करा पाए हों तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फॉस्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से

0: किसान
1: यानी
0: भाई
1: 2.5 एकड़
0: ढाई एकड़ में जी प्रति हेक्टेयर की दर से किसान भाई प्रयोग करें। धान के केस में देखा जाता है, चूंकि खरीफ की फसल है, पानी लग जाता है, तो जैसे ही पानी लगता है, समर्स कंडीशन होता है, तो आप देखते हैं खैरा रोग भी लगता है।
1: जी
0: खैरा रोग का जो मुख्य कारण है जिंक की कमी होती है। तो यदि किसान भाई धान की खेती में जिंक सल्फेट का प्रयोग किए हुए हैं, तो खैरा रोग लगने की संभावना नहीं रह जाती है। तो यही उचित समय है कि आगे हमारे फसल में खैरा रोग न लगे, हम अपने खेत में अंतिम जुताई के समय ही 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट मिला के और खेत में अच्छी तरह से मिला दें, उसके बाद जुताई या रोपाई जैसी स्थिति हो हम करें।
1: और जहां धान की नर्सरी खेत में है तो नर्सरी में भी तो कुछ
0: हाँ
1: खास बातें हैं।
0: बिल्कुल, नर्सरी में भी, नर्सरी जैसा मैंने कहा, नर्सरी के तैयारी के समय भी किसान भाई जिंक सल्फेट की मात्रा मिला दें। उसमें जैसा मैंने कहा कि 20 शोधन के बाद आप ट्राइकोडर्मा भी मिला दें, भूमि शोधन किए हुए हैं, तो फिर रोग की संभावनाएं नहीं रहती है, बाद में दिक्कत नहीं आता है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे धान उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर

0: के समय भी किसान भाई जिंक सल्फेट की मात्रा मिला दें, उसमें जैसा मैंने कहा कि बीज शोधन के बाद आप ट्राइकोडर्मा भी मिला दें, भूमि शोधन किए हुए हैं तो फिर रोग की संभावनाएं नहीं रहती है, बाद में दिक्कत नहीं आता है।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे धान उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: किसान भाई हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लें, 9450 54 66 77, 9450 54 66 77।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का धान उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में डॉक्टर साहब?
0: किसान भाइयों से हमारा यह अनुरोध होगा कि सबसे पहले अपने खेत का चुनाव सही तरीके से करें, स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से ही फिर खेत के चुनाव के बाद प्रजाति का चुनाव करें, मिट्टी की जांच अवश्य करा लें, भूमि शोधन और बीज शोधन अवश्य करें, अपने खेतों में खरपतवार का नियंत्रण करते हुए समय समय पर यदि उसकी देखभाल करेंगे तो निश्चित रूप से उनका उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा।
1: डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्रा साहब आज आप कार्यक्रम में आए और धान उत्पादन की उन्नत तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि धान उत्पादन की उन्नत तकनीक विषय पर जो भी जानकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्र ने आपको दी उसे आप अमल में ज़रूर लाएंगे। आपसे बात कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ ही विज्ञान और किसान कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी हम आपको दे दें। रात्रि 11:10 पर भारत सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला आप सुनेंगे। विषय होगा आर्थिक विकास। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता, ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्त स्वास्थ्य तंत्र। वार्ताकार होंगी पुष्पावती। खेती किसानी कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता, खरीफ फसलों में नैनो उर्वरकों का प्रयोग। यतेंद्र कुमार से भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय शाम 6:50 पर। हिंदी कार्यक्रम में रात्रि 8:00 सुनिएगा वार्ता, राष्ट्रीय अस्मिता और भारतीय भाषाएं। वार्ताकार होंगे डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिपाठी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 8:10 पर सुनिएगा डॉक्टर मिथिलेश तिवारी से की गाई गजलें। और इसके साथ ही रात्रि 10:00 खेल दर्पण कार्यक्रम आकाशवाणी झांसी की प्रस्तुति होगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर सुनिएगा सोमा घोष का ख्याल गायन राग कलावती में। इन्फोटेनमेंट पर आधारित युवा तरंग कार्यक्रम हमारे युवा श्रोता सुनेंगे शाम 5:10 पर, और नई उड़ान कार्यक्रम का समय होगा शाम 5:45। ये हैं शाम की सभा में प्रसारित होने वाले हमारे आज के कार्यक्रम।

को प्रातः 11 बजे, जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन देंगे आपकी जिज्ञासाओं के सरल और उपयोगी उत्तर। सुनना ना भूलें हमारे चैनल यानी FM रेनबो 100.7 MHz पर नेशनल डिस्फेजिया अवेयरनेस विशेष कार्यक्रम। हमारा फ़ोन नंबर है 0522-223-8845 और एक और नंबर है 0522-223-8852। सही जानकारी बेहतर स्वास्थ्य, आकाशवाणी के साथ।

श्रोताओं, हम आपको बता दें, यदि आपको खाना निगलने में परेशानी होती है या खाते या पीते समय बार बार खांसी आती है तो यह डिस्फेजिया का संकेत हो सकता है। डिस्फेजिया क्या है, इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में जानने के लिए सुनिए हमारे चैनल यानी आकाशवाणी के FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर विशेष फोन इन कार्यक्रम बुधवार दिनांक 10 जून

मीडियम वेव के मीटर पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। मिट्टी की सौंधी महक से महकते लोक संगीत के कार्यक्रम लोकमाद्री में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे दीपाली त्रिपाठी के गाए अवधि लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं बारह मासा से।

छोड़ गए बेदर्दी बलमुआ लई ना गए, अभी आपने ये बारहमासा सुना दीपाली त्रिपाठी के स्वर में। और आइए अब सुनते हैं मेला गीत, बोल हैं गारी वाले दुपट्टा उड़ा जाए।

आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी और आज इसमें आप सुन रहे हैं दीपाली त्रिपाठी के गाए अवधि लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में निर्गुण।

पिया निर्मोहिया गवन ले गई मोरा, अभी आपने ये निर्गुण सुना। लोकमाद्री कार्यक्रम में आज आपने आनंद उठाए दीपाली त्रिपाठी के गाए अवधि लोकगीतों का, और अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय अपराह्न के 3 बजे हैं। हमारी आज की ये सभा समाप्त होती है। अगली सभा शाम 5 बजे से आरंभ होगी। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं।

मीडियम वेव 401.1 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब हमारी आज की सायकालीन सभा आरंभ हो रही है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं अब से कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलते सुरक्षा

0: पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने कुवैत में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा के प्रति ध्यान देने के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल भू सीमा वाले देश में सीमा प्रबंधन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित रक्षा भूमि पर बड़े पैमाने की पहली सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये 250 मेगावाट की सौर परियोजना उत्तर प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और बिजली खर्च में दीर्घकालिक बचत भी करेगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार राज्यों के साथ भी सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्ष में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ देश को मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। भारत की विदेश नीति में पिछले 12 वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसमें ब्रांड इंडिया और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत संकट के समय सबसे पहले मदद करने वाले देश के रूप में विकासशील और अल्पविकसित देशों की आवाज बनकर उभरा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वो धार्मिक शब्दावली के जरिए अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना उल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया है। श्रीलंका के दामुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 36 ओवर में 5 विकेट पर 200 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। पहले एक नज़र आज के शेष कार्यक्रमों पर।

आज रात 11:10 पर सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला प्रस्तुत की जाएगी, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। आज रात 10 हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा खेल दर्पण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के झांसी केंद्र की प्रस्तुति है। दस बजकर 30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सीमा घोष का राग कलावती में ख्याल गायन प्रस्तुत किया जाएगा। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर इंफोटेनमेंट पर आधारित कार्यक्रम सुनिएगा युवा तरंग, जिसमें आप सुनेंगे डॉक्टर रश्मि से वार्ता शुद्ध पेयजल और इसका प्रभाव। नई उड़ान कार्यक्रम सुनिएगा 5:45 पर, जिसमें ओबी पर आधारित उद्यमिका के अंतर्गत आज का विषय होगा घरेलू उत्पादों की ऑनलाइन ब्रांडिंग, घर घर से ग्लोबल बाजार। प्रस्तुत करेंगी अमिता। 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम होगा, जिसमें आप सुनेंगे वार्ता ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्त स्वास्थ्य तंत्र। वार्ताकार होंगी पुष्पावती। 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम होगा, जिसमें आप सुनेंगे भेंट वार्ता खरीफ फसलों में नैनो उर्वरकों का प्रयोग। इस विषय पर यतेंद्र कुमार से बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। सात पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम और आज रात 8 हिंदी कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता राष्ट्रीय अस्मिता और भारतीय भाषाएं। वार्ताकार हैं डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिपाठी। वाचन और संपादन सुरेंद्र राजेश्वरी का है। 8:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे डॉक्टर मिथिलेश तिवारी की आवाज में चंद गजलें। 8:30 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा चित्रपट से और आज रात 9:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम। अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में।

कल सुबह 10:10 पर सुनिएगा न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण। कल रात 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम चर्चा का विषय है और रात 11:10 पर सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला के अंतर्गत कल का विषय है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कल सुबह 9:30 पर सुनिएगा उर्दू कार्यक्रम जिसमें पेश की जाएगी तकरीर आंखों की अतिया का आलमी दिन। इसे पेश करेंगे मोहम्मद फरूख जमाल और इसके साथ ही सुनिएगा मकाला बाहमी इत्तेहाद के फरूग में उर्दू जबान का किरदार। मकाला निगार होंगे जनाब कलीम सिफात इस्लाही और साथ में कलामी शायर होंगे अब्दुस्सलाम सलाम फैजी। ये प्रोग्राम आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की पेशकश है। कल सुबह 6:05 पर कल कृषि चर्चा कार्यक्रम का विषय है ग्रीष्मकालीन जुताई और फसल अवशेष प्रबंधन। 7:00 स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एंटीऑक्सीडेंट का खजाना लीची के विषय में श्रोताओं को जानकारी देंगी नीना सोनकर। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है इन्फोटेनमेंट पर आधारित कार्यक्रम युवा तरंग।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार्यक्रम युवा तरंग में, जिसे लेकर उपस्थित हैं आज आपके दो रेडियो दोस्त। मैं हूं दिव्यांशु
1: और मैं हूं अनुष्ठा। दोस्तों, ढल गया दिन, हो गई शाम और शुरू हो चुका है युवा तरंग, जो हर शाम शुरू होता है इसी वक्त और इसी जगह पर।
0: जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो जीवन की हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ किया जा सकता है।
1: लेकिन आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हम अक्सर अपनी सेहत को उतना महत्व नहीं दे पाते जितना उसे हमें देना चाहिए। अनियमित दिनचर्या, तनाव, बदलती जीवन शैली और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच स्वास्थ्य सुरक्षा का विषय पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
0: दोस्तों, स्वास्थ्य सुरक्षा का अर्थ केवल बीमारी होने पर इलाज करना नहीं, बल्कि बीमारी से बचाव, संतुलित जीवन शैली अपनाना, सही खान पान, नियमित व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना और स्वच्छ वातावरण में रहना भी है। इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है ये।
1: दोस्तों, जब हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं, तभी हम अपने परिवार, समाज और देश के विकास में बेहतर योगदान दे सकते हैं। युवाओं के लिए ये विषय और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी ही कल के भारत की दिशा तय करेगी।
0: बिल्कुल सही कहा। यदि युवा स्वस्थ, जागरूक और जिम्मेदार होंगे तो समाज भी स्वस्थ और सशक्त बनेगा। इसलिए आज के युवा तरंग में हम बात करेंगे स्वास्थ्य सुरक्षा की और जानेंगे कि रोजमर्रा की छोटी छोटी सावधानियां हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकती हैं। दोस्तों,
1: इसी के साथ ही कार्यक्रम में आप सुनेंगे एक विशेष वार्ता, जिसमें डॉक्टर रश्मि ने शुद्ध पेयजल और इसका प्रभाव, इस विषय पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। दोस्तों, पानी हमारे जीवन की सबसे बुनियादी आवश्यकता है, लेकिन क्या हम जो पानी पी रहे हैं वो वास्तव में सुरक्षित और शुद्ध है?
0: दोस्तों, दूषित पानी कई बीमारियों का कारण बन सकता है, जबकि स्वच्छ पेयजल स्वस्थ जीवन की मजबूत नींव है। इस वार्ता में डॉक्टर रश्मि हमें बताएंगे कि शुद्ध पानी पर हमारे स्वास्थ्य में क्या प्रभाव पड़ता है और हम अपने दैनिक जीवन में सुरक्षित पेयजल की आदत कैसे विकसित कर सकते हैं। दोस्तों,
1: तो दोस्तों, स्वास्थ्य जागरूकता और उपयोगी जानकारी से भरपूर आज के युवा तरंग में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और सही जानकारी, यही एक बेहतर जीवन की असली पहचान है।
0: तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं अपने आज के कार्यक्रम को इस गाने के साथ।

0: दोस्तों, पानी प्रकृति का वो अनमोल उपहार जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम अपने दैनिक जीवन में भोजन के बिना कुछ समय तक तो रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना बिल्कुल नहीं। हमारे शरीर का एक बड़ा हिस्सा पानी से बना हुआ है और यही कारण है कि स्वस्थ जीवन के लिए शुद्ध और सुरक्षित पेयजल का विशेष महत्व है।
1: दोस्तों, आज के समय में जब जल प्रदूषण एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है, तब ये समझना और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम जो पानी पी रहे हैं वो कितना साफ और सुरक्षित है। दूषित पानी ना केवल हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है। दोस्तों,
0: इसलिए शुद्ध पेयजल केवल एक आवश्यकता नहीं बल्कि स्वस्थ और सुरक्षित जीवन की आधारशिला है। और कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है। एक गिलास साफ पानी केवल हमारी प्यास नहीं बुझाता बल्कि हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, हमें स्वस्थ रखता है और जीवन को गतिमान भी बनाए रखता है। और यही कारण है कि हमें जल संरक्षण के साथ साथ स्वच्छ पेयजल के महत्व को भी समझना चाहिए और दूसरों को इसके प्रति जागरूक भी करना चाहिए।
1: इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए आज की इस विशेष वार्ता में डॉक्टर रश्मि हमें शुद्ध पेयजल और इसका प्रभाव विषय पर विस्तृत जानकारी देंगी। वो बताएंगी कि स्वच्छ पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए क्यों बहुत जरूरी है, दूषित जल से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और हम अपने दैनिक जीवन में सुरक्षित पेयजल को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, तो आइए सुनते हैं डॉक्टर रश्मि की ये ज्ञानवर्धक वार्ता, शुद्ध पेयजल और इसका प्रभाव।
2: पेयजल ही जीवन का आधार है, इस वजह से पेयजल की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना बहुत जरूरी है। शुद्ध और साफ जल का मतलब है कि जल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अशुद्धियों और रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं से मुक्त होना चाहिए, वरना यह पानी हमारे पीने के काम में नहीं आ सकता है। अगर हम आंकड़ों की माने तो पानी जो पीने का है उसमें 2100 विषैले तत्व मौजूद होते हैं। ऐसे में बेहतरी इसी में है कि पानी का इस्तेमाल करने से पहले इसे पूरी तरह से शुद्ध कर लिया जाए। WHO के मुताबिक पेयजल ऐसा होना चाहिए जो स्वच्छ, शीतल, स्वादयुक्त तथा गंध रहित हो। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी विश्व की जल विकास रिपोर्ट में हमारे देश भारत को सबसे प्रदूषित पेयजल की आपूर्ति वाला देश कहा गया है। पृथ्वी की सतह का 71% हिस्सा पानी में समा गया है। इसमें से 97% खारा पानी है और 3% ताजा पानी है। स्वच्छ पेयजल, जिसे पीने योग्य पानी के रूप में भी जाना जाता है, मानव जीवन के लिए आवश्यक है। हम अपने कपड़ों की सफाई के लिए पानी का उपयोग करते हैं, वर्षा, स्नान, शौचालय की निस्तब्धता, खाना पकाने और बहुत से कामों में इसका प्रयोग करते हैं। पानी कई बीमारियों का एक स्रोत भी हो सकता है, जैसे हैजा या पेचिश। इसलिए आधुनिक समय में घरों में लाया जाने वाला पानी साफ और कीटाणु रहित हो गया है, जिससे यह पीने के लिए सुरक्षित हो जाए। कुछ विकासशील देशों में सीवेज या बैक्टीरिया के अन्य स्रोतों से पानी की आपूर्ति दूषित हो सकती है। यदि लोगों के पास साफ पानी पीने की सुविधा नहीं है तो वे बीमारियों से मर भी सकते हैं। स्वच्छ जल तक पहुंच एक समुदाय के पनपने और विकसित करने की अनुमति देती है और कुछ क्षेत्रों में अभी भी साफ पानी उपलब्ध नहीं है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक 1 लीटर पानी में 0.05 मिलीग्राम आर्सेनिक तक किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इससे अधिक होने पर मानव जीवन के लिए नुकसानदायक होता है। आर्सेनिक की अधिकता वाले पानी को पेयजल में इस्तेमाल किए जाने से त्वचा, खून और फेफड़े के कैंसर तथा बच्चों में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्रभावित होता है। फ्लोराइड की अधिकता से दांत और हड्डियों की बीमारी होती है। यह एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि ग्रामीण शुद्ध पेयजल ग्रहण करें और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें तो तमाम बीमारियों

0: दूर किया जा सकता है। इससे मृत्यु दर में कमी ही नहीं आएगी बल्कि ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। पानी को पूरी तरह से स्वच्छ और कीटाणु रहित बनाने के लिए कम से कम उसे 20 मिनट तक उबाला जाना चाहिए। क्लोरीनेशन के जरिए भी पानी को साफ किया जा सकता है। विभिन्न नगरों एवं सरकारी उपक्रमों में जल आपूर्ति के दौरान यह प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पानी में प्रदूषण ना हो इसके लिए सामुदायिक स्तर पर भी प्रयास किए जाने चाहिए। हैंड पंप से जल निकास के लिए पुख्ता नालियां बनवाई जानी चाहिए एवं उसके आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। खुले कुएं के पानी को ब्लीचिंग पाउडर डालकर नियमित रूप से जीवाणु रहित कर पानी को काम में लाना चाहिए। प्राइवेट टैंकरों द्वारा वितरित जल में वितरण से आधा घंटा पूर्व टैंकर की क्षमता के अनुसार ब्लीचिंग पाउडर का घोल बनाकर डाला जा सकता है। जल संग्रह की टंकी के आसपास स्वच्छ वातावरण रखना चाहिए। जल में जीवाणु का नाश करने के लिए 15 लीटर में 2 क्लोरीन की गोलियां या हर 1000 लीटर पानी में 3 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर का घोल बनाकर डाला जाए एवं आधे घंटे बाद उपयोग में उसको लाना चाहिए। भारत विकास का जाप करते हुए एक ऐसी राष्ट्रीय आपदा के मुहाने पर आ पहुंचा है जहां से पीछे लौटना मुश्किल दिख रहा है। हमारे आपके जीवन से जुड़ा अहम मुद्दा जल का है। इन गर्मियों में भारत अब तक के सबसे बड़े जल संकट का सामना कर सकता है। बढ़ते शहरीकरण ने शहरों में वर्षा जल के पर्याप्त संरक्षण में भी कमी की है, जो शहरीकरण से पहले प्राकृतिक रूप से मिट्टी में चला जाता था। वनों में कमी का मतलब वर्षा में कमी, जो अंत में जल की कमी के रूप में सामने आता है। सतह के ऊपर के जल की स्थिति बहुत खराब है, वहीं जमीन के अंदर के जल की स्थिति उससे भी ज्यादा खराब है। कीटनाशकों के बहुत ज्यादा प्रयोग ने जहां पौधों को प्रदूषित किया है, वहीं उसके नीचे संचित जल को भी नहीं छोड़ा है। शहरों में स्वच्छ जल की तलाश में वाटर प्यूरिफायर के व्यवसाय को बहुत ज्यादा बल मिला है, पर वाटर प्यूरिफायर पानी साफ करने के लिए कितना पानी बर्बाद कर रहे हैं, इसकी वानगी अहमदाबाद में हुए शोध के अनुसार 26 लीटर पानी पीने के लिए प्राप्त करने के लिए 74 लीटर नमकीन पानी को बहा दिया गया। कोई भी आरओ उत्पादक इस बर्बाद हुए पानी को सहेजने का विकल्प उपभोक्ताओं को नहीं देता है, जबकि इस पानी का इस्तेमाल नहाने में, पेड़ों को पानी देने और अन्य कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। विकास का एक पक्ष ये भी है जिसमें जल जैसे कीमती संसाधन को यूं ही बर्बाद किया जा रहा है। भारत में शहरीकरण बढ़ रहा है और शहरीकरण की पहली शर्त है पक्के निर्माण, जिसमें भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। धनी लोग जल के लिए सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए वे शहरों में अंधाधुंध बोरिंग लगाकर जल की अवैध निकासी कर रहे हैं, जिनका कोई आंकड़ा भी उपलब्ध नहीं है। नतीजा, आय की दृष्टि से दुर्बल लोग पानी के लिए सरकार द्वारा जल की सप्लाई वाले पानी पर निर्भर हैं, जिसके समय के साथ साथ लगातार कमी आती जा रही है और भी कम और खराब गुणवत्ता वाले पानी के प्रयोग के लिए अभिशप्त हो गए हैं। जल संसाधन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 2001 में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता के आंकड़ों के संदर्भ में 2025 तक इसमें 36% की कमी आएगी। वहीं 2050 तक, जब भारत की जनसंख्या 1.7 बिलियन के करीब होगी, 60% प्रति व्यक्ति कम जल की उपलब्धता होगी। तो चेतावनी की घंटी बज चुकी है। अब यह हमें तय करना है, हम प्रकृति के साथ मिलकर सबका विकास चाहते हैं या ऐसा विकास जो सिर्फ आर्थिक रूप से समृद्ध लोगों के लिए ही हो।
1: दोस्तों, ये थी हमारी आज की वार्ता। उम्मीद है हमें कि आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ ही अब सुनते हैं एक और गाना और मिलते हैं आपसे गाने के बाद।

0: दोस्तों अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट प्रश्नोत्तरी का, जिसमें हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपको उसके कुछ विकल्प देंगे और आपको वो विकल्प सुनने हैं, अपना सही अंदाज़ा लगाना है और फिर अंत में हम आपको सही उत्तर भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है कि बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था, और इसके ऑप्शंस हैं।
1: जी हाँ, आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी बाबर।
0: जी हाँ, और हम इसके जो सही आंसर्स हैं वो आपको अंत में बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा यानी कि गोल्ड कॉइन कौन सी थी?
1: और आपके ऑप्शन है ए इलाही, बी जलाली, सी शहनशाह या डी अशरफी।
0: दिव्यांशु, मैं चाहूंगी कि आप ऑप्शंस एक बार फिर से हमारे श्रोताओं के लिए रिपीट कर दें।
1: जी बिल्कुल, ऑप्शन ए इलाही, ऑप्शन बी जलाली, ऑप्शन सी शहनशाह या ऑप्शन डी अशरफी।
0: जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये है हमारे भूगोल से, तो चलिए देखते हैं कि आपको इसका आंसर आता है या नहीं। सुंदरबन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि सुंदरबन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है, और इसके ऑप्शंस हैं
1: ए रोजवुड, बी साल, सी सुंदरी या डी शीशम।
0: जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से एसिड ड्रेन के लिए कौन उत्तरदायी है?
1: आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड या डी कोई नहीं।
0: जी हाँ, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? जी हाँ, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है, और ऑप्शंस हैं।
1: आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हिंदी देवनागरी, ऑप्शन बी उर्दू फारसी, ऑप्शन सी अंग्रेजी या ऑप्शन डी भारत के संविधान में वर्णित 18 भाषाएं।
0: जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, और ऑप्शंस हैं
1: ऑप्शन ए 2004 में, ऑप्शन बी 1999 में, ऑप्शन सी 2005 में या ऑप्शन डी 2009 में।
0: जी हाँ, चलिए अब बढ़ते हैं विज्ञान की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें ये है कि इनमें से किसमें कार्बन नहीं होता है? जी हाँ, आपको बताना है कि इन सब में से कार्बन किसमें नहीं पाया जाता है।
1: और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए हीरा, ऑप्शन बी ग्रेफाइट, ऑप्शन सी कोयला या ऑप्शन डी बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन।
0: जी हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी धातु चाकू से नहीं काटी जा सकती?
1: और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी जस्ता या ऑप्शन डी सोडियम।
0: अब पढ़ते हैं थोड़ा टेक्निकल की तरफ यानी कंप्यूटर्स की तरफ। तो इसमें से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है?
1: आपके ऑप्शन है विजुअल बेसिक, ऑप्शन बी सी प्लस प्लस, ऑप्शन सी ओरेकल या ऑप्शन डी जावा।
0: अगला क्वेश्चन है कि टीसीपी का अर्थ क्या है, यानी आपको बेसिकली फुल फॉर्म बताना है कि टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है।
1: आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए टेक्स्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल या ऑप्शन डी ट्रांसमिशन कैलिब्रेटेड प्रोटोकॉल।
0: जी हाँ, तो चलिए अब

0: वक्त है सही जवाब का, तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से जवाब आपके सही निकले और कौन कौन से में आप थोड़े से चूक गए। तो हमारा जो पहला प्रश्न था वो था कि बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था, तो इसका आंसर क्या था दिव्यांशु?
1: तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अकबर ने 1572 में।
0: जी हाँ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा गोल्ड कॉइन कौन सी थी, और इसका आंसर क्या था?
1: इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शहंशाह।
0: जी हाँ, शहंशाह जो थी वो सबसे बड़ी मुद्रा थी, और ये 101 तोले का सबसे बड़ा सिक्का यूज़ किया जाता था किसी भी बड़े लेन देन में। हमारा अगला क्वेश्चन था कि सुंदरबन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है, और इसका जवाब
1: इसका
0: क्या
1: सही
0: है?
1: जवाब है ऑप्शन सी, सुंदरी। सुंदरी पेड़, जिसके नाम पर वनों का नाम सुंदरवन पड़ा था।
0: जी हाँ, तो ये है इसका सही जवाब। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि इनमें से किससे एसिड रेन होती है, या कौन इसमें से एसिड रेन के लिए उत्तरदायी है, जिसका सही जवाब है?
1: ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड।
0: जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है, तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है?
1: इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंग्रेजी। आर्टिकल 3481 का के अनुसार, जब तक संसद कानून बनकर कोई अन्य व्यवस्था नहीं करती, तब तक सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट की सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में ही होंगी।
0: जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, तो इसका जो सही जवाब है वो है?
1: ऑप्शन सी, 2005 में।
0: जी हाँ,
1: वजह बताइए अनु।
0: ये इसलिए है क्योंकि आरटीआई जो है वो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, और कानून जो है भारत के सभी नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड्स में दर्ज सूचना को प्राप्त करने का अधिकार देता है, जिसे हम आरटीआई के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा ये था कि इनमें से किसमें कार्बन नहीं होता है, यानी कि कार्बन जिसमें नहीं है आपको वो बताना था, और जिसका सही आंसर है वो क्या है?
1: इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बलुआ पत्थर।
0: जी हाँ,
1: सैंड
0: सैंडस्टोन
1: स्टोन में
0: में
1: कार्बन
0: कार्बन
1: नहीं होता
0: नहीं
1: है।
0: पाया जाता
1: जी
0: है। जी हाँ, ग्रेफाइट में भी होता है, कोयले में भी होता है, लेकिन सैंडस्टोन में ये नहीं पाया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सी धातु चाकू से नहीं काटी जा सकती, जिसका सही आंसर है?
1: ऑप्शन डी, सोडियम।
0: जी हाँ,
1: सोडियम को चाकू से नहीं काटा जा सकता
0: जी
1: दोस्तों।
0: हाँ। और कंप्यूटर्स की तरफ बढ़ें तो इसमें हमारा क्वेश्चन था कि इनमें से कौन एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, तो जो सही जवाब है वो है?
1: सही जवाब है ऑप्शन सी, ओरेकल।
0: जी हाँ, क्योंकि विजुअल बेसिक, C++, जावा, ये सब हाई लेवल की लैंग्वेज मानी जाती हैं, जबकि ओरेकल जो है वो RDBMS है। तो चलिए, हमारा आखिरी क्वेश्चन जो था वो था कि TCP का फुल फॉर्म क्या है, या TCP का अर्थ क्या है, तो सही आंसर क्या है इसका?
1: तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। दोस्तों दोस्तों ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी। उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा। इसी के साथ ही अब सुनते हैं अगला गाना और लौट के आते हैं आपके पास गाने के बाद।

0: दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं गर्मी के मौसम की। जी हाँ, सूर्य देवता तो बड़े ही तेवर से हम सबको देख रहे हैं और गर्मी देखिए कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में गर्मी का तीखापन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तापमान 45 डिग्री को पार भी कभी कभी कर जाता है और दोपहर में तो बाहर निकलना भाई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम सिर्फ मौसम की शिकायतें ही ना करते रहें बल्कि समझदारी से उसका सामना भी करें।
1: बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले ये जाने कि गर्मी से कौन कौन सी समस्याएँ हो सकती हैं। तो गर्मी से हीट स्ट्रोक यानी लू लगना हो सकता है, डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी हो सकती है, थकावट, चक्कर आना, बेहोशी हो सकती है, त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती है जैसे घमोरी हो सकती है और भूख ना लगना और चिड़चिड़ापन भी हो सकता है, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है हमारे दिमाग के लिए।
0: जी हाँ, और गर्मी की मौसम की सच्चाई है, लेकिन अगर हम सजग रहें तो हम इससे बच भी सकते हैं, अपने आसपास वालों को भी इससे सुरक्षित रख सकते हैं।
1: जी हाँ दोस्तों, तो ये था हमारा आज का युवा तरंग, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब चलते चलते हम कल के कार्यक्रम की आपको हम बारे में बता देते हैं। तो सभ्यताओं के बीच संवाद, साथी डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी की भेंटवार्ता सुनेंगे, विषय समाज आधारित अर्थव्यवस्था पर जिनसे बात की है डॉक्टर नागेंद्र रघुवंशी ने, और फिर कार्यक्रम में बातचीत होगी ODOP पर। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब हो गया है जाने का वक्त, दीजिए अपने दोस्त दिव्यांशु और
0: अनुष्ठा को इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा कार्यक्रम नई उड़ान, जिसे लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त आशीष सोनी। दोस्तों, भारत की आज़ादी का इतिहास केवल बड़े शहरों और प्रसिद्ध नेताओं तक सीमित नहीं है। इस इतिहास में जंगलों, पहाड़ों और दूर दराज के गांवों से उठी उन आवाज़ों का भी महत्वपूर्ण योगदान है जिन्होंने अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष किया। ऐसी ही एक अमर आवाज़ थे बिरसा मुंडा, जिन्हें आदिवासी समाज आज भी श्रद्धा से धरती आबा यानी धरती का पिता के नाम से याद करता है। आज बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर हम उनके जीवन, संघर्ष, विचारों और बलिदान को याद करेंगे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान में जो झारखंड के उलीहातू गांव में हुआ था। वे मुंडा जनजाति से संबंध रखते थे। उस समय आदिवासी समाज अनेक कठिनाइयों से जूझ रहा था। अंग्रेजी शासन, जमींदारों और महाजनों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा था। बचपन से ही बिरसा बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु थे। उन्होंने मिशनरी स्कूल में शिक्षा प्राप्त की, लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि उनकी संस्कृति, परंपराओं और अधिकारों पर लगातार आघात हो रहा है। यहीं से उनके मन में समाज और देश के लिए कुछ करने का संकल्प जागा। दोस्तों, बिरसा मुंडा केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, बल्कि एक समाज सुधारक और जननायक भी थे। उन्होंने आदिवासी समाज को एकजुट करने का कार्य किया। उन्होंने लोगों को अंधविश्वास छोड़ने, स्वच्छता अपनाने, शिक्षा प्राप्त करने और अपनी संस्कृति को बचाने का संदेश दिया। उनका नारा था अबुआ दिशुम अबुआ राज, अर्थात हमारा देश हमारा शासन। यह केवल एक नारा नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान का संदेश था। दोस्तों, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में एक बड़ा जन आंदोलन शुरू हुआ, जिसे उलगुलान कहा जाता है। उलगुलान का अर्थ है महान क्रांति या बड़ा विद्रोह। सन 1899 में शुरू हुए इस आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। हजारों आदिवासी बिरसा के साथ जुड़ गए। वे अपने अधिकारों, अपनी जमीन और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष करने लगे। नेतृत्व की अद्भुत क्षमता, बिरसा मुंडा की सबसे बड़ी ताकत उनका नेतृत्व था। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि यदि वे एकजुट रहे तो किसी भी अन्याय का मुकाबला कर सकते हैं। उनकी बातें लोगों के दिलों तक पहुँचती थी। वे सरल भाषा में अपनी बात रखते थे और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करते थे। यही कारण था कि बहुत कम उम्र में वे लाखों लोगों की आशा बन गए। अंग्रेज सरकार बिरसा मुंडा के बढ़ते प्रभाव से घबरा गई। उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जाने लगी। कई बार उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई। अंततः वर्ष 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। लेकिन जेल में रहने के बावजूद उनके विचारों को कैद नहीं किया जा सका। दोस्तों, 9 जून 1900 का दिन भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिर्फ 25 वर्ष की आयु में बिरसा मुंडा ने जेल में अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु आज भी कई प्रश्न छोड़ जाती है, लेकिन यह सत्य है कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनकी शहादत ने आदिवासी समाज को नई चेतना दी और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। आज हम उनकी शहादत पर उन्हें हम शत शत नमन करते हैं। स्वतंत्रता के इस महान नायक का सदैव यही मानना था, अपनी संस्कृति को बचाओ, परंपराओं का सम्मान करो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नई उड़ान, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। क्षमा कीजिएगा, अभी आप सुन रहे थे युवा तरंग कार्यक्रम। और आइए अब सुनते हैं।

0: शिक्षा को अपनाओ, सामाजिक एकता को बनाए रखो और अन्याय का विरोध करो। तो दोस्तों, आज़ादी के इस महानायक को हम सत सत नमन करते हैं और आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।
1: नफरत

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं स्थल ध्वन्यांकन पर आधारित कार्यक्रम। आज की हमारी विशेष श्रृंखला उद्यमिका के अंतर्गत, जिसका विषय है घरेलू उत्पादों की ऑनलाइन ब्रांडिंग, घर घर से ग्लोबल बाजार, अपनी रेडियो साथी अमिता चित्रांसी के साथ।

0: साथियों, हर सफलता के पीछे अथक परिश्रम, लगन और विश्वास की शक्ति होती है। हमारे घरों में बनने वाले उत्पाद भी इसी मेहनत और हुनर की कहानी कहते हैं। कभी सीमित दायरे तक रहने वाले यह घरेलू उत्पाद आज ऑनलाइन ब्रांडिंग और डिजिटल मंचों की बदौलत देश ही नहीं दुनिया भर के ग्राहकों तक पहुँच रहे हैं। तो आज की उद्यमिका की श्रृंखला में हम जानेंगे घरेलू उत्पाद की ऑनलाइन ब्रांडिंग, घर घर से ग्लोबल बाजार। डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑनलाइन मार्केटिंग ने स्थानीय उत्पादों को देश ही नहीं दुनिया भर के ग्राहकों तक पहुंचाने के नए अवसर दिए हैं। आज कई छोटे उद्यमी, कारीगर और गृहणियां अपने उत्पादों को घर बैठे ऑनलाइन बेच रही हैं। स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की दिशा में अनेक पहल भी की जा रही हैं। चलिए पहले जानते हैं आम लोगों की राय कि क्या वे स्थानीय उत्पाद खरीदना पसंद करते हैं, क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म छोटे उद्यमियों के लिए नए अवसर लेकर आया है। तो हमारे साथ एक साथी, आइए उनसे जानते हैं, क्या आप होममेड प्रोडक्ट खरीदते हैं?
1: हाँ जी, हाँ खरीदते हैं। अक्सर घर के बने हुए अचार, स्नैक्स, सामान खरीदते हैं, ऑनलाइन कपड़े भी खरीदते हैं।
0: तो आपको लगता है लोकल ब्रांड को सपोर्ट करना चाहिए?
1: हाँ, लोकल ब्रांड कलाकारों और छोटे व्यवसायों को सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि हमें अच्छी क्वालिटी और अलग प्रोडक्ट मिल सके।
0: घर घर से ग्लोबल बाजार तक, इस लाइन का मतलब आपके लिए क्या है?
2: मेरे लिए इस लाइन का मतलब है कि अब छोटे मोटे घरेलू उत्पाद भी इंटरनेट की मदद से पूरी दुनिया तक पहुंच सकते हैं और एक छोटा व्यवसाय भी सही ऑनलाइन ब्रांडिंग से बड़ा नाम बना सकता है।
3: ऑनलाइन ब्रांडिंग ने महिलाओं और घर से काम करने वालों को कितना मौका दिया है, क्या कहते हैं आप?
4: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म महिलाओं को बहुत बड़ा अवसर दिया है। अब वे घर बैठकर अपने बनाए प्रोडक्ट जैसे पापड़, मिठाई, कपड़े या क्राफ्ट मीडिया के जरिए बेच रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। इससे जो छोटे छोटे काम करने वाली महिलाएं हैं जो लघु उद्योग लगाती हैं, उनको तो फायदा मिलेगा ही, उनकी जीविका चलाने में सहायक।
0: साथियों, घरेलू उत्पाद हमारे स्थानीय कारीगरों, महिलाओं, किसानों और छोटे उद्यमियों की मेहनत और प्रतिभा का प्रतीक है। इन उत्पादों को बढ़ावा देने से स्थानीय रोजगार बढ़ता है, छोटे व्यवसाय मजबूत होते हैं और लोगों की आय में वृद्धि होती है।
3: साथियों, आज के डिजिटल दौर में छोटे घरेलू व्यवसाय भी सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से अपनी पहचान बना रहे हैं। सही ऑनलाइन ब्रांडिंग से ये उत्पाद देश विदेश तक पहुँच सकते हैं और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक सफल उद्यमी जिन्होंने अपने घरेलू उत्पाद को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचाया है। आइए जानते हैं उनका परिचय और वो किस तरह का काम करते हैं और कैसे उन्होंने इस काम की शुरुआत की।
5: मेरा नाम प्रशांत वर्मा है और मैं उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद से बिलोंग करता हूं। मैंने अपना एक नया उद्यम शुरू करा वर्ष 2018 में। मेरा जो उत्पाद है वो हींग का उत्पाद है और उसके अलावा हींग से जुड़े हुए उत्पाद जैसे कि अनारदाना है, हींग पेड़ा है, डाइजेस्टिव हींग चूड़ा है। उस उत्पाद को मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग मैंने अपने स्तर पे ही यहाँ से सीखा और उसको शुरुआत की। हींग क्योंकि अरब कंट्री से आती है तो हम उसको प्रोसेस करते हैं और अपनी ब्रांडिंग करके बेचते हैं। आज का जो दौर है उसको देखते हुए लोगों के पास समय कम है, लोग ऑनलाइन

0: की तरफ ज्यादा मुड़ रहे हैं, लोग घरों से बाहर कम निकल रहे हैं मार्केट के अंदर, इसलिए हमने ऑनलाइन का बारे में सोचा। दूसरा, ऑनलाइन अगर हम ना जुड़े तो हम केवल अपने एक लिमिटेड शहरों में ही उसको व्यवसाय को कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन से हम पूरे देश के अंदर और पूरे विदेश के अंदर सप्लाई को मेंटेन कर सकते हैं, इसलिए हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े। हम एक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, उसके थ्रू भी प्रमोट करने के लिए मैंने उसका यूज किया है। उसके अलावा हमारा ODOP मार्ट है यूपी गवर्नमेंट का, उसमें भी हमारा रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है और अमेजोन पे भी रजिस्टर्ड है। इसके अलावा हम व्हाट्सएप के थ्रू भी ऑर्डर लेते हैं, जो उसमें हमारा कॉन्टेक्ट नंबर होता है, उस पे कोई भी व्यक्ति ऑर्डर करके मंगा सकता है। हमारा प्रोडक्ट 100% प्योर और ऑर्गेनिक होता है, उसमें कोई भी मिलावट या कोई भी हाइजीनिक प्रोडक्ट उसमें मिक्स नहीं होता।
1: ऑनलाइन ग्राहकों का भरोसा जीतने के लिए आपने क्या रणनीति अपनाई है?
0: ऑनलाइन ग्राहकों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं, लोगों को ट्रस्ट बिल्ड करने की प्रॉब्लम रहती है कि हम आफ्टर डिलीवरी पेमेंट लेते हैं, कि पहले ग्राहक के पास पहुंच जाए, ग्राहक उसको खोल के देखे, उसको यूज करे, उसके अगले दिन पेमेंट हमारे पास डाले। स्कीम के तहत जब देते हैं तो ग्राहक के अंदर विश्वास पैदा होता है।
1: तो आपने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किसी तरह की सरकारी योजनाओं का भी लाभ लिया?
0: हाँ जी, मैंने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत और ODOP योजना के तहत मैंने एक तो ऋण लिया था, जो कि उसमें गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दी गई थी
1: जी।
0: और दूसरी सरकारी योजना जो ODOP MDA योजना है, जिसके तहत हम जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जितनी भी प्रदर्शनियां लगाई जाती है नेशनल और इंटरनेशनल, उसमें भाग लेते हैं, जिसमें 75% जो भी सारे खर्चे होते हैं उसका गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है।
1: उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो घर से व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं?
0: जो घर से व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले मेरी सलाह है कि वो मार्केट में एक रिसर्च करें, जो जैसे मैंने की थी, कि मार्केट में किस तरीके की चीजों की डिमांड है, किस तरीके की पैकेजिंग, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे कि मॉल में जाकर वहाँ देखे पैकिंग किस तरीके की चल रही है, उस पैकिंग का पता करें कि इसका प्रोडक्शन कहाँ होगा, ये कैसे मिलेगा, अगर उसमें कोई भी लाइसेंस नंबर, जैसे कि फूड का बिजनेस है तो FSSAI का लाइसेंस लेना पड़ता है, तो उसके बारे में पता करें उसकी क्या प्रोसेस है, आपको किस तरीके के लाइसेंस की जरूरत है, वो सारी चीजें तैयार करके फिर अपना एक ब्रांड भी रजिस्टर करें। मैं श्रोताओं से बस यही कहना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति अगर अपना बिजनेस करना चाहता है एक बार करे, क्योंकि बिजनेस करने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, उसको लाइन पे लाने में मेरे को भी 4 से 5 साल का वक्त लग गया। कभी कभी आपको हर दो दिन बाद आपको ऐसा लगेगा कि हम गलत उसमें फंस गए, मतलब हमको नौकरी करनी चाहिए, लेकिन जब एक बार आपका बिजनेस सेट हो जाएगा उस दिन आपको नौकरियां बेकार लगेंगी और आप बहुत अच्छा अर्निंग करोगे। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस पाई है।

0: जी हाँ, मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के बल पर आज अनेक महिलाएं अपने हुनर को पहचान दिला रही हैं।
1: घरेलू बिजनेस आज कई महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बना रहा है। चलिए जानते हैं उस साथी से जिन्होंने अपने इस काम को शुरू किया और अपने साथ साथ कई महिलाओं को अपने काम के साथ जोड़ा और इस तरह से अपने काम को वो आगे बढ़ाती गई। तो ऐसे ही एक साथी उद्यमी हमारे साथ हैं, जानते हैं उनका परिचय और किस तरह का काम वो करती हैं, क्या क्या उत्पाद बनाती हैं उसके बारे में।
2: नमस्कार, मैं नेहा राजानी। एक लड्डू से शुरू हुआ सफर आज कम से कम 40 प्रोडक्ट के साथ नेहा होममेड का रूप ले चुका है, जो तरह तरह के होममेड शरबत, श्री अन्न के लड्डू, अचार और वो देसी चीजें जो आज बड़े स्टोर्स में या बड़ी हलवाई की दुकानों पे हमें अवेलेबल नहीं होती। मोटा अनाज जिसके महत्व को आज की युवा पीढ़ी भी समझने लगी है। श्री अन्न के लड्डू जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, भुना चना, सत्तू और सबसे बड़ी बात वो गुड़ और मेवा के साथ। जरूरी नहीं कि सब में हम शुगर डालें, क्योंकि चीनी आज की जेनरेशन काफी अवॉइड कर रही है और गुड़ में अभी भी वो देसी स्वाद है जो हमने अपनी नानी दादी के समय से पाया था। इस तरह के लड्डू के साथ और भी देसी मठरी, देसी नमकीने के साथ साथ हमारा एक बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ से ही धीरे धीरे रफ्तार ले। ये बहुत छोटा सा काम आज गृह उद्योग का रूप ले रहा है।
1: क्या आप ये भी मानती हैं कि उत्पाद को या अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग करना भी जरूरी है?
2: बिल्कुल। वैसे तो मेरा ये बिजनेस आपको हमने अभी बताया कि वर्ड ऑफ माउथ का है, साथ साथ व्हाट्सएप का है, एक ऐप बनाया और जैसे ही वो ऐप

ने डाउनलोड किया, वैसे ही हमारे पास तुरंत के तुरंत ऑर्डर आने लगे। इसका मतलब इस बिजनेस को आप अगर ऑनलाइन के थ्रू बढ़ाते हैं तो आपको ज्यादा मुनाफा हो सकता है। तो मुझे अब अपनी टीम भी बढ़ानी पड़ेगी और इस एक्स्ट्रा ऑर्डर्स को भी हमें मैनेज करना होगा। और दूसरा, आज जो भी इस तरह के काम को शुरू करना चाहता है उनके लिए मैं ये मैसेज भी देना चाहूंगी कि ऑनलाइन ब्रांडिंग इस काम को एक नया आकार दे सकती है। आप हर उस जगह पहुंच सकते हैं जहां वर्ड ऑफ माउथ से आपकी पहुंच नहीं है। तो ऑनलाइन ब्रांडिंग आज के जमाने में दी बेस्ट है, जिसके लिए मैं भी कोशिश कर रही हूँ। अपने परिवार, अपनी टीम, उसका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और बहुत छोटी सी दो लाइनें हैं हमारे इस होममेड के लिए कि चले थे अकेले कारवां बढ़ता गया, चले थे अकेले कारवां बढ़ता गया, कुछ कोशिशें हमारी तो कुछ भरोसा आपका भी रहा होगा।

0: घरेलू उत्पादों को घर घर से ग्लोबल बाजार तक पहुंचाने में डिलीवरी सेवाओं की अहम भूमिका है।
1: इस बात को बता रहे हैं हमारे साथ जुड़े एक डिलीवरी मैन, क्योंकि उन्हें लगता है कि इधर के कुछ वर्षों में ऑनलाइन डिलीवरी का काम बहुत तेजी से बढ़ा है और आज ऑनलाइन डिलीवरी की वजह से अब छोटे शहर और गांव तक भी बाजार पहुंच गया है।
2: मैं नगीना जायसवाल, मैं 10 साल से डिलीवरी का काम करता हूं। बिल्कुल पहले गांव और छोटे शहरों में लोगों के पास सामान के बहुत कम विकल्प होते थे, लेकिन अब ऑनलाइन डिलीवरी की वजह से हर तरह का सामान आसानी से घर तक पहुंच रहा है। खास बात यह है कि अब छोटे घरेलू उत्पादन भी इंटरनेट के जरिए दूर दूर तक भेजे जा रहे हैं। इससे ग्राहकों को सुविधा मिल रही है और छोटे व्यापारियों को बड़ा बाजार भी। इससे हम लोगों को भी काम बहुत मिल रहा है, साथ में पैकिंग करने वाले को भी रोजगार मिल रहा है।
0: डिलीवरी व्यवस्था घरेलू उत्पादों को ग्राहकों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन किसी भी उत्पाद को घर घर से वैश्विक बाजार तक पहचान दिलाने में डिजिटल मार्केटिंग की भूमिका भी उतनी ही अहम होती है। तो आइए अब जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ की राय कि ऑनलाइन ब्रांडिंग के जरिए घरेलू उत्पाद को नए बाजार और नए ग्राहक कैसे मिल सकते हैं।
3: नमस्कार, मैं स्वप्निल चौधरी। पिछले कई सालों से हम डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस ग्रोथ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं।
0: क्या आप उत्पादों को B2B मार्केटप्लेस पर रजिस्टर कराने में भी मदद करते हैं?
3: व्यवसायों को B2B मार्केटप्लेस पर रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, कैटलॉग मैनेजमेंट और लीड जनरेशन में सहायता प्रदान करता है। हमारा उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि उत्पाद अधिक से अधिक खरीदारों तक पहुँचे और व्यवसाय को नए अवसर प्राप्त हों।
0: क्या आजकल इस पर काम ज्यादा हो रहा है या अभी भी लोगों में जानकारी का अभाव है?
3: निश्चित रूप से जागरूकता पहले की तुलना में तो काफी बढ़ी है, लेकिन अभी भी कुछ छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से उद्यमी डिजिटल मार्केटिंग की पूरी क्षमता को नहीं समझते हैं। कई लोग केवल सोशल मीडिया अकाउंट बना लेने को ही ऑनलाइन ब्रांडिंग मान लेते हैं, जबकि इसके लिए सही रणनीति, कंटेंट, विज्ञापन और ग्राहक जुड़ाव की भी आवश्यकता होती है।
0: अच्छा, आज सोशल मीडिया और ऑनलाइन ब्रांडिंग किसी व्यवसाय को आगे बढ़ाने में कैसे काम करती है?
3: आज के समय में सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह व्यवसाय बढ़ाने का प्रभावी प्लेटफॉर्म बन चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे माध्यमों से कोई भी व्यवसाय अपने उत्पादों को लाखों संभावित ग्राहकों तक पहुँचा सकता है। ऑनलाइन ब्रांडिंग से ग्राहक आपके ब्रांड को पहचानते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और खरीदारी करने के लिए प्रेरित होते हैं।
0: बिगनर्स के लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी?
3: मेरी सलाह है कि सबसे पहले तो अपना उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशिष्टता को समझें, उसके बाद एक प्रोफेशनल ऑनलाइन पहचान बनाएं, नियमित रूप से अच्छा कंटेंट डालें और ग्राहकों से जुड़ाव बनाए रखें। शुरुआत छोटे स्तर से करें, लेकिन निरंतर सीखते रहें। डिजिटल दुनिया में सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन सही दिशा में लगातार प्रयास करने से बड़े परिणाम जरूर मिलते हैं।

0: को तू सजा ले।
1: तो साथियों, आज हमने जाना कि कैसे घरेलू उत्पाद घर की चौखटों से निकलकर ऑनलाइन माध्यमों के जरिए देश दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं। लोगों की राय, उद्यमी के अनुभव, डिलीवरी व्यवस्था और डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ के विचारों से ये साफ है कि अगर स्थानीय उत्पादों को सही मंच मिले तो वे न केवल नए अवसर पैदा कर सकते हैं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी और मजबूत बना सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि घर घर से ग्लोबल बाजार का ये सफर आगे भी यूं ही जारी रहेगा। आज की उद्यमिका की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करने की अनुमति दीजिए अमिता को। नमस्कार।

दोस्तों, स्थल दुनियांकन पर आधारित कार्यक्रम अभी आपने सुना हमारी रेडियो साथी अमिता चित्रांशी के साथ। और अब वक्त हो चला है आज आपको आज के उत्तर प्रदेश विकास और अवसर समाचारों से आप सभी को रूबरू कराने का। तो गोमती नदी के किनारे भारत की परंपराओं, लोक संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को समर्पित एक आधुनिक सांस्कृतिक संग्रहालय विकसित किए जाने को मंजूरी मिली है। यह परियोजना पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को नया आयाम देगी। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन से जुड़ी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। इससे उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर को मजबूती मिलने के साथ स्थानीय उद्योगों और रोजगार के नए अवसरों का विस्तार होगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सचिवालय एवं विधानसभा में संबंधित 170 पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी की है। पात्र अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों के भीतर आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ स्थित SGPGI सहित विभिन्न संस्थानों में नर्सिंग, तकनीकी और एवं अनुसंधान पदों पर भर्ती प्रक्रियाएं जारी हैं। पात्र अभ्यर्थी चिकित्सा सेवा से जुड़ने के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, ये थे आज के उत्तर प्रदेश के विकास और अवसर समाचार। अब वक्त बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रहा है कि आज के कार्यक्रम में हम और आगे चलें। मिलेंगे फिर किसी दिन इसी प्रोग्राम में, और तब तक के लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ आपको इस खूबसूरत से गीत के साथ। नमस्कार।

0: अभी आप नई उड़ान कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, क्या आपको खाना निगलने में कभी कभी परेशानी महसूस होती है, या खाते या पीते वक्त बार बार खांसी सी महसूस होती है? तो सावधान हो जाइए, ये डिस्फेजिया का संकेत हो सकता है। डिस्फेजिया क्या है, इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में जानने के लिए सुनिए हमारे चैनल यानी आकाशवाणी के FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर विशेष फोन इन कार्यक्रम बुधवार दिनांक 10 जून 2026 को प्रातः 11:02 पर, जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन देंगे आपकी जिज्ञासाओं के सरल और उपयोगी उत्तर। तो सुनना न भूलें हमारे चैनल यानी FM रेनबो 100.7 मेगाहर्ट्ज पर नेशनल डिस्फेजिया अवेयरनेस विशेष कार्यक्रम। हमारा फोन नंबर है 0522-223-8845 और 0522-223-8852। इसे एक बार फिर सुन लें, 0522 जो कि हमारा कोड है, 2238845, और दूसरा नंबर है 0522-223-8852, और हमारी ईमेल आईडी है fmakashwani.lucknow@gmail.com। सही जानकारी, बेहतर स्वास्थ्य, आकाशवाणी के साथ।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ,
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700-001-4242।
1: ओ, 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
6: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका सुषमा कुमारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दूरभाषद्वारा कुवैत आमीर इत्यनेन सह पश्चिमेशियायाः विकसितां सुरक्षास्थितिं चर्चितवान्। भारतं संयुक्तराष्ट्रसङ्घे पाकिस्तानं निन्दयन् तं द्वेष उद्योगेति अवोचत्। खाद्यसुरक्षया सह कृषकाणां सशक्तीकरणविषये केन्द्रितस्य 5-दिवसीयस्य ब्रिक्स कृषिमन्त्रिणां सम्मेलनम् इन्दोरनगरे आरभ्यते। सामरिक

0: पंचो जय हिंद।
1: ओम भैया।
0: हाँ सरला बहन,
1: देखो अपन जो देश है ना वो विविधता कर देश है, है? यहाँ हर क्षेत्र में जो है अपन एक कला और जो है संस्कृत शिल्प हर चीज़ के अपन एक पारंपरिक उद्योग है और जो है कहा जाता है कि विविधता के देश ये है। और यही कहा जाता भैया कि चार कोस पर पानी बदले और

0: आठ कोर्स पर बानी है ना।
1: बिल्कुल सही कहते हो सरला बहनी। और देखो होत का है कि जब कोनो हम पंचे काम करी थे ना तो वही का कबो को अपने घर में मनाई कर लेते
0: हैं,
1: फिर वही के बाद का करते अपने गांव में कर लेते, फिर गांव तेरे आसपास जवार में करते, लेकिन मेहनत अतनी करते मेहनत का परिणाम उतना नहीं मिल पावत है। काहे तेरे वो सोचत है कि हमारा भैया पहचान हो जाए और हम जो उत्पाद बना रहे हैं या जो काम कर रहे हैं वही क्यों पहचान हो जाए, लेकिन बहुत जुगत लगाए बाद पहचान बन नहीं पावत है।
0: अच्छा तो लेकिन अब भैया पहचान बनने लगी है। और देखो पहले मैंने देखो अपने ही जो है मुंह जून से जो है बनत रहा डलिया
1: बनत रहा है हमरे गांव तो बकरी के बच्चा बंद कर देते रहे।
0: अच्छा और वहके वाला बनत रहा और जो है वैसे जो बल्ला से बीन बीन के सुई से सूजा से बढ़िया डलिया बनाई जात रहा है तो कितना काम कर रहा ना उमा जो है गेहूँ चावल मैंने धे देत रहा और तमाम सीधा पानी रखे के काम होता
1: है। सीधा खातिन वो पहला जो है रखत है
0: हाँ।
1: जब सीधा देखो थे तो गरीब ग्वाला आटा ले जाके दे देते हैं।
0: और यह चीज भैया देखो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है लेकिन कि जो है ये सब चीज का हमें बनाए रखे रहा और यही खातिर जो है अपन सरकार भी ये पे सजग भय और ये पे काम कर शुरू करिस और यही खातिर एक योजना की शुरुआत करिस एक जनपद एक उत्पाद।
1: बिल्कुल एक जिला
0: हाँ।
1: और एक उत्पाद यानी बहुत देखो अपने अपन जो जिला हुए मन की कोनो चीज इतना ज्यादा हुआ पर प्रसिद्ध है कि वह क्या नाम ले लो समझ लो जगह नाम जान जी हो
0: तमाम चीजें जैसे भदोही कालीन होगा भैया हाँ, अपने यहाँ चिकनकारी होगा
1: चिकनकारी होगी और बहने तुमका कहा बताए कन्नौज चले जाओ तो गली गली महकत है
0: गली गली महकत
1: माँ इत्र बतावत है इतना भैया ज्यादा इतना नीक है बतावत का हमू आग दे गए तो गली वास्तव महकती है और वही के साथ साथ जो बनारस हो
0: हाँ, चले जाओ साड़ी भैया एक से
1: साड़ी अब तुम्हारे यहाँ भौजी मार भी कहे कि हमका देखो बनारस की साड़ी लेके आए तो फिर आज हम गए रहे फिर उनका लिवाक मार खरीदारी कर लें पूरी बैग भर लें पूरा
0: लेकिन एक बात है भैया हुआ साड़ी जब ले आओ ना तो यही मन कहा था बनारस जाओ फिर से वही से साड़ी लेके आओ।
1: हाँ बिल्कुल मन जरूर करी कहे थे पैसा तो हमारे पंचन का खर्चा होते तो मन करत रहा है। और देखो ये योजना के माध्यम तेरे अपने जिला जवार का पूरा नाम हो रहा और अपने जिला जवार का अपने आस पास है नहीं देश विदेशन में यह नाम हो रहा।
0: बिल्कुल और यह चीज का जो है हम सब सोचे लगे हैं और ये पे काम कर शुरू करें है ना और ये का अगर सामूहिक रूप से काम करत हैं तो देश विदेश में जो है पहचान अलग बन रही है।
1: बिल्कुल ये तो अपन सरकार देखो इतना ध्यान देते तो इतना धन्यवाद है सरकार का। और वही के साथ साथ देखो अपने जो गावन मैया है हम पंचे जब कबो बीमार बीमार हुए थे तो मैंने सोचा थे कि बड़े बड़े अस्पताल में दिखा ली लेकिन जो मूल कड़ी हुए वो है अपन गांव का स्वास्थ्य तंत्र। होत क्या है कि जो छोटे स्तर पर यहाँ सबसे पहले तो हम पंचे जाए थे कि जो अपन गांव के सरकारी अस्पताल है मैं दिखा लेंगे भैया सस्ते में यहाँ अच्छा इलाज हो जाए।
0: नहीं भैया हो जाता है अब देखो सबसे पहले तो हम प्राथमिक उपचार कर रहे थे ना घर पे करवाते और छोट मोट बीमारी हो तो कोनो तो हम पहले वही अस्पताल पहुंचे थे प्राथमिक चिकित्सा कर रहे थे और ठीक भी हो जाते हैं और कोनो ज्यादा दिक्कत होते तो हमका दूर जाए पड़ता है और देखो दूर जाए पड़ते तो का जो है अब तो आस पास तमाम अस्पताल हो गए हैं और रोडे भी ठीक ठाक हो गए हैं कि आराम से चले जाओ है ना।
1: तो बहनी देखो जो उन अपन गांव का स्वास्थ्य तंत्र कैसे मजबूत भवा है तो वो कितनी नीकी तना तरह बता रहे हैं पुष्पावती बहनी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्त स्वास्थ्य तंत्र यही विषय पर जानकारी दे रहे हैं तो आप सुना जाओ पंचो भाई सुने और जानकारी लें।
0: सुना जा भैया।
2: स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का विकास होता है। हमारे पूर्वज प्राचीन काल में पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों से अधिकतर बीमारियों को ठीक कर लेते थे और शीघ्र ही स्वस्थ हो जाते थे। इसका सबसे प्रमुख कारण था कि पर्यावरण की शुद्धता, स्वस्थ जलवायु, सादी और सरल जीवन शैली, खान पान भी साधारण, ये सब प्राचीन काल के गुणवत्तापूर्ण रहन सहन से ही संभव था। हमारे परिवार की दादी नानी घरेलू नुस्खों से भी बीमारियों को ठीक कर लेती थीं। अधिकतर बीमारियां घर की रसोई में उपलब्ध मसालों और अनाजों के उपयोग से ठीक हो जाया करती थीं, परंतु अब समय बदल गया है। पर्यावरण जलवायु सभी प्रदूषित हो रहे हैं, मशीनरी का युग हो गया है, इसका उपयोग हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। भौतिक सुविधाएं अधिक उपयोग में आ रही हैं और हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी डाल रही हैं जिससे नई नई बीमारियाँ

जल्दी जल्दी रूप बदल कर हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं और हमें घरेलू इलाज से अंग्रेजी दवाओं और इलाज पर निर्भर रहना पड़ रहा है। जब बीमारियों का स्तर रूप बदल कर ज़्यादा प्रभाव में आने लगा तो हमें अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों का सहारा लेना पड़ा और आज प्रतिक्षण में संक्रामक रोगों में परिवर्तित होकर हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रही है। इसी समस्या का निवारण करने के लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्णय लिया, जहां पर अच्छे और प्रशिक्षित डॉक्टर एवं स्वास्थ्यकर्मी मिल सकें और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हर व्यक्ति को उचित स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सके। हर स्थान पर जन औषधि केंद्र भी सरकार द्वारा खोले गए हैं, जिसमें कम दामों पर मरीजों को दवाएं उपलब्ध हो सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्त स्वास्थ्य तंत्र का मतलब है कि गांव में रहने वाले हर व्यक्ति तक सस्ती, सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच होनी चाहिए। इसके निवारण और उपचारात्मक दोनों ही प्रकार की सेवाओं को गांव के स्तर तक मजबूत करना आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य तंत्र को सशक्त बनाने के लिए प्रमुख स्तंभ और रणनीतियां भी आवश्यक हैं। त्रिस्तरीय स्वास्थ्य संरचना में प्रथम श्रेणी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था होनी चाहिए। यह केंद्र ग्रामीण स्वास्थ्य की सेवा की पहली कड़ी है। इस केंद्र पर योग्य एवं प्रशिक्षित डॉक्टर, दवाओं की उपलब्धता और आपातकालीन चिकित्सा की सुविधाएं भी ग्रामीण क्षेत्रों में की जानी चाहिए। गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी होना आवश्यक है, जो विशेषज्ञ डॉक्टरों और सर्जरी जैसी सुविधाओं से परिपूर्ण हो। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से ऊपर के स्तर का माना जाता है। डिजिटल स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन का भी उपयोग और विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से ग्रामीण मरीज दूर बैठे बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों से परामर्श कर सकते हैं। अब तो मोबाइल के सूचना तंत्र से भी शहरी व्यक्ति और हर ग्रामीण व्यक्ति स्वास्थ्य की जानकारी ले सकते हैं। अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ता जैसे कि आशा बहु, ANM कार्यकर्ता जो भी होते हैं, उनके मुख्य कार्य गर्भवती महिलाओं की देखभाल, टीकाकरण और बच्चों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है। इन कार्यकर्ताओं को समय समय पर प्रशिक्षित और उचित वित्तीय प्रोत्साहन भी देना आवश्यक है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को भी बच्चों के पोषण और माताओं की सेहत का ध्यान रखने की जिम्मेदारी दी जाती है। स्वास्थ्य निवारक देखभाल के आधार पर जन जागरूकता के अभियान की भी आवश्यकता है। ग्रामीण जनों को स्वच्छता, पोषण और संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के बारे में समझाना और शिक्षित करना आवश्यक है। ग्रामीण व्यक्तियों को समान और किफायती और उचित गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य केंद्र स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी प्रमुख सरकारी योजनाएं संचालित की गई हैं। कमजोर आय वर्ग के परिवारों को 5,00,000 रुपए सालाना तक का मुफ्त इलाज प्रदान करने वाली आयुष्मान भारत योजना भी संचालित की गई है। शहरी आबादी की तुलना में ग्रामीण आबादी को अक्सर स्वास्थ्य असमानताओं और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में अधिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य असमानता में योगदान देने के कारकों में दूरस्थ भौगोलिक स्थिति, स्वास्थ्य जोखिम वाले व्यवहारों की बढ़ती दरें, कम जनसंख्या और घनत्व जनसंख्या में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे की कमी और कार्यबल जनसांख्यिकी शामिल है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में शिक्षा का स्तर कम और सामाजिक आर्थिक स्थिति की कमी और शराब धूम्रपान की दर अधिक होती है। इसके अलावा अनेक संक्रामक बीमारियों को भी दूर

करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य संवर्धन, स्वास्थ्य और कल्याण को और बेहतर बनाया जा सकता है। ग्रामीण समुदाय के हर व्यक्ति के लिए उचित चिकित्सा व्यवस्था, सरकार द्वारा जननी सुरक्षा योजना हर व्यक्ति, हर ग्रामीण महिलाओं के लिए की गई है। प्रधानमंत्री शुद्ध पेयजल मिशन भी ग्रामीण जनों के लिए उपयोग में आई है, जिससे हमारी ग्रामीण महिलाएं दूर दराज जाकर पानी लाने का कार्य करती थी। साथ ही बालिकाएं भी साथ साथ पानी लाने दूर दराज जाती थी, जिससे उनको शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं मिल पाता था। विद्यालय में पहुंचने में विलंब हो जाने से पढ़ाई में पीछे रह जाती थी। ग्रामीण अंचलों को ये भी सुविधा मिली है कि नेत्र शिविर की व्यवस्था भी पहले से अधिक की गई है। नई चिकित्सा पद्धति के माध्यम से नेत्र का लेंस लगाना, नेत्र की सर्जरी भी अब ग्रामीण क्षेत्र के आसपास सुविधा अवश्य मिल जाएगी।

0: से पढ़ाई में पीछे रह जाती थीं। ग्रामीण अंचलों को ये भी सुविधा मिली है कि नेत्र शिविर की व्यवस्था भी पहले से अधिक की गई है। नई चिकित्सा पद्धति के माध्यम से नेत्र का लेंस लगाना, नेत्र की सर्जरी भी अब ग्रामीण क्षेत्र के आसपास सुविधा अवश्य मिल जाएगी। ग्रामीण अंचलों के आसपास ब्लड बैंक की भी सुविधा मिल जाती है। मरीजों को अस्पताल में भर्ती करके त्वरित इलाज की व्यवस्था भी अब हम ग्रामीण जनों को मिल रही है। ANM और स्वास्थ्य कर्मी आज ग्रामीण जनों और ग्रामीण स्थानों में ANM और स्वास्थ्य कर्मी आज ग्रामीण स्थानों में जाकर पोलियो ड्राप भी पिलाते हैं और कैल्शियम आयरन की गोलियां भी महिलाओं और बालिकाओं को वितरण का कार्य भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी करते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हमारे घर के आसपास एवं गांव की स्वच्छता अवश्य होनी चाहिए। हर बीमारी की काट साफ सफाई ही है, जो छोटे बच्चों से लेकर वयस्क और बुजुर्गों को सुरक्षित कर सकती है। पहले की समय अवधि से आज हमारे ग्रामीण व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क और जागरूक हो रहे हैं। सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए हमारे सरकार ने उचित व्यवसाय की व्यवस्था भी की है। ग्रामीण जनों को स्वस्थ जीवन सही दिशा में बढ़ावा देना, बीमारियों की रोकथाम करना और ग्रामीण जनों को बेहतर और अधिक जानकारीपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए कार्यक्रम अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इनके द्वारा भी ग्रामीण व्यक्तियों को स्ट्रोक, कैंसर, मोटर वाहन से दुर्घटनाओं जैसी अनजाने में लगी चोटों का और श्वसन तंत्र की पुरानी बीमारियों से मरने का खतरा बढ़ जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हर व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग और जागरूक होना आवश्यक है। जब भी कहीं चिकित्सा शिविर लगाए जाएं, वहां जाकर अपनी समस्या बताना और उचित बेहतर इलाज करवाना तथा व्यवहारिक जीवन से जुड़ी आवश्यक जानकारी लेना आवश्यक है। शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए समय समय पर पौष्टिक आहार, पर्याप्त नींद और नियमित शारीरिक व्यायाम को अपनाना अति आवश्यक है। इससे हर व्यक्ति अनेक बीमारियों से अपना बचाव कर सकता है। गांव हो या शहर, हर व्यक्ति नशा और धूम्रपान जैसी आदतों से दूर रहे और अपने स्वास्थ्य की नियमित जांच करवाते रहना चाहिए। महिलाओं और बालिकाओं को अपनी बीमारियों को छुपाना नहीं चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र जाकर आशा बहु और महिला डॉक्टर से अवश्य परामर्श लें। अंत में हम यही कहेंगे कि स्वस्थ जीवन है तो हर कार्य समय पर संभव है।
1: ओम भैया,
2: हाँ सर,
1: देखो
2: लावण्य
1: कितनी बढ़िया जानकारी रही। ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्त स्वास्थ्य के तंत्र और यह पर जानकारी देन पुष्पावती बहने, तो यह के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो मौसम ऐसा बदल रहा है, कहूँ आंधी, कहूँ पानी, कहूँ बरखा, कहूँ बूंदी, कहूँ घाम, मतलब छिनपा ऐसा बदल रहा है कि समझे नहीं आ रहा
1: मतलब कि
2: का हो।
1: गर्मी वैसे को वैसे है भैया,
2: गर्मी में कोनो अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन देखो चाहे जितनी गर्मी होत है लेकिन अगर मन पसंद गौना ही सुने मिल जाते तो अतनी गर्मी में जो जुड़ाए जाते।
1: तो कहे ना सुनवा दो भैया कोनो
2: गौनी
1: बढ़िया से।
2: हाँ यार देखो गौना ही लेके आया है ना, वरिंता शर्मा बहनी बताए रही कुछ, देखो सुना जाए।
1: सुना जाए भैया, नकटा है, सुना जाए पंच भैया भी सुने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सरला बहनी।
5: हाँ भैया।
4: देखो इतनी नीक गौना सुनाए और वही के बाद देखो मौसम इतना नीक है, नीक है। हाँ गौने तो खो गए रहे, लेकिन देखो मौसम नीक का है हमारे है। मैंने सोचा था इतनी गर्मी चल रही है, लेकिन ये नीक बता रहे हैं, नीक है हमारे है कि अपनी खेती पाती खातिर बड़ा नीक हवा है।
5: हाँ, और यह समय सबसे ज्यादा यह है कि अपने खेती पाती का सबसे ज्यादा समय देख जरूरत है।
4: हाँ, समय देख जरूरत है। अब देखो जो अपन खेत खाली पड़े हैं, हाँ। है और जहाँ मान लो पानी बस गया है और जहाँ नहीं बसा है तो पानी लगाए के एक काम बहुत जरूरी वो कर लो, मदा सॉरी करड़ देखा का हूँ तो कह दिनों होत का है यार, तो बताओ
5: भैया। ये होते देखो अब जो है हम सब जैसे अपन खेत के गहरी जुताई करते हैं अनकुछ हाँ। नहीं है ना, गहरी जुताई गर्मी में बहुत जरूरी आते, काहे से जब नीचे की माटी ऊपर आ जाते तो जो हानिकारक कीट रहा थी वो जो है खत्म हो जाती। और ये मैं यूं रहा था भैया कि जो है अगर मृदा सौरीकरण करेगा तो यो मत ध्यान देख पड़ा था हमका सबसे ज्यादा कि कोनो यह तरीके से रसायन न डारी है ना, और अपने खेत का बचाए रखी, यह लिए जैविक उर्वरक को हमें डायरेक्ट जरूरत रहा था।
4: बहनी देखो है का कि अब जैसे घाम बहुत हो रहा है तो मदा सौरीकरण के माध्यम से अपन देखो बैठ के कितने वैज्ञानिक भैया आवत हैं वही बतावत हैं। और आपका करेक्ट का है भैया, जैसे घाम हो रहा है
5: हाँ।
4: तो बताओ ने वहां देखो पन्नी दो ना आवत है, तो जब नमी रहा थे तो पन्नी बिछा दो,
5: बिछा दो
4: और बिछा

0: दो भैया, वाली पन्नी बिछावक है जैसे ऐसी वैसी दिखाते हैं आरम पार जगह कहते हैं, और जब ऐसे वैसे तो एक दबा दो,
1: दिन पड़े रहे।
0: हाँ माटी तेरे दबाए दो, और जब घाम लागी तो दंदका निकरी महिमा, दंदका निकरी तो जतना महिमा किरवा मकौरा है वे का अंडा बच्चा है, और वही के साथ साथ जोन घास फूस का जोन बिया दाना है वो सब वही में सड़ गई पांच बन जैसी धीवातिया है।
1: ये तो बहुत बढ़िया।
0: तो यू मृदा सौरी करण भैया देखो बहुत नीक होते है, का करियो तो बहुत आनंद आई, आनंद ही के मारे आई काहे तेरे जब खर पतवार भैया के आत्मा हो ही नहीं, किरवा मतो
1: तो फसल बढ़िया हुई,
0: किरवा पतंगा लगी है नहीं आपकी फसल में, या फसल नीक हुई तो मजा मजा है। और वही के साथ साथ देखो अपने ख्यातनों को बचा रखे भैया,
1: खेत का बिल्कुल बचाव का भैया। देखो अपने खेत का हमें यही खातिर बचाव का है कि लगातार हम कौन फसल लगाए रहे हैं है? तो अपने खेत के माटी जो है उके उर्वरा शक्ति खत्म हो जाते हैं, तो यही लिए हम सबका फसल बराबर बदल बदल के लगाना चाहिए। और यही के अलावा भी जो है हम सबका खेत में जो है गोबर के खाद डालो,
0: गोबर के खाद देने डायरेक्ट है वह तो डरहक है। वही के साथ साथ देखो है का कि अब लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, तो जो उन खेती योग्य अपन जमीन हुए है वह धीरे धीरे वतने हैं और धीरे धीरे कमे हो चली जा रही है। मैंने ही कहा कर रहा जो उन खेरे खरवा रहा है, मतलब कि जहाँ कहला कि जो उन ख्यात है वहाँ घर बना लो, तो खेरे पर यहाँ भैया हुए हैं कहला जो उसर है वही घर बना लो, कोठरी बना लो, धीरे धीरे वे सब पक्के हो चले जा रहे हैं, यानी कि जो अपन खेती वाली जमीन रहे वह धीरे धीरे कम हो चली जा रही। तो अपने ख्यातन के यहाँ बचावक है, और देखो सरकारों तरफ तेरे ये अभियान चलावा जा रहा कि अपने ख्यातन के यहाँ बचाओ। और देखो सबसे जरूरी यह हो जाता है कि जब अपनी फसल में यहाँ पोषण नहीं मिलते है तो अपनी फसलें धीरे धीरे नष्ट होती हैं, कमजोर पड़े लगती हैं। तो जरूरी यह हो है कि अपनी फसलन के यहाँ पोषण मिले, और जो नए जमाने का उर्वरक आ गया है
1: वह के प्रयोग
0: जैसा कहा नहीं स्मार्ट उर्वरक,
1: स्मार्ट उर्वरक भैया, और खेत बचाव पे कहे भैया। और जब खेत बचाव बात हो तो किसान रजिस्ट्री भी हम सबका करवा लेना चाहिए,
0: किसान रजिस्ट्री वही करवाई में है थोड़ी देर भैया। तो तब तक अपने पंच बहन के यहाँ सुनवाए दिन जाए खरीफ फसलों में नैनो उर्वरकों का प्रयोग ऐपा एक भेंट वार्ता, वार्ता कर रहे हैं यतेंद्र कुमार भैया, और इनसे भेंट कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। तो आओ सुना जाए, पंचो भाई सुने और जानकारी लें,
1: सुना जाए भैया।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय आप खरीफ अभियान की तैयारी में हैं, खरीफ फसलों की भूख कैसे मिटे और इसके लिए जो नए जमाने के उर्वरक हैं, जो स्मार्ट उर्वरक हैं, नैनो उर्वरक हैं, उनका प्रयोग कैसे करें किसान भाई बहन, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं इफको उत्तर प्रदेश से राज्य विपणन प्रबंधक यतेंद्र कुमार तिवतिया साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। तेवतिया साहब ये बताएं कि खरीफ फसलों की भूख मिटाने के लिए किसान भाई बहन जो नैनो उर्वरक हैं उनका प्रयोग कैसे करें।
3: सभी किसान भाई और बहनों को मेरा प्रणाम। साथियों जैसा कि नैनो उर्वरकों के बारे में बताने के लिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, एक सरकार की भारत सरकार ने भी योजना चलाई है जिसमें हमारे जो अधिकारी हैं वो सारे गाँव-गाँव घर-घर तक जा रहे हैं, खेत बचाओ अभियान
2: जी।
3: और उसका खेत बचाओ अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है कि हमने अपनी जमीन जो है उसमें उर्वरकों का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है रसायनों का, उससे हमारी जमीन की दशा बहुत खराब हो गई है। अब हम लोगों को नई चीजों के बारे में सोचने की जरूरत है, और उसमें हम जो कार्बनिक खेती जैविक खेती की बात करते हैं, साथ ही कुछ ऐसे उर्वरक भी आ गए जिनका जो प्रभाव पड़ता है जमीन पर और जो फसल पर वो बहुत ही नके बराबर होता है और फसल का उत्पादन ही बढ़ता है,
2: यानी पर्यावरण हितैषी।
3: बिल्कुल पर्यावरण भी हितैषी है, और आपका जो जमीन है उसको सुरक्षित रखते हैं, और जो आपकी जो अन्न पैदा होता है उस पर भी उसका प्रभाव आता है वो भी बहुत कम होता है। तो उनमें उनका जो उर्वरकों का नाम है उसमें आते हैं नैनो उर्वरक। अब नैनो उर्वरक जो है आजकल अभी तो हमारे जो प्रचलन में आ रहे हैं वो चार हैं, उनमें है नैनो डीएपी, नैनो यूरिया, नैनो कॉपर और नैनो जिंक
2: जी।
3: अब सबसे बड़ी बात आती है कि इस समय जो सीजन चल रहा है वो खरीफ का सीजन चल रहा है, और खरीफ में बुवाई का सीजन अब शुरू होगा, बरसात कहीं कहीं हो जा रही है, कई जगह बेड़ पड़ भी चुकी है, कई जगह अभी जो धान की लोग बेड़ डालेंगे
2: और धान की सीधी बुवाई भी कर रहे हैं,
3: बुवाई भी करेंगे। 15 जून से एक तरह से खरीफ का सीजन शुरू हो जाता है, टेम्परेचर के अनुसार प्लस माइनस थोड़ा बहुत लोग अपना हिसाब से सोइंग करेंगे। अब धान की हम बात करते हैं जो मुख्य फसल है एक तरह से हमारी खरीफ की
2: जी,
3: धान के बारे में बात करते हैं तो उसका हम कैसे उपचार करें, यदि बेड़ भी डालना है आप और या वैसे तो हमारा 5 ml पर किलो बीज के हिसाब से हम लोग उसको इस्तेमाल डीएपी से उपचारित करने की बात करते हैं,
2: यानी नैनो डीएपी से।
3: नैनो डीएपी से अब उसमें दोनों अलग अलग तरीके हैं, एक तो तरीका देखो है कि जो धान है धान को ज्यादा लोग पानी में डाल देते हैं और उसको सोक करते हैं, मतलब उससे पानी को

0: जिसका उसका अंकुरण अच्छा हो जाए
1: जी।
0: तो एक ये भी कर सकते हैं कि 1 लीटर पानी में 5 ml हम नैनो मिला लें
1: जी।
0: जैसे 10 लीटर में 50 ml मिला लें और उसमें बीज को सूख कर लें।
1: हाँ।
0: उससे भी बीज का उपचार हो जाएगा और बुवाई कर दें तो भी हमको अच्छे परिणाम मिलेंगे।
1: यानी नर्सरी के पहले ये काम बीज शोधन
0: कर
1: नैनो डीएपी से कर
0: लें
1: और जहाँ धान की सीधी बुआई कर रहे हैं
0: वहाँ भी सोकिंग करेंगे तो अच्छा वहाँ भी होगा, क्योंकि उसका जो कवर होता है ऊपर थोड़ा कठोर होता है तो उसमें लाभ मिलेगा, लेकिन उसकी हमारे बीज की मात्रा बढ़ जाती है। तो हम बीज के हिसाब से लेके चलेंगे 5 ml प्रति किलो बीज
1: जी।
0: और जितना हम एकड़ में बीज डाल रहे हैं, वैरायटी से वैरायटी अलग डिफर करता है। मान लो हम लोग 20 किलो डाल रहे हैं उसमें एकड़ में, तो 20 किलो है 100 ml पड़ेगा, तो इसको हम थोड़ा सा उसी हिसाब से मतलब सेट कर सकते हैं। तो सोकिंग वैसे धान के लिए सबसे अच्छा है कि आप जो है धान को पहले उसमें पानी में मिला लें और पानी के उसमें फिर उसको सूख करें। तो यूँ कि खरीफ में टेम्परेचर ज्यादा होता है, सोकिंग वाला ज्यादा अच्छा है, अन्यथा तो ऊपर वो यूँ कि ऑलरेडी वो तरल पदार्थ है तो ऊपर से छिड़काव करके भी हाथ से मिला के और ऐसे बुवाई करके भी उसको हम लोग कर सकते हैं।
1: तो इसके फायदे क्या क्या होंगे?
0: इसके जो फायदे होंगे, एक तो सबसे बड़ी जो सबसे अच्छा जो फायदा आता है, एक तो जब तुरंत पौधे को या जो भी बीज होता है उसको एक अच्छी खासी ताकत मिल जाती है, उससे अंकुरण बहुत अच्छा होगा आपका।
1: यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों?
0: जी, दोनों मिल जाएगा तो उसका अंकुरण बहुत अच्छा होगा और जल्दी होगा। और इसके साथ साथ उसकी जड़ों का विकास भी ज्यादा होता है
1: जी।
0: और जो जैसे ही पौधा निकलेगा तो उसके जो कल्ले निकलेंगे वो भी संख्या में ज्यादा होंगे। 4 ये तो मुख्य चीजें हैं।
1: और जब जड़ों का विकास अधिक होगा तो निश्चित रूप से जो पहले से खुराक है जमीन में पोषक तत्वों की वो भी उपलब्ध होगी।
0: बिल्कुल ठीक बात है, जो नीचे उसमें पोषक तत्व पड़े उनका मिलेगा और जो पौधे जो उसमें जब सीड को तुरंत ताकत मिल जाती है तो उसकी जो ग्रोथ होती है, उसकी वृद्धि जो होती है वो एक अलग टाइप की होती है, दिखाई देता अलग से कि हाँ इसका कोई असर है। तो इससे हमारा जो जब नेचुरली जड़ों का विकास अच्छा होगा, अंकुरण अच्छा होगा और कल्ले भी ज्यादा निकलेंगे तो पैदावार भी हमारी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी।
1: तेवतिया साहब, जैसे आपने धान की सीधी बुआई या धान की बेहन के पहले नैनो डीएपी से बीज शोधन की बात की, इसी तरह मोटा अनाज है, मक्का है, दलहन है, तिलहनी फसलें हैं, क्या इनमें भी बीज शोधन नैनो डीएपी का कर सकते हैं?
0: बीज शोधन सब में कर सकते हैं। बीज शोधन में सबकी वही है कि 5 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से हमको उसमें इस्तेमाल करना है और स्प्रे करना है उसको। 5 किलो बीज ले लिए, 25 ml का एक ढक्कन होता है उतना ले लीजिए। यदि आपको लगता है कि 25 ml में पूरा बीज नहीं भीगता है तो उसमें 50 से 100 ml तक पानी मिला लीजिए,
1: थोड़ा
0: डाइल्यूट कर लीजिए उसे, मतलब थोड़ा उसका जो डाइल्यूट हो जाएगा
1: तो कोटिंग हो जाए।
0: सबसे बड़ी चीज है कोटिंग हो जाए और कोटिंग के बाद कम से कम आधे घंटे तक उसे छाया में सुखा लीजिए, इसके बाद बुवाई करिए।
1: फिर खड़ी फसल में नैनो डीएपी और नैनो यूरिया तरल का प्रयोग कब कब और कितना करना है?
0: नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का वही 4 से 5 ml प्रति लीटर पानी, एक टंकी आती है जो 15 लीटर की होती है, उसमें 75 ml हम लोग डालना है,
1: यानी
0: ढाई ढक्कन। लेकिन इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, एक याद रखने की जरूरत है, हमें फसल की एक टाइम के हिसाब से बता दूं कि 15 दिन पर डालेंगे या 20 दिन पर, ऐसा थोड़ा प्रैक्टिकल कभी कभी नहीं हो पाता। कुछ फसलें होती हैं कि वो बहुत जल्दी पत्तियां ज्यादा आ जाती हैं, कुछ पत्तियां देर में होती हैं, तो ये हमको ध्यान करने की जरूरत है कि फसल में पर्याप्त मात्रा में पत्तियां हों। पत्तियों के जो रंध्र होते हैं, जो स्टेम उठा होता है, उनके द्वारा ही नैनो उर्वरकों का प्रवेश होता है पौधे में। तो जब पत्तियां नहीं होंगी तो फिर उतना प्रभाव उसका मिट्टी पे पड़ने का उसका लाभ नहीं मिलता है। तो हमारे खेत में पर्याप्त मात्रा में फोलिएज मतलब पत्तियां होनी चाहिए
1: जी,
0: जिससे उसको हम लोग ऊपर छिड़काव करें तो उस पौधे को पूरा लाभ मिल सके।
1: तो नैनो डीएपी और नैनो यूरिया तरल का प्रयोग तभी करें खड़ी फसल में।
0: दूसरा, खरीफ की फसलों में एक और महत्वपूर्ण जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, हमारे जो जमीनों में जिंक की भी कमी है
1: जी।
0: और हमारे पास में नैनो जिंक भी आ गया और नैनो जिंक को भी नैनो यूरिया के साथ मिला लेते हैं तो और अच्छे हमको परिणाम देखने को मिलते हैं।
1: क्या नैनो यूरिया तरल और नैनो जिंक एक साथ मिला सकते?
0: बिल्कुल मिला सकते हैं।
1: कितनी मात्रा?
0: वो दोनों वही 4 ml उसका, वो वैसे एक सीसी आती है उसकी 100 ml की है हमारे पास में, 100 ml की सीसी वो 1 एकड़ के लिए है। तो 1 एकड़ के हिसाब से उसको सीसी को 100 ml में डालना है तो 100 लीटर पानी तक डालते तो 1 ml के हिसाब से डालेंगे उसे और ये 5 ml होगा।
1: अच्छा
0: जी,
1: यानी 1 ml नैनो जिंक 1 लीटर पानी का
0: पानी,
1: हिसाब
0: एक पानी
1: और 1 लीटर पानी में 5 ml
0: जो
1: नैनो यूरिया तरल और नैनो डीएपी
0: मिला सकते
1: हैं। तो खड़ी फसल में नैनो यूरिया तरल और नैनो डीएपी दोनों का एक साथ
0: दोनों कर सकते हैं। वैसे पहले आपने डीएपी का इस्तेमाल किया तो थोड़े गैप, पहली जो आप जो करेंगे छिड़काव वो नैनो यूरिया प्लस जिंक का करिए, क्योंकि हमारा जो हमने डीएपी दिया वो लगभग उसका 60-65 दिन तक प्रभाव रहता है, यूरिया का 25 दिन तक होता है। इसके बाद दोबारा जो करेंगे तब आप नैनो डीएपी का छिड़काव करें।
1: नैनो कापर भी तो आ चुका है।

0: हाँ, नैनो कॉपर जो फंगस वाली बहुत सारी फसलें होती हैं, जैसे इसमें फंगस आता है, उखटा बीमारी को चाहती
1: है, बहुत सारी बीमारियां,
0: बहुत सारी बीमारियां फफूजनक बीमारी होती हैं, उनमें हम लोग नैनो कॉपर का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: जो भी नैनो उर्वरक हैं खरीफ फसलों में, उनका इस्तेमाल चाहे बीज शोधन या पानी छिड़काव के रूप में करना है तो कुछ सावधानियां भी होंगी।
0: हाँ, सावधानियां करनी है, जैसे आपको जो छिड़काव करना है तो जमीन पे, जैसे पहले तो एक साफ सुथरा बीज हो और जमीन नीचे पक्की हो, नहीं हो तो पॉलीथीन पे बिछा लें उसे
1: जी,
0: और तब उसमें छिड़काव करें, अन्यथा तो आपने ऊपर से पानी मिलाया डाला या आपने नैनो डाला तो नैनो जमीन में चला जाएगा, जमीन होगी तो नीचे फिर सूख कर जाएगी उसे
1: जी।
0: तो नीचे फर्श होना चाहिए, प्रॉपरली उस पर फैला लें और फिर उसको मिला के हाथ से ढंग से मल दें, मतलब एक तरह से मुआ टाइप सा बोलते हैं, तरह से उसको मतलब कोटिंग उसकी कर दें। और यह भी ध्यान रखें कि उसको आधा घंटा मिनिमम बुवाई करने से पहले जरूर करें, शाम को भी कर सकते हैं 10-12 घंटे पहले, लेकिन बहुत पहले न करें कि 2-3 दिन पहले कर देंगे तो उसका प्रभाव खराब हो सकता है, तो या तो आप सुबेरे बुवाई करनी है तो शाम को कर दीजिए, अन्यथा कम से कम आधा घंटे पहले तो अवश्य करिए उसका।
1: तेवतिया साहब, जो पुराने पारंपरिक उर्वरक हैं, चाहे यूरिया है, डीएपी है या एनपीके है, उसके मुकाबले ये जो नैनो यूरिया तरल है, नैनो डीएपी है, नैनो जिंक है, नैनो कापर है, इसकी दक्षता कितनी है?
0: इनकी दक्षता करीब करीब 90% तक है, और वो वाली जो उसके अलग अलग होती है, जो नैनो यूरिया की और फास्फेट जो नैनो वाले हैं, वैसे यूरिया की जो है 30% तक होती है, दूसरा वाला फास्फेटिक की तो 18-20% है, इनकी दक्षता बहुत ज्यादा है, इसीलिए इनका सरफेस एरिया ज्यादा कवर करते हैं, इसलिए प्रभावकारी है, और इनसे अभी हम लोगों को 100% रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, हम 25-30% तक शुरुआती दौर में 50% तक डीएपी को हम कम कर सकते हैं,
1: यानी जो दानेदार डीएपी है, दानेदार यूरिया है, उसकी आधी मात्रा
0: सकते हैं,
1: और नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी का इस्तेमाल बढ़ा
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
1: तेवतिया साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ फसलों में नैनो उर्वरकों के प्रयोग के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर 9956391295 99563912 95 99 56 39 12 95।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ फसलों में नैनो उर्वरकों के प्रयोग के बारे में? तेवतिया साहब,
0: नैनो उर्वरकों का तो इस्तेमाल करना है, जो मैंने पहले भी बताया था खेत बचाओ अभियान, इसमें जैव उर्वरकों का भी बड़ा भारी महत्व है, और हम लोग जैविक खेती की बात कर रहे हैं, और अब इसमें कार्बनिक खादों का भी हम इस्तेमाल करना चाहिए, पूर्ण रूप से रासायनिक खादों पर निर्भर होना अच्छा नहीं है, इससे मृदा का स्वास्थ्य और पर्यावरण हमारा दोनों पर कुप्रभाव पड़ रहा है,
1: यानी माटी की सेहत भी ठीक रखना है और फसल का उत्पादन भी लेना है तो कार्बनिक खादों के साथ साथ जीवाणु खादों का प्रयोग बढ़ाना है, साथ में जो नैनो उर्वरक है उनका इस्तेमाल करना है ताकि खेती की लागत कम हो, टिकाऊ उत्पादन मिले। यतेंद्र कुमार तेवतिया साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ फसलों में नैनो उर्वरकों का प्रयोग कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ओम भैया।
3: हाँ सरला बहनी,
2: देखो खरीफ फसलों में नैनो उर्वरकों का प्रयोग, यह विषय पे कितनी बढ़िया जानकारी दी यतेंद्र कुमार तेवतिया भैया, और उतने नीके तरीके से बातचीत करें डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, तो दोनों भैया का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद सरला बहनी। और देखो है कहा कि जब अपने खेती पाती थे काम करके संजक अपने घर आए हो है, तो मने ही थक तो जाते हैं, और ई ब्यारा तो जैसे आम का सीजन चल रहा है तो माँ बढ़िया खटिया परी है, दिना मान अपन चुआन बिन्ना कहूँ जहाँ जहाँ पाके लाग हैं आम है, और जो लेट वेराइटी है वह बाद के यहाँ पाकी,
2: और यह समय भैया यहू है आम तो है ये है हाँ? और ऐसे में बेरन पड़ी है खेत में, तो संजय बेरी तो पानी लगा था खेत में, तो बाजा वही
3: सबसे ज्यादा हरा गोरु देखे बताला गैया सगरी चर गई है बैर, तो वह तो अलग बात हुई है, लेकिन जब थक हार के अपने घर आओ और संजय कहीं खेती के सानी बैठ के चल रही बाजा परियां, और मने सुन रहा चार जने बैठ है और सुने मिल जाए कहूँ हुड़का
2: बा भैया
3: है, हुड़का मैया सबसे नीक हमका का लगत है, जो जैसे चिकारा बजावत है वही की आवाज जो एकदम चिका रहे तना हो जाते हैं, एकदम बढ़िया महीन आवाज बढ़िया बोल रहे हैं गा रहे हैं, और वही के साथ साथ जो ढांकी बाज जाते हैं
2: अच्छा
3: वही क्या रो मजा अलगे हो जाते हैं, तो एक हुड़के आज लेके आए हैं सुनावा जाए पंच भाई के यहाँ, और पंच भाई आनंद ले हम पंचे आनंद
2: लेंगे, हम सब आनंद ले भैया,
3: स्वर है रंजुल जयंत गौतम व साथी भैया क्या, तो आप सुना जाए।

0: उठा अलबेली बहारा घर अंगना, है ना
1: भैया।
0: समय टूट जाओ भैया, घर द्वार जो है सब बाहर घूर के यहाँ रखो। तो रंजुल जैन गौतम व साथिन के स्वर मयूर है हुड़का गीत, आनंद आएगा।
1: आनंद आएगा, अपने पंच भैया का भी आनंद आएगा, हुए कि बैठ के सुन रहे हैं जो है। तो यह के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद। और सरला बहनी देखो, हम पंचे खेती पाती करी थे, अपन जो खेती पाती है वह मौसम पर आधारित रहा थे। और अगर मौसम के हालचाल पहले तेरे पता हो जाते तो हम पंचे अपन जो खेती पाती काम है और जो अपन घर पर काम है वे सही तेरे समय तेरे कर पाए थे।
1: बिल्कुल ओम भैया। और देखो मौसम की जानकारी पहले से हो जाए चाहिए, यह के खातिर अपने सब रोज जो है मौसम की जानकारी बतावा जाते हैं, तो बता दें जाए आज भी।
0: बिल्कुल, मौसम की जानकारी हमारे हाथे में है। भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम केंद्र लखनऊ तेरे जो जानकारी प्राप्त हुआ है 9 जून यानी कि आज 10

0: भारत 13 जून तक के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश दोनों जगह के जो है मौसम प्रात भवा है। संभाग में कहूं कहूं वर्षा गरज चमक के साथ बौछारे पर एक संभावना है। यह हाल पूर्वी उत्तर प्रदेश का है
1: और ये तो भैया अच्छी बात है।
0: पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है ये तो अच्छी बात है। विकेश साथ साथ जो चेतावनी है मौसम संबंधी वह जरूर सुन लेंगे। संभाग में कहूं कहूं उस लहर यानी कि लोक चलक संभावना है। तो यह जो चेतावनी है 9, 10 और 11 तारीख तक के 11-12 तारीख तक के है। तो अपन भैया व्यवस्था तरह रखिए
1: भैया। और हम जब बार बार कहते हैं कि घर से बाहर निकलो तो भैया गमछा लेके निकलो, हाँ। पानी पी के निकलो है, और जो है घर में मट्ठा होता है मट्ठा पी के निकलो तो ज्यादा प्यास न लगी, हाँ। है ना। और जो है बढ़िया सा दुपट्टा बांध के निकलो, हर चीज का ध्यान हम सबका रखे का है।
0: तो कहे मतलब यो है कि बौछारे तो पड़ी है लेकिन एक साथ साथ गर्मी हुई, तो भैया सब ध्यान रखे का और यू रहे मौसम के हाल। और देखो जब अपनी खेती पाती में या हम पंचायत अपन फसल तैयार करी थे और नाच जो है उत्पादित करी थे तो सबसे खुशी तब होते जब वह क्या बाजार भाव सही से मिल जाते हैं।
1: बाजार भाव सही से मिल जाते भैया तो ये के खातिर हम सब जो है बाजार जाते हैं और बाजार के हालचाल भी है।
0: तो बाजार का जो थोक चार मंडी का भाव हुए वो लखनऊ कानपुर गोंडा अयोध्या का वो जरूर अपने पंच भाई बता दो।
1: आज हम लेके आए हैं चार मंडी के बाजार भाव, लखनऊ कानपुर गोंडा अयोध्या। और लखनऊ मंडी में गेहूं दड़क भाव है 2590 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 2585 रुपए प्रति क्विंटल, गोंडा में 2523 रुपए प्रति क्विंटल और अयोध्या में 2585 रुपए प्रति क्विंटल। मोटा चावल लखनऊ मंडी में है 3480 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 3450 रुपए प्रति क्विंटल, गोंडा में 3000 रुपए प्रति क्विंटल और अयोध्या में है 3060 रुपए प्रति क्विंटल। काली सरसों का भाव लखनऊ मंडी में भैया 6750 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में है 7350 रुपए प्रति क्विंटल, गोंडा में है 6600 रुपए प्रति क्विंटल, अयोध्या में है 6600 रुपए प्रति क्विंटल। छोटा चना लखनऊ मंडी में है 6680 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में है 6360 रुपए प्रति क्विंटल, गोंडा में है 6700 रुपए प्रति क्विंटल और अयोध्या में है 6400 रुपए प्रति क्विंटल।
0: और जो उजरकी वाली मटर है वह क्या लखनऊ मंडी में 4450 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, कानपुर में 4500 रुपए प्रति क्विंटल, गोंडा में 4250 और अयोध्या में 4260 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये दाम रहा है। और आलू जो सफेदकी वाली रही वह बाजार भाव जो है लखनऊ मंडी का 820 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 700 रुपए प्रति क्विंटल, गोंडा में 900 और अयोध्या में 910। और जो पका वाला टमाटर यार बच्चा इस महंगा रहे कि काहे बताई है
1: मुल के अब जो है देखो
0: हमारे घर में कहला कि का हुआ डॉक्टर बताओ हम का खावे खाते इतना महंगा।
1: सही बात है।
0: तो देखो इस समय बड़ा वाजिब दाम चल रहा है टमाटर पका क्या भाव रहा लखनऊ मंडी में 1650 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, कानपुर में 1700 रुपए प्रति क्विंटल, गोंडा में 2400 रुपए प्रति क्विंटल और अयोध्या में 1700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से।
1: और प्याज के भाव भैया लखनऊ मंडी में 3330 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 1300 रुपए प्रति क्विंटल और लखनऊ मंडी में है 1330 रुपए प्रति क्विंटल, और गोंडा में है 1500 रुपए प्रति क्विंटल और अयोध्या में है 1320 रुपए प्रति क्विंटल। और बैंगन का भाव भैया लखनऊ मंडी में है 1710 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर में 1750 रुपए प्रति क्विंटल, गोंडा में 2460 रुपए प्रति क्विंटल और अयोध्या में है 2000 रुपए प्रति क्विंटल। मिठास की बात की जाए तो लखनऊ मंडी में गुड़ पारी का भाव है 4650 रुपए प्रति क्विंटल और कानपुर में है 4350 रुपए प्रति क्विंटल। भैया ये तो रहा आज के चार मंडी का थोक बाजार भाव।
0: बिल्कुल बहनी अपन पंच भाई देखो बाजार भाव सुन लेन है तो अपने हिसाब तेरे अपन मंडी आसपास जावे और पता कर ले वही हिसाब से अपन नाच पानी लेके जावे। और वही के साथ साथ देखो अपन पंच भाई कल के कार्यक्रम का इंतजार करते हैं और कल जो कार्यक्रम है वो बड़ा विशेष हुए यानी कि कल जो हुए वो है बुध। बुध का हम पंचे लेके आए थे हेलो किसान और जो किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम होते हैं अपन पंच भाई अपन फोन मिलावत हैं और विशेषक भैया तेरे सीधे बात करते हैं और जो उनका प्रश्न होते हैं उनका सीधे समाधान पावत हैं। तो कल का जो विषय रही अपनी बैठकी क्या खरीफ उत्पादन की तैयारी और उन्नत तकनीक, मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन, खरीफ फसलों में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन है के जो विशेषज्ञ रही हैं डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्र भैया अपर कृषि निदेशक कृषि रक्षा उत्तर प्रदेश और जो प्रस्तुति एवं संचालन रही कार्यक्रम का वो डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया का रही। और बहनी

0: विषय आज मैं फिरते बता दूं।
1: बिल्कुल भैया, कल के जो हेलो किसान का विषय हुए, किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम, ये पे विषय है खरीफ उत्पादन की तैयारी और उन्नत तकनीक, मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन, खरीफ फसलों में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। और विशेषज्ञ हुए हैं डॉक्टर आशुतोष कुमार मिश्र भैया, अपर कृषि निदेशक कृषि रक्षा उत्तर प्रदेश से। और प्रस्तुति और संचालन कार्यक्रम को हुए डॉक्टर सुशील कुमार राय के। और भैया जो है
0: जो जादुई नंबर है अपने कार्यक्रम का है ना, बहुत पंच भाई कहीं मिलत नहीं और बहुत पंच भाई कहीं है कि बहुत ज्यादा भय मिल जाते हैं। तो भैया जो अपने कार्यक्रम का नंबर है वो 0522-223-8825 यानी कि 0522-2238-825 ये नंबर पर यहाँ फोन मिला के यहाँ अपन जो प्रश्न है क्या सीधे समाधान पा सकते हैं,
1: विषय से संबंधित प्रश्न का उत्तर जान सकते भैया। और जल्दी से जो है कार्यक्रम का पता बता दें जाए।
0: हाँ, कार्यक्रम का पता जरूर बता दें जाए। कहा है तेरे अपन पंच भाई जो कार्यक्रम सुनत हैं उनका अपन कार्यक्रम कैसे लागत है, अपने चिट्ठी पाती के माध्यम तेरे हम पंचन तक अपन प्रतिक्रिया पहुंचा सकते हैं और वही के साथ साथ कार्यक्रम में का बदलाव चाहते हैं वह बता सकते हैं। तो कार्यक्रम का पता बता दो बहनी।
1: भैया कार्यक्रम का पता चिट्ठी पाती लिखे खातिर लोकायतन एवं खेती किसानी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001। और ईमेल आईडी है भैया farmandhome@gmail.com या पे मेल भी करें।
0: हाँ, मेल करें, सन देरे धन दे पहुंचे हमरे पंचन तेरे इनके पाती भैया। और अब चले खुरे भैया पंचन तेरे लीन जाए आ गया।
1: जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
2: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर से मिली नई पहचान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को दी मंजूरी। प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रोजेक्ट गंगा का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को इस पहल से मिलेगा बढ़ावा। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल चला रहा है 8 विशेष रेलगाड़ियां। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने आज 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। श्री मोदी ने आज के ही दिन वर्ष 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार के बीते 12 वर्ष विश्वास

0: विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं। अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। श्री मोदी ने लिखा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सेवा, सुशासन और समृद्धि के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित इस 12 वर्षीय परिवर्तनकारी नेतृत्व ने अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए भारत को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नई ऊंचाइयों पर प्रतिष्ठित किया है। श्री योगी ने लिखा है कि कालखंड पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील शासन के माध्यम से जन आकांक्षाओं की पूर्ति का एक प्रेरक अध्याय है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव जयप्रकाश शिवहरे ने आज लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने जन विश्वास के तीसरे चरण के लिए पहल शुरू कर दी है। श्री शिवहरे ने बताया कि आज देश के विभिन्न राज्यों में मंत्रालय द्वारा उद्योग जगत के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है और उन्हें सरकार की नीतियों और नए नियमों कानूनों की जानकारी दी जा रही है।
3: भारत सरकार ने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के जिस तरह के कदम लिए हैं, खासकर जन विश्वास एक और जन विश्वास दो के द्वारा बहुत सारे एक्ट उन प्रावधानों को हटाया गया और अब 12 वर्ष के जब पूरे हुए हैं तो भारत सरकार ने जन विश्वास के लिए पहल शुरू की और अब जो प्रोसीजर पार्ट फोकस करके किस तरह के चेंजेस किए जाने चाहिए उसका एक फीडबैक भी लिया जा रहा है।
1: इससे पहले श्री शिवहरे ने लखनऊ में राज्य के उद्योग जगत के लोगों के साथ विचार विमर्श किया। संवाददाता सम्मेलन में भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय के निदेशक दिलीप शुक्ला और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद भी उपस्थित रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में रक्षा मंत्रालय की 850 एकड़ जमीन पर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय की ओर से शुरू की गई ये अपनी तरह की पहली परियोजना है। इसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत BESS सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा का विकास भी शामिल है। ये परियोजना रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय और रक्षा संपदा महानिदेशालय के साथ कार्यान्वित की जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डिजिटल नवाचार के अभियान को गति देने के लिए आज लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अभिनव पहल डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाती है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त आधार है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण और अर्ध

0: शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। श्री योगी ने कहा कि इंटरनेट जितना फास्ट होगा, विकास की गति भी उतनी ही तेज होगी।
1: इंटरनेट जितना फास्ट होगा उतनी ही डेवलपमेंट की गति भी फास्ट होती हुई दिखाई देगी और लोगों के जीवन में भी उतना ही व्यापक परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए कई चरणों में पूर्व में काम किए थे, खासतौर पर ई ऑफिस की हमारी संकल्पना, लैंड रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन की कार्रवाई हो या फिर प्रदेश के अंदर डिजिटल पेमेंट के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य हो।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और इस महीने की 21 तारीख को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। पत्रकारों से बात करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चूक और खामियों को रोकने के लिए राज्यों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है।
2: प्रधानमंत्री जी देश के बच्चों को निश्चित आश्वस्त करना चाहते हैं कि सब प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से अब भरोसा हमारे ऊपर आपकी है, अब रखिए, हम जो त्रुटियां हुई है उस त्रुटियों को हम पुनरावृत्त नहीं करेंगे, सटीक परीक्षा करवाएंगे।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा के बीच दो पालियों में सकुशल संपन्न हुई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा करवाई गई, जहां सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। सॉल्वर गिरोह को पकड़ने के लिए यूपीएसटीएफ, लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस सक्रिय रही। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल 8 स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। कल लिखित परीक्षा का अंतिम दिन है। ज्येष्ठ माह के छठे बड़े मंगल पर आज राजधानी लखनऊ के प्रमुख हनुमान मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जयकारों के साथ दर्शन पूजन कर रहे हैं। वहीं शहर में कई स्थानों पर भंडारों का आयोजन किया गया है। अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भी आज बड़ी संख्या में भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी संभाग के कई जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक इन क्षेत्रों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ ही वज्रपात और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर में मिली नई पहचान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना को दी मंजूरी। प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रोजेक्ट गंगा का किया शुभारंभ। कहा, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को इस पहल से मिलेगा बढ़ावा। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा दूसरे दिन शांतिपूर्ण ढंग से हुई संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल चला रहा है 8 विशेष रेलगाड़ियां। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
3: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्यघर।
4: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
5: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

मजबूर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की ही आवाज में।

0: आरजू फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर का गाया हुआ गीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हमने आपको सुनवाए मजबूर, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे और आरजू फिल्मों के गीत। फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे आज रात 8:30 पर चित्रपट से कार्यक्रम में। अब आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। क्या आप जानते हैं कि डिस्फेजिया क्या है? अगर आपको खाना निकलने में परेशानी होती है या खाते या पीते वक्त बार बार खांसी आती है तो समझ लीजिए ये डिस्फेजिया का संकेत हो सकता है। इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में जानने के लिए सुनिए हमारे चैनल यानी आकाशवाणी के FM रेनबो 100.7 MHz पर विशेष फोन इन कार्यक्रम बुधवार दिनांक 10 जून 2026 को प्रातः 11:02 पर, जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन देंगे आपकी जिज्ञासाओं के सरल और उपयोगी उत्तर। तो सुनना न भूलें हमारे चैनल यानी FM रेनबो 100.7 MHz पर नेशनल डिस्फेजिया अवेयरनेस पर आधारित विशेष कार्यक्रम। हमारा फ़ोन नंबर है 0522-2238845 और दूसरा नंबर है 0522-2238852 और हमारी ईमेल आईडी है fmakashwani.lucknow@gmail.com। सही जानकारी, बेहतर स्वास्थ्य आकाशवाणी के साथ। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।
1: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
2: प्यारे श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम उड़ान में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा है कि आप सब अपने परिवार के साथ खुश और आनंदित होंगे। दोस्तों इससे पहले हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आप हमारा फोन नंबर लिख लीजिए। हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। हम आज देखते हैं कि लोग, खास तौर पे माता पिता, आजकल एक बहुत ही गंभीर चिंता में होते हैं। जी हाँ, बच्चों को आज्ञाकारी कैसे बनाएं? ज्यादातर माँ बाप बस इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं और आज हम इसी गंभीर विषय पर अपना प्रोग्राम लेकर आए हैं। और हम धन्यवाद देते हैं गोपी चंद जी का और परमहंस जी का बिहार से, जो हमारा प्रोग्राम लगातार सुनते हैं। आज का ये प्रोग्राम बनाने के लिए हमको उन्होंने ही प्रोत्साहित किया है। और आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फिरोज जी। तो सर, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं।
3: धन्यवाद प्रियंका, और सारे श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
2: सर, आज हम एक बहुत ही नाजुक विषय पर बात कर रहे हैं, जो कि हम ज्यादातर देखते हैं एक आम परेशानी बन चुकी है, हमारे बच्चों का रवैया, जो कि बहुत ही अजीब होता जा रहा है। ज्यादातर बच्चे या तो बहुत गुस्सा करते हैं या बात ही करना पसंद नहीं करते, या एकदम से अपने बड़ों को पलट कर जवाब दे देते हैं। और सर, कई बार बच्चे अनजाने में या जानबूझकर अपने माँ बाप को लोगों के सामने शर्मिंदा कर देते हैं।
3: बिल्कुल सही कह रही हैं आप प्रियंका।

0: पर आपको ये जानना होगा कि ये परेशानी हमारे समाज में क्यों बढ़ रही है, हमारे बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं। प्रियंका, हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, उनमें धीरे धीरे व्यवहारिक बदलाव भी आते हैं। जैसे बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते, माँ बाप से लड़ते झगड़ते हैं, उन्हें पलट कर जवाब देते हैं, उनका आदर नहीं करते। दरअसल जब तक ये बच्चे छोटे होते हैं तब तक तो सबको प्यारे लगते हैं, पर जब ये बड़े हो जाते हैं तब ये ऐसा करते हैं तो सबको बुरा लगता है।
1: जी हाँ सर, अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, व्यवहारिक बदलाव। हम इसको क्या समझें और क्या और क्यों होते हैं ये व्यवहारिक बदलाव?
0: जी हाँ, व्यवहारिक बदलाव मतलब हमारे व्यवहार में बदलाव का आना। जैसे अभी हमने कहा कि बच्चे पलट कर जवाब देने लगते हैं, या बात करना पसंद नहीं करते, या बातों को नहीं सुनते, कहना नहीं मानते। ये व्यवहारिक बदलाव होते हैं और ये हमें बच्चों में नज़र आता है। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है उनमें आने वाला हार्मोनल चेंज। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उनमें, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कुछ हार्मोनल बदलाव होते हैं, इसलिए भी ऐसा होता है। और हार्मोनल बदलाव की बात जब हम कर रहे हैं तो ये एक तरह का द्रव होता है जो बच्चों के अंदर, जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उम्र के हिसाब, उनमें उत्पन्न होता है। ये प्राकृतिक दशा है और इस प्राकृतिक रूप से होता है। जब ये बदलाव होने लगता है, बच्चों के अंगों में बदलाव होता है, उसे उनके शारीरिक संरचना जो है उसमें बदलाव आने लगता है, और उस बदलाव के कारण हम बच्चों में देखते हैं कि वो उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो बातों को टालना सीख जाते हैं, वो बातों को सुनना नहीं पसंद करते, या लोगों की, बड़ों की बातें जो हैं उन्हें लगता है कि हमें क्यों डांट रहे हैं, ये कि हमें क्यों बोल रहे हैं, और वो उलटकर कभी कभी जवाब भी दे देते हैं।
1: मतलब ये नेचुरल है सर। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या हमारे बच्चे ऐसे ही रहेंगे, या कोई तरीका ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे सभ्य बन जाएं या ठीक हो जाएं या इन चीजों से बाहर आ जाएं, आज्ञाकारी बन जाएं? क्योंकि कारण कोई भी हो सर, माँ बाप का दिल इन बातों से बहुत दुखता है। बच्चे नहीं समझते पर उनका ये व्यवहार माँ बाप के दिल को बहुत दुखी कर देता है। कितना कुछ करते हैं माँ बाप अपने बच्चों के लिए, कितना दुख सहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। जब से बच्चा दुनिया में आता है तब से वो सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीते हैं, पर बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं तो सोचिए कि क्या उनके हृदय में बीतती होगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने प्रियंका, माँ बाप का दुख तो माँ बाप ही समझते हैं। माँ बाप का दिल इससे दुखता है, माँ बाप को इससे दर्द महसूस होता है अपने बच्चों के व्यवहार में आने वाले बदलाव को देख करके, और वो सोचते हैं कि ऐसा बदलाव क्यों मेरे बच्चे में आ रहा। मैंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने उनकी तमाम ज़रूरतें पूरी की, जब भी उन्होंने जो कुछ मांगा मैंने उन्हें दिया, फिर ये बदलाव बच्चे में क्यों आ रहा है। और ये सोच सोच कर माँ बाप परेशान होते हैं और वो तमाम तरह की पीड़ाओं से गुजरते हैं। बच्चों में ऐसे बदलावों के कारण ही वो ऐसे हो जाते हैं। हाँ, ये एक ज़रूर बड़ा कारण है, पर प्रियंका हमारे श्रोताओं, एक बहुत बड़ा और कारण है जिसकी वजह से हमारे बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं। आपने गौर किया होगा कि कई बार जब छोटे बच्चे होते हैं तब वो कभी कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी तक जो हम बातचीत कर रहे थे, हम उन बच्चों की बात कर रहे थे जो 10-12 साल के हो जाते हैं या उससे लेकर के 18-19 साल के बच्चे हैं, उनमें ये बदलाव हम देखते हैं जो हार्मोनल चेंज की वजह से बदलाव आते हैं। उन बदलाव के कारण जो है उनकी प्रतिक्रिया जो होती है अपने पेरेंट्स के प्रति वो बड़ी डिफरेंट होती है, बिल्कुल बदली हुई होती है, और माँ बाप आश्चर्य में पड़ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और दूसरा कारण है जिसकी वजह से हमारे बच्चे ऐसा व्यवहार करते हैं। आपने गौर किया होगा कि कई बार जब छोटे बच्चे होते हैं तब वो कभी कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या हाथ उठाना, कहना ना मानना, और तब माँ बाप को ये सब बहुत अच्छा लगता है, खुश होते हैं, और बाद में बच्चे बड़े होकर भी यही सब करने लगते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो हमको इन बातों का बचपन से ही ध्यान रखना चाहिए। याद रखिए, बच्चे की पहली पाठशाला माँ की गोद होती है, वहीं से वो सब कुछ सीखता है। इसलिए बच्चों में हम क्या संस्कार दे रहे हैं, बच्चों को हम क्या संस्कार दे रहे हैं, बच्चों को में किस तरह के वैल्यूज़ को जो है हम इम्पार्ट कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? जब बचपन में बच्चे गलती करके आते हैं तो हम उनको, उनका पीठ थपथपा देते हैं, वो किसी को मार करके आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि बेटा आपने

0: बहुत अच्छा काम काम किया है। हम इस तरीके से बच्चों को बढ़ावा देते हैं जब वो छोटे होते हैं, लेकिन वही बच्चे जब बढ़ने लगते हैं और उन चूँकि उनको उनके छोटेपन में आपने उनको बढ़ावा दिया होता है और वो उससे प्रोत्साहित होते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हीं हरकतों को वो करते हैं और तब वो प्रॉब्लम पैदा करता है, वो परिवार में प्रॉब्लम पैदा करता है, वो समाज में प्रॉब्लम पैदा करता है और एक बहुत ही बड़े दुख का कारण वो हो सकता है।
1: जी हाँ सर, आपने बिल्कुल सही बात की। एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तभी से हमको उनको ना शब्द का अर्थ समझा देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को ना शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। बच्चों को बचपन से आज्ञाकारी बनाने के लिए नहीं शब्द का महत्व पता होना चाहिए, क्योंकि अक्सर बच्चों को ना सुनने की आदत नहीं होती और माँ बाप अगर किसी चीज़ को मना करें तो वो नहीं मानते और जिद करके अपनी बात मनवा लेते हैं। इसलिए बच्चों को बचपन से ये सिखाना चाहिए कि अगर किसी चीज के लिए ना बोला है तो उसका मतलब ना ही होता है, और ऐसे सबसे पहले बच्चा आज्ञा मानना सीखता है। याद रखिए दोस्तों, आप उनके माँ बाप हैं, वो आपके माँ बाप नहीं हैं। आप जैसा सिखाएंगे वो वैसा ही सीखेंगे।
0: बिल्कुल सही बात कही है आपने प्रियंका, बस हमको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है और गलती से हम इनमें ही लापरवाह हो जाते हैं। दोस्तों, बस इन कुछ बातों का ध्यान रखकर हम अपने बच्चों को आज्ञाकारी बना सकते हैं, जैसा कि प्रियंका जी आपको बता रही थी। आप एक अपने बच्चों को एक सभ्य बच्चा, अच्छा बच्चा बना सकते हैं। जी हाँ, जैसे बच्चों को सिर्फ प्यार लाड़ ही न करें, बचपन से जब से वो छोटे होते हैं तभी से प्यार के वक्त प्यार और गुस्से और सख्ती के वक्त सख्ती, जब हम ये संतुलन कायम रखते हैं तो सब कुछ आराम से चलने लगता है। यानी जब उन्हें डांटने की ज़रूरत हो तो डांटिए, जब प्यार करने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं उन्हें प्यार दीजिए आप। तो आपको बैलेंस बना करके चलना होगा और न ही हर वक्त बच्चे को गुस्सा डांट से ये सभी नहीं करना है। जी हाँ, ऐसा करने से बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि माँ अगर गुस्सा करती है तो पापा बच्चों की साइड ले लेते हैं, और कई बार माँ बाप दोनों अगर बच्चे को गुस्सा करते हैं तो बच्चे के दादा दादी या बुआ या चाचा, मतलब परिवार का कोई ना कोई बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, और बस यही एक बड़ा कारण बन जाता है बच्चों के असभ्य होने का। इन बातों का दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब माँ डांट रही है तो बच्चे को, पिता को या तो खामोश रहना चाहिए या फिर माँ के साथ मिल करके बच्चे को समझाना चाहिए।
1: जी हाँ सर, बिल्कुल सही बात कही आपने। बस हम ये छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं और ये गलतियाँ बाद में हमको भारी पड़ जाती हैं। पर दोस्तों, ये तो थी कुछ ऐसी बातें जो हम माता पिता को समझने की ज़रूरत है, पर कुछ बातें बच्चों को भी समझने की ज़रूरत है। दोस्तों, एक बार एक ईशान नाम का लड़का था। उसके माता पिता उसको बहुत प्यार करते थे, पर वो समझता था कि बस वो ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, ना अपने माता पिता की इज्जत करता और ना उनका कहना मानता। उसके माता पिता भी जो भी उसको उपहार लाके देते थे वो सब कुछ व्यर्थ समझता था, किसी भी चीज की वो वैल्यू नहीं करता था। तो दोस्तों, उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ वही किया जो उसके माँ बाप ने उसको करने से मना किया था। जी हाँ, यहाँ तक कि ईशान ने विवाह भी वही किया जहाँ उसके माँ बाप ने उसे मना किया था, क्योंकि उसके अंदर जिद थी। पर दोस्तों, एक बार जिंदगी में वो वक्त आया जब वो पिता बना और वक्त ने करवट ली। जी हाँ, कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है। ईशान की जिंदगी में वक्त आया कि जो उसने अपने माता पिता के साथ किया था अब उसके साथ होने लगा था। अब ईशान को उसके बच्चों का रहन सहन, उनकी बातें, उनके शब्द और उनका उसको पलट कर जवाब देना, ये सब तीर की तरह चुभने लगा। उसको याद आने लगा कि कैसे उसने अपने माँ बाप के साथ व्यवहार किया था। दोस्तों, हम बच्चों को भी यही चीजें सीखना जरूरी है कि हम कितना भी पढ़ लिख लें, हम कितना भी समझदार हो जाएं, कितना भी ज्ञान हमको हो, हम अपने माता पिता से बड़े नहीं हो सकते। जी हाँ, याद रखिए, हम अपने माता पिता से बड़े नहीं हो सकते। उन्होंने हमसे ज्यादा दुनिया देखी है, हमको जन्म दिया है। हम उनको बेइज्जत करके, उनको पलट कर जवाब देकर या उनका कहना ना माने तो दोस्तों, याद रखिए कि हमने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया है। हम सफल होकर भी जिंदगी में असफल हो गए हैं, ये समझ

लीजिए। दोस्तों जी हाँ, कई बार हम उम्र के ऐसे पड़ाव में होते हैं कि चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। मैं बात कर रही हूँ सारे बच्चों से जो हमें सुन रहे हैं। हम जिंदगी के ऐसे पड़ाव में होते हैं कि चीजें हमारे हाथ में नहीं होती और हम भावनाओं के जाल में उलझे होते हैं। हाँ, उलझने होती हैं, तकलीफें होती हैं, गुस्सा होता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम अपने माता पिता पे ज़्यादा गुस्सा निकाल दें। जी हाँ, एक बार माँ बाप को बोल कर देखिए, वो सब कुछ कर जाएंगे आपके चेहरे की एक मुस्कुराहट के लिए। पर दोस्तों, आप जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप अपने माता पिता को अपमानित मत कीजिएगा। जी हाँ, कभी भी अपने माता पिता को पलट कर जवाब नहीं दीजिए, उनका कहना माने, क्योंकि अगर आप ये समझ गए कि आप बहुत सफल हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं और आप अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते, तो आप कुछ भी नहीं हैं। और साथ ही साथ जितने माता पिता हमें सुन रहे हैं, उन सब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे में अचानक कोई बदलाव आ रहा है, अचानक उसके व्यवहार में बदलाव है, तो आप अपने बच्चे को वक्त दीजिए। जी हाँ, आपको उनका दोस्त बनना होगा और वो आपको सब कुछ बता देंगे और फिर आप अपने बच्चे को वैसा ही जैसे वो पहले था वापस फिर से पालेंगे। दोस्तों, एक संत ने इस प्रकार कहा कि जो बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनका कहना मानते हैं, ईश्वर उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं। और कई बार हम ईश्वर के भक्त हो जाते हैं या ईश्वर को तो पाना चाहते हैं, लेकिन एक संत ने इस प्रकार भी कहा कि परमात्मा का या ईश्वर का पहला दर्शन हमें हमारे माँ बाप में होता है। So, दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। आप अपने विचार, अपने सुझाव और अपने परामर्श हमको भेज सकते हैं। तो हमारा पता नोट करें, हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1, और हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। तो दोस्तों, बस अपने माता पिता की इज्जत कीजिए, उनका आदर कीजिए और अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें दीजिए आज्ञा। तब तक के लिए हमारा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी का, ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। हिंदी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे वार्ता राष्ट्रीय अस्मिता और भारतीय भाषाएं। वार्ताकार हैं डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिपाठी। वाचन और संपादन सुरेंद्र राजेश्वरी का है। तो आइए सुनते हैं हिंदी कार्यक्रम।

हिंदी कार्यक्रम के आज के संक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोतो, भारत की राष्ट्रीय अस्मिता केवल उसकी भौगोलिक सीमाओं, ऐतिहासिक स्मृतियों या सांस्कृतिक धरोहरों से ही निर्मित नहीं होती, बल्कि उसकी विविध भाषाओं में भी उसकी आत्मा का निवास है। भारतीय भाषाएं हमारी सभ्यता की जीवंत धरोहर हैं, जो सदियों से ज्ञान, संस्कृति, परंपरा और सामाजिक मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती रही है। राष्ट्रीय अस्मिता का अर्थ है राष्ट्र की वो पहचान जो उसे विशिष्ट बनाती है, और भारतीय भाषाएं इस पहचान का सबसे सशक्त आधार हैं। भारत भाषाई विविधता का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ हिंदी, संस्कृत, तमिल, बंगाली, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, असमिया, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, कश्मीरी और अनेक अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक भाषा अपने भीतर एक विशिष्ट संस्कृति, लोक परंपरा और जीवन दर्शन को संजोए हुए है। यही विविधता भारत की शक्ति है, क्योंकि यह हमें अनेकता में एकता का संदेश देती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जन

0: अग्रण और राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में भारतीय भाषाओं ने जनता को एक सूत्र में बांधा। महात्मा गांधी ने मातृभाषा में शिक्षा और संवाद को राष्ट्रीय विकास का आधार माना। वहीं रवींद्रनाथ ठाकुर, सुब्रमण्यम भारती और मैथिली शरण गुप्त जैसे साहित्यकारों ने अपनी अपनी भाषाओं में राष्ट्रीय चेतना का स्वर बुलंद किया। आज वैश्वीकरण और तकनीक युग में अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं का महत्व बढ़ा है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी भाषाओं की उपेक्षा करें। मातृभाषा व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं की सबसे स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। जो राष्ट्र अपनी भाषाओं का सम्मान करता है, वही अपनी सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रख पाता है। भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं है, बल्कि इतिहास, स्मृति और सामूहिक चेतना की वाहक भी है। ये कहा जा सकता है कि भारतीय भाषाएं हमारी राष्ट्रीय पहचान की जड़ें हैं। यदि हम अपनी भाषाओं का सम्मान, संरक्षण और संवर्धन करेंगे तो हमारी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय अस्मिता दोनों सुरक्षित रहेंगे। भारत की आत्मा उसकी भाषाओं में बसती है और इन भाषाओं की समृद्धि राष्ट्र की वास्तविक समृद्धि है। आज के इस अंक में एक वार्ता आपको सुनवाते हैं जिसका विषय है राष्ट्रीय अस्मिता और भारतीय भाषाएं।
1: भारतीय भाषाएं भारतीय सांस्कृतिक विविधता में एकता का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। भारतीय भाषाओं में एक ही विचार तत्व की प्रधानता है जो हजारों वर्षों से निरंतर प्रवाहमान है। भारतीय भाषाओं में अभिव्यक्ति चेतना राष्ट्रीय अस्मिता को मजबूत करती है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिसके माध्यम से भाषा को आधार बनाकर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से भाषा को आधार बनाकर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। सांस्कृतिक विविधता को दृष्टिगत रखते हुए उसके विकास के लिए निरंतर प्रवाह को बनाए रखने के लिए समय समय पर इस प्रकार के प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन किसी विषय को सकारात्मक दृष्टिकोण से समझने की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर उसमें विचलन आ जाता है, विकास की गति प्रभावित होती है। भाषा का गुण है प्रवाहमान बने रहना, और यदि उसमें कोई बाधा उत्पन्न होती है तो धीरे धीरे संकुचन बढ़ने लगता है। जिस भाषा का साहित्य जितना समृद्ध होगा वो भाषा उतनी ही दीर्घजीवी होगी। संस्कृत भाषा का व्यवहार करने वाले कम ही लोग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो अपने समृद्ध साहित्य के आधार पर पूरे विश्व में अपना एक अलग स्थान रखती है। उसके विकास की गति नित्य प्रवाहमान है। संस्कृत भाषा ने दूसरी भारतीय भाषाओं का अतिक्रमण नहीं किया बल्कि उन्हें विस्तार दिया, और यही कारण है कि संस्कृत को समस्त भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है। उसके शब्द किसी न किसी रूप में लगभग भारतीय भाषाओं में विद्यमान हैं। भारतीय भाषाओं के मध्य संस्कृत भाषा समन्वय का कार्य करती है। भाषा विवाद का विषय नहीं है, वो संवाद का माध्यम है। भाषा अपने साहित्य के माध्यम से अकादमिक जगत में अपना एक अलग स्थान बनाती है। आम बोलचाल में भाषा से थोड़ा ऊपर उठकर परिनिश्चित शब्दावली का उपयोग करते हुए लेखक पत्रकार अपनी रचना धर्मिता के माध्यम से भाषा को उस ऊंचाई पर ले जाते हैं जहां से वो निश्चित दायरे का अतिक्रमण करते हुए एक नया विस्तार प्राप्त करती है। कन्नड़ के प्रतिष्ठित साहित्यकार एस एल भैरप्पा जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से कन्नड़ भाषा को समृद्ध किया, लेकिन कन्नड़ में अभिव्यक्त उनके विचार अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से साधिकार पूरे भारत में विस्तार को पा रहे हैं। अनेक भारतीय भाषाओं में शब्द पाठक के मनोमस्तिष्क से कुछ इस प्रकार से अपना स्थान बना लेते हैं कि वो अपनी चेतना के साथ स्वयं को अभिव्यक्त दे रहा होता है, तो उसे स्वयं ही ये अनुभव होता है कि वो किसी भाषा विशेष की अस्मिता से ऊपर उठकर संपूर्ण भारतवर्ष में प्रतिनिधि के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त कर पाने में सक्षम है। भारत सरकार ने भाषाई अस्मिता को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय अस्मिता को मजबूत बनाए रखने के लिए काशी तमिल संगमम के रूप में एक ऐसे कार्यक्रम का शुभारंभ किया जिससे भारत की दो संस्कृतियां जो कि हैं तो एक लेकिन दो भिन्न भाषाओं में अभिव्यक्ति पाती हैं, उनके बीच एक बार फिर से सहज संवाद स्थापित किया जा सके। हजारों वर्षों से भारत के नागरिक भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक की यात्रा करते रहे हैं। प्रायः इन यात्राओं के केंद्र में धर्म होता है, और इन्हीं यात्राओं के माध्यम से भारतीय जनमानस भारत की सांस्कृतिक विविधता को समझने का प्रयास करता है। भारतीय भाषाओं पर विचार करते हुए ध्यान उन

0: लोक भाषाओं की ओर भी जाता है जिनके माध्यम से कोई एक भाषा स्वयं को समृद्ध अनुभव करती है। लोक भाषाओं का अपना महत्व है। वर्तमान में हम हिंदी भाषा का जो स्वरूप देख रहे हैं, मध्यकाल की दो प्रमुख भाषाएं रही हैं जिनका साहित्य बहुत ही समृद्ध है। वर्तमान में इन पर लोक भाषाओं के रूप में विचार किया जाता है, लेकिन लोक भाषा के रूप में इन पर विचार किया जाना इन भाषाओं की गौरवशाली अतीत के कारण है। हिंदी भाषी प्रांतों में अनेक लोक भाषाओं का व्यवहार किया जाता है। इन लोक भाषाओं में निरंतर साहित्य भी लिखा जाता है। हिंदी भाषा में स्थापित अनेक साहित्यकारों ने अपनी अपनी लोक भाषाओं में भी लेखन कार्य किया, जिसमें उन्हें प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई। उनका ऐसा करने का उद्देश्य हिंदी भाषा की उस ताकत को रेखांकित करने का था, जिसके कारण पूरे विश्व में हिंदी की तूती बोलती है। ऐसे लेखन से पता चलता है कि हिंदी भाषा समाज के भीतर कितना गहरे तक विस्तार कर पाती है। अवधी, ब्रज, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मेवाती, मारवाड़ी, कन्नौजी इत्यादि से होते हुए हिंदी भाषा की समृद्ध परंपरा सभी भारतीय भाषाओं से कुछ न कुछ ग्रहण करती हैं। जब आप किसी भारतीय भाषा का व्यवहार करते हैं तो आप अपनी ही संस्कृति के साथ होते हैं। भारतीय शिक्षा पद्धति, भारत की ज्ञान परंपरा भारतीय भाषाओं के माध्यम से जनमानस की चेतना को झंकृत करती है। भारत एक है। भारत की सांस्कृतिक विविधता ही भारत का सौंदर्य है।
1: राष्ट्रीय अस्मिता और भारतीय भाषाएं, ये वार्ता अभी आप सुन रहे थे। वार्ताकार थे डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिपाठी। इसके साथ ही आज का हिंदी कार्यक्रम का अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप हिंदी कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में समात फरमाइए डॉक्टर मिथिलेश तिवारी की आवाज़ में चंद गज़लें। सबसे पहले पेश खिदमत है ज़ौक़ का कलाम डॉक्टर मिथिलेश तिवारी की आवाज़ में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम और आज आपको हम सुनवा रहे हैं डॉक्टर मिथिलेश तिवारी की आवाज़ में चंद गज़लें। अब पेश खिदमत है फैज़ अहमद फैज़ का कलाम डॉक्टर मिथिलेश तिवारी की आवाज़ में।

आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे डॉक्टर मिथिलेश तिवारी की आवाज में चंद गजलें। अब आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर इख्तिताम।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं यासर देसाई और आकांक्षा शर्मा की आवाजों में गाए गीत से। फिल्म का नाम है शादी में जरूर आना।

भेड़िया फिल्म का ये गीत आपने सुना। चलिए अब सुनते हैं एक और खूबसूरत और दिलनशी गीत अरिजीत सिंह और मिथुन की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है गदर।

और गदर फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को है। अब दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपाय

0: के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
1: जब ये हादसा हुआ उस समय तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया, तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में

0: बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को

0: पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया, 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
4: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे 5 लाख रुपए मिलेगी।
3: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
5: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाके ठीक ठाक रह रहा हूँ।
3: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in।

0: या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jayashankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders, and Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh for strengthening long-term energy security. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
3: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
2: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces.

0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि भारत की खारजा पॉलिसी अब अपने बुनियादी कौमी मकासद के साथ हम आहंग है। जनाब जयशंकर ने कहा कि खारजा पॉलिसी और सिफारती अमल अब हुकूमत की जानिब से समाजी तहफ्फुज़ और कौमी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करने को तरजीह देने के मकसद के साथ मुंसलिक हो गया है। डॉक्टर जयशंकर डीडी न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती आज के दौर में महज सरहदों की हिफाजत करना ही नहीं बल्कि इसमें माशी तवानाई सेहत फर्टिलाइजर्स और साइबर ताकत का तहफ्फुज भी शामिल है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत खलीजी खित्ते में अपने मजबूत स्ट्रेटेजिक और इक्तसादी मफादात का तहफ्फुज करने के साथ साथ ईरान अमरीका और इसराइल के साथ अपने आजादाना ताल्लुकात भी बरकरार रखे हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ती हुई जुग्राफियाई सियासी कशीदगी के दरमियान कलीदी खित्तों में भारत के मुतवाजन रवाबित पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता 12 साल के दौरान दूरंदेश क़यादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के तहत भारत में खातिरख्वाह तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों किसानों ख़वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम के बारे में एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम हिफ्ज़ान सेहत की खिदमात से मुतालिक हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में बात करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के हिफ्ज़ान सेहत के निज़ाम को नुमायाँ तौर पर मुस्तहकम किया है। अब ये खिदमात ज़्यादा काबिल रसाई कम खर्च और मेयारी हो गई हैं। साल 2018 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा सेहत बीमा प्रोग्राम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की थी। इस स्कीम के तहत सामाजिक इकतसादी तौर से पसमानदा कुंभों को सालाना 5 लाख रुपये तक मुफ्त सेहत बीमा की सहूलत फराहम की जाती है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने कहा कि इस कार्ड की मदद से अब वो प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
2: फायदा होगा क्या था? मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे और कार्ड से क्या है मेरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा और अच्छा इलाज हो सकेगा।
1: इसके अलावा हुकूमत ने हर एक नज़दीकी मकाम पर बुनियादी सेहत की सहूलत फराहम करने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कायम किए हैं। इसके अलावा तिब्बी कॉलेजों की तादाद 387 से बढ़ाकर 818 हो गई है। नीज साल 2025 तक 942 आयुष इदारे भी शुरू किए जा चुके हैं। आकाशवाणी से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर कुवैत के अमीर शेख मिशल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से टेलीफोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया में बदलती हुई सलामती से मुतालिक सूरत हाल पर नज़रियात का तबादला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी पर तश्वीश का इजहार किया और कुवैत के इक्तदार आला और इलाकाई सालमियत पर हमलों की भारत की जानिब से सख्त मजम्मत का इरादा किया। उन्होंने कशीदगी कम करने जल्द अज जल्द अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए मुज़ाकरात और सिफारती अमल शुरू किए जाने का इरादा किया। जनाब मोदी ने कुवैत में कसीर तादाद में भारतीय बिरादरी की बहबूद और सेफ्टी के लिए मुसलसल ज़ाती तवज्जो के लिए कुवैत के अमीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज़ फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोज़ा सरकारी दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में वज़ीर-ए-आज़म मोदी इतवार के रोज़ फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों से नाइस शहर में दो तरफा मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों रहनुमा भारत फ्रांस दो तरफा ताल्लुकात के सभी पहलुओं का जायजा लेंगे। इन ताल्लुकात को इस साल खुसूसी आलमी स्ट्रेटेजिक साझेदारी का दर्जा दिया गया है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में वज़ीर-ए-आज़म 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया जमहूरिया के सरकारी दौरे पर रहेंगे। साल 1993 में स्लोवाकिया की आज़ादी के बाद से किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का स्लोवाकिया का ये पहला दौरा होगा। दौरे के तीसरे मरहले में वज़ीर-ए-आज़म 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये आकाशवाणी है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों के बोझ से सारफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। हुकूमती जराए के मुताबिक तेल मार्केटिंग कंपनियों को दी गई ये माली मदद मगरबी एशिया तनाजे के पहले 78 दिनों के लिए है। इस साल माली मदद में एक्साइज ड्यूटी कटौती भी शामिल है। जराए ने बताया कि सोने की बरामद में कमी देखी गई है। जराए ने यह भी कहा कि कम अज कम एक साल तक सोना

0: ना खरीदने की वजीर आजम की अपील और इम्पोर्ट ड्यूटी में किया गया इजाफा सोने की बरामद में कमी की वजह बना है। जराए ने मजीद बताया कि मईशत की तरक्की दबाव का शिकार नहीं है और तेज़ रुझान इस बात का इशारा है कि घरेलू मईशत से मुल्क को मदद मिल रही है। जराए के मुताबिक बैनुल अक्वामी बाजार में खाद की कीमतों में काबिल जिक्र इजाफा हुआ है, लेकिन हुकूमत किसानों को बेहद रियायती कीमतों पर खाद फराहम कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत की जमीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमदोरफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS विनिमय का इफ्तिताह किया। ये निज़ाम जमीनी बंदरगाहों को मरकजी निज़ाम के तहत मरबूत करने की कार्रवाईयों के लिए डिजाइन किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। यह हवाई अड्डों और बंदरगाहों के लिए पहले से मौजूद डिजिटल निज़ाम को जमीनी बंदरगाहों के लिए दस्तयाब कराते हुए लॉजिस्टिक्स और इंजिबाती मालूमात के महफूज और हकीकी वक्त पर मबनी तबादले को मुमकिन बनाएगा। जनाब शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यह पहल जदीद और टेक्नोलॉजी पर मबनी सरहदी इंतजाम के निज़ाम की तामीर की जानिब अहम कदम है। जनाब शाह ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म विकसित भारत 2047 के नज़रिए से हम आहंग है और ये तिजारत में आसानी, कनेक्टिविटी और कौमी सलामती को मुस्तहकम करेगा।
1: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद्य और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: जनाब शाह ने जोर देकर कहा कि हुकूमत डिजिटल टेक्नोलॉजीज और मौसर इंतजामी निज़ाम को अपनाने के जरिए सरहदी सलामती के तहत अहदबस्ता है। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि विनिमय प्लेटफॉर्म का आगाज सरहदी सलामती को मजीद मुस्तहकम करने और जमीनी बंदरगाहों की मजमू कारकर्दगी को बेहतर बनाने की मुल्क की कोशिशों में अहम संग मील साबित होगा। वजारत दिफा ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर एक्स कंटोनमेंट में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS के साथ 250 मेगावाट के शमसी तवानाई प्रोजेक्ट के क्याम को मंजूरी दे दी है। यह निज़ाम महकमा दिफा की तकरीबन 850 एकड़ खाली जमीन पर कायम किया जाएगा। यह अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट है जिसे वजारत दिफा के जरिए अंजाम दिया जा रहा है, जिसे महकमा दिफा की खाली जमीन पर बड़े पैमाने पर शमसी तवानाई पैदा करने की सहूलत के लिए BESS का तावुन हासिल है। हुकूमत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की मनरेगा से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की जानेब आसान मुंतकली के लिए 95,692 करोड़ रुपए का उबूरी बजट मुख्तस करने की तजवीज़ रखी है। VBG रामजी कानून मुल्क भर में 1 जुलाई 2026 से नाफिज हो जाएगा। देही तरक्यात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के देही तरक्यात के वजीरों के साथ आज नई दिल्ली में वर्चुअल मीटिंग के इनका के बाद मीडिया से बात करते हुए ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस कानून के नफाज के पेश नज़र रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से सभी जरूरी तैयारियां करने को कहा है। ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गई है। इस कॉन्फ्रेंस में 21 मुल्कों के नुमाइंदे यकजा होंगे और दुनिया भर में ज़राअत को दरपेश कुछ अहम तरीन चैलेंजों पर तबादला ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भारत कर रहा है, जिसके पास इस साल ब्रिक्स की सदारत भी है। 13 जून तक चलने वाली ब्रिक्स ज़रई कॉन्फ्रेंस के दौरान खुराक की यकीनी फराहमी, ज़रई तिजारत, माहौल दोस्त ज़रई तरीक़ेकार और ज़राअत के शोबे में जिद्दत तराजी जैसे मौजूदात पर वसी तर तबादला ख्याल किया जाएगा। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA हेडक्वार्टर का दौरा किया और इस माह की 21 तारीख को नीट के दोबारा इम्तहान मुनक़द कराने से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया। नई दिल्ली में NTA हेडक्वार्टर के बाहर नामा निगारों से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज ने इस बात को यकीनी बनाया है कि सवालिया पर्चों की तैयारी से लेकर इम्तहान के बाद के तमाम मराहिल तक मुकम्मल राजदारी बरकरार रखते हुए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। जनाब प्रधान ने कहा कि इसमें यह यकीनी बनाना भी शामिल है कि इम्तहान के मवाद दुरुस्त तरीके से बर वक्त इम्तहान के मराकज तक पहुंचें। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में हुकूमत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के जरिए हमल के दौरान खवातीन के लिए सेहत की देखभाल के निज़ाम को लगातार मुस्तहकम कर रही है। जनाब नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्कगीर पैमाने पर तकरीबात का आगाज करते हुए ये बात कही। भारतीय महकमा मौसमियात ने शिमाल

0: बहुत चली थी, बहुत ज्यादा जो है टाकीजों में बहुत चली थी ये फूल और कांटे,
1: बिल्कुल आपने सही कहा, ये अपने दौर
0: क्योंकि
1: की एक
0: उसके
1: सुपर
0: फूल और
1: डुपर
0: कांटे
1: हिट
0: के जितने
1: फिल्म
0: भी
1: थी।
0: गीत हैं सारे गीत हिट हैं।
1: जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और इस फिल्म की एक खास बात ये भी थी कि इस फिल्म में हेमा मालिनी जो मशहूर अदाकारा हैं, उनकी
0: जी
1: भतीजी मधु की ये पहली फिल्म थी एज ए हीरोइन। तो ये एक मतलब उनके लिए एक फिल्म तो खास थी ही थी, प्लस अजय देवगन भी थे, और ये फिल्म अपने आप में भरपूर मनोरंजन से भरपूर थी, और गीत तो इसका संगीत बहुत ही अच्छा था। तो आपको
0: जी
1: कौन सा
0: बिल्कुल
1: गीत सुनना
0: सही
1: है?
0: कहा है आपने, बहुत सही कहा, और बिल्कुल और बहुत हिट भरी थी ये फिल्म अपने समय की बात जमाने में।
1: जी, बिल्कुल आपने सही कहा, और हर गीत आज भी दर्शक सुनने वालों की जुबान पर है, हिट है।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आप आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे इस फिल्म का?
0: फिल्म का नाम है फूल और कांटे, गीत के बोले मैंने प्यार तुम्हीं से किया है मैंने, ये वाला गीत सुनना है, और कुछ हमारे मित्र हैं डेडिकेट करूंगा।
1: जी जरूर,
0: बिल्कुल, सबसे पहले तो आपको डेडिकेट रहेगा, और हमारे बेटा सिंह
1: बहुत बहुत
0: यादव जी हैं,
1: धन्यवाद।
0: मांगीलाल चंदेल जी हैं,
1: जी
0: और मांगीलाल चंदेल जी हैं, और दिनकर सिंह जी हैं चित्रकोट धाम से,
1: जी
0: और विजय कुमार पांडे जी हैं, देवी शंकर शुक्ला जी हैं, और कानपुर से पूनम जी हैं, और राहुल कुमार जी हैं, सभी जितने श्रोता सुन रहे हैं सभी को डेडिकेट रहेगा। अमित तिवारी जी हैं,
1: जी
0: और जयपाल यादव जी हैं लोहेड़ी से, महोबा से, सारे जितने श्रोता माताएं बहनें सुन, सभी को डेडिकेट रहेगा
1: क्या
0: ये।
1: बात है, क्या बात है। तो चलिए, और आपके लिए और आपके सभी मिलने वालों के लिए और सभी हमारे श्रोताओं के लिए रेडियो सेट पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत
1: वो
0: धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: तो चलिए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। जी नमस्कार।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्कार जी, कौन साहब और कहाँ से, कृपया अपना परिचय दें।
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: ओहो भगवान जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सीहोर से हमारे बहुत सारे नियमित श्रोता हम लोगों से जुड़े रहते हैं।
1: जी हाँ दीदी, सीहोर से एक तो मैं हूँ और एक रमेश प्रजापति जी हैं, वहाँ यहाँ से दोनों हैं।
0: अच्छा जी, तो आप
1: और
0: लोग
1: एक
0: तो
1: और
0: बराबर
1: हमारे
0: संपर्क में
1: मित्र
0: रहते
1: हैं,
0: हैं।
1: वो चांदबड़ से हैं,
0: कहाँ से?
1: नरेश नरेश दांगी जी, नरेश दांगी जी।
0: अच्छा, तो आकाशवाणी
1: और
0: लखनऊ आप लोग बराबर सुनते होंगे।
1: जी दीदी बिल्कुल बराबर सुनते हैं हमेशा।

0: कभी भी मिस नहीं करते कार्यक्रम को दीदी।
1: क्या बात है। और वैसे आप करते क्या हैं
0: खेती किसानी करते हैं दीदी
1: जी?
0: और किसान हैं
1: क्या बात है, किसान तो हमारे यहाँ अन्नदाता हैं और हमारे लिए
0: जी।
1: बहुत ही श्रद्धा के लिए उनका रहता है मन में। और वैसे किसानों के लिए भी हमारे यहाँ इस आकाशवाणी से इतने बेहतरीन प्रोग्राम जाते
0: जी
1: हैं।
0: दीदी मैं किसान का कार्यक्रम में जुड़ता हूँ दीदी, फोन भी करता हूँ आपके यहाँ कार्यक्रम में दीदी।
1: तो आपकी बातचीत उसमें भी, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलता होगा
0: जी हाँ दीदी, डॉक्टर साहब जब आते हैं तो हम फसलों के बारे में जानकारी लेते हैं उनसे, और
1: जी?
0: कितना खाद डालना चाहिए, कितना बीज डालना चाहिए, कितनी बार सिंचाई करनी चाहिए, सब उन डॉक्टर साहब से पूछते रहते हैं दीदी।
1: देखिए, इस आकाशवाणी का और हमारे रेडियो का जो एक सबसे बड़ा एक खास जो रोल रहता है वो यही रहता है कि ये आपके किसी काम में बाधा नहीं डालता है, लेकिन आपको
0: जी
1: जानकारी भी
0: दीदी
1: प्रदान करता है और साथ में आपको मनोरंजन भी भरपूर देता है। और कहाँ, आप खेती किसानी के लिए भी फ़ोन पे बात करते हैं फ़ोन इन कार्यक्रम में, और आज आप गीत संगीत के लिए भी हमसे जुड़े हैं, ये बहुत
0: जी
1: अच्छी
0: दीदी
1: बात है।
0: बिल्कुल
1: तो आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं हमें बताएं
0: दीदी, फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं है, गाने के बोल आपको बता देता हूँ।
1: जी?
0: गाने के बोल हैं, मार गई मुझे तेरी जुदाई, डस गई ये तन्हाई, ये वाला गीत सुनना है दीदी।
1: ये गीत तो आप, मैं आपको बताती हूँ, ये पुरानी 1980 के दशक की फिल्म है और इसका नाम है जुदाई, जिसमें कि
0: जी
1: हमारे बहुत ही सुपर डुपर हिट हीरो हीरोइन जो उस दौर के मतलब बहुत ज़्यादा चाहते थे,
0: और
1: चाहने
0: दीदी
1: वाले
0: मेरे
1: थे,
0: पसंदीदा इसमें
1: जितेंद्र और
0: गायक
1: रेखा।
0: कलाकार है किशोर कुमार जी, तो और अच्छा लगता है मुझे।
1: जी, क्या बात है आपने कही, मतलब ये सब चीज़ें जो हैं इनको, इन गीतों को आज तक लोग नहीं भूले, क्या बात है।
0: जी
1: और
0: हाँ
1: ना ये
0: दीदी,
1: फिल्म,
0: सदाबहार गीत है दीदी, ये कभी भूलेंगे भी नहीं।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। तो क्या आप इस गीत को किसी को और डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
0: जी हाँ दीदी, पूनम दीदी हैं कानपुर से, गुंजन तिवारी जी हैं, और रमेश प्रजापति जी हैं, और केसर सिंह राजपूत जी, राम बाबू शर्मा जी, मांगीलाल चंदेल जी, और
1: जी
0: जितना भी श्रोता लाइव सुना है सभी को डेडिकेट रहेगा दीदी,
1: तो चलिए,
0: और
1: हम
0: आपको भी रहेगा दीदी।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गीत आपके रेडियो सेट पर, अब देखिए, आप सुनिए।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम मेरे यानी शायस्ता के साथ। हेलो मेरी पसंद। और आज अगर आपने देर से हमारा रेडियो ट्यून किया है तो याद रखिए, आपको हमें कॉल करना है 0522-223-8825 पर। तो चलिए बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार महोदया।
0: नमस्कार सर, कौन साहब और कहाँ से?

0: जी मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरबिलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
1: जी तोमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। कैसे
0: धन्यवाद।
1: लगता है आपको ये प्रोग्राम? फोन इन कार्यक्रम में अक्सर कॉल लग जाती है आपकी?
0: नहीं, मेरा कॉल आज 7 साल बाद लगा है।
1: अरे ये आपने क्या
0: जी
1: बात कह दी भाई। कभी कभी तो कुछ लोगों का एक ही प्रोग्राम में दो दो बार कॉल लग जाता है, आपका 7 साल बाद लगा है, ऐसा क्यों?
0: जी कोरोना काल से पहले लग जाता था, जब राजकिशोर प्रसाद जी थे उस समय लगता था, मेरा 7 साल बाद लगा।
1: नहीं तो आपने कोशिश नहीं की या फिर आपका कॉल नहीं लग पाया?
0: मैं इतनी कोशिश करता हूँ, शायद कोई श्रोता करता हो, क्योंकि आकाशवाणी लखनऊ में कोई नियम नहीं है, अन्य केंद्रों पे नियम है कि 1 महीने में कॉल करो, 2 महीने में करो, 15 दिन में, यहाँ तो हमेशा लोग करते ही रहते हैं कॉल।
1: ये तो आपका कहना सही है, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं मतलब इस बात से मुझे बहुत खुशी है कि आज आपका कॉल लग गया। देखिए अंत भला तो सब भला, यही कहा जाता है
0: जी
1: ना,
0: जी मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाग्य का कि आज कॉल लग गया मेरा।
1: और मैं इसे अंत भी नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी एक नई शुरुआत है।
0: नई शुरुआत है जी, अंत नहीं है, इसमें जुड़े रहे।
1: जी आप अपने बारे में कुछ बता

0: है, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं मतलब इस बात से मुझे बहुत खुशी है कि आज आपका कॉल लग गया। देखिए, अंत भला तो सब भला यही कहा जाता है ना,
1: जी, मैं शुक्र गुजार हूँ अपने भाग्य का कि आज कॉल लग गया मेरा।
0: और मैं इसे अंत भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी एक नई शुरुआत है।
1: नई शुरुआत है जी, अंत में
0: तो
1: नहीं, इसमें जुड़े रहे।
0: जी, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे तोमर जी?
1: मैं एक फार्मर हूँ, किसान हूँ, रेडियो से जुड़ा हुआ हूँ, कई के दौरों में सहभागिता करता हूँ, पत्रों द्वारा, फोन कॉल द्वारा, और
0: जी,
1: समसामयिक लिखता भी रहता हूँ कुछ।
0: अच्छा, मतलब कविताएं?
1: हाँ, कविता वगैरह भी लिखता रहता हूँ।
0: अच्छा, तो फिर अगर दो लाइनें आप अपनी कुछ रचना हमें सुनाना चाहें तो, क्योंकि समय कम
1: बिल्कुल, दो
0: है।
1: ही लाइनें सुना पाऊंगा क्योंकि इसमें बिजली भी नहीं है, मेरे अंधकार पड़ा हुआ है।
0: जी, बिल्कुल सुनाएं, स्वागत है।
1: तो नव आश मन में लिए, नव स्वप्न संचय किए, पास आपके आया हूँ,
0: क्या बात है,
1: प्रेषित है कुछ स्नेहिल पल, उन्हें समर्पित करने आया हूँ,
0: क्या बात है,
1: देने की तो औकात कहाँ, बस मेरी एक सीख चुराने आया हूँ। धन्यवाद।
0: वाह, मतलब आपने कुछ शब्दों में बहुत कुछ कह दिया, थोड़े से शब्दों में, और
1: बहुत
0: हम,
1: तालाबुझाई के लिए धन्यवाद
0: आपका
1: आपका।
0: संदेश हम तक और पूरे आकाशवाणी की ओर से सबकी तरफ से पहुंच गया। और चलिए, अब आपकी पसंद का गीत भी जान लेते हैं, क्योंकि प्रोग्राम
1: फिल्म
0: का।
1: का नाम है अब्दुल्हा। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साथी।
0: क्या बात है, मतलब आपने बिल्कुल, रात का समय है और गीत भी कुछ वैसा ही सुना, मतलब पसंद किया है जो कि इस माहौल को सूट करता है। और ये फिल्म 1980 में आई थी, अब्दुल्ला, आपने देखी
1: जी,
0: भी ज़रूर होगी, और मैं समझती हूँ कि इसके भी गीत बहुत ही
1: देखी एक
0: सुरीले
1: एक
0: थे।
1: बार देखी।
0: जी, तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का अब्दुल्ला फिल्म का ये गीत।
1: बहुत बहुत
0: नमस्कार,
1: धन्यवाद। नमस्कार।
0: धन्यवाद।

0: बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से, देखते हैं कौन है और कहां से। जी नमस्कार। नमस्कार, हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है?
1: जी, कम आ रही आवाज़?
0: अब आ रही है?
1: जी अब आ रही। जी
0: हाँ जी, अपना परिचय दीजिए।
1: मैम नमस्कार,
0: जी नमस्कार।
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम माया, तहसील रेहटी, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ मैम।
0: जी, प्रजापति जी, आप तो हमारे बहुत पुराने श्रोता हैं, स्वागत है आपका।
1: जी
0: जी तो
1: हेलो।
0: जी, बात कर रहे हैं, आपकी आवाज़ हमें मिल रही है, अपने बारे
1: हाँ
0: में
1: मैम,
0: हमें कुछ
1: आवाज़
0: बताएं।
1: कम आ रही इसलिए आप आ रही है।
0: जी, अपने बारे में कुछ हमें बताएं।
1: मैं सिलाई का काम करता हूँ मैम।
0: अच्छा जी,
1: जी कपड़े सिलता हूँ।
0: किस शहर से ताल्लुक़ है आपका,
1: जी
0: किस शहर से हैं आप?
1: मैं ग्राम बाया,
0: ग्राम पाया, ये कहाँ पर पड़ता
1: मतलब
0: है?
1: ग्राम गांव गांव है, मतलब सिटी नहीं है, गांव है।
0: जी, आपने ग्राम बोला, मैं समझ गई, ग्राम
1: जी
0: और गांव, ये कहाँ
1: जी
0: पर पड़ता है?
1: ये सलकनपुर के पास है, बुधनी, बुधनी सलकनपुर के पास,
0: अच्छा जी, तो
1: बुधनी मतलब विधानसभा क्षेत्र है।
0: अच्छा, हाँ जी, बुधनी का नाम मैंने
1: जी
0: सुना हुआ है। तो ये जो आपका काम है, ये तो बड़ी मेहनत का काम है, मगर इसके साथ जब आप साथ में रेडियो को भी अपने साथ सेट पर वहाँ पे रखते होंगे और गीत सुनते जाते होंगे, तो मुझे लगता है
1: जी
0: कि बहुत अच्छा सा माहौल रहता होगा, काम का जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो बहुत कम हो जाता होगा।
1: जी जी जी काम काम का तनाव तो रहता है, जब सीजन चलता है तो गर्मी भी पड़ती है और काम भी करना पड़ता है,
0: जी
1: और
0: जी
1: ऐसे में ही हम आपके कार्यक्रम भी सुनते हैं और फोन भी लगाते हैं।
0: जी बिल्कुल, देखिए इसी तरह तो चलता है, और यही रेडियो की खूबी भी है कि ये किसी काम में बाधा नहीं बनता है, बल्कि उस
1: नहीं,
0: काम
1: बाधा
0: को
1: नहीं बनता, उससे हमारा काम आसान होता है,
0: और आसान हो
1: हमारा
0: जाता है।
1: मतलब कार्यक्रम चलते रहते, गाने चलते रहते, सुनते रहते और हम काम करते रहते।
0: जी, और तनाव भी कम करता है।
1: जी जी जी जी
0: जी, तो ये तो गीत संगीत का कार्यक्रम है, तो ज़रूर आपने कोई गीत अपने मन में तय कर रखा होगा कि आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी वो पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है।
0: जी, ये तो बहुत अपने दौर का एक सुपरहिट गीत है, और एक अजीब इत्तेफाक है कि आज 70 और 80 के दशक के गीतों की बहुत फरमाइश हमारे पास आ रही है, और ये फिल्म
1: जी
0: मुझे याद पड़ रही है कि 1972 की ये फिल्म है, इसका
1: जी
0: नाम था एक नज़र, यानी कि एक झलक, और
1: जी
0: बी आर इशारा के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन इस फिल्म की मुख्य
1: जी
0: भूमिकाओं में थे,
1: जी
0: आपने ज़रूर देखी भी हो शायद ये फिल्म, तो
1: जी
0: आपकी
1: बहुत अच्छा लगता है ये गाना मेरे को।
0: अच्छा, तो चलिए आपकी पसंद का ये गीत हम बिना देर किए आपको फौरन सुनवाते हैं, ठीक है?
1: जी
0: ठीक है
1: जी
0: जी, धन्यवाद, नमस्कार।
1: धन्यवाद।

0: हेलो हेलो
1: हेलो, नमस्कार। अरे
0: जी, नमस्कार। कौन साहब और कहाँ से?
1: दीदी जान, कहते नजरों से चाहत का,
0: जी
1: नजरों से चाहत का इजहार करते हैं
0: इरशाद, फिर से।
1: हम प्रेमी।
0: जी
1: आकाशवाणी लखनऊ को बेहद प्यार करते हैं
0: क्या बात है, क्या बात है भाई।
1: और सलाम करते हैं। दीदी जान, मैं
0: जी
1: बता दूं कि सदियों के बाद दिल जान लगा देता हूं और पूरे धृत राष्ट्र की तरह पूरी ताकत का इस्तेमाल कर दिए, तब कहीं जाके फोन लगा।
0: क्या बात है, क्या बात है। देखिए, कहते नहीं है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती।
1: अरे
0: तो
1: मैं
0: आपने
1: तो
0: कोशिश
1: दीदी
0: की।
1: जान जब चाह लेता हूँ, भगवान की कृपा है, दुआएं हैं तो जमीन से पानी निकाल लेता हूँ। मैं पहले पता बता दूं आप अपना।
0: जी जरूर, अपना परिचय जरूर बताइए, ऐसा ना हो कि कार्यक्रम आगे बढ़ जाए। बताएं।
1: हाँ, मेरा पता बहुत लंबा चौड़ा है, ध्यान से सुनिएगा।
0: देखिए, इतना लंबा चौड़ा बताने में आपका गीत ना कम पड़ जाए, आप हो
1: हाँ
0: सके
1: नहीं,
0: तो
1: अरे
0: थोड़ा
1: गाना
0: सा।
1: कम बजाइएगा, बातें ज्यादा हो जाए तो सही
0: चलिए
1: रहेगा। दीदी
0: चलिए
1: जान,
0: जी
1: हिंदुस्तानी कलाकार,
0: जी बताएं।
1: ग्राम कल्पा जिला सतना से चांद मोहम्मद खान प्लस मजनू दीवाना और हाउस हाफ पैंट,
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: ये आपकी भाभी जान कहा करती, हाफ पैंट सुन लो इनसे।
0: क्या
1: जी
0: बात
1: दीदी
0: है।
1: जान, हम इनको हाफ पैंट बोलते हैं,
0: जी नमस्कार, क्या बात
1: हम
0: है,
1: इनको फुल शर्ट बोलते हैं।
0: क्या बात है। मतलब आज
1: जी
0: तो इसका मतलब इस कार्यक्रम के अंत में पति पत्नी दोनों से बात हो गई, तो ये बहुत
1: अरे
0: अच्छी
1: ये
0: बात है।
1: लैला दीवानी चिपकी रहती है रेडियो से और फोन कॉल यही लगाती है, पेड़ में चढ़ जाती है बंदरिये की तरह और नदी में
0: तो
1: तैरती है
0: सुनिए,
1: बंदर की
0: तो
1: तरह और
0: तुम
1: छत
0: सुनिए,
1: पे नाचती
0: अगर
1: है गजब
0: अगर
1: की।
0: आप ऐसी बात है तो फिर आज आप अपनी श्रीमती जी के ही पसंद का गीत मुझे बताइए, ताकि
1: और
0: मैं
1: श्री
0: उनको भी खुश
1: श्री
0: कर
1: दीदी
0: दूँ।
1: जान, श्रीमती जी का वो गाना पसंद है, दाग फिल्म का,
0: क्या बात है, दाग
1: और
0: फिल्म का।
1: गीत के बोल है, हम दोनों लोग गुनगुना ले तब तो मजा आएगा फिर।
0: जी, जल्दी जल्दी गुनगुनाना भी
1: हाँ
0: शुरू
1: जल्दी से,
0: कीजिए।
1: अब मारू ठे या बाबा, अब चाहे लग जाए हाथ कड़ियां, अब चाहे कांटे खिले या कलियां, हमने तेरी बांह पकड़ ली।
0: क्या बात है, क्या बात है। देखिए, ऐसा है कि ये गीत जो है इतना अच्छा था कि मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पीछे से प्ले कर दिया, है ना। अब ये सुनाओ ना तो नाइंसाफी हो जाएगी। तो चलिए, आपसे तो बातचीत आगे भी होती रहेगी, हमें पूरी उम्मीद है। हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार
1: थोड़ी सी कह लूं, अगर आप फोन ना रखें
0: जी,
1: तो
0: बताएं जल्दी से।
1: जल्दी से, ये आप जो है नाम बोलना ज्यादा डेडिकेट करना जो श्रोताओं को है, ये इनको जो है आप प्रतिबंध लगाने मना कर दें, समय जाया होता है।
0: बिल्कुल, मैं आगे से आपकी इस बात को जरूर, सुझाव को आगे करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। चलिए, आप सुनिए आपकी पसंद का ये गीत।
1: आपको दिल से नमस्कार।
0: नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत, आपकी पत्नी को भी नमस्कार।

0: श्रोताओं, आज के इस हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम से विदा लेते वक्त मुझे एक शेर याद आ रहा है कि ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। तो सचमुच वक्त की सुइयां हमें, घड़ी की ये सुइयां इशारा कर रही हैं इस कार्यक्रम से विदा लेने का। तो दीजिए शाइस्ता ज़ाहिद को इजाज़त, नमस्कार। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, प्रस्तुत है हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: खेल दर्पण, खेल दर्पण कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं अल्पना श्रीवास्तव। झांसी शहर, विशेष रूप से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जन्मभूमि होने के कारण पूरे देश में खेल नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि युवाओं के व्यक्तित्व विकास, अनुशासन, स्वास्थ्य और रोजगार का माध्यम भी बन रहे हैं। झांसी में खिलाड़ियों के लिए कई मैदान और प्रशिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए नए स्टेडियम और खेल परिसर विकसित किए जा रहे हैं। झांसी के मोठ गांव में पहला मल्टीपर्पज ग्रामीण स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। यहां लड़के और लड़कियों के लिए खेल उपकरणों की व्यवस्था भी की गई है। यहां पर मल्टीपर्पज हॉल में बास्केटबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, कुश्ती और कबड्डी, जिम्नेजियम हॉल में ओपन जिम और टेबल टेनिस कोर्ट, उपकरण के रूप में जेवलिन, शॉटपुट, डिस्कस, हैमर, वेट लिफ्टिंग हॉल की भी सुविधाएं होंगी। इसके साथ ही भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मल्टीपर्पज मिनी स्टेडियम का भी भूमि पूजन हो चुका है। यहां पर 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक सहित इंडोर गेम्स की सुविधा होगी। झांसी की यदि हम बात करें तो यहाँ स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला एथलेटिक्स स्टेडियम, डे नाइट मैच की सुविधा वाला एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, फ्लड लाइट युक्त क्रिकेट ग्राउंड और दो बड़े जिम्नेजियम हॉल हैं। झांसी विकास प्राधिकरण ने भी इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनवाया है, जबकि सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में क्रिकेट का बड़ा ग्राउंड है जहां पवेलियन का भी निर्माण कराया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बॉक्सिंग हॉल, कुश्ती हॉल, बास्केटबॉल कोर्ट, वातानुकूलित जिम, स्विमिंग पूल, क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा सभी प्रमुख खेलों के प्रशिक्षकों की नियुक्ति, बॉक्सिंग और हॉकी खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा भी है।
0: भारत की पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों की स्थिति वर्तमान समय में काफी मजबूत और प्रभावशाली मानी जाती है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पिछले वर्षों में विश्व क्रिकेट टीम में विश्व विजेता बनकर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। टीम ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और नेतृत्व तीनों क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया है। आज हम बात करेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उभरती हुई खिलाड़ी क्रांति गौर से। उन्होंने अपनी मेहनत और शानदार प्रदर्शन से क्रिकेट जगत में साथ ही साथ बुंदेलखंड में नई पहचान बनाई है। क्रांति जी, गांव से निकलकर

0: भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचने का सफर आपका कैसा रहा? और साथ ही आप ये बताइए कि आपके घर परिवार गांव में कितनी खुशी थी?
1: मतलब छोटी थी जब, उस टाइम पे तो मैं गांव में रहती थी, तो उधर ऐसा क्रिकेट था नहीं उस टाइम पे पहले। और लड़कियों का तो ऐसा था कि लड़कियों को निकलना भी थोड़ा सा बाहर, अगर कोई जा रहा है ना तो किसी को साथ नहीं भेजेंगे, तब लड़कियां जाती हैं। तो घर के सामने एक ग्राउंड है, उधर क्रिकेट चल रहा था, तो लड़कियां सब अपना गेम खेल रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, तो भैया लोग खेल रहे हैं तो मैं जाऊंगी उनके साथ खेलने। टूर्नामेंट हुआ था ऊपर, टूर्नामेंट तो दो टीमें आई हुई थी, एक मैच कराया था उन्होंने गर्ल्स का, उधर दो टीमें आई हुई थी, नौगांव और सागर। तो सागर की टीम में एक लड़की कम थी, तो मैं बस गई थी, गर्ल्स का मैच था, तो बस ऐसे घूम रही थी। तो उन्हें आके, जो सागर टीम के कोच थे सोनू सर, उन्होंने आके मुझसे पूछा कि तुम खेलोगी क्या क्रिकेट? तो मैंने कहा हाँ सर मैं खेलूंगी। फिर हमारे वहाँ के जो पुलिस में स्टाफ में एक भैया है, उन्होंने बोला हाँ सर इसको खिला लो, बहुत अच्छा खेलते हैं। तो फिर वो भैया लोग गए, मेरे को यूनिफॉर्म दिलाया, और वो मेरा फर्स्ट मैच था लेदर का, और उस मैच में मैं मैन ऑफ द मैच थी।
0: गांव से निकलकर भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुंचना, ये सफर आपका कैसा रहा? और आपके घर परिवार और गांव को कितनी खुशी मिली जब आपका वहां चयन हो गया?
1: जब मैं गांव गई थी ना, तो उससे पहले मुझे मतलब WPL के लिए जाना था, तो हमारा सीनियर वनडे बोर्ड के मैचेस थे, तो हम लोग फाइनल जीते हुए थे। तो उस फाइनल मैच में मैंने बंगाल के अगेंस्ट 4 विकेट लिए थे, चारों बोल्ड लिए थे और चारों बोल्ड विकेट थे। तो सबको ऐसा पता चला, क्योंकि जब मैं वनडे मैचेस खेल रही थी तभी ऑक्शन चल रहा था, यूपी वॉरियर्स टीम ने मुझे लिया था। तो एक तो मैच जीत के हम लोग आए, और फिर एक और खुशी लेके आए कि WPL में सिलेक्शन हुआ। तो जब पता चला गुआरा में सबको, तो सब उसी मतलब मेरे वेलकम के लिए सब रेडी थे कि कब मैं आऊँ, कब मुझसे सब लोग मिले। मतलब एक प्राउड था कि हाँ कुछ तो, सबको खुशी थी। ऐसा नहीं कि कोई भी चीजें बोली भी हुई थी, मेरी फैमिली चीज में शामिल हुए वो भी उस चीज में खुश थे। जैसे मैं उधर पहुंची, फिर सबके माहौल देखा, सबने टीका माला सब करा, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और मेरे को बहुत प्राउड था कि मैं भी नहीं रुकी, और मुझे फैमिली ने रोका भी नहीं उस चीज के लिए, तो जो मैंने आज उनको करके दिया, तो प्राउड फील कर रही थी उस टाइम।
0: भारतीय टीम में चयन की खबर मिली तब सबकी क्या प्रतिक्रिया थी?
1: जब सीनियर T20 में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मैं गुहारा में ही थी उस टाइम में, मैं प्रैक्टिस कर रही थी। तो अचानक से एक दीदी, उनका फोन आता है, भाई तेरा सिलेक्शन हो गया है। मैंने कहा मेरे पास लिस्ट नहीं आई, फिर उन्होंने मेरे को लिस्ट भेजी। जब मैंने लिस्ट देखी तो मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी, मैंने कहा अब घर जा रही हूँ, हो गई प्रैक्टिस, सबको बताऊंगी घर पे। जैसे घर पे जाके बताया, सबको पता चल गया। गुहारा मतलब ऐसा कोई बड़ा शहर तो नहीं है, गाँव टाइप में है। फिर जैसे सुबह सबको पता चला कि क्रांति के सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ है, तो जो लोग भी उधर पे, बहुत सारे लोग आए घर, और उधर के जो न्यूज वाले भैया लोग, सबको पता चल गया था। क्योंकि मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ है, उधर जाऊंगी मैं खेलने, तो कुछ नया सीख के आऊंगी और कुछ अच्छा वहाँ पे करके आऊंगी। फर्स्ट मैच से लेके लास्ट मैच तक मैंने टीम को 100% दिया है। फर्स्ट मैच से लेके लास्ट मैच तक मैंने ऐसा था कि मेरे को एक वो था कि बस टीम को जिताना है। फाइनल मैच में भी मैंने 4 विकेट लिए बड़े प्लेयर्स से चारों, बट ऐसा लग रहा था कि बस जिताना है और कुछ नहीं।
0: दूसरे वरिष्ठ खिलाड़ियों से आपको सहयोग मिला?
1: जब उधर मेरे को जाना था तो बहुत एक्साइटेड थी पहले, तो ऑरेंज प्लेयर से मिलूंगे और बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो सब मुझे मिलेंगे, उनसे मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। तो मतलब ऐसा था वहाँ पे कि पहले तो हम लोग गए, पहले तो हमारे कैंप्स लगे कुछ दिन सूरत में। तो कैंप में जो मतलब ऐसा लग रहा था कि जो मेरे को पूछना चाहिए वो मैंने खुलकर पूछा, ऐसा नहीं लगा कि। और उधर जो कोचेस थे मैम, उनने मेरे को बताया सीनियर्स प्लेयर्स हैं उनसे मुझे कुछ पूछना है, तो उनसे भी मैं पूछती थी, तो वो भी मेरे को बता रहे हैं। तो एक तो मैंने सारे मैचेस प्लेइंग करे हैं, सारे मैचेस मैंने खेले थे। तो अगर ऐसा था मैं बॉल डाल रही हूँ, अगर मेरे को एक ओवर में रन पड़ते हैं, तो मेरे को ना वो सेट सा लगे, रन पड़ गए, मेरा मूड थोड़ा सा ठीक, तो मेरे को ना बड़े प्लेयर्स आ रहेंगे, वो मेरे को समझा रहे थे सीनियर प्लेयर कि ठीक है तुम बॉल डाल रही हो, वो बैटिंग कर रहे हैं, वो भी तो बैटिंग करने आए हैं, अगर तुम बॉल डाल रही हो तुम विकेट लोगे वो रन बनाएंगे, क्रिकेट का काम भी है, मतलब नेक्स्ट ओवर लेके आना और सोच के डालना बोलते। और उन्होंने ऐसे हमेशा यही बोला है, फेस में स्माइल रखना चाहे मैच का रिजल्ट कुछ भी हो।
0: धन्यवाद क्रांति जी, अपना और देश का नाम यूं ही रोशन करती रहेंगी। क्रांति गौड़ के कोच राजीव बिलथरे ने उनके खेलों को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजीव बिलथरे मध्य प्रदेश के छतरपुर के प्रसिद्ध क्रिकेट कोच और जिला क्रिकेट संघ के सचिव हैं। ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम बात करते हैं राजीव बिलथरे जी से। आपका स्वागत है राजीव जी।
2: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि एक कोच के रूप में आपकी क्रिकेट की यात्रा कैसे शुरू हुई?
2: जी सबसे पहले छतरपुर में 2013 में जब हमने यहाँ पर एकेडमी शुरू की, उस समय यहाँ लेदर बॉल से क्रिकेट खेलना टोटल बंद हो चुका।

0: था। तो हम तीन चार लोगों ने कोशिश की कि यहाँ बच्चों को सिखाना शुरू करें, तो वहाँ से हम लोगों ने सिखाना शुरू किया। और आज इंडिया लेवल पे क्रांति गौड़ एक मेरी स्टूडेंट खेल रही है, और एक शुभम शुक्ला वो KKR IPL खेल रहा है। तो
1: अच्छा,
0: ये
1: बहुत अच्छी
0: दो
1: बात
0: बच्चे
1: है।
0: बड़े लेवल पे हाँ खेल रहे हैं। और एक लड़की अभी रिसेंटली MPL जो होता है मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग, उसमें ग्वालियर की टीम से खेल रही है, रिया यादव।
1: युवा
0: हाँ,
1: खिलाड़ियों को तैयार करने में प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: एक तो क्या है, मेरा बैकग्राउंड पूरा स्पोर्ट्स का ही है, क्वालिफिकेशन पूरी स्पोर्ट्स की है, कॉलेज में जो जॉब है वो भी स्पोर्ट्स की है। तो खेल से जुड़े हुए काम तो लगातार हम कर ही रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि छतरपुर से कोई रणजी ट्रॉफी खेले। तो एकेडमी स्टार्ट करने के बाद इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया कि एक रणजी ट्रॉफी हमको छतरपुर से खिलाना है, क्योंकि वो छतरपुर से कोई खेला नहीं था अभी तक। लेकिन रणजी ट्रॉफी से ऊपर इंडिया लेवल तक जब ये लड़की खेल गई, तो अभी लगता है कि जो मेहनत है और जो परिश्रम किया वो सफल हुआ है।
1: पूरे बुंदेलखंड को एक नई पहचान मिल गई। राजीव जी, पहली बार क्रांति गौड़ की प्रतिभा को आपने कब और कैसे पहचाना?
0: क्रांति गौड़ 2017 में हमारी साई स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम एक टूर्नामेंट खेल रही थी, गर्ल्स का टूर्नामेंट। उसमें इसके फादर लेके आए थे कि सर, हमारी बच्ची गांव में ये लड़कों के साथ ऐसी खेलती रहती है टेनिस बॉल से, तो हम चाहते हैं कि आपके मार्गदर्शन में रहे और सीखे। तो उनको हमने कहा कि आप कल छतरपुर लेके आ जाइए, तो इसका एडमिशन कर देते हैं और प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। तो वो नेक्स्ट डे उसको लेके आ गए छतरपुर।
1: उस समय आपको
0: तो
1: लगा था कि ये खिलाड़ी एक दिन भारतीय टीम तक पहुंचेगी?
0: हाँ, देखिए उस समय वो थी एक ऑर्डिनरी प्लेयर, क्या है जो टेक्निकली वो तैयार नहीं थी, और फैमिली बैकग्राउंड भी उसका बहुत उस समय आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहा था उसको। हम फीस नहीं दे पाएंगे एकेडमी की। हमने कहा ठीक है, तो हमने उसकी फीस के लिए बोल दिया कि ये जब तक हमारे पास रहेगी तो फ्री इसको सिखाएंगे।
1: जी, आपने
0: तो
1: सहयोग
0: उससे
1: किया।
0: हाँ, तो आज तक उससे कोई फीस नहीं ली। पर उसके रहने की भी समस्या रही कि अब जब वो फीस नहीं दे सकती थी तो खाना रहना कैसे अफोर्ड करेगी।
1: जी हाँ,
0: तो करीब एक हफ्ते वो हमारे घर में रही। ऐसे बड़ा मतलब उसका जीवन तो बड़ा संघर्षमय रहा है। संघर्ष
1: जी हाँ, उनके संघर्ष के दिनों की कोई यादगार घटना हो तो बताइए।
0: के दिनों में यादगार तो ये है कि उसके पास शूज नहीं थे शुरू में, स्टार्टिंग में। ड्रेस तो हमने शुरू में ही दे दी थी उसको, लोअर टी शर्ट। तो उसका बड़ा मन था कि एक स्पाइक, जो बॉलर के स्पाइक होते हैं,
1: अरे वाह।
0: तो हाँ, तो वो उसको जब हमने लाके दिए थे तो वो बहुत खुश हुई थी। मतलब ऐसा लगा था कि बहुत बड़ी चीज उसको मिल गई।
1: जी, क्रांति की सबसे बड़ी विशेषता आपको क्या लगती है?
0: उसके अंदर जो स्पीड है, गति, वो आमतौर पे लड़कियों में होती नहीं है। शरीर में मूवमेंट और स्पीड, दो चीजें उसकी बहुत अलग है। हट के भी देखेंगी तो आपको अलग ही उसकी उसकी स्पीड अलग दिखेगी। बॉल के पीछे जब भागेगी, रनअप पे जब भागेगी, या बॉल की उसकी जो स्पीड है वो उसके शरीर की स्पीड से ही कन्वर्ट हो रही है
1: मतलब
0: बॉल में।
1: एक पता चलता है कि एक जुनून है उसको खेल के प्रति,
0: हाँ नहीं, जुनून तो है ही,
1: तभी इतने आगे
0: बाकी
1: पहुंची हैं।
0: जी।
1: ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों को क्रिकेट में आगे बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती होती है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं?
0: देखिए, हम यहाँ पर जो एकेडमी में बच्चे हैं, लड़कियां हैं, जो अब अभी आज की डेट में तो पूरे मध्य प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश की भी लड़कियां हैं, करीब 40-45 लड़कियां रेगुलर ग्राउंड पर हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा परेशानी ये जाती है कि वो घर से बाहर निकालने में थोड़ा ट्रेडिशनल होते हैं, लेकिन जब से ये क्रांति गौड़ खेली है तब से ग्रामीण क्षेत्र से भी बहुत सारी लड़कियां आई हैं। और क्रांति भी अब जैसे एकेडमी की जो लड़कियां हैं उनको सपोर्ट करती है, हमें पता भी नहीं लगता, और लड़कियों को उपलब्ध करा देती है।
1: एक खिलाड़ी को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कोच की क्या भूमिका होती है?
0: बहुत महत्वपूर्ण होती है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि ग्राउंड पे प्रैक्टिस करते हैं लेकिन अच्छा नहीं होता है, तो उस समय जो प्लेयर है, खिलाड़ी है, वो थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान रहता है। तो उस दौरान कोच की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है कि किस तरीके से वो उसको समझाए, उससे बात करे, मतलब मोटिवेट उसको करते रहना पड़ता है बच्चे को।
1: क्रांति गौड़ जब भारतीय टीम का हिस्सा बनी, तब आपने कैसा महसूस किया?
0: बहुत खुशी हुई। रात को करीब 10:30 से 11 बजे उसको कॉल आया श्रीलंका टूर के लिए।
1: जी
0: एक प्लेयर उसमें इंजर्ड हुई थी इंडिया टीम की, तो उसकी जगह इसको लिया गया था। और 10:30 बजे उसको कॉल आके ये कहा गया कि आपको 2 बजे निकलना है भोपाल के लिए, भोपाल से आप फ्लाइट है मॉर्निंग में। थोड़ी
1: कितना कम
0: परेशान थी,
1: समय मिला।
0: हाँ थोड़ी
1: जी
0: परेशान थी थोड़ा, कि भोपाल कैसे पहुंचेंगे।
1: जी
0: अभी भी वर्ल्ड कप में जैसे ही उसका सिलेक्शन हुआ तुरंत फोन आया था कि सर
1: अच्छा
0: बधाई हो।

0: युवा कोच और खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: देखिए, अच्छा खिलाड़ी बनना आसान भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। वैसे ही एक अच्छा कोच बनना बहुत आसान नहीं है, और जो बनना चाहते हैं, फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो कठिन भी नहीं है, लेकिन उसके लिए बहुत समर्पण और बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत रहती है। और कोच जितना ऑनेस्ट होगा, ईमानदार होगा, उसके बच्चे उतने अच्छे परफॉर्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: दौड़ भाग वाले खेल स्वस्थ एवं पुष्ट शरीर वाले खिलाड़ियों के लिए होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से दिव्यांग यदि इन खेलों में दमखम दिखाए तो आश्चर्य स्वाभाविक है। विशेषकर पैरों से दिव्यांग खिलाड़ी क्रिकेट खेले तो उनकी विशिष्टता खास हो जाती है। पिछले दिनों झांसी के राजकीय इंटर कॉलेज स्थित खेल मैदान में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के दिव्यांग खिलाड़ियों की व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता हुई। व्हीलचेयर क्रिकेट को बढ़ावा देने का श्रेय झांसी के झाकरी निवासी सोमजीत सिंह को जाता है। पैदा होते ही उन्हें स्पाइन ट्यूमर हो गया। जब 3 माह के हुए तो ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया। उन्हें बचपन से ही क्रिकेट का शौक था। 10 वर्ष की उम्र में ट्यूमर उनका वापस आ गया तो शरीर को लकवा मार गया। कमर के निचले हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। व्हीलचेयर पर बैठकर ही टीवी पर मैच देखकर वे शैडो प्रैक्टिस करने लगे। सोमजीत ने अपने जैसे लोगों की टीम बनाई। प्रयागराज में 3 दिसंबर 2015 को पहली बार व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट कराया। बाद में बीसीसीआई ने व्हीलचेयर टूर्नामेंट को मान्यता दी। सोमजीत वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश की व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के कप्तान चुने गए। ये टीम नेशनल चैंपियन बनी तो उन्हें स्थायी रूप से भारतीय टीम की कप्तानी सौंप दी गई। हमने बात की रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स अकेडमी के डायरेक्टर अभय यादव जी से।
2: मेरा नाम अभय यादव है, मैं झांसी का रहने वाला हूँ और रानी लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से रन कर रहा हूँ।
0: अभी हम जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों व्हीलचेयर क्रिकेट हुआ था तो उसके बारे में कुछ बताएंगे।
2: जी, व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट जो हुआ था उसका नाम था वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई व्हीलचेयर क्रिकेट चैंपियनशिप।
0: जी,
2: की जो है प्रतिभागी जो टीमें थी वो यूपी, दिल्ली, हरियाणा और एमपी, यहाँ के टीमों ने उसमें प्रतिभागी की थी इस प्रतियोगिता में। और इसका जो फाइनल हुआ था वो यूपी वर्सेस दिल्ली के बीच में हुआ, जिसकी विजेता टीम रही थी वो यूपी थी।
0: सामान्य आदमी दौड़ भाग कर लेता है, स्वस्थ होता है, उसके लिए तो आसान होता है, लेकिन जो खेलते हैं दिव्यांग हैं जो, तो वो देखने में आपको कैसा लगा?
2: देखने में ये बहुत ही उत्कृष्ट था और कहीं ना कहीं झांसी वासियों के लिए ये एक नया टूर्नामेंट था कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात ये थी, झांसी में एक मिनी स्टेडियम बना जिसमें लाइट लगी हुई थी, रात की चकाचौंध दूधिया रोशनी में ये टूर्नामेंट हुआ था, जिसमें कि हमारे इंडियन टीम के प्लेयर्स और कैप्टन
0: जी
2: सोमजीत सिंह, उन्होंने तक इसमें आके प्रतिभाग।
0: हाँ जी, कि जैसे कि पता चला कि सोमजीत सिंह जी है, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी और बीसीसीआई द्वारा मान्यता भी मिली हुई है इसे। तो जैसे और जगह के खिलाड़ी आए थे क्रिकेट के लिए, तो वो लोग का, खिलाड़ियों का आपस में किस तरह का व्यवहार रहता है?
2: बहुत ही साधारण और बहुत सिंपल रहते हैं, अपने गेम से उनको मतलब है, समय से समय अवधि इसमें थोड़ी सी समय ज्यादा ले लेते हैं, परंतु अपने गेम को बहुत ही दृढ़ संकल्प के तौर पे ये आपस में करते हैं खिलाड़ी कहीं ना कहीं, और उस मेहनत को ग्राउंड पे उतार के लेके आते हैं और लोगों को दिखाते हैं खेल।
0: जैसे हमारे सामान्य क्रिकेट से कुछ अलग नियम होते होंगे?
2: सामान्य क्रिकेट से अलग नियम होते हैं, उनके बाउंड्री छोटी होती है और एम्पायर्स वगैरह उनके रहते हैं, बट हल्के से कुछ रूल्स में चेंज किए।
0: तो रन जब ये लेते हैं तो किसके, व्हीलचेयर के साथ ही जाते हैं?
2: अच्छा, के साथ में ही जाते हैं।
0: ये हमारे यहाँ झांसी में कब से शुरू हुआ है?
2: ये झांसी में इसका जो टूर्नामेंट हुआ था ये हुआ था 25 फरवरी से स्टार्ट हुआ था वैसे ये टूर्नामेंट
0: जी,
2: और इसका जो मैच था वो 27 फरवरी को झांसी में हुआ था। 27 फरवरी को ये मैच हुआ था जिसमें कि दिल्ली ने बनाए थे 12 ओवर में 68 रन और उत्तर प्रदेश ने बनाए थे 10वीं ओवर की पहली ही गेंद पे इसका लक्ष्य को हासिल करते हुए 69 रन बनाए थे और 3 विकेट के नुकसान पे।
0: बहुत अच्छी बात है तो कि जो उस तरह के खिलाड़ी
2: में था वो अपने झांसी में ही हुआ था।
0: आगे जो खिलाड़ियों का क्या भविष्य है इसमें?
2: बिल्कुल, खिलाड़ियों का भविष्य इसमें बहुत ही शानदार है, चूंकि सरकार इसमें मदद कर रही है कहीं ना कहीं, खेल को प्रोत्साहन दे रही है, जो इस खेल को खेल रहे हैं दिव्यांग लोग हैं उनको आर्थिक सहायता भी दे रही है, जिससे कि दिव्यांगों में खेल के प्रति एक उत्सुकता भी है और कहीं ना कहीं उम्मीद भी है कि अगर हम इस दिव्यांग लोग जो

0: होते हैं कहीं ना कहीं, अगर उसको खेलते हैं तो फाइनेंशियली उनको सरकार की तरफ से मदद मिलेगी, साथ में नामो
1: जी
0: शोहरत भी।
1: जी हाँ, प्रयागराज में 3 दिसंबर 2015 को पहली बार व्हीलचेयर क्रिकेट टूर्नामेंट कराया गया था
0: जी,
1: और तब से लगातार ये मैच खेला जा रहा है।
0: और
1: चलिए
0: मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको
1: जी।
0: कि ये जो अपना यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ था, इसमें अनिल सिंघानिया जी जो थे, एक
1: जी
0: प्लेयर रहे, वो टॉप स्कोरर रहे थे फाइनल मैच में। उन्होंने 19 बॉल में,
1: जी, बहुत बड़ी बात। और वाकई में ये जो मैच है, देखने वाले और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एक अलग ही इसमें उत्साह होता है और एक अलग ही अनुभव होता है मेरे
0: बिल्कुल
1: नजरिए
0: कहीं ना
1: से।
0: कहीं जिस दिन मैं बता सकता हूँ मैं उपस्थित था ग्राउंड पे,
1: जी
0: लगभग लगभग शाम का समय था और अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 लोग दिया रोशनी में बीच शहर के अंदर जब उनका मैच हुआ,
1: जी
0: तो न्यूज रिपोर्टर्स से लेके लोकल पब्लिक से लेके, क्योंकि
1: जी
0: पहली बार कहीं ना कहीं झांसी में इसको सौभाग्य था कि वो लोग आए और खेल रहे थे, तो
1: जी
0: देखने का उनको मौका मिला कि कैसे दिव्यांग क्रिकेट होता है। तो
1: जी
0: कहीं ना कहीं लोगों ने इसको,
1: क्योंकि विशेषकर पैरों से जो दिव्यांग है और वो खिलाड़ी यदि क्रिकेट खेलते हैं तो एक विशिष्टता, एक खास खेल तो हो ही जाता है वो। अभय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए, जानकारी देने के लिए, और
0: जी
1: हम आपके साथ सभी को शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। श्रोताओं, तैराकी के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि तैराकी केवल एक खेल नहीं बल्कि स्वास्थ्य, अनुशासन और आत्मविश्वास का अद्भुत संगम है। ये ऐसा व्यायाम है जिससे पूरे शरीर की मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं और शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने में मदद मिलती है। तैराकी हृदय और फेफड़ों को मजबूत बनाती है, सही शक्ति बढ़ाती है और मानसिक तनाव को कम करने में सहायक मानी जाती है। यही कारण है कि आज हर आयु वर्ग के लोग इसे अपना रहे हैं। खेल के रूप में तैराकी खिलाड़ियों में धैर्य, संतुलन और एकाग्रता विकसित करती है। ओलंपिक से लेकर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तक भारतीय तैराक लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आइए खेलों को जीवन का हिस्सा बनाएं। और इस विषय में हमने बातचीत करी।
2: मेरा नाम किशोर कुमार मिश्रा, मैं ध्यानचंद स्टेडियम में विगत 2004 से काम कर रहा हूँ। बराबर मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तैराकी में भाग लिया। इसके अलावा मैं बीकेडी में इंटर यूनिवर्सिटी गया।
1: अच्छा, ध्यानचंद स्टेडियम में स्विमिंग की प्रशिक्षण की क्या विशेषताएं हैं?
2: जो छोटे 5 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों को जो हम लोग प्रशिक्षण देते हैं, और बाकी जो सीखना चाहते हैं उनको भी हम सिखाते हैं।
1: अच्छा,
2: जो कि
1: बच्चों को तैराकी सिखाने की शुरुआत किस उम्र से करनी चाहिए?
2: वैसे तो 5 साल है, बच्चे की लंबाई अगर थोड़ी सी और बड़ी हो तो 4 साल का बच्चा चल जाता है। हमारे सिखाए हुए बच्चे झांसी के नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर इस समय अपना योगदान दिए हैं, जिसमें कि हमारी शिक्षिका जिया यादव हसारी की रहने वाली, और इस समय वो विदेश में अपना कैंप करने गई हुई है। अभी अभी लगभग 16 वर्ष, और इस समय वो अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल में अपनी भैया स्विमिंग का जोर दिखा रही है।
1: बहुत अच्छी बात है। तो आज के युवाओं में स्विमिंग को लेकर कितना उत्साह दिखाई देता है?
2: बहुत। आज तो हमें जब स्विमिंग सीखने जाते थे तो हमारे माता पिता मारते भी थे कि नहीं तुम डूब जाओगे, ये
1: पानी से दूर
2: आज
1: रहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने।
2: और आज समय ये है कि माँ बाप खुद स्वयं अपने बच्चों को लेकर हमारे ध्यान से स्टेडियम आते हैं, अपने बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं कि नहीं सर, हमारे बच्चे को अच्छा से अच्छा सिखाओ, अच्छे से अच्छा इसको बनाने की। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे ध्यानचंद स्टेडियम से बिना ये भी बच्चा बिना सीखे वो स्टेडियम से बाहर ना जाए।
1: अच्छा, प्रशिक्षण देते समय सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
2: कुछ नहीं, सिर्फ ध्यान देना पड़ता। अगर अगर वो बच्चा सीखता है तो जैसा जैसा हम बताते जाए वैसा वैसा वो करता जाए, तो ना तो हमें सिखाने में दिक्कत होगी और ना बच्चे को सीखने में कोई दिक्कत होगी।
1: बस ध्यान रखना पड़ता है बच्चों का।
2: बच्चों का ये ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा पानी में, गहरे पानी में ना जाए, डूबे ना, तो बस यही सब ध्यान रखना पड़ेगा। और तो उसमें तो ये है कि अब हमारी तो सबको एक प्रकार से कभी सारे बच्चों को एक लाइन में बिठा के पैर चलवा दिए, पहले सीधे पैर चलवा दिए, फिर उनसे क्या लेट के पैर चला दे, उनसे फ्लोटिंग करवाते हैं। पैर हमेशा मुड़ के नहीं चलाना चाहिए, बच्चों को हमेशा पैर सीधे चलाएं, जिससे कि बच्चों को आगे बढ़ने में उनको,
1: क्योंकि इसकी तैराकी की भी कई तकनीक होती है।
2: हाँ, इसकी चार चार स्टेप होते हैं।

0: सबसे पहले फ्री स्टाइल, दूसरा है ब्रेस्ट स्ट्रोक, तीसरा है बटरफ्लाई, चौथा है बैक स्ट्रोक। ये सुनेंगे चार स्टाइलें हैं। फ्री स्टाइल अच्छा कर रहा है कौन बच्चा, ब्रेस्ट अच्छा कर रहा है भाई, बटरफ्लाई अच्छा कर रहा है कौन बच्चा, बैक स्ट्रोक अच्छा कर रहा,
1: उसी में उसको आप आगे बढ़ाते हैं,
0: उसको बारीकी बताते हैं।
1: और हम देखते हैं कि गर्मियों में स्विमिंग सीखने वालों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसे में सुरक्षा के क्या उपाय जरूरी हैं?
0: नहीं, हम लोगों के पास दो दो तीन तीन लाइफ गार्ड है और वो पूल के ऊपर 24 माने जब तक हमारा समर कैंप चलता है, तो अगर एक आदमी अगर मेरे पानी के अंदर बच्चों को सिखा रहा है तो दूसरा ऊपर से देखता रहता है बराबर कि कोई बच्चा पानी के अंदर डूबे ना, या तो पानी में इन सब अपनी अपनी स्विमिंग करिए, कोई एक दूसरे को पकड़ेगा नहीं,
1: परेशानी तो नहीं। आपने तैराकी, स्वास्थ्य और खेल भावना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं से साझा की। हमें विश्वास है कि आपकी बातें युवाओं को तैराकी के प्रति प्रेरित करेंगी। धन्यवाद। कहते हैं अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। झांसी की बेटी इमरोज खान ने अमेरिका के बर्मिंघम में आयोजित विश्व पुलिस और फायर गेम्स 2025 में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतकर न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे झांसी और भारत का नाम रोशन किया। 70 किलोग्राम वर्ग में अमेरिकी बॉक्सर जेनेट जॉनसन को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इमरोज खान ने गौतम बुद्ध नगर में आयोजित नवी एलिट महिला व पुरुष राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए कांस्य पदक जीता और वे निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने बताया,
2: पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि अमेरिका की धरती पर आप गोल्ड मेडल लेकर आई।
3: शुक्रिया।
2: अब आप बताइए, आपने बॉक्सिंग की शुरुआत कैसे की?
3: बॉक्सिंग की शुरुआत तो ऐसा था कि बॉक्सिंग के नाम से ही फैमिली डरती थी, तो मैं पहले हॉकी खेलती थी, तो वो ही बॉक्सिंग का एक था दिल में कि करना है, लेकिन बॉक्सिंग से नाम से ही मना कर दिया घर वालों ने, तो हॉकी की आड़ में बॉक्सिंग शुरू करा था। तो बस सब जूनियर ऐसी स्टेट था, उसमें गोल्ड आया झांसी में, तो उसके थ्रू न्यूज़पेपर में निकला फोटो, तो घर वालों को पता लगा कि मैं बॉक्सिंग कर रही हूँ, तो फिर मुझे लगा शायद अब मुझे मार पड़ेगी, तो मैंने थोड़ा रोना वोना करा, लेकिन सपोर्ट किया घर वालों ने, तो जब से आज तक फुल सपोर्ट है और जब से आज तक कर ही रही हूँ।
2: लेकिन इस गोल्ड मेडल के पीछे आपकी तैयारी और दिनचर्या कैसी रहती थी?
3: ये इस गोल्ड मेडल के पीछे यही है कि मतलब एक था कि बस मुझे करना है, हाँ मतलब पुलिस टीम से मुझे गोल्ड लेना है और उसके बाद खेलना है वर्ल्ड पुलिस, एक सपना था कि मुझे वर्ल्ड पुलिस जाना है, तो बस वो था कि हाँ मतलब तब भी वहां पहुंच के भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं आ गई यहाँ पर।
2: सबसे कठिन मुकाबला कौन सा रहा था आपका?
3: मुझे ऐसा लगता कि अपने इंडिया के प्लेयर्स को फाइट देके ही निकलना है यहाँ से, खाली हाथ वापस नहीं आती, चाहे मेरा कोई भी मेडल है आता है, बस ये है वहां से। फिर
2: क्या कोई ऐसे कोच या व्यक्ति हैं जिनका योगदान आप विशेष रूप से मानती हैं?
3: करी मैं पहले रोहतक हॉस्टल में थी, फिर JSW चली गई, अभी मैं CSF में हूँ, वहाँ पे कोच के उनके कोच के अंडर कर रही हूँ, और अभी कैंप में हूँ तो यहाँ के कोचेज है। तो बाकी झांसी से अगर सपोर्ट की जाए तो जैसे हमीद सर है और रोहित पांडे सर, मतलब जो थोड़ा सपोर्ट देते हैं बैकबोन का वो मिलता है, बाकी जो कोचिंग है तो मैंने यहाँ वहाँ करके ली है।
2: क्या बॉक्सिंग जैसे खेलों में महिलाओं को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
3: नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये बॉक्सिंग मतलब गेम है, अगर आपको करना है ना तो फिर चुनौतियों क्या देखना है, बस ये है, फिर चुनौतियां देखना है तो फिर गेम ही क्या करने से फायदा।
2: आज की बेटियों और युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
3: मैं बस आज की बेटियों को युवाओं को यही बोलना चाहूंगी कि मतलब वो तो करना चाहती हैं, लेकिन वही है जो मेरे साथ था, माँ बाप हर चीज से डरते हैं, तो वही उनके माँ बाप से यही बोलूंगी कि आप अपने बच्चों को ना एक बार उन पे विश्वास करके एक बार उनको सपोर्ट करिए, शायद वो कर जाएंगी कि जो वो करना चाहती हैं। आप उनको बोल रहे पढ़ो पढ़ो, लेकिन उसका दिमाग कहीं और है, अगर आप उसको वो करवाओगे ना तो शायद वो उस चीज में वो कर जाएंगे जो पढ़ाई से वो घर में रह कुछ नहीं कर सकते।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। और अब आपका अगला लक्ष्य क्या है?
3: अभी कंपटीशन है हमारे, अभी यहाँ मैं कैंप में हूँ, अभी ट्रायल्स होंगे, अभी ये देखिए, अभी मैं दिल में तो बहुत कुछ है, जो लक्ष्य है वो बताना नहीं चाहिए इसलिए मैं बोल नहीं सकते लेकिन क्या होता आगे। हाँ बाकी मैं लगी हूँ प्रैक्टिस में।
2: और इमरोज खान जी, आपने साबित कर दिया कि अनुशासन, साहस और समर्पण से सब कुछ संभव हो जाता है, और आपकी जीत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा रहेगी। धन्यवाद आप।

0: खेल जीवन संवारने का सशक्त माध्यम है। झांसी में खेलों की स्थिति और प्रगति सकारात्मक है एवं विकसित होती तस्वीर है, जिसमें पारंपरिक खेलों से लेकर आधुनिक गतिविधियों तक का समन्वय देखने को मिलता है। श्रोताओं, खेल केवल जीत हार नहीं, ये जीवन जीने की कला है। इसके साथ ही खेल दर्पण कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अल्पना श्रीवास्तव को। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी।
1: खेल दर्पण।
2: श्रोताओं, अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के झांसी केंद्र की प्रस्तुति थी। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है सीमा घोष का राग कलावती में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे कलाकार सीमा घोष का राग कलावती में ख्याल गायन। ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि डिस्फेजिया क्या है? इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उससे पहले आप गौर करें कि क्या आपको खाना निगलने में कोई परेशानी होती है या खाते या पीते समय बार बार खांसी आती है, तो ये डिस्फेजिया का संकेत हो सकता है। अब अगर इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में और ज़्यादा जानकारी आप चाहते हैं तो हमारे चैनल यानी आकाशवाणी की FM रेनबो 100.7 MHz पर विशेष फोन इन कार्यक्रम बुधवार दिनांक 10 जून 2026 को प्रातः 11:02 से होगा, जिसमें किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर रजत जैन देंगे आपकी जिज्ञासाओं की सरल और उपयोगी उत्तर। तो सुनना न भूलें हमारे चैनल यानी FM रेनबो 100.7 MHz पर नेशनल डिस्फेजिया अवेयरनेस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। हमारा फ़ोन नंबर है 0522-223-8845 और 0522-223-8852। इसे पुनः सुन लें 0522-223-8845 और 0522-223-8852 और हमारी ईमेल आईडी है fmakashwani@gmail.com। सही जानकारी, बेहतर स्वास्थ्य। आकाशवाणी के साथ।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनिमय संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं। इसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारी ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की

0: मैं इन न्यू दिल्ली मार्किंग अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिजिटाइजिंग एंड स्ट्रीमलाइनिंग कार्गो प्रोसेसिंग एंड पैसेंजर मूवमेंट अक्रॉस इंडियाज लैंड बॉर्डर्स. Addressing the gathering, Mr. Shah said the initiative reflects the government's commitment towards building a modern, technology-driven border management system. He said the platform is aligned with the vision of Vikasit Bharat 2047 and will strengthen trade facilitation, connectivity and national security. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है. थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से होगा.
2: सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए सूचना और प्रसारण, रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार. साक्षात्कार कर रहे हैं पत्रकार शिशिर सिन्हा.
3: नमस्कार. 26 मई 2014 नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के साथ सत्ता संभाली. तब से लेकर 12 वर्ष बीत चुके हैं और इन 12 वर्षों में देश की जनता ने दो बार और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया. इस दौरान हमने कई परिस्थितियां बहुत ही कठिन देखी. कोविड का दौर था, फिर हमारा रूस और यूक्रेन की लड़ाई का भी असर देखने को मिला और उसके बाद अब पश्चिम एशिया का संकट. लेकिन इन सब के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था 7% या उससे ज्यादा की दर से विकास करती रही. कैसे संभव हुआ, क्या कुछ रही कहानी, आगे क्या कुछ हो सकता है, इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रेलवे, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका.
4: नमस्कार
3: सर. 12 वर्षों में आर्थिक जो परिस्थितियां रही, कई चुनौतियां भी थी, कई कठिनाइयां भी थी, लेकिन 7% या उससे ज्यादा की विकास दर को हम हासिल कर पाए. किस तरह से नीतियों ने इसमें मदद की?
4: इन 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही एक मैच्योर तरीके से हैंडल किया है. हम अगर आज से 12 वर्ष पहले 2014 में जाएं, 2014 में हमारा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर ऐसी अजब परिस्थिति में था कि सारी दुनिया में चिंता थी कि भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने लगी थी. बैंक्स के NPS बहुत हाई थे, बैंकों की बैलेंस शीट्स एकदम प्रैक्टिकली फिनिश होने के कगार पे थी, कौन सा बैंक कब इम्प्लोड हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां थी. आते ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले बैंक्स को बहुत सिस्टमेटिक वे में उनके NPS कम करने का प्रोसेस चालू किया. कम से कम करीब 2,50,000 करोड़ के आसपास रिकैपिटलाइज किया बैंक्स की बैलेंस शीट्स को. बैंक्स को प्रॉपर एक हेल्दी कंडीशन में लेके आए, जो आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं. पब्लिक सेक्टर बैंक्स का प्रॉफिट हाईएस्ट लेवल पे है, NPS लोएस्ट लेवल पे है. उसके बाद में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चालू किया. फिर आया कोविड. कोविड का शॉक था, बहुत बड़ा शॉक था, सारी दुनिया ने झेला, भारत ने उस शॉक के दौरान भी प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण एक इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल स्टार्ट किया. उस इन्वेस्टमेंट ड्रिवन मॉडल के कारण जो पहले करीब करीब $30 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट होता था, आज $130 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है देश में. इन्वेस्टमेंट जाता है फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रा में, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई देता है. आज हम देखें, चाहे कोई भी सेक्टर हम लें, एयरपोर्ट्स, नंबर ऑफ द एयरपोर्ट्स डबल हो गए, हाईवेज 58,000 किलोमीटर्स बने, नई रेलवे ट्रैक्स 36,000 किलोमीटर्स बनी, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% कंप्लीट हुआ. कंपेयर करें UK से तो मेरे ख्याल से less than 50% है. कई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आई. उसका देश में एक प्रभाव पड़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, लोगों की सुविधाएं बढ़ी, इंडस्ट्रीज को और ज्यादा ग्रो करने में मदद मिली. साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक फोकस दिया इंक्लूसिव ग्रोथ. भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारों में से एक विचार है अंत्योदय का विचार. इसमें प्रधानमंत्री जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से इस पे ध्यान दिया, और जब भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो जनधन अकाउंट हो, महिलाओं को सम्मान देने के अधिकार के साथ जो टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन हो, पक्के घरों का निर्माण हो, हर घर नल से जल पहुंचाने का भागीरथी संकल्प हो, ये ऐसे बड़े बड़े काम हाथ में लिए और उनको डिलीवर सक्सेसफुली किया कि सबसे बड़ा इंक्लूसिव ग्रोथ का पूरे विश्व में उदाहरण है अपने पास. मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया और इनोवेशन पे फोकस किया और बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन किया. तो इस तरह की वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटजी के कारण आज भारत 6-8% के ग्रोथ ब्रैकेट में कंसिस्टेंटली रहेगा.
3: और अब जो हम कहते थे कि फ्रेजाइल 5 में है, अब वो कहीं पीछे रह गया है. क्योंकि आप रेलवे का कार्यभार काफी समय से संभाल रहे हैं और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में करीब 56

0: परियोजनाओं की मंजूरी दी गई जिसमें लगभग 2,38,000 करोड़ रुपए का निवेश है। हम कहते हैं कि जब कभी भी किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, यानी कि आप 1 रुपया खर्च करते हैं तो 3 या 4 रुपए तक उसका फायदा देखने को मिलता है। रेलवे की परियोजनाओं से जो बदलाव हुआ है उसे आप किस तरीके से परिभाषित करते हैं?
1: बड़ा फंडामेंटल चेंज आया है। अगर आप 2014 से पहले देखें तो एक साल में 700-800 हजार किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन होता था, आज 6,000-7,000 किलोमीटर इलेक्ट्रिफिकेशन साल का करके करीब करीब पूरे देश के रेलवे नेटवर्क को 99.4% इलेक्ट्रिफाई कर चुके हैं। 70,000 किलोमीटर के आसपास ट्रैक्स को अपग्रेड किया, जो पुरानी पटरियां थी हालत बहुत खराब थी, स्लीपर्स टूटे हुए रहते थे, उन सबको रिप्लेस करके करीब 70,000 किलोमीटर को रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया। 36,000 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक बने, 1,300 स्टेशन का पुनर्निर्माण नव निर्माण हो रहा है। 1,300 स्टेशन में से करीब करीब 250 स्टेशन कम्प्लीट हो चुके हैं, इस साल के अंत तक 500 स्टेशन कम्प्लीट हो जाएंगे। 5,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण एक वर्ष में करना, मैंने स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है 5,000 किलोमीटर का, पूरा स्विट्जरलैंड के रेलवे नेटवर्क के बराबर का रेलवे नेटवर्क एक साल में ऐड करना, कई वर्षों पुराने जो प्रोजेक्ट्स पड़े थे जिनको माने प्रधानमंत्री जी का जो प्रगति का मैकेनिज्म है जिसमें हर महीने वो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए होते हैं देश भर में वो उन पे ध्यान देते हैं, उनका रिव्यू करते हैं चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट उन सबके साथ मिलके, तो प्रगति मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आगे आए। ओवरऑल बहुत बड़ा चेंज आया। कई प्रोजेक्ट जैसे ये चिनाब का ब्रिज अगर आप देखते हैं तो चिनाब के ब्रिज को तो लोगों ने एक तरीके से राइट ऑफ ही कर दिया था कि ये बन ही नहीं सकता, और बारामूला से श्रीनगर तक ही रेलवे लाइन का और जम्मू से कटरा तक ही रेलवे लाइन को करके एक तरीके से अबैंडन सा ही कर दिया था इस प्रोजेक्ट को, प्रधानमंत्री जी ने इसको कम्प्लीट किया।
0: सर, हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो दुनिया भर में एक नीति अपनाई जाती है, उसको हम लोग ट्रिपल पी कहते हैं, पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट। हमने आपके कैबिनेट ब्रीफिंग में देखा कि जब भी आप किसी परियोजना का ऐलान करते हैं तो आप प्लैनेट और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काफी जोर देते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि अब गवर्नमेंट ने भी जो है ट्रिपल पी को पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी के फॉर्मूले में बदल दिया है?
1: ये आपने बहुत अच्छा नाम दिया, जरा वापस बताएं क्या कहा आपने?
0: पीपल प्लैनेट और प्रोडक्टिविटी।
1: प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा नाम दिया, जनरली पीपीपी माने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं, आपने इसे अच्छा नाम दिया है। डेफिनेटली यस, देखिए रेलवे सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस 95% लेस है कंपेयर टू दी हाईवे सेक्टर, इसलिए बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट बहुत सारा हाईवे से शिफ्ट करके रेलवे की तरफ किया है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोरिया हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे जर्मनी हो, बहुत सारे देशों ने अपना इन्वेस्टमेंट का फोकस जो आपने कहा प्लैनेट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स में किया है, और भारत में भी इसका बेनिफिट भी साफ दिखाई देता है। माने प्रधानमंत्री जी ने आते ही जो रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बहुत बड़ा संकल्प लिया उसका रिजल्ट आज दिखाई देता है। आज वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण जो बहुत सारा मिटिगेशन उसका रेलवे के कारण हो पाया, क्योंकि इलेक्ट्रिफाइड है रेलवे पूरी और इलेक्ट्रिसिटी पूरी भारत में हम स्वयं प्रोड्यूस करते ही हैं, आत्मनिर्भर है उसमें पूरी तरह से, तो चाहे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो या पीपल ट्रांसपोर्टेशन हो, वी आर एबल टू डू इफेक्टिवली विद इलेक्ट्रिफाइड रेलवे।
0: सर, चूंकि आपके पास एक मंत्रालय है इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी, और इसमें अगर मैं एक, वैसे तो हर उपलब्धि अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा है, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए जो उपलब्धि हासिल हुई है उससे किस तरह का बदलाव आप, चूंकि कहते हैं कि वो भी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हम बात करें, चाहे एविएशन इंडस्ट्री की बात करें, हर इंडस्ट्री के लिए उसमें सपोर्ट जरूरी होता है, वहां पर प्रगति को आप किस तरीके से मापते हैं?
1: सेमीकंडक्टर फाउंडेशनल इंडस्ट्री है और 1960 से भारत में प्रयास चल रहा था, 1962 से भारत में प्रयास चल रहा था सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लाने का। प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सबने प्रयास किए, आखिर सफलता मिली मोदी जी को। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में प्रेजेंटेशन लेने चालू किए थे उनका बहुत स्पष्ट था कि हमें इकोसिस्टम पूरा बनाना है, और प्रधानमंत्री जी का ये भी बहुत स्पष्ट था कि हमें 20 साल का सोचना है, हमें शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए नहीं सोचना है। तीसरा उन्होंने कहा था कि बहुत ध्यान रखना कि इसमें टैलेंट डेवलपमेंट पे पूरा फोकस रहे, ये तीन चीजें उन्होंने मूल रूप से हमको गाइडेंस दी थी, इसीलिए सेमीकंडक्टर मिशन जब चालू किया इकोसिस्टम पे फोकस दिया, केमिकल्स, गैसेस, इक्विपमेंट, ये सब के सब इसमें इंडस्ट्री के जितने इकोसिस्टम प्लेयर्स है वो ध्यान से आए। सेकेंड, टैलेंट पे बहुत फोकस किया, टैलेंट में 324 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर मोस्ट मॉडर्न डिजाइन टूल्स में, सेमीकंडक्टर के डिजाइन टूल्स में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, ये इसका उदाहरण है आपके सामने। देखो सिलचर, चेंबूर, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुर, जम्मू, जालंधर, रोपड़, धनबाद, राउरकेला, मेघालय, जम्मू, कैलिकट, पूरे देश भर के स्टूडेंट

0: ये डिजाइन की हुई है चिप्स, ये चिप्स स्टूडेंट के डिजाइन की हुई, स्टूडेंट्स के द्वारा डिजाइन की हुई चिप्स को सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया और स्टूडेंट्स ने उनको वापस बोर्ड में टेस्ट करके, सर्किट में टेस्ट करके उसका यूज भी किया। हाल ही में डेवोस में मैंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के सारे लीडर्स जब बैठे थे उनको पूछा दुनिया भर में कितनी यूनिवर्सिटीज होगी जहां पे कैडेंस सिनॉप्सिस जैसे टूल्स को यूज, स्टूडेंट्स कह सकते हैं कि हमने चिप डिजाइन की और मैन्युफैक्चर की, 20 से ज्यादा नहीं गिन पाए।
1: तो अब अगले अगर मैं 2 वर्ष में कहूं तो सेमीकंडक्टर में भारत की स्थिति आप कहां देखते हैं?
0: बहुत सिग्निफिकेंट जंप आया है विद इन 4 ईयर्स। जो कॉमर्शियली प्रोड्यूस चिप्स हमारी, ये माइक्रॉन के प्लांट से प्रोड्यूस की हुई, ये केन्स के प्लांट से, 28 फरवरी और ये 31 मार्च, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किए थे ये दोनों प्लांट्स। तो मात्र 4 वर्षों में 12 प्लांट प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना, डिजाइन का इकोसिस्टम बनना, टैलेंट का पूरा पाइपलाइन रेडी होना, और अगला जो सेमीकंडक्टर मिशन होगा इसमें हमारा फोकस रहेगा डिजाइन को नंबर 1 प्रायोरिटी देना, मशीन मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, केमिकल और गैस मैन्युफैक्चरर्स को बुलाना, और फैब और ATMP यूनिट्स और आएंगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिस तरह का एफर्ट अभी लगा है और जो सक्सेस अभी तक मिली है उससे लगता है कि सारी दुनिया भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर की तरह देखती है।
1: सर एक चीज हमने और भी देखा कि जो PLI इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपने किया और उसका एक सबसे ज्यादा बड़ा फायदा हमें मोबाइल हेडसेट के मामले में देखने को मिला, क्योंकि ऐसा भी दौर था कि जब भारत में हर मोबाइल फोन बड़ी तादाद जो है वो इम्पोर्टेड होता था या मेड इन कहीं और होता था। अब हम मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया की बात करें तो ये जो PLI स्कीम है ये मोबाइल हैंडसेट और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में किस तरीके से योगदान किया और वहां पर हम आगे का सफर कैसे देख रहे हैं?
0: बहुत फायदा हुआ। सबसे पहले तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू की, फिर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग चालू हुई, और कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रिसीजन का काम होता है। ये एक क्लासिक एग्जांपल है, आप इसको देखें अगर
1: जी,
0: तो आपको ये एक फुल स्टील का ब्लॉक दिखेगा, राइट, तो कोई कहीं कट या कुछ नहीं दिखेगा। ये एक्चुअली इतना प्रिसीजन का मैन्युफैक्चरिंग है, ये एक्चुअल में इतने ज्यादा इसमें कट्स लगे हुए थे इसमें, राइट, इतना प्रिसीजन का काम था। जो सिंगल सॉलिड ब्लॉक दिखता था वो सिंगल सॉलिड ब्लॉक नहीं है। तो इस प्रिसीजन का काम जो स्टूडेंट सीख पाते हैं वही मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं आके, इस तरह का काम है। तो अब कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आफ्टर द सक्सेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एंड मॉड्यूल्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में 75 फैक्ट्रीज ऑलरेडी अप्रूव हो गई है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, करीब 250 फैक्ट्री होंगी, और कंपोनेंट का एक्सपोर्ट करना भी भारत ने चालू कर दिया है। प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के मैं कई एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। रेलवे का जो प्रोपल्शन होता है, ट्रेन का जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है वो प्रोपल्शन है, रेलवे की इलेक्ट्रॉनिक्स। लास्ट ईयर वी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रेलवे प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड US। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। प्रधानमंत्री जी का जो मेक इन इंडिया का थ्रस्ट है, जो फोकस है, वो फोकस अब रिजल्ट दिखाने लगा है जब ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजें भारत से एक्सपोर्ट होने लगी।
1: तो अगले अगर मैं PLI के अगले चरण की बात करूं तो उसमें हम क्या कुछ देख सकते हैं, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
0: बहुत फोकस आएगा कंपोनेंट्स को यूज करके भारत में एक्स्ट्रा डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना, डिजाइन की कैपेबिलिटीज बढ़ना, और क्वालिटी में जो भारत ने एक पहचान बनाई है उसको एक नए लेवल पे लेके जाना, 6 सिग्मा लेवल पे लेके जाना।
1: सर अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन की बात करूं तो 2 ऐसे बिल हैं जो एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन के तौर पे कहे जा सकते हैं, एक जैसे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है और दूसरा जो है रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट। ये दोनों कानून को लेकर के प्रतिक्रिया जैसी भी रही हो, आप इसके काफी मुखर तरीके से, आपने खासतौर पर ऑनलाइन गेमिंग की मैं बात करूं कि उस पर रियल मनी वाले ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के आपने काफी उस पर अपनी बात बहुत ही मजबूती के साथ रखा था, इन दोनों लेजिस्लेशन को आप किस तरीके से देखते हो और इनके जरिए पूरी इंडस्ट्री में किस तरह का बदलाव हुआ है वो अगर बता सकते?
0: ऑनलाइन मनी गेमिंग सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा एक अभिशाप बन के उभरा था, हजारों सुइसाइड्स, परिवार की सारी इनकम एक गेम में नष्ट हो जाना। ऑनलाइन बेटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग वॉज अ बिग बिग बिग प्रॉब्लम फॉर दिस सोसाइटी। इसीलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कठोर निर्णय लिया और ऑनलाइन मनी गेमिंग को बैन किया। इसका बहुत बेनिफिट मिला है। अभी हाल ही में टाइटन इंडस्ट्रीज के CEO का इंटरव्यू था कि ऑनलाइन मनी गेमिंग के बैन के कारण बहुत सारा जो लोग पैसा वेस्ट कर देते थे मनी गेमिंग में, वो पैसा आज अपने परिवार के लिए अच्छे सामान खरीदने के लिए लगा रहे हैं, घर में बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, हेल्थ केयर के लिए, घर बनाने के लिए, उस सब में लग रहा है। इसी तरह से कई एग्जांपल्स है। एक इंडस्ट्री है जिसमें 30,000 लोग काम करते हैं, उनके CEO मुझे बता रहे थे कि महीने का पहला हफ्ता करीब करीब ऐसा होता था जिसमें व्यक्ति ने जितनी सैलरी ली वो सारी सैलरी ऑनलाइन मनी गेमिंग में लूज कर देता था, और उसके बाद में HR डिपार्टमेंट को फोन करके किसी तरीके से परिवार कैसे चलाए उसकी व्यवस्था में चिंता रहती थी। मतलब उनका कहना

0: कि उनके जान पहचान के लोगों में महीने में एक सुइसाइड होता था गेमिंग के कारण, वो सारी चीज़ें फिनिश हो गई। अभी हाल ही में एक जगह से प्रवास से लौटने के टाइम में इंडिगो का कर्मचारी मुझे मिला, उसने कहा कि मोदी जी को धन्यवाद देना कि ऑनलाइन मनी गेमिंग आपने बंद कर दी, कि मुझे 35,000 रुपये मिलती थी सैलरी, पूरे के पूरे 35,000 रुपये मैं गेमिंग में गंवा देता था, और अब मेरा परिवार, मेरा छोटा सा बच्चा है, उसने कहा मेरा शायद 3 या 4 साल का बच्चा है, अब परिवार हमारा खुश है।
1: लेकिन
0: इस तरह के कई एग्जांपल्स,
1: लेकिन कई बार ये भी बात कही जाती है कि वीपीएन के जरिए और उन सब के जरिए,
0: ये बात ठीक है आपकी,
1: तो आप कैसे उस पे रोक लगा?
0: ये बात ठीक है, देखो जब भी इस तरह के कड़े कठोर कानून आते हैं तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व होती है, लेकिन कुछ हद तक लोग गैर कानूनी तरीकों से करने का प्रयास करते हैं, चाहे किसी भी सेक्टर में ले लो, चाहे ड्रग्स का ले लो, चाहे किसी भी तरह के सेक्टर को ले लो, तो इसमें प्रयास हमारा लगातार रहता है कि इस तरह की जो इलीगल साइट्स हैं उनको बैन करने का। अब तक करीब करीब 10,000 के आसपास इलीगल साइट्स को बैन किया जा चुका है।
1: और सर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर के इस तरीके की
0: बहुत ही वेल थॉट थ्रू बिल है ये, जिसमें 7 प्रिंसिपल्स के बेसिस पे सिटीजन्स के डिजिटल डेटा को, डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का मेथड है। इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके उसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और दुनिया भर में इस बिल के कारण भारत की एक नई पहचान भी बनी, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्टिव मेथड यूरोप ने लगाया उसके कारण उनका इनोवेशन फिनिश हुआ। भारत के इस बिल में इस तरह से बैलेंस आया इनोवेशन और रेगुलेशन में, जिससे कि इनोवेशन भी फ्लरिश कर सके और रेगुलेशन भी प्रॉपर लेवल पे हो सके।
1: अगर मैं आखिरी में आपसे पूछूं कि हमने शुरुआत करी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से, अगर मैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो अगले 3 से 5 सालों में हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ और बदलाव देखेंगे और डिजिटल इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ेगा, अगर उसकी रूपरेखा पेश कर सकें आप तो?
0: टेलीकॉम सेक्टर में बड़े बदलाव आने वाले हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो चेंज आएगा रेजिडेंट AI। एक टेलीकॉम टावर करीब 2000 पैरामीटर्स लेता है जिसपे वो काम करता है एक साथ। उन पैरामीटर्स को अभी जो एल्गोरिदम्स होती है वो एल्गोरिदम्स बड़ी प्रिस्क्रिप्टिव टाइप की एल्गोरिदम्स होती हैं, किस सिचुएशन में क्या करना है उस पर डिफाइंड होती है। अगर उसमें AI लगता है हर टावर के अंदर तो सिग्निफिकेंट लेस पावर कंजम्पशन हो पाएगा, सिग्निफिकेंटली बेटर कॉल क्वालिटी हो पाएगी, और डिजिटल इंडिया के नेक्स्ट फेज में टेलीकॉम का जो रोल है वो रोल और टेलीकॉम में AI का रोल वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा।
1: लेकिन ये भी कहा जाता है कि AI बहुत सारी नौकरियां ले सकता है, तो जब हम डिजिटल इंडिया के एक्सपेंशन की बात करेंगे, AI के इम्पोर्टेंस की बात करेंगे, हमारे लिए एक बड़ी चुनौती नौकरियां नहीं रहेंगी?
0: जितनी IT सेक्टर की इंडस्ट्रीज है उनके साथ हम लगातार एंगेज्ड हैं, किस तरह से नए प्रकार के स्किल्स क्रिएट किए जाए, नए प्रकार की ट्रेनिंग क्रिएट की जाए। अभी हाल ही में NASSCOM के माध्यम से IT इंडस्ट्री ने अपना नया कोर्स का पूरा करिकुलम बना के दिया है, जिसको AICT के माध्यम से लागू करेंगे, जिससे कि टेक्नोलॉजिकल चेंज के कारण जब भी डिसरप्शन आता है, जब भी परिवर्तन आता है, तो उस समय में अगर इंडस्ट्री और एकेडेमिया दोनों आपस में मिल जाए तो उस चेंज को बहुत स्मूथली कर सकते हैं। तो वही प्रयास है IT इंडस्ट्री के साथ मिलकर नए तरह के जो जॉब्स क्रिएट होंगे उन जॉब्स के लिए हमारे युवाओं को तैयार करने का प्रयास है।
1: अश्विनी वैष्णव साहब बहुत बहुत धन्यवाद,
0: नमस्कार।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सूचना और प्रसारण रेलवे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे पत्रकार शिशिर सिन्हा। ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत। अब सुनिए संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पराशर।
3: नमस्कार। 26 मई 2014 वो दिन था जब सिर्फ सरकार नहीं बदली थी बल्कि करोड़ों भारतवासियों की जो आकांक्षा थी, जो सपने थे, वो भी ऐसा लगा था पूरे होने की कगार पर अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अब जब 12 साल पूरे हो रहे हैं तो फिर ये तो एक सवाल बनता है ना कि भाई 12 साल में इस देश में ऐसा क्या बदलाव आया कि लोग मोदी मोदी मोदी मोदी कर रहे हैं? ऐसी क्या बात हो गई कि नरेंद्र मोदी हर राज्य में विजय पताका फहराते जा रहे हैं, लहराते जा रहे हैं, और भारत जो है वो विश्व स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब अपना एक अलग मुकाम रखकर लाया है। चलिए इस बारे में बातचीत करने

0: के लिए हमारे साथ आज बेहद ही खास मेहमान है, और वो खास मेहमान जो कि जब नॉर्थ ईस्ट में बात होती थी ना कि कौन चेहरा है, तो एक चेहरा सबसे पहले सामने आता था किरण रिजिजू जी का, और वो अब अल्पसंख्यक मामलों के भी मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी हैं, इससे पहले कानून मंत्री रह चुके हैं। तो एक तरीके से 2014 से लेकर अब तक का सफर इन्होंने लंबा तय किया है। बहुत बहुत स्वागत है रिजिजू जी आपका।
1: धन्यवाद।
0: और 12 साल की ये जर्नी, आप इस जर्नी को कैसे देखते हो?
1: ये जर्नी भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट किए गए थे, मंत्रिमंडल का शपथ लेने से पहले उन्होंने हम 44 लोगों को बुला करके पहला संदेश जो दिया था वो मुझे आज भी याद है। मोदी जी ने कहा था कि हम लोग सिर्फ सत्ता में कुर्सी ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं आया है, हम देश का दशा दिशा और जनता गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेने के लिए हम आए हैं। तो तब से लेकर एक एक नीति आप देखेंगे तो भारत को एक नई मोड़ पर लेकर के 2014 के बाद हमने काम शुरू किया है, और गवर्नेंस शासन करने का प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया है, और अब तो एक आम सा बात हो गया है कि भारत सरकार कोई भी कदम उठाते हैं उसका लाभ तुरंत जनता तक मिल जाता है। नहीं तो पुराने दिनों में कांग्रेस के शासन के समय तो बातें बहुत होती थी, कई घोषणाएं भी होती थी, बजट में घोषणाएं, रेलवे बजट में नई प्रोजेक्ट का घोषणाएं, और हर समय चुनाव में तो घोषणा ही घोषणा होते थे, गरीबी हटाओ नारा लगाना, ये एक फैशन सा बन गया था उस जमाने में। लेकिन इन 12 सालों में सचमुच में जो काम हुआ है, मैं मानता हूं कि मोदी जी का कार्यकाल है ये सचमुच में भारत को फिर से एक महान देश, और जो पुराने में भारत का एक नाम था उसको फिर से पुनर्जीवित और फिर से पुनर्स्थापित करने में कामयाब हुआ है।
0: आपने, क्योंकि रिजिजू जी गरीबों वाली बात की ना, पहले का वो स्लोगन एक याद आता है कि जब 1 रुपया भेजते थे 10 पैसे पहुंचते थे, आज 1 रुपया भेजते हैं तो कितने पैसे पहुंचते हैं?
1: आज तो जितना भेजता है उतना ही पहुंचते हैं, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री खुद ही सरेंडर हो गए थे, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और खुद ही सरेंडर करके बोल दिया कि 100 रुपया भेजता है तो 15 रुपया पहुंचते हैं, 1 रुपया में 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तो एक बटन दबाया केंद्र सरकार के ओर से कोई भी स्कीम घोषणा करके उसको सिर्फ बटन दबाना है, डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाता में पहुंच जाते हैं और सारा स्कीम्स जो है समयबद्ध क्रियान्वित हो जाते हैं। इसलिए जो बदलाव आज देखने को मिला है, ऐसे ही सोचने से आपको पता नहीं चलेगा 12 साल पहले देश का हालत क्या था। जब कांग्रेस यूपीए सरकार थे तब हम भ्रष्टाचार से ग्रस्त होकर के, पॉलिसी पैरालिसिस होकर के, और गरीबों को सरकार का कोई भी कार्यक्रम तुरंत कुछ भी नहीं मिलते थे। तो इतना बदलाव जो आया है इसको चंद शब्दों में कहना तो मुश्किल है, मगर इतना तो कह सकता हूँ कि जो हमारा सरकार का थीम है सेवा सुशासन और गरीब कल्याण, तो गरीबों का कल्याण तो हुआ ही है, सेवा तो हम कर ही रहे हैं और सुशासन देश को भला हो रहा है, तो हर दृष्टि से हम कामयाब हैं।
0: तो आप कह रहे हो पॉलिसी पैरालिसिस, ये जो नारा और स्लोगन चला था उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार के समय में, आज राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज पीएम का नारा चला रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा किया तो अब कॉम्प्रोमाइज पीएम वो बोल रहे हैं।
1: कांग्रेस के समय में जो हालत था वो हमको बताने का कोई आवश्यकता ही नहीं है, देश के जिस आदमी का भी आप पूछो कांग्रेस जमाने में क्या हालत था, और कांग्रेस के खुद नेताओं से पूछो, कांग्रेस के नेता खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस के जमाने में तो अमेरिका उसका मास्टर थे, चिदंबरम साहब खुद होम मिनिस्टर थे तो खुद ही बताया कि पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया और भारत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि अमेरिका ने वार्निंग दिया कि कुछ नहीं करना है। फिर चिदंबरम जी ने खुद भाषण दिया था पार्लियामेंट में जब हमारा सत्ता में आए, कहा कि आप डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, गांव में गरीब लोगों को डिजिटल से क्या लेना देना है, और जो हमारा पेमेंट होता है यूपीआई के बारे में मजाक उड़ाया था कि गरीब जो सब्जी बेचते हैं सामान बेचते हैं उनका डिजिटल पेमेंट कैसे होगा,
0: वो बैंक के खाते का क्या करेंगे,
1: तो ये सारा चीज जो है वो तो कांग्रेस खुद ही कहते हैं। राजनीतिक दृष्टि पर कुछ भी आप कह लो लेकिन मालिक तो जनता है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस पार्टी ने देश को ही कॉम्प्रोमाइज करके रख दिया था। आज तो मोदी जी अपना निर्णय लेते हैं देश हित में, और देश हित में किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। तो राजनीतिक दृष्टि से कोई अगर कह देगा तो वो तो उसके ऊपर भारी पड़ेगा, स्पेशली कांग्रेस पार्टी तो कुछ कह नहीं सकते हैं। उन्होंने लगभग 60 वर्ष इस देश को शासन किया और देश को बहुत गरीब राष्ट्र बना दिया था, सबको मालूम है हमारा इकोनॉमी हमारा पर कैपिटा इनकम कांग्रेस के जमाने में कितने नीचे थे। अब हम

0: तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं तो सपना देखता था उस जमाने में कि चाइना 8% 10% से ग्रोथ करते हैं, हम कब चाइना की तरह ग्रोथ करेंगे, और मोदी जी ने हमको चाइना से भी ज्यादा स्पीड में अपना इकोनॉमी का ग्रोथ पाथ को आगे लेके खड़ा कर दिया। तो ये सब देखिए, इसमें तो कोई भी भारतीय फख्र होगा कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जो भारत को एक विकसित भारत की ओर ले जा रहे हैं।
1: आपने क्योंकि चाइना की बात कही ना, तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ से आप आते हैं, वो समय और वो दौर भी हम लोग देखते थे कि जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान का संकट था, पहचान बताने में भी उनको घबराहट होती थी, दिल्ली तक आने में तो उनको बहुत समय लग जाता था। वो बदलाव भी देखा है क्या हमने?
0: बदलाव तो क्या कहेंगे, मैं ये कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा परिवर्तन हो गया है। बदलाव सिर्फ इंक्रीमेंटल बदलाव नहीं है ना, ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव आया है, क्रांतिकारी बदलाव आया है। क्योंकि जो दूर दराज के इलाके हैं, वो तो दिल्ली से बहुत दूर महसूस करते थे। जैसे मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ, अरुणाचल के लोग दिल्ली जाने के लिए भी सोचना पड़ता था, और दिल्ली वाले भी नहीं आते थे, अगर आते तो भी मेहमान की तरह आते हैं। आजकल तो चाहे लद्दाख हो, चाहे मिजोरम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह ट्रेन से कनेक्ट हो गए हैं, एयरपोर्ट से सबको कनेक्ट किया गया है, और टनल बन रहे हैं, नए नए परियोजनाएं, हाईवे कितना बन गया है, जो एक इंच हाईवे नहीं बने थे 12 साल पहले, आज वहाँ चकाचक हाईवे बन गए हैं, लोग आराम से गाड़ी लेकर के आना जाना हो रहा है। गांव गांव मोबाइल टेलीफोन पहुंच गए हैं, वो भी इतना सस्ता है डेटा कि आप आराम से एक बार आपने अपना डेटा लोड कर लिया, फिर आराम से बात करो, आप इंटरनेट में काम करो। उस जमाने में तो फोन करने के लिए भी कितना चिंता करता था कि उसका जो बिल आते थे, तो आजकल तो डेटा भी दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता भारत में है मोबाइल।
1: लेकिन इसका फायदा या नुकसान, हर गांव में बच्चा कंटेंट क्रिएटर बना हुआ है,
0: वो तो विषय अलग है, उसको एक व्यवहारिक तरीके से क्या करना चाहिए वो विषय अलग है, लेकिन सुविधा सबको मिला है, ये बड़ी बात है।
1: जेन जी के बारे में क्या सोच रहे हो आप, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर हम बात कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर और जेन जी, खतरा लग रहा है क्या अभी?
0: देखो, जेन जी का तो ये शब्द पश्चिमी देशों से उन्होंने क्रिएट किया है, हम तो अपना पारंपरिक जो मानक है हम उसी से चलते हैं। फिर भी एक टाइटल दिया गया है नए युवाओं को, जो एक पर्टिकुलर वर्ग को जेन जी जो कहते हैं, वो आज 18 साल 20 साल 25 साल के लगभग उसमें ज्यादातर लोग हैं,
1: क्योंकि सबकी निगाह उन्हीं पर लगी। राहुल गांधी जेन जी से मिल रहे हैं, अखिलेश यादव जेन जी से मिल रहे हैं, सब जेन जी से।
0: राहुल गांधी जी हो या अखिलेश यादव जी हो, वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में कुछ लोग तो विरोध रहेंगे ही, एक पक्ष होते हैं एक विपक्ष होते हैं, लेकिन आप दिल से अगर नहीं जुड़ेंगे तो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर आपको कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, लगभग 50% वर्ष एक साल में वो विदेश में रहते हैं, वहाँ वो छुट्टियां मनाते हैं, रिजोर्ट में छुप के कहीं कहीं जाते हैं, कभी कभी बताते भी नहीं है, और फिर जब एक बार आएंगे देश में और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, मोदी जी को गाली देते हैं, फिर विदेश गायब हो जाते हैं, फिर वापस आएंगे मोदी जी को फिर दूसरा गाली देंगे, फिर विदेश चले जाते हैं। तो ये जो पार्ट टाइम वाला राजनीति है, उससे आप लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं और लोगों के अंदर आप नहीं घुस सकते हैं। हमारा तो नेता और हमारा पार्टी 24 घंटे हम तो देश के लिए और देश के जनता के बीच में हम रहते हैं।
1: ये विदेश वाला जो है, विदेश जाने में क्या बुराई है?
0: वो तो अच्छा है, अगर वो विदेश जाते रहे तो कांग्रेस का नैया जो है डूबते रहेंगे। राजनीतिक तौर पर हमको कुछ नहीं कहना है, अगर राहुल गांधी को राजनीति में कोई रुचि नहीं है और विदेश में ही उसका दिल है, और अपने विदेशी दोस्तों के साथ ही अगर वहाँ दिल बहलाने के लिए विदेश में रहता है, हमारा क्या आपत्ति है? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि वो कभी कभी वापस आते हैं भारत में, अपने देश में आ करके फिर गाली देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, चुनाव के बीच में भी वो विदेश चले जाते हैं, तो नुकसान तो कांग्रेस का है, हमारा क्या नुकसान है?
1: अब वो कांग्रेस पार्टी कहती है भाई सरकार आपकी, आप पता करो विदेश में वो क्या करते हैं क्या नहीं करते।
0: देखो, किसी का जिंदगी में कौन क्या खाता है पीता है, कहाँ रहते हैं, किसके साथ में वो घूम रहे हैं, इतना हमारा रुचि नहीं है। हमारा सिर्फ इतना तक सीमित ध्यान जाता है कि वो देश के विरोधी ताकतों के साथ में मिलना जुलना होते रहते हैं विदेश में, इससे हम आपत्ति है, हम उसको आपत्ति करते हैं।
1: आपको लगता है कि ये जो विदेश विदेश वाला राहुल गांधी का है, उसके बाद वो आते हैं पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में फिर वो एक एजेंडा बोलते हैं, कहीं ना कहीं वही एजेंडा वो लेकर के आते हैं क्या?
0: जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो झलकते ही है, क्योंकि देश को कोसते हैं, देश के प्रधानमंत्री को कोसते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो देश के विरुद्ध जो लोग काम करते हैं उनसे काफी इन्फ्लुएंस हुए हैं। उदाहरण के तौर पर जो राहुल गांधी जी कहते हैं पार्लियामेंट में, वो सेम चीज पाकिस्तान कहते हैं, और जो राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल,

0: और इन जैसे लोग जो भी नैरेटिव चलाते हैं उसके तालियां पाकिस्तान में बजता है, तो ये तो कहीं ना कहीं एक तरीके से तो जुड़े हुए हैं। अब मैं इसको किस तरीके से समझाऊं देशवासियों को कि जो विपक्ष है वो भी तो देश के लिए सोचना चाहिए ना। विपक्ष का काम ये नहीं है कि देश के खिलाफ काम करे, वो सरकार को गाली दे सकते हैं, सरकार के खिलाफ उनका बोलने का अधिकार है। और लोकतंत्र में सरकार के खिलाफ मजबूती से अगर विपक्ष खड़ा रह करके निगरानी रखेंगे, कोई करप्शन हुआ है क्या, कहीं कोई नीति में भूल चूक हुआ है क्या, अगर उसमें विपक्ष हमला करते हैं तो ये तो स्वागत है। लेकिन कोविड का समय, ये इमरजेंसी समय है, तब भी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, देश के खिलाफ काम करेंगे। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश गर्व है हमारा सेनाओं के, जो देश के प्रति उन्होंने जो बल दिखाया है उसको भी विरोध करते हैं, सवाल उठाते हैं। और अभी ईरान अमेरिका इजराइल का लड़ाई के चलते तेल गैस आने में कष्ट हो रहे हैं, ये तो एक तरीके से एक आपातकालीन टाइप का सिचुएशन हरमूज में पैदा हो गया है मिडिल ईस्ट में, तो उससे हमको दिक्कत हो रहा है। तो ऐसा में तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ऐसा में भी देश का खिलाफ बोलते रहते हैं और मोदी जी का खिलाफ बोलते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आम तौर पर विरोध जो है सरकार के खिलाफ आप जितना कर सकता है कर सकते हैं, उसमें लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन जब इमरजेंसी सिचुएशन होता है, जब एक विशेष परिस्थिति होता है, ऐसे समय में सबको एक साथ खड़ा होना होता है। जैसे जब 1962 में लड़ाई हुआ चीन के साथ, तो पूरा देश एकजुट खड़ा हुआ है। कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुआ, एक ग्रुप जो है चीन का समर्थन में आया, वो कम्युनिस्ट भाग हो गया। 1965 हो, 71 हो, या कारगिल के समय में भी हो, हर समय इस तरीके के जब विशेष परिस्थिति आते हैं, जब देश किसी से लड़ रहे हैं, दुश्मनों के साथ में देश मुकाबला कर रहे हैं, ऐसा समय में पूरा देश एकजुट खड़ा रहना चाहिए। ये तो सब मानते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है ऐसा विपक्ष आज का दिन में पैदा हो गया है कि देश किसी विपत्ति से जूझने के लिए, कोई आपातकाल स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जब काम कर रहे हैं, ऐसे समय में सरकार के खिलाफ देश के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। इससे मैं बहुत दुखी हूँ।
1: संसद में आपको लगता है ये जो बर्ताव है वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है इतने समय में?
0: देखिए, राहुल गांधी जी को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है। मैं इतने सालों से उसको देख रहा हूँ, पहले तो मैंने सोचा था कि वो हल्के फुल्के से इधर उधर घूमते रहते हैं, अनाप शनाप बात करते रहते हैं। लेकिन जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो मैंने सोचा कि वो नियंत्रित होंगे, लेकिन और बिगड़ गया। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद तो और भी उसका भाषा पूरा बिगड़ गया है। अब तो पार्लियामेंट में जब बोलते हैं तो नियम के बाहर बोलते हैं और गाला गाली पे उतर जाते हैं, दिन भर नारा लगाते रहते हैं अपना एमपीओ को, जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर गेट में खड़ा करके वही दिन भर वहां तमाशा कराते रहते हैं। तो एमपी इसके लिए नहीं आया, एक नॉर्मलिटी कर दिया। अब कांग्रेस के एमपी लोग भी ये सोचने लग गया कि वो तो पार्लियामेंट में इसलिए चुन के आए कि वो इस तरह का हरकतें करना है, उसी को अपना दायित्व तो मान लिया है। संसद के अंदर में बोलना, अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बोलना और सरकार का नीति में खामियां है तो उसको उजागर करना, और फिर जहां जरूरत है सुझाव भी दे सकते हैं या आप उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। लेकिन वो संसद में बोलना, वहां प्रदर्शन करना, ये सारा चीज जो है लोग देख रहे हैं ना, लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का हरकत कैसे है।
1: मोदी जी ने जो कोई एक बात आपसे इन 12 सालों में कही हो जो आपको हमेशा याद रहेगी?
0: मुझे तो इतना बातें प्रधानमंत्री जी की ओर से सुझाव निर्देश या हमको गाइडेंस देते रहते हैं, तो एक बोलना मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ कि देश हित में जो भी आपको दायित्व मिला है उसको पूरी तरह से निभाना है, इसलिए हम अपना ड्यूटी से प्रतिबद्ध है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी, आपने इतनी बेबाकी से ये सब बात कही। और जाहिर तौर पर देखिए 2014 से अभी तक की ये जो जर्नी है, इसीलिए हमने इसको भारत रीलोडेड का नाम दिया है, क्योंकि इस वक्त नए भारत की बात हो रही है और नए भारत का जो सपना भारतवासियों ने देखा था वो कितना पूरा हुआ, इस पर हमसे खास बातचीत की। नमस्कार।
0: नमस्कार जी।
2: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के साथ विशेष साक्षात्कार कर रही थीं रीमा पराशर।

इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:44 हुए हैं। अब हमारी आज की सायंकालीन सभा समाप्त होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।